वैसे तो शैतान हर वक्त ही इंसान को बहकाने के दर पे रहता है, लेकिन जब वो हज के लिए रवाना होता है तो खास तौर पे उसे बहकाने और गुमराह करने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि हज करने वाला अमन के शहर यानी मक्का पहुंच जाए। इसीलिए शैतान के वार से बचने के लिए जरूरी है कि हज के सफर के आगाज ही में, चाहे किसी भी सवारी में हो, पूरी तनह अल्लाह की तरफ मुतवज्जो रहें। नमाज का वक्त हो जाए तो पाबंदी के साथ नमाज पढ़े, बाकी वक्त में ना तो अपने साथियों से इधर उधर की गुफ्तगू में वक्त जाया करे और ना ही बिल्कुल खामोश बैठा रहे, बल्कि कुरान की तलावत करे या दुआएं पढ़ता रहे। जिसके लिए कुरान या दुआओं की किताब साथ रखे, इसके अलावा तलबिया पढ़ता रहे। इसी सूरत में जब मिकात पहुंच जाए तो एहराम बांध ले, अगर पहले से ना बांधा हो तो हज की बकायदा नियत करे। यहाँ से वो बकायदा मक्का की हुदूद में दाखिल हो गया। रिवायत है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा गया तो वो शैतान से बहुत डरते थे, इसलिए अल्लाह ने उनकी हिफाजत के लिए फरिश्तों को मामूर किया, जिन्होंने इस जमीन का घेराव कर लिया जिसके अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। और यही जमीन है जो मिकात की हुदूद के अंदर मौजूद है और हरम कहलाती है। खुद अल्लाह ने इसके बारे में फरमाया

0: उसमें रोशन निशानियां हैं, मकाम इब्राहिम है, और जो उसमें दाखिल होता है अमन पा जाता है। और लोगों में से जो लोग उस तक पहुंचने की इस्तेदात रखते हों, उन पर अल्लाह के लिए उस घर का हज करना फर्ज है। और अगर कोई इनकार करे तो अल्लाह दुनिया जहान के तमाम लोगों से बेनियाज है।
1: और मुमकिन हो तो हरम की जमीन में पैदल चले और इस आजजी के साथ, जैसे कोई किसी बादशाह के दरबार में हाजिर होता है, और दाखिल होकर पहले ये दुआ पढ़े, ऐ अल्लाह बेशक तेरी और तेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमीन हरम है, बस तू मेरा गोश्त और खून और हड्डी इसके सबब आग पे हराम कर दे। ऐ अल्लाह मुझे अपने अजाब से महफूज रख, जिस रोज तू अपने बंदों को उठाएगा और मुझे अपने दोस्तों और फर्मा बरदारों में कर दे, और मेरी तरफ तवज्जो फरमा, बेशक तू तो तौबा कबूल करने वाला और बड़ा मेहरबान है।
2: मक्का में अपनी रिहाइश पर पहुंचकर सामान रखें और मस्जिद हरम की तरफ रवाना हो जाएं। हरम शरीफ में सबसे पहले हजरे अस्वद की तरफ जाएं और भीड़ ना हो तो हजरे अस्वद को बोसा दें और दोनों हाथ उठाकर कानों की तरफ ले जाएं और तकबीर और तहलील करें। करीब ना जा सकें तो दूर से तकबीर और तहलील करना काफी है। हजरे अस्वद को बोसा देते वक्त या उसकी तरफ तवज्जो करते वक्त ये दुआ पढ़ें,
0: बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर। और एक मुस्तहब दुआ भी है, بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم।
2: एक मर्तबा हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तवाफ के दौरान में हजरे अस्वद को बोसा देते वक्त कहा, ऐ अस्वद तू महज एक पत्थर है जो ना किसी को नफा दे सकता है और ना किसी का नुकसान कर सकता है।

0: लेकिन मैं इसीलिए बोसा दे रहा हूं कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझको बोसा दिया है, और ये इसीलिए कहा कि कहीं लोग इसको पूजना ना शुरू कर दें। हजरे अस्वद को बोसा देने के लिए ये ख्याल रखना है कि किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, इससे बेहतर है दूर से हजरे अस्वद का इस्तेमाल करें। हजरे अस्वद को बोसा देना या इस्तेमाल की हिकमत अल्लाह ताला का एक राज है, इस पर बहस नहीं करनी चाहिए। हज के हर अमल के दौरान में ये ख्याल जहन में रहे कि ये मौका जिंदगी में एक बार ही मिला है, इसलिए हर अमल पूरी तवज्जो और दिल से किया जाए। इसके लिए हज के दौरान में भी जहां मौका मिले इसके अरकान को दोहराते रहें, चाहे इसके लिए कोई किताब शाह रखें या आजमीन में शामिल किसी आलिम से मालूमात हासिल करते रहें। एक हदीस मुबारक है कि खाना काबा का खूब तवाफ किया करो, क्योंकि ये दो मर्तबा मुनद्दम हो चुका है और तीसरी मर्तबा मुनद्दम होगा तो ये उठा लिया जाएगा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अली करम अल्लाह वजो का कौल नकल किया है कि जब अल्लाह ताला दुनिया के खात्मे का इरादा फरमाएगा तो सबसे पहले खाना काबा को खत्म किया जाएगा। खाना काबा पूरी दुनिया के मुसलमानों की इबादत का मरकज है, इसकी अजमत और एहतराम हर मुसलमान का फर्ज है, इसीलिए इसकी जियारत के वक्त सिर्फ इसकी अजमत का ख्याल किया जाए और कुछ नहीं।
1: और आखिर में आज के प्रोग्राम की खास खास बातें। हज के सफर में और इसकी अदायगी में शैतान इंसान को बहकाने की भरपूर कोशिश करता है, इसलिए पूरे अरसे में सिर्फ अल्लाह की तरफ ध्यान रखना चाहिए और याद रखना चाहिए कि ये मौका जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा, आया भी तो वो निफली हज होगा। उम्मीद है आपको हमारा खुसूसी शो हज बैतुल्ला अच्छा लगा होगा। इस शो से मैं आरजे मामिश खान, आरजे कबीर, आरजे तलहा और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी के साथ इजाजत चाहूंगी। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। इरशाद बारी ताला है, वमन युतिअर रसूल फकद अता अल्लाह, यानी जो रसूल की इताअत करे उसने दरअसल अल्लाह ही की इताअत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत को मजबूती से थामने और उस पर अमल करने की अशद ताकीद फरमाई है और उससे गफलत बरतने पर सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामने कराम, घर में दाखिल होते हुए सलाम कहना सुन्नत है। ये बात सलाम के उमूमी हुक्म में शामिल है। मजीद, घर में जाने से पहले मिसवाक करना भी सुन्नत है। यूं पहले मिसवाक की जाए, फिर घर में दाखिल होते हुए सलाम कहा जाए। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर आते तो पहले मिसवाक करते थे। रिवायत है सही मुस्लिम की। यानी आदमी मिसवाक करे, घर आए और अहले खाना को सलाम करे, या फिर घर आकर सलाम करे और पहले मिसवाक कर ले। बाज़ अहले इल्म ने तो यहाँ तक लिखा है कि किसी भी घर में जाकर सलाम कहना सुन्नत है, चाहे घर में कोई भी मौजूद ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है, फिर जब तुम घरों में दाखिल हो तो अपने लोगों पर सलाम कहना, जो अल्लाह की तरफ से है बाबरकत पाकीज़ा। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए आयात खोल कर बयान करता है ताकि तुम समझो।
0: आप सुन रहे हैं FM 107।

0: दिल से देसी।
1: सामिन किराम, अरब बदू जब शिकार के लिए चील या किसी शिकारी जानवर को साथ ले जाते हैं तो एक उसूल हमेशा याद रखते हैं, الطير اللي بغيته يصيد لا تعشيه, जिस परिंदे से शिकार कराना हो उसे रात भर सैर मत करना, क्योंकि अगर शिकारी परिंदा सैर हो जाए तो अगले दिन शिकार के पीछे दौड़ने की हिम्मत, भूख और जज्बा खो बैठता है। दोस्तों, ये कहावत सिर्फ जानवरों के लिए ही नहीं बल्कि इस कहावत में गहरी तरबियती नसीहत भी है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा मेहनती बने, एतमाद पैदा करे, हिम्मत और जिम्मेदारी सीखे तो उसे बचपन से ही कामों का आदि बनाए, न कि हर चीज उसके मुंह में डाल दें और न ही उसे आदत डालें कि बगैर मेहनत हर चीज मिल जाए। हमारे यहाँ भी कहते हैं, गोद में बैठा बच्चा चलना नहीं सीखता, यानी बच्चा मेहनत से ही सीखता है। आसानी इंसान को सुस्त कर देती है, इसी तरह ज्यादा नरमी और ज्यादा सहूलत सलाहियतों को कमजोर कर देती है। दोस्तों की कहावत हमें ये सिखाती है, समझाती है कि मोहब्बत का मतलब हद से ज्यादा आसानी देना नहीं बल्कि बच्चे को हिम्मत, जिम्मेदारी और मेहनत का खोगर बनाना है। बिल्कुल जैसे शिकारी परिंदा भूखा रहता है तो उसकी नजर तेज होती है, हिम्मत बढ़ती है और वह बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है। इसी वजह से अरब दो हिकमत भरा मशवरा देते हैं, الطير اللي بغيته يصيد لا تعشيه, जिससे शिकार कराना हो उसे सैर न करो और जिस बच्चे को कामयाब बनाना हो उसे मेहनत का आदि बना दो।
2: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। लिसनर्स, खाने के दौरान पानी पीना हकीकत है मगर उसके साथ बहुत सी गलतफहमियां भी हैं। जैसे पानी और खाना हमेशा बहस होती है, मगर ये कि आज हम देखेंगे कि क्या ऐसा है कि पानी पीने से वजन ज़्यादा हो जाता है, या ये कि पानी अगर हम लेते हैं तो उससे जो हमारा खाना है वो हजम नहीं होता। बहरहाल जो सही वक्त है उसका अंदाज़ा ज़रूर करना चाहिए हमें। खाने से 30 मिनट पहले अगर पानी आप लेंगे तो वो बेहतरीन वक्त होता है। खाने के दौरान चंद सिप्स लीजिए, खाने के 20 मिनट के बाद आप पानी पीजिए। इसी तरह से जो गर्ड वाले अफराद हैं उन्हें कम पानी पीने के लिए कहा जाता है, और ये कि जिन्हें गैस है या ब्लोटिंग है तो वक्फे से पानी पीजिए। और अगर डायबिटीज़ है किसी को तो 8 से 9 ग्लास पानी ज़रूर पीजिए। और अगर कोई वेट लॉस करना चाहता है, कम करना चाहता है अपना वज़न, तो फिर खाने से पहले पानी पीना बहुत ज़रूरी है। कुछ रूल्स हैं, जैसे 8 से 10 ग्लास पानी जो है आप रोज़ ले लीजिए, सुबह नीम गर्म पानी पीजिए, और जो शुगर की ड्रिंक्स हैं, शुगरी ड्रिंक्स, उनसे ज़रा दूर रहिए, और रात को सोने से पहले कम पानी पीजिए। पानी हमारी ज़िंदगी है मगर सही वक्त और सही मिकदार सेहत बेहतर बनाती है। हेल्थ फॉर ऑल,
2: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
4: Excuse me, अच्छा यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है?
5: हाँ, उसके लिए तो
4: वैसे
5: तुम...
4: कतर की हिस्टोरिकल जगह जानने के लिए कहाँ जाना सही रहेगा?
5: वैसे वो तो देखो,
4: और इवेंट के लिए ये मुल्क नया है, क्या करें क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है।
5: एक मिनट रुको ना, मिलेगी पूरी जानकारी, मिलेगी FM 107 पे।
2: प्रोग्राम कतर 101, RJ फजील के साथ जानिए लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, हिस्ट्री और कल्चर के बारे में हर इतवार सुबह 10 बजे ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
6: हे बच्चों, आर यू रेडी गेम्स, मस्ती, स्टोरीज और सुपर फन के लिए?
7: FM 107 पर आता है एक ऐसा शो जहां बोर होने का कोई चांस नहीं।
8: ये शो कौन सा है?
6: द सुपर किड शो।
7: Sunday to Thursday, 1:30 PM से 3 PM तक, only on FM 107, दिल से देसी। I love the Super Kid Show, super fun.

0: दोस्तों इमरजेंसी नंबर 999 एक अहम और जरूरी नंबर है। हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसे लम्हात आते हैं जब हमें फौरन मदद की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो जो हमेशा हमारी मदद के लिए दस्तयाब हो तो हम खुद को ज्यादा महफूज महसूस करते हैं। इमरजेंसी नंबर 999 का मतलब है कि अगर आप किसी भी खौफनाक या खतरनाक हालत में फंस गए हैं तो आप सिर्फ इस नंबर पर कॉल करके फौरन मदद हासिल कर सकते हैं। इमरजेंसी नंबर 999 की अहमियत को हम सबको समझना बहुत जरूरी है। अक्सर हम सोचते हैं कि ये सिर्फ एक नंबर है, लेकिन ये हमारी जिंदगी में एक अहम रोल अदा करता है। जब भी आपको मदद की जरूरत हो, आपको बस ये नंबर डायल करना होता है। इस नंबर से आप बहुत सी मुश्किलात से निकल सकते हैं और आपकी जानो माल को नुकसान से बचाया जा सकता है। और याद रखिए, ये नंबर सिर्फ और सिर्फ हर किस्म के इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए हैं, जैसे कि रोड एक्सीडेंट, मेडिकल इमरजेंसीज, नेचुरल डिजास्टर्स और कोई खौफनाक सिचुएशन जो आपके लिए खतरा बन सके। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी
2: वैल्यूज आर वैल्यूज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं नाजिया आपके साथ एंड वेलकम टू द सेगमेंट कॉल्ड आवर वैल्यूज। दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, शायद इसका ताल्लुक आपसे भी है। आज हम बात करेंगे कि क्यों ऐसा माना जाता है कि लिसनिंग जो है वो स्पीकिंग से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के दौर में हर कोई जो है वो बोलना चाहता है, मगर बड़े कम लोग हैं ऐसे जो आराम से, इत्मीनान से, पूरी तवज्जो के साथ सुनना पसंद करते हैं। वैसे तो इसमें हम सबका जो है ना वो पेशेंस टेस्ट भी है। क्या हम लगातार एक मिनट तक किसी को सुन सकते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के? आई मीन टू से, बात कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ना हो, शायद आपके बहुत ज्यादा इंटरेस्ट की भी ना हो, लेकिन आपसे कहा जाए कि एटलीस्ट एक मिनट तक आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी तवज्जो के साथ पूरी बात को ध्यान से सुने, तो शायद हम सबके लिए एक टास्क बन जाएगा। मतलब हाँ, हमें ऐसा लगेगा कि बाकायदा हमें इस टास्क को कंप्लीट करना है, ध्यान से सुनना है, समझना है, क्योंकि हमसे कहा जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं एक्टिव लिसनिंग की बात हो रही है। इसे हमारा ब्रेन जो है ना वो ट्रेन्ड है पैसिव लिसनिंग के लिए। हम आराम से, इत्मीनान से सुनते रहते हैं और भी काम करते रहते हैं, और हमें अच्छा भी लगता है कि बस हमें खुद अपने जहन पे जोर नहीं डालना है और ऐसे ही यूं ही सुनते रहना है। लेकिन सवाल ये है कि सुनना कितना पसंद करते हैं? कोई बात आपकी हुई, जरा से आपकी मर्जी के खिलाफ हुई, आप सारे काम छोड़ छाड़ के एकदम एक्टिव स्पीकर बन जाते हैं। वैसे आज का दौर भी ऐसा है, हर कोई अपनी बात रखना चाहता है, वो अपना ओपिनियन देना चाहता है, वो चाहता है कि उसको सुना जाए। और हमारा सोशल मीडिया, अरे भैया, ये जो हमारे जो भाई है ना सोशल मीडिया के, उन्होंने तो इस चीज को और आसान कर दिया है। मीटिंग्स हैं, डिस्कशंस हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, हर जगह बोलने की रेस लगी हुई है। जैसे मानो ना एक ट्रेंड सा बन गया है, द मोर यू स्पीक द मोर यू साउंड। अरे नहीं जी, ऐसा नहीं है। लेकिन असल सवाल जो है वो ये है कि क्या बोलना ज्यादा जरूरी है या लाइफ में ठहर के रुक के सुनना? मैं कहूंगी लिसनिंग, सुनना बोलने से बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि जब हम अच्छे तरीके से सुनना सीख जाते हैं, शायद तभी हम अच्छे स्पीकर भी बन पाते हैं, तभी हम बेहतर समझ, बेहतर सोच और बेहतर फैसले कर पाते हैं।

0: दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पूरी तवज्जो देना। मैं जब कहती हूँ पूरी तवज्जो देना का मतलब मोबाइल को साइड पे रख दो, टीवी है बंद कर दो, आंखों में आंखें डालकर छोटी या बड़ी कोई भी बात हो, छोटा या बड़ा कोई भी कर रहा हो, ध्यान से अहमियत के साथ सुनना। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, दूसरों को जज करना छोड़ दो। जब हम जज करते हैं तो हम सुनना बंद कर देते हैं, हम सिर्फ वही समझ रहे होते हैं जो हमने अपने दिमाग में सेट कर रखा है। इसीलिए आप जज करना लोगों को छोड़िए, जजमेंटल अप्रोच जो है ना इसको साइड में रखिए। वही एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगी, वो ये कि जब बात खत्म हो जाए सवाल जरूर पूछिए। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि एक तो एक्टिव लिसनिंग भी आपकी हुई, फिर आपको स्पीकिंग का भी चांस मिल रहा है और सामने वाले को लगता है कि आप वाकई इंटरेस्टेड थे, आपने उनकी बात गहराई से सुनी और समझी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अब मैं आपको बताने लगी हूँ वो है, खामोशी से मत डरिए। हर वक्त जवाब देना ज़रूरी नहीं होता दोस्तों, कभी कभी आपकी जो खामोशी है वो आपका सबसे प्यारा जवाब होती है। कई सिचुएशंस ऐसी हैं जहां आप अपनी खामोशी से किसी को लाजवाब कर देते हैं। तो बस आखिर में यही कहूंगी लिसनर्स, आप सभी से जो आप मुझे सुन रहे हैं, कि लिसनिंग एक स्किल भी है और एक अखलाकी खूबी भी। बोलना जरूरी है लेकिन सुनना कीमती है। जो शख्स सुनना जानता है वो दिल जीत लेता है। आज के शोर भरे दौर में अगर आप एक अच्छे लिसनर बन जाते हैं तो आप लोगों के लिए सिर्फ बोलने वाले इंसान नहीं बल्कि समझदार इंसान बनते हैं। और ये वो खूबी है जो आपके रिश्तों को, आपके करियर को और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती है। चलिए दोस्तों, अब बस मुझे आपसे यहाँ पे इजाजत लेनी है। इंशाल्लाह नए सेगमेंट में एक और नए टॉपिक पे हम बात करेंगे। नाज़िया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। सुन 3FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: यानी मैं धागों को समेट कर रस्सी बना रहा हूँ और तुम उसे बिगाड़ रहे हो। ये कहावत हमें ये सिखाती है कि किसी काम को शुरू करते वक्त हमें ऐसे आदमियों को अपने साथ रखना चाहिए जो हमारे कामों के बिगाड़ का सबब न बने।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now. आप सुन रहे हैं FM 107.
2: दिल से देसी।

को ना तो बढ़ावा देता हो ना ही कभी देगा, लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग स्टोरीज. तो वॉल्यूम जरा बढ़ा लीजिए क्योंकि आज हम कुछ अलग करने वाले हैं. ठीक है, आज हम जाने वाले हैं सीधा जापान. और आज का जो किस्सा है इसे शुरू करते के साथ ही मैं आपको बता दूं हम कई सौ साल पीछे जाने वाले हैं. आज की किस्से के लिए आपको ले चलता हूं 1584 में, साल 1584. जापान का सबसे खराब दौर था ये, यूं कहा सबसे खराब दौर में से एक. हर तरफ से लोग जापान की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे और इस तूफान और टेंशन के बीच एक छोटा सा गांव था मयामोतो. और मयामोतो में एक बच्चा पैदा हुआ, इस बच्चे का नाम था बिनोस्के. ये उसी का किस्सा है. मगर जिंदगी शुरू होने से पहले ही, इससे पहले कि वहां खोलता और दुनिया को अपने मां बाप के साथ देखता, जापान के उस वक्त के हालात की तरह बिनोस्के की जिंदगी भी बहुत भारी होने वाली थी. बिनोस्के की माँ उमासा उसे जन्म देने के साथ ही दुनिया से अलविदा कर चुकी थी, वो जिंदा नहीं रह पाई. एंड ही वाज अ न्यूबॉर्न विदाउट अ मदर. ये चीज बहुत गहरा असर छोड़ने वाली थी उसकी चाइल्डहुड पे. एंड उसका साथ देने वाले, उसके साथ देने वाले सिर्फ घर पे उसके बाप थे और उसके अंकल जो उसके फादर थे बिनोस्के के, वो एक सॉर्ड मास्टर थे. जस्ट इमेजिन 1500s में एक सॉर्ड मास्टर, बहुत जबरदस्त वॉरियर, और उनका नाम था मियामोतो मोनोसाई. और उसके एक अंकल थे जो बिल्कुल ऑपोजिट थे, वो एक मंक थे. और जैसे जैसे बिनोस्के बड़ा हो रहा था एक अजीब सा अकेलापन उसके दिल में घर कर रहा था. उसी अकेलेपन से उसे चाहत भी थी और उसी अकेलेपन से वो भागना भी चाहता था. अंदर एक कश्मकश और अंदर एक आग. उसके जो फादर थे मोनोसाई, वो अपने बीवी के गुजर जाने के गम की वजह से बहुत परेशान थे और उन्होंने इस चीज का भी ब्लेम अपने बेटे पे ही डाल दिया था, विच वॉज वेयर्ड एंड रॉन्ग ऑफ हिम. लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया और असर ये रहा कि अपने बेटे को, क्योंकि घर से तो बाहर नहीं निकाल सकते, तो उन्होंने उसके ऊपर बहुत जोर दिया ट्रेनिंग का. वो चाहते थे कि वो ट्रेनिंग उनकी तरह करे, उनके हिसाब से करे, ट्रेडिशंस को फॉलो करे और उनके नजरों के सामने रहे, क्योंकि वो खुद एक समुराय थे. और वो ट्रेनिंग बिनोस्के को वैसे ही देना चाहते थे जैसे बड़ों को ट्रेनिंग दी जाती है. बिनोस्के में एक नेचुरल एबिलिटी थी, वो एक गिफ्टेड बच्चा था जो सीखना भी चाहता था और एक हथियार हुआ करता था, अभी भी है जापानीज कल्चर में जेजेते. और वो एक हथियार होता है जो लोहे का होता है, आयरन का, लेकिन उसके एंड में एक हुक होता है. ये उसके फादर की स्पेशलिटी थी चलाने में और बिनोस्के को भी वो यही सिखा रहे थे जो वो अच्छे से सीख रहा था. मगर उसका अपना एक स्टाइल था. बिनोस्के जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, तलवार की ट्रेनिंग ले रहा था, वो थोड़ा अग्रेसिव हो रहा था. और ये उसके अंकल ने नोटिस किया था. वो बहुत टेंशन में थे कि कहीं कहीं ये लड़का अगर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया तो बहुत परेशानी आ सकती है. तो उन्होंने उसे एडवाइस देना शुरू करी, बहुत कोशिश करी बिनोस्के को बताने के लिए कि अपने अंदर कंपैशन कितना जरूरी है, डिसिप्लिन कितना जरूरी है और खुद की नॉलेज को बढ़ाना कितना जरूरी है. मगर बिनोस्के कुछ अलग करने वाला था. ही वॉज अ रेबेलियस चाइल्ड, बागी था वो. बाप बेटे का रिश्ता धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता गया, रिश्ता अच्छे होने की जगह खराब होता गया. बिनोस्के की परेशानी ये थी कि वो और भी चीजें सीखना चाहता था मगर उसके जो फादर थे वो टीचिंग्स वही दे रहे थे उसे जो उनको मिली, वो ट्रेडिशनल समुराई ट्रेनिंग्स, उसके बाहर की दुनिया से वो उसको वाकिफ नहीं करवाना चाहते थे. और इसीलिए बिनोस्के अपने फादर की टीचिंग्स पे सवाल खड़े करने लगा था. वो ट्रेडिशनल समुराई नहीं बनना चाहता था, वो कुछ और सीखना चाहता था, एक अपना यूनिक स्टाइल बनाना चाहता था. और ये लड़ाई झगड़ा दोनों के बीच में बढ़ता गया. बिनोस्के के फादर मियामोतो मोनोसाई, वो अपने बेटे की इस बगावत को एक आर्ग्यूमेंट मानते रहे. उन्हें लगता था ये क्यों सीखना चाहता है कुछ और, जब मैं इसे वो सिखा रहा हूं जो मुझे आता है, क्यों सीखना है, क्यों कुछ और करना चाहता है. और एक दिन हुआ ये कि दिल का गुबार सारा का सारा निकल गया अपने बेटे पे और बिनोस्के ने भी घर छोड़ने का फैसला किया. अब वो नहीं रहना चाहता था, अब वो अपनी राह खुद चुनने वाला था और अपने ही फादर को गलत साबित करने के लिए घर से बाहर निकल गया, एक अपनी पहचान बनाने. और नई पहचान बनाने के लिए उसने अपने आप को एक नया नाम भी दिया और ये नया नाम था ताकेजो. ये नाम उसकी आजादी को सिग्निफाई करता था, एक फ्रेश शुरुआत, अपने माजी से दूर और आने वाले कल की अपने हिसाब से की जाने वाली तलाश. कोई ट्रेडिशन नहीं,
ताकि जो अब जंगल में घने जंगलों में घूमता वहीं रहने लगा, पर उसके अंदर जंगल की तरह ही एक बीस्ट दिल में पनप रहा था और वो वक्त के साथ साथ अग्रेसिव होता गया, बहुत गुस्सैल हो गया। जब भी वो मेन टाउन जापान में आता तो जितने भी नौजवान समुराई थे उसकी उम्र के या उससे एक दो साल बड़े जो ट्रेनिंग लेते वो उनके सामने जाता और उनको चैलेंज करता, ताकि जो अपने ऊपर किसी को नहीं मानता था। वो जान बूझ कर लोगों से डूल करता था, बेसिकली डूल क्या होता है, तलवारबाजी का एक मुकाबला, और वो इसलिए भी भिड़ता रहता था लोगों से कि वो जो सीख रहा है जंगल में खुद को सिखा रहा है वो अप्लाई कहां करे, तो वो लगातार लड़ाइयां खुद ही मोल लेता रहता था। वो बेशक बहुत ताकतवर था, बहुत बहादुर था, और हर जीत की वजह से उसका जज्बा और उसका ईगो, उसकी अना बढ़ती जा रही थी। उसके दिल में जो एक आग थी वो इस कदर बढ़ चुकी थी कि अगला किस्सा आपको भी हैरान कर देगा। ताकेज़ो 13 साल का था और अब वो तलाश कर रहा था किसी ऐसे शख्स को जो उसको तलवारबाजी में हरा सके, और ऐसे में उसे खबर पता चली, एक बहुत बहुत शानदार और बहुत ऊंचे दर्जे के समुराय थे, आरिमाकिहे। आरिमाकिहे जो थे वो समुराय होने के साथ साथ एक स्कूल शिंतो रियो स्कूल के मास्टर भी थे, और वो अभी जापानीज सड़कों पर निकले हुए थे। आरिमाकिहे चाहते थे कि कोई उनसे उन्हें चैलेंज करे, किसी में भी हिम्मत है उन्हें चैलेंज करने की, उन्हें हराने की, तो वो आगे आए। वो ऐसा इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि वो मशहूर हो सकें और पूरे जापान को पता लगे कि वो कितने काबिल हैं। आरिमाकिहे अपने कॉम्बैट स्किल का शो ऑफ करना चाहते थे, शोहरत पाना चाहते थे, और ताकेज़ो उसके फादर को पता था कि मेरा 13 साल का लड़का इस शानदार समुराई से नहीं बढ़ सकता, मगर वो भिड़ना चाहेगा, इसलिए उन्होंने बैन लगा दिया उस पर कि जहां दिखे इसको वहां से रोकना है। पर ताकेज़ो जो घर छोड़ चुका था, एक बागी हो चुका था, वो नहीं सुनने वाला था। उसे अपने बाप के ट्रेडिशंस के खिलाफ जाना था और अपनी काबिलियत को साबित करना था। तो उसने जहां पर लड़ाई के लिए सब अपना नाम लिख रहे थे उसी बिलबोर्ड पर अपना नाम भी लिख दिया। खबर फैल गई कि 13 साल का एक लड़का आरिमाकिहे इतने शानदार समुराय से भिड़ने वाला है, और सब यही बात करने लगे। आरिमाकिहे को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा, और उसे बहुत बुरा लगा। जस्ट इमेजिन कि आप किसी हुनर आप बहुत हुनरमंद हैं और किसी काम में बहुत सालों से हैं, कोई बच्चा आपके सामने आके आपको चैलेंज कर दे तो क्या होगा। आरिमाकिहे को पता लगा कि 13 साल का लड़का उन्हें चैलेंज कर रहा है, तो उन्होंने उसके अंकल को बुलाया और उसे बोला, अपने लड़के को बोलो मुझसे माफी मांगे, ये कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे। और ताकेज़ो के जो अंकल थे उन्होंने बोला, मैं बात करूंगा उससे, मगर आप भी एक बात याद रखिएगा, वो नॉर्मल बच्चा नहीं है। और वो सही थे, ताकेज़ो ने नहीं मानी, अपने अंकल की भी नहीं मानी और आरिमाकिहे की भी नहीं मानी, और वो मैदान में उतर गया। अब सजा देने के लिए जस्ट इमेजिन के लोगों का पूरा सर्कल ताता लगा हुआ है, और बीच में एंट्री ली आरिमाकिहे ने। ये समुराय जो ब्लैक रोब शानदार कपड़ों में और बिल्कुल चमचमाती कटाने के साथ उतरा था, और उसके सामने था ताकेज़ो, एक 13 साल का लड़का। उसके हाथ में थी एक लकड़ी की बोकन, एक किस्म का हथियार जो लकड़ी का होता है, तलवार जैसा, अनप्रिपेयर्ड, कम उम्र का, और वो सामने खड़ा था मैले कुचैले कपड़ों में। आरिमाकिहे को लगा कि ये माफी मांगने आया है, लेकिन ताकेज़ो माफी मांगने नहीं आया था, वो लड़ने आया था। लड़ाई शुरू हुई और सबके सब जो आमूमन लड़ाई देखने पे शोर मचाते थे वो एकदम चुप थे कि 13 साल का लड़का आज शायद जिंदा नहीं बचेगा। जब ये बैटल शुरू हुआ तो आरिमाकिहे ने ताकेज़ो पर बहुत जोरों से हमला किया, सामने से दौड़ के आए और तलवार घुमाई, लेकिन ताकेज़ो क्योंकि एक 13 साल का लड़का था तो उसकी मूवमेंट, उसके रिफ्लेक्सेस बहुत फास्ट थे। वो एकदम से मूव करके डॉच करते हुए बचता हुआ वहां से निकला और कुछ देर में वार किया ताकेज़ो ने, और ताकेज़ो का जो वार था वो सीधा कंधे पे जाके लगा आरिमाकिहे के। उन्हें थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं करी थी कि 13 साल का लड़का इतना तेज कैसे हो सकता है। उन्होंने फिर से हमला किया, फिर से ताकेज़ो ने डॉच किया, और उसके बाद ताकेज़ो ने घूम कर जो वापस अपनी वुडन बोकिन, जस्ट इमेजिन के सामने वाले के पास कटाना है, लिटरल शाइनिंग कटाना सूरज की रोशनी से पड़ रही है, लेकिन ताकेज़ो की वो लकड़ी का जो बोकिन वो लेके आए थे हथियार, उन्होंने सर पे मारा, और जब ये सर पे लगा आरिमाकिहे के, वो जमीन पे गिर गया, और वो इतनी जोर का लगा था कि हेड ट्रॉमा की वजह से एक मास्टर समुराय अपनी जान से हाथ धो बैठा। पूरे जापान में उस वक्त ये बात फैल चुकी थी कि 13 साल के एक लड़के ने विद अ वुडन बोकन उसने एक समुराय को

फुकू जो जगह थी उसकी हर गली में उसे जहां जहां लोग मिलते वो वहां वहां उनसे डूल करता, उनसे बैटल करता। नतीजा ये हुआ कि एक दिन, बहुत मजेदार किस्सा ये सुनिएगा, एक दिन हुआ ये कि किसी ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि बच्चा है ऑब्वियसली, तो पकड़ के उसको ले गए एक मंक के पास। उनका नाम था तकुआना सोहो। सो जब ये सोहो साहब के पास इन्हें ले गए ताकिजो को पकड़ के, उसे कहा गया, ऑर्डर दिया गया सोहो ने कि इसे पेड़ से बांध दो, पेड़ से लटका दो उसको, और पेड़ से लटका दिया ताकिजो को। अब जब वो टंगा हुआ था, ऑलरेडी इतना खूंखार था, इतनी ज्यादा उसका हाई ईगो था, चिल्लाने लगा, मुझे एक बार उतारो फिर बताता हूं तुम लोगों को, मैं उतरते ही तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ऊपर वो टंगा हुआ था पेड़ से, और जो ये मंक थे ताकुआन सोहो, वो उसके किसी भी चीखने चिल्लाने पर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। ताकिजो के लिए पहली बार था, काफी टाइम बाद उसे बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी, और पहली मर्तबा उसे निहत्ता महसूस हो रहा था। वो वापस उस अकेलेपन में चला गया जिस अकेलेपन से वो भागना चाहता था। ताकिजो को ताकुआन ने कुछ दिनों ऐसे ही पेड़ से लटका के रखा, बस खाना देते थे और कहते थे मैं कल आता हूं। वो दरअसल ये चाहते थे कि ये लड़का जो इतना स्किल्ड है, जिसके अंदर बात है, बस ये खुद से मिल ले एक बार तो शायद सुधर जाए। वो उसे छेड़ते थे, उसे जानबूझकर गुस्सा दिलाते रहे, फिर उसे सीख भी देते थे। ताकिजो को उन्होंने बोला कि तलवार उठाने वाले का एक डिसिप्लिन होता है, ताकत तुम्हारी तलवार में नहीं, तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। तुम चाहो तो नेकी करो, चाहो तो बर्बादी। और जब 3 दिन बीत गए तो धीरे धीरे ताकिजो, जो अभी पेड़ से लटका हुआ था, उसका गुस्सा कम होता गया, जो चीख पुकार कर रहा था, ऐसा हुआ जैसे ताकिजो अपने अंदर के उस शख्स से मिला जिससे वो डर रहा था, और वो जैसे ही खुद से मिला उसे अपनी सही ताकत का अंदाजा हुआ। वो खुद पे काबू करना धीरे धीरे सीखने लगा। उसे ताकुआन के रूप में एक गाइडिंग लाइट, एक किस्म का टीचर मिल चुका था, जिन्होंने उसे डिसिप्लिन और सही राह दिखाने का फैसला किया। और ये दौर जो था, जिस वक्त ताकिजो था, इस वक्त जापान जो है बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। जैसे मैंने आपको बताया, 2 क्लैंस थे जो आपस में भिड़ने वाले थे और बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला था। एक तरफ थे तोयोतोमी क्लैन और एक तरफ तोकुगावा क्लैन। अब इन दोनों के बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, इतना समझ लीजिए कि एक वेस्टर्न थे जो जापानीज जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, और तोकुगावा जो थे वो जापान के अंदर से लड़ रहे थे। दोनों में से जो जीतेगा, ये जापान की जमीन उसकी। और एक खबर जब ये पहुंची ताकिजो के पास, तो वो चाहता था कि बस वो उतर जाए और अपनी स्किल को टेस्ट करे। वो भी इसका हिस्सा होना चाहता है, वो बैटल ग्राउंड में उतरना चाहता है। और फिर उसका सपना पूरा हुआ, बैटल ऑफ सिकागहारा 1600 जापान में। इस वक्त तलवार की नोक पे वफादारी और धोखेबाजी चल रही थी। ताकिजो अपने आप को प्रूव करना चाहता था, वो चाहता था कि लोग उसकी भूख को पहचान सकें, वो कितना महान है, और वो मैदान में कूदने के लिए तैयार था। उसने फैसला किया कि वो तोयोतोमी क्लैन की तरफ से, शिनमैन क्लैन की तरफ से लड़ेगा, और उसे एक मास्टर भी मिल गया था, उकिदा। वो उनकी बड़ी इज्जत करता था क्योंकि उकिदा बहुत पावरफुल और लॉयल लॉर्ड्स थे। और फिर ये बैटल हुआ, अपने तलवार की नोक पे जापानीज फ्यूचर को बिल्कुल पेंट करने के लिए तैयार था ताकिजो। अर्ली मॉर्निंग, जब सूरज पूरी तरह से निकला भी नहीं था, तो दोनों ही तरफ के लोग तैयार थे जंग के मैदान में। दोनों आर्मीज आपस में भिड़ गई सिकागहारा प्लेन्स में। धुंध थी चारों तरफ, एक गोस्टली एटमॉस्फेयर। आर्मर्स जो पहनते थे उनके आपस में टकराने की आवाजें, आर्मर और तलवार के टकराने की आवाजें, और ताकिजो का दिल जोरों से धड़क रहा था। अब वक्त था एक असली असली बैटल में उतरने का। उसका जो खून खौल रहा था, उसने उसको चैनलाइज किया, अपने गुस्से को चैनलाइज किया, और मैदान में उतर गया। कैनन्स की आवाजों के बीच जमीन कांप रही थी, समुराई आपस में भिड़े हुए थे, तलवारों के टकराने की आवाजें थी और गन पाउडर की महक। ताकिजो उतरा एक हंगरी भेड़िए की तरह, सारे अटैक्स को डॉज करता हुआ, बिल्कुल बिल्ली की तरह रिफ्लेक्सेस। ऐसा लग रहा था कि वो सॉर्ड से डांस कर रहा हो। एक नौजवान समुराई एक गोस्ट की तरह मूव कर रहा था। ताकिजो ने एक के बाद एक समुराइज को अकेले हराया। उसकी सॉर्ड जब चल रही थी तो लोगों ने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे कि सर्जिकल प्रिसिशन है, इतनी क्लीन तरीके से मूव कर रहा था। बीच में मैदान में उसके कंधे पर तलवार किसी ने मारी, बट ही डिडंट स्टॉप। वो रुका नहीं, उसे अपनी वफादारी दिखानी थी, मगर वो अकेले

कितना करता, किस्मत को कुछ और मंजूर था। तमाम चीजों के बावजूद वो जिनकी तरफ से लड़ा था तोयोतोमी, वो हार गई। शिकागहारा की जमीन पूरी तरह से खून की बारिश में थी। ताकेज़ो वापस अकेला था, जिंदा था वो, बच गया, पर उसकी अंदर की अना अब मर चुकी थी, उसका एम्बिशन मर चुका था। वो बहादुरी से लड़ा, लड़ता गया, मगर जीत हाथ से निकल गई। एक भार उसके कंधों पे आ गया। ओकिता हिदे, जिनको वो मास्टर मानता था, जिनके वो अंडर था, उन मास्टर को भी कैप्चर कर ले गया। शिनमैन क्लैन ने पकड़ लिया उन्हें, और अब वो एक मास्टरलेस रोनिन था। बेसिकली रोनिन वो होता है जिनका मास्टर नहीं होता है, अगर मास्टर होता तो वो समुराई होता। सो वो एक मास्टरलेस रोनिन बन चुका था, जिसका कोई मकसद नहीं था जिंदगी में। जापान अब बदल रहा था, और अब उसके पास एक चॉइस थी, या तो अपनी लॉयल्टी को जिंदा रखे ताकेज़ो और गम मनाए, या फिर वो सामने वाली टीम की तरफ चला जाए जो अब जापान पे कब्जा कर चुकी है। मगर उसने दोनों ही रास्तों को नहीं चुना। अब वो अपने आप को लिमिट में नहीं बांधना चाहता था, अब अपना रास्ता खुद चुनना चाहता था। उसे अपने अंकल की बात याद आई कि सारी ताकत तलवार में नहीं, दिमाग में है, दिल में है, और वो अपना मकसद ढूंढ रहा था जीने के लिए। उसने तलवार के साथ साथ, जब उसका जख्मी कंधा था तो वो रुका रहा, इस दौरान उसने फिलॉसफी की पढ़ाई करी, और उसे समझ आ गया कि मुझे किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना है, मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा। तलवार जो उसकी कभी घमंड की निशानी थी, अब यही तलवार उसकी टीचर बन रही थी। मास्टरी के साथ साथ एक मेंटल डिसिप्लिन। ताकेज़ो ने अपना पूरा नाम ही बदल दिया, और अब नाम उसका हो गया मियामोतो मुसाशी, जिसके पैरों में किसी भी किस्म की ट्रेडिशनल जंजीरें नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। हाँ, हारने का गम था, पर उसने देखा कि किस तरह लोग जो अनजान है जापान में उसकी मदद कर रहे थे, फर्स्ट एड दे रहे थे। रिकवरी उसकी स्लो थी, मगर अजनबी लोगों पर भरोसा करना उसने कभी सोचा नहीं था कि ये भी दिन आएगा। और जब वो ठीक हुए तो मियामोतो मुसाशी वो चले गए जंगल की गहराइयों में। उन्होंने कोने में, बिल्कुल आखिर में, एक झोपड़ी ली और उस झोपड़ी के अंदर बसर कर ली। बोर्डम उनका दुश्मन बनता चला जा रहा था, मगर वो इंतजार कर रहे थे कि कब अपनी तलवार को अच्छे से उठा पाएंगे, पूरी तरह से रिकवर हो पाएंगे। बचपन में जो आग दिल में थी वो अब भी झुलस रही थी। कई दिन रात उन्होंने अपने आप को ट्रेन करने की कोशिश करी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करी जो उनके अंकल ने उन्हें सिखाई थी, एक डिसिप्लिन लाइफ जीने की कोशिश करी, और अपने गुस्से को काबू करने में की पूरी पूरी कोशिश हर रोज, हर दिन रात करते रहे। उन्होंने तलवार के साथ साथ किताबें उठाई, फिलोसफीज पढ़ी और स्ट्रेटेजी की पढ़ाई करी कि शिनमैन क्लैन आखिर हारा कैसे। वो सबक ले रहे थे, हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे थे, वॉर टैक्टिक्स पढ़ रहे थे, मार्शल आर्ट्स उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि ये उनका मेन मकसद था। मियामोतो मुसाशी ने खुद ही को ट्रेनिंग दी, नई टेक्निक बनाई और एक फ्लूडिटी अडेप्ट करी। अब उनकी बॉडी एक वेपन की तरह हो चुकी थी, हाथ में हथियार और खुद एक हथियार बन चुके थे। अब ये बंदा जो बचपन में बिल्कुल अलग था, आज वो बदल चुका था। ऑब्जर्वेशन, सामने वाले को पढ़ना, टाइमिंग को समझना, और वो इस चीज को करने के लिए लंबी लंबी वॉक्स पर जाते थे, माउंटेन्स में, पहाड़ियों पर चढ़ रहे हैं, जंगलों में अकेले चल रहे हैं। और मुसाशी जो थे वो कहते थे कि एक अंदरूनी ताकत उन्हें मिल रही है, अब वो एक मैच्योर वॉरियर बन चुके थे। अब एक नया बंदा, एक लेजेंडरी स्टेटस पाने के लिए जब बाहर आया जापान में, तो उसका प्लान था कि वो एक लेजेंडरी स्टेटस तो पा ही लेगा। और क्यों तो जापान में, क्यों तो एक जगह है जापान में, वहां पे कई सारे स्कूल थे उस टाइम पे, ये सारे स्कूल्स टेक्निक सिखाते थे तलवारबाजी की। ये इंटरेस्टिंग किस्सा है, वहां पे बहुत सारे स्कूल थे, और इन स्कूल्स पर नजर थी मियामोतो मुसाशी की। 21 साल के हो चुके थे, और उनका प्लान था कि सबसे बेस्ट को वो चैलेंज करेंगे, और उनका टारगेट बना योशियोको स्कूल, जहां पर जो लीडर था योशियोको सिजोरो, वो बहुत फेमस था, लोग उसकी बड़ी तारीफ करते थे कि यार क्या क्या तलवार चलाता है, क्या परफेक्ट परफेक्ट वॉरियर है। और ये परफेक्ट चैलेंज था मियामोतो मुसाशी के लिए। योशियोको सिजोरो को मियामोतो मुसाशी ने खत भिजवाया चैलेंज के लिए, उसे चैलेंज किया कि पब्लिक में वो चैलेंज एक्सेप्ट करे, और उसने एक्सेप्ट किया। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, सिजोरो ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, रेडी हुआ, मैदान में पहुंचा अथॉरिटी के साथ,
और खुखार, एकदम महंगी रोब पहने हुए, और इंतजार कर रहा था कि मियामोतो मुसाशी सामने आएगा और वो उनको हरा देगा। मगर मियामोतो मुसाशी जो अब बहुत दिमाग से खेलने लगे थे, वो जानबूझ के लेट पहुंचे। वो चाहते थे कि वो लेट पहुंचे, वो चाहते थे कि उसको गुस्सा आए, क्योंकि वो खुद जानते थे कि गुस्सा कितना बड़ा दुश्मन है। और बहुत लेट होने के बाद जब उसको पूरा उन्होंने पूरा उसका खून खोला दिया, तब वो वहां पर पहुंचे। सामने थे मियामोतो मुसाशी मैले कुचैले कपड़ों में, हाथ में वही अपना वुडन बोकन, और उनके सामने खड़ा था अपनी कटाना के साथ सेजोरो। उसने फौरन चार्ज अटैक किया। मियामोतो मुसाशी जो अब एकदम साइलेंट थे अंदर से, उन्होंने ऐसे डॉज किया, ऐसे उससे बचे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर उन्होंने तलवार से एक साइलेंट ब्लो दिया उसके हाथ पे, जिस हाथ में उसकी तलवार थी, क्योंकि गुस्से में सेजोरो को समझ में नहीं आ रहा था, वो बस मारना चाहता था कि मुझे कैसे इंतजार कराया। उसके हाथ से जैसी तलवार गिरी, वो जमीन पे गिर गया। सेजोरो के हाथ से जब तलवार गिरी और वो जमीन पे गिर गया, तो उससे लगा कि अब वो बचेगा नहीं। लेकिन मियामोतो मुसाशी ने उसकी जान नहीं ली, उसे कहा उठो और तलवार उठाओ। लेकिन वो खुद बहुत बेइज्जत हो चुका था सबके सामने, उसने हार मान ली। योशियो को सेजोरो ने हार मान के, क्योंकि सारी पब्लिक उसे देख रही थी क्यों, तो कि उसने रिटायरमेंट ले ली और वो चला गया पहाड़ों में। एक और जीत मियामोतो मुसाशी को मिल चुकी थी, और क्योंकि मास्टर ऑफ द स्कूल को हराया था, तो लोग तो समझ रहे फैंडम उस जमाने में। मगर ये फैंडम अभी खत्म नहीं हुआ। योशियो को सेजोरो, जिनका स्कूल था, जिन्हें हरा के रिटायर करवा दिया था मियामोतो मुसाशी ने, उनके भाई को बहुत गुस्सा था उनसे, और भाई थे योशियो को गेंचिचोरो, तो वो जो थे वो लड़ना चाहते थे। अब ये जो भाई था, इसके पास थी नोडाची। जब आप इंटरनेट पर देखेंगे, नोडाची बहुत लंबी शॉट होती है और बहुत पावरफुल अटैक्स होते थे उसके। मियामोतो मुसाशी के पास चैलेंज गया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, ओपन फील्ड में बुलाया, इनफैक्ट जंगलों के बीच बुलाया, और इस बार वो टाइम पे भी पहुंचे, पर छुपे रहे, देखते रहे कि गुस्से में जब कुछ बोलेगा तब सामने आऊंगा। उसने आवाज लगाई, सामने आओ, डरपोक हो तुम। और मियामोतो मुसाशी एकदम से सामने आया और बोले, मैं तो बस ऐसी नेचर को देख रहा था, कुदरत के नजारे देख रहा था, एकदम रिलैक्स्ड, चेहरे पे मुस्कुराहट। और फिर भिड़ गए मियामोतो मुसाशी। हर अटैक ऐसा लग रहा था जैसे शॉर्ट डांस हो रहा हो। मुसाशी को पता था कि सामने इसके दिल में इसके भाई का गुस्सा है, और ये बदले की फीलिंग के साथ, जज्बात के साथ आया है। बहुत फास्ट और वायलेंट था, लेकिन मियामोतो मुसाशी उतने ही अंदर से चुप थे, और उन्होंने जब हमला किया, और तीन हमले किए एज पर द रिपोर्ट्स, उसमें उन्होंने गेंचिचिरो को हरा दिया। इनफैक्ट ऐसा हराया कि उसकी जान ही चली गई। अब जो बाकी लोग बचे थे इस स्कूल के, उनको तो बहुत गुस्सा था कि अब हम मिलके इसको छोड़ेंगे नहीं, और अब वो मार देना चाहते थे। मगर मियामोतो मुसाशी किल्ड एवरीबडी, उस स्कूल का एक एक स्टूडेंट अपनी जान से हाथ धो बैठा। लोगों ने पूछा कि आपने किया कैसे, तो मियामोतो मुसाशी ने कहा कि इंसान को एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए, मैं वही कर रहा था, जितने भी थे मैं एक टाइम पे एक पे फोकस कर रहा था, इसलिए मैं सबको हरा पाया। फिर एक बार एक बंदा हथियार लेकर आया, उसके बाद था कुसारीगामा। बेसिकली एक चेन होती है, बहुत लंबी चेन, उसके आखिरी में एक पॉइंटेड हथियार होता है घुमा के मारने वाला, उसने तक, और बाय द वे ये बहुत बड़ा मास्टर था, इसने मियामोतो मुसाशी को चैलेंज किया, मगर ये भी हाथ धो बैठा। मियामोतो मुसाशी पर जब इसने हमला किया उस चेन से, उससे लगा उनकी तलवार दबा दी है उसने, और ये समुराय अब हार चुका है। लेकिन मियामोतो मुसाशी ट्रेडिशनल समुराय नहीं थे, उन्होंने दूसरे हाथ से एक डैगर निकाला, एक चाकू निकाला, और सीधा उसकी जान ले ली। लोगों ने अब एक टाइटल दे दिया था मियामोतो मुसाशी को, दे वर कॉलिंग हिम गोस्ट, और इस गोस्ट से बढ़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। मगर एक बंदा जापान के कोने में तैयारी कर रहा था, उसका नाम था कोजिरो। ये पूरी तरह से तैयारी कर रहा था कि मैं एक दिन मियामोतो मुसाशी को जरूर हराऊंगा, और ये एक दिन हराने के लिए वो बहुत ईगोइस्टिक हो रहा था। उसने बेताबी से
सबसे पहले तो इनविटेशन भेजा गया, मुझसे लड़ने आओ, अब मैं मास्टर बन चुका हूं, एक पॉलिश्ड डिसिप्लिन्ड समुराई, एक आर्टिस्ट, और लोग भी उसे बहुत मानते थे। और ससाकी किजोरो इसका नाम था, इसने डिसाइड किया कि जहां मियामोतो मुसाशी बोलेंगे वहीं पे मैं उनसे लड़ाई करूंगा। और मियामोतो मुसाशी ने एक आइलैंड चुना जो कोजीरो के इलाके की इलाके के लिए था, मतलब वो चाहते थे कि वो अपने इलाके में ही लड़े ताकि उसे बेइज्जती ज्यादा महसूस हो। सब जगह ये बात फैल गई, इंटेंस ट्रेनिंग, नोडाची की ट्रेनिंग, सबकी ट्रेनिंग लेके मियामोतो मुसाशी का इंतजार कर रहा था बीच पर। यहां पर बहुत सारे लोग थे, पॉलिटिकल लोग, गवर्नमेंट के लोग, सब इंतजार कर रहे थे कि कब ये लड़ाई शुरू होगी। वो अपने मैट्रेस पे बैठा हुआ था और वेट कर रहा था कि कब ये आएंगे, और आंखें बंद करके मेडिटेट कर रहा था। मियामोतो मुसाशी बहुत देर तक नहीं आए, और फिर एकदम से एक स्मॉल, एक छोटी सी बोट आई जिसमें मियामोतो मुसाशी थे, अपने ट्रेवलिंग क्लोथ्स पहने हुए। जब लैंड किया, उतरे, बाकी सब चुप थे। अपनी सिल्क की मैट से कोजीरो भी उठा, अपने ओडाची उठाई, और बहुत बहुत गुस्से में था। और मियामोतो मुसाशी यही चाहते थे। कोजीरो ने बहुत कोशिश करी, वो बड़ा शार्प था, उसका एक ऑरा था, मगर तमाम चीजें करने के बाद वो मियामोतो मुसाशी के आगे नहीं टिक पाया और जान से हाथ धो बैठा। मियामोतो मुसाशी को बहुत बुरा लगा कि उन्होंने इतने बड़े वॉरियर को हरा दिया, क्योंकि अब ये वो बंदा नहीं था जो घमंड से जी रहा था। उन्होंने अपनी तलवार को जमीन पर रखा और बो डाउन किया और वहां से चले गए। उसके बाद उन्होंने कई यंग समुराइज को सिखाया और बहुत सारी जगहों पर जहां जहां उन्हें जो दिखता उसे ट्रेनिंग देते। मियामोतो मुसाशी बहुत वक्त तक गुफा में रहे जहां पर बीमार भी हो गए थे, और वहां पे वो लिख भी रहे थे, पढ़ाई भी कर रहे थे। और मियामोतो मुसाशी बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशंस बने। एंड में उन्होंने एक बंदे को चैलेंज किया, उन्होंने क्या, उन्होंने कहा कि जिसको भी बैटल करना है मुझसे, एक आखिरी मौका देता हूं। एक लड़का उनसे बैटल करने के लिए पहुंचा, और जब वो हार गया एक बुजुर्ग मियामोतो मुसाशी से, तो उसने सर झुकाया इज्जत के साथ, और मियामोतो मुसाशी ने उससे बोला कि मेरे लिए काम करोगे, मेरी बात को दुनिया में फैला देना। और मियामोतो मुसाशी ने एक किताब भी लिखी जो मैं चाहूंगा कि आप कभी पढ़ें। बुक का नाम है द बुक ऑफ फाइव रिंग्स। मियामोतो मुसाशी 19th of May 1645 को दुनिया से चले गए, ही डाइड, मगर द लेजेंड ऑफ मियामोतो मुसाशी, The ghost of Japan, the master samurai, Takezo of Miyamoto Musashi lived forever. ये थी कहानी मियामोतो मुसाशी की FM 107 पर। अब आपके हवाले, आपको कैसे लगी है बता सकते हैं 666-22107 पर। मैं दो हवाला कबीर आपके मैसेजेस के इंतजार में। पहली मरतबा कुछ नया सुनाने की कोशिश करिए, आई होप आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ बताइएगा 666-22107 पर, 666-22107 पर। एंड या, इनके बारे में मुझे एक गेम से पता लगा, सो इन केस वीडियो गेम से लोग छिड़ते हों, स्टे ट्यून्ड। आई होप आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो, बहुत मेहनत करी थी मैंने इस पे विद द म्यूजिक एंड ऑल, सो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ बता दीजिएगा। आई नो सबके टेस्ट की नहीं थी ये कहानी, बट जिनकी टेस्ट की थी, जिन्हें अच्छी लगी है, प्लीज़ बताइएगा। इट विल रियली रियली मीन्स अ लॉट टू मी। बहुत दिल से पढ़ाई करिए भाई।

0: Shows. Best of shows on Urdu Radio FM 107. Dil se Desi. Dil se Desi.
1: Aapne suna hume on air. Now follow us on Facebook and Instagram at FM 107 Qatar. Dil se Desi.
2: FM 107 par apna business advertise karne ke liye aaj hi raabta karein. Aaj hi raabta karein. Hamari Qatar Media Corporation ki marketing team se. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
3: साथियों, जिंदगी के सफर के लिए एक सही डायरेक्शन चाहिए और जब बात हो पैसे की तो सही गाइडेंस भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है. सेविंग, बजटिंग, फ्यूचर प्लानिंग या स्मार्ट इन्वेस्टिंग, इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम मनी नेविगेटर, एक ऐसा गाइड जो आपको लेके जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस के सफर पर. बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल रियल लाइफ. सुनिए प्रोग्राम मनी नेविगेटर, मनी नेविगेटर एवरी मंडे 10 AM ऑनवर्ड्स, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी. योर गाइड फॉर स्मार्टर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन. सिर्फ सुनना ही नहीं, समझना भी शुरू कीजिए.
1: Best of shows highlights on FM 107. Dil se Desi. Dil se Desi. Aap sun rahe hain. Wake up with Doha Wala Kabir. Sirf FM 107 par. Dil se Desi.
4: Meen assalamu alaikum. Main Doha Wala Kabir FM 107. Morning. Kya hal hai aapke? Is mausam ko main kya naam dun? Good morning. आज ही आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड हाजिर है. इब्बे तो भाई आग लागेगी, जमा जहज बना दूंगा शो को. क्या हाल है आपके? बढ़िया. क्या चल रहा है भाई? कल रात तो बहुत बढ़िया मौसम था. और एक मुझे कल मिला बड़ा फैंसी सा आदमी, मैं नाम नहीं ले सकता उसका, पर मुझसे मिला भाई. उसकी बात ऐसी थी ना, कह रहा ये कुछ ज्यादा ही अच्छा मौसम नहीं है. मैं कहा हाँ सही कह रहा भाई तू. आदमी खुश नहीं है किसी चीज से, खुशी नहीं है. एक मेरे साथ ऐसे नायाब किस्म के लोग मिल रहे हैं मुझे कल से. हमारी ना मेरी बिल्डिंग के नीचे पार्किंग है, अल्हम्दुलिल्लाह है, अच्छी बात है. तो उस पार्किंग में एक आदमी गाड़ी ऐसे लगाता है जैसे करवट लेके नहीं सोते, करवट लेके होते ना साइड में करवट ले लेते हैं, वो वैसे गाड़ी लगाता है. वो उसकी गाड़ी ऐसे लगता है करवट लेके बैठी है, लेटी हुई है. तो वो आधी इधर होती है आधी इधर होती है, और उसके साइड में दोनों गाड़ियां ना लगा सकते ना निकाल सकते. और वो आदमी गायब हो जाता है गाड़ी लगा के. वो एक किस्म का भूत है हमारी बिल्डिंग में, जो पता नहीं कब आता है कब जाता है. अगर कंप्लेन भी करना चाहो तो वो होता नहीं है, बैटमैन है, बैटमैन. सबसे पहले डिस्क्लेमर, इस गाने का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं. गाने किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती. इनफैक्ट आज की कहानी जो है किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देती है.

तो देखिए, आज का जो किस्सा है इसे सुनाने के लिए मैं कुछ साल आपको पीछे ले चलता हूँ। साल 2011 में चलते हैं। मार्च का महीना था, 15 मार्च 2011 और दोपहर के तकरीबन 1 बज रहे थे। इस वक्त एक 16 साल का लड़का जिसका नाम था मार्कस फ्रीमन, वो अपने फादर के, अपने वालिद साहब के पिकअप ट्रक में था, ड्राइव करता हुआ जा रहा था ये 16 साल का लड़का। और साथ में रेडियो पर उसके फेवरेट गाने चल रहे थे, तो वो उन गानों को गुनगुनाता हुआ, साथ में लिरिक्स गाता हुआ जा रहा था। उसके साइड में पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी उसकी बड़ी खास दोस्त जिसका नाम था कार्ली। कार्ली जो थी पैसेंजर सीट पर थी और दोनों मिलके गाने गुनगुना रहे थे। ये दोनों एक हाईवे से गुजर रहे थे और ये जो हाईवे था ये था नॉर्थ पोर्ट फ्लोरिडा में। ये दोनों जो थे लौट रहे थे डेंटिस्ट के यहां से। तो डेंटिस्ट के यहां गए थे, बेसिकली मार्कस जो था उसके दांत में बहुत प्रॉब्लम थी बहुत वक्त से, और इसी वजह से उसे वहां जाना पड़ा। अभी उसका जबड़ा सूजा हुआ था, दर्द में था वो, मगर दोनों के दोनों फिर भी गा रहे थे और पूरे दर्द को इग्नोर कर चुका था मार्कस। ही वॉज एंजॉइंग, और ये एक तरीके से तरीका काम भी आ रहा था। लेकिन जैसे ही गाना खत्म होता उसका दर्द वापस लौटा था। He was like, दूसरा गाना चला। वो गाने चेंज करता, गाने के साथ गुनगुनाता, उसके साथ में कार्ली गाती तो दर्द थोड़ा कम लगता था, लेकिन जैसे ही गाना खत्म होता वो दर्द लौटा था। मगर मार्कस के लिए दर्द कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। मार्कस हालांकि था 16 साल का लड़का ही, मगर फिजिकली डिसकंफर्ट की उसे आदत थी, फिजिकली और इनफैक्ट मेंटली भी, क्योंकि वो अपनी वेरेसिटी फुटबॉल टीम का क्वार्टरबैक था, हाई स्कूल में खेलता था और नॉर्थ पोर्ट हाई उसके स्कूल का नाम था। अच्छी खासी पोजीशन पे और स्टार प्लेयर, पिछले साल से फिजिकल फिटनेस पे अपने काम कर रहा था लगातार, तो ऐसी खतरनाक ट्रेनिंग ले रहा था वो और खुद को इतना क्रश कर रहा था मेंटली और फिजिकली कि उसके लिए ये नॉर्मल दर्द तो कुछ भी नहीं थे, वो एडजस्ट कर लेता था। पर ऑब्वियसली है तो 16 साल का ही, तो 16 साल का होने की वजह से उसका जो दिमाग था थोड़ा सा नर्व्स रहती थी, थोड़ा सा जल्दी नर्वस हो जाता था, एंग्जाइटी हो ही जाती थी बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में जाते हुए। इसलिए स्कूल के जो काउंसलर्स होते हैं उनके पास बैठा करता था, वो बात किया करता था, अपनी एंग्जाइटी को डिस्कस किया करता था, और बाकी बच्चे भी यही करते थे। तो स्कूल का फंक्शनिंग बेसिकली बाहर ऐसा ही, नॉर्थ पोर्ट हाई का इन अमेरिका दैट पॉइंट टाइम ऐसा ही था। अब वो चाहता था अपनी फीलिंग्स को मैनेज करना कैसे ना कैसे, एंड मार्कस वॉज अ वेरी फॉरवर्ड लीनिंग बच्चा। कहने का मतलब ये कि वो हर काम में आगे रहने वाला, कोई किसी किस्म का आलस नहीं, लाइक वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। जो काम उसे दिया जाए वो पहली फुर्सत में कंप्लीट करने में लग जाता था। वेरी स्ट्रॉन्ग वर्जन विजन वाला बच्चा, फुटबॉल टीम में लीडरशिप, और इनफैक्ट फुटबॉल टीम जो इतने सालों से हार रही थी नॉर्थ पोर्ट हाई की, इस स्कूल की, वो इसकी लीडरशिप में उसका बेस्ट सीजन जा रहा था, बेस्ट सीजन। मगर आ जाते हैं जरा उस स्कूल में जिसमें मार्कस पढ़ता था। स्कूल का नाम था नॉर्थ पोर्ट हाई। इसके हालात कुछ खास नहीं थे, लो ग्रेजुएशन रेट्स, बहुत ही बुरे टेस्ट रिजल्ट्स, और स्पोर्ट्स में बहुत बहुत पीछे था ये स्कूल। तो बेसिकली नॉट अ वेरी गुड स्कूल अगर आप एक्सटीरियर से देखें। लेकिन सब कुछ इंप्रूव होता नजर आने लगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि टेस्ट रिजल्ट्स भी सुधर गए, ग्रेजुएशन रिजल्ट्स में भी सुधार आया और स्टूडेंट्स थोड़े से खुश लगने लगे थे। इसके पीछे वजह थी एक शख्स का विजन। नॉर्थ पोर्ट हाई के प्रिंसिपल जिनका नाम था जॉर्ज केनी, 10 साल से वो प्रिंसिपल रहे इस स्कूल के, मगर पिछले कुछ सालों में उन्होंने कुछ बदलाव किए। उन्होंने कहा कि मैं इंडिविजुअल स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम लेकर आ रहा हूँ। इंडिविजुअल सपोर्ट सिस्टम ये था कि वो हर स्टूडेंट को अलग अलग उसके स्किल के हिसाब से उसको चीज़ें देंगे और बढ़ावा देंगे, और रिजल्ट बहुत बहुत शानदार था। हर स्टूडेंट अपनी स्किल को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर आगे आ रहा था और चीजें सुधर रही थी। बट राइट नाउ लेट्स गो बैक इन द कार, जहां पे मार्कस और कार्ली गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाने चला रहे। जबड़े में उसके बहुत तेज दर्द था और गाड़ी में ना वो थोड़ा डिजी फील कर रहा था, अजीब से चक्कर से आ रहे थे उसको। उसने बोला कार्ली से, कार्ली आई डोंट नो यार, मेरे पास दर्द कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। और फिर कार्ली ने बोला, अरे तुम कुछ करते हो ना, मेडिटेशन करते हो ना तुम, यू वॉन्ट मी टू ड्राइव? तो बोला, नहीं नहीं मैं ड्राइव कर लूंगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। और फिर कहने के बाद एकदम चुप हो गया मार्कस।

और वो एक मेंटल फिजिकल पेन को रोकने के लिए एक एक्सरसाइज करने लगा और एकदम चुप होके एक्सरसाइज कर रहा था। ड्राइव करते करते कार्ली जो कि उसके साइड में बैठी हुई थी, कार्ली गाने गा रही थी, रेडियो को चेंज कर रही थी, गाने ढूंढ रही थी, लेकिन फिर उसने अपने साइड में देखा एंड शी वॉज लाइक कंफ्यूज्ड फॉर अ वाइल। पहले उसे याद आया कि हाँ, उसे मार्कस ने बताया था कि वो एक किस्म का मेडिटेटिव एक्सरसाइज करता है जहां पे वो पेन को अपनी बॉडी से अलग करता है और वो जॉ पेन से थोड़ा परेशान भी है, तो हो सकता है कि वो थोड़ा फोकस रहना चाहता हो, अपने माइंड को सेपरेट करना चाहता हो। उसने देखा कि एकदम से वो दर्द से जो करहा रहा था कुछ देर पहले मार्कस, अभी चुप हो गया है। रेडियो बदलना बंद कर दिया कार्ली ने, रेडियो कुछ देर के लिए बंद करके, और फिर उसने आवाज देना शुरू करी मार्कस को, जो कि ड्राइव कर रहा है भाई, तो ड्राइव कर रहा है, मेरे को कुछ बोल नहीं रहा है। कार्ली ने बोला, मार्कस यू ओके मार्कस? और मार्कस रिप्लाई नहीं दे रहा। जस्ट इमेजिन कार्ली की क्या हालत होगी कि वो ड्राइव भी नहीं कर रही है, गाड़ी उसके कंट्रोल में भी नहीं है, और मार्कस जो कि बैठा हुआ है साइड में वो एकदम चुप है। मगर सिर्फ चुप होना ही ज्यादा अलार्मिंग नहीं था, मार्कस जो गाड़ी चला रहा था उसने इतनी ज्यादा जोर से स्टीयरिंग पकड़ी हुई थी, इतनी स्टिफनेस उसके हाथों में नजर आई थी जैसे वो अकड़ गया हो। स्टीयरिंग पकड़ने के बाद वो थोड़ा सा और पीछे हुआ हुआ था, उसकी आंखें जैसे धीरे धीरे पीछे चढ़ रही थी, हाथ पीछे हो रहे थे, वो खुद पीछे हो रहा था। और कार्ली ये देखकर अब जो धीरे धीरे बोल रही थी मार्कस, वो चिल्लाने लगी, मार्कस उठो, व्हाट हैपेंड मार्कस? और वो चिल्लाए जा रही है एंड ये गाड़ी की स्पीड बढ़ती चली जा रही है और बोल रही है, मार्कस तुम क्या कर रहे हो, मार्कस ब्रेक लगाओ मार्कस। एंड मार्कस वॉज नॉट लिसनिंग, जवाब ही नहीं दे रहा था। गाड़ी की स्पीड बढ़ती चली गई 80 से 100, 120, 150, और ये बहुत वेयर्ड तरीके से गाड़ी चल रही थी। कार्ली अब रोने लगी, पैनिकिंग मोड में आ गई और उसे झंझोड़ रही थी पकड़ के, उसे कह रही थी उठो मार्कस कुछ बोलो, लेकिन मार्कस वॉज नॉट रिप्लाइंग। उसने सब करके देख लिया, इतनी देर में वो कुछ और कर पाती? उसने बाहर विंडो के देखा गाड़ी के, तो बहुत देर हो चुकी थी। इनका जो ये पिकअप ट्रक था ये रोड से उतरा, ऑफ रोड हुआ और जाके पेड़ से टकराया और चंद सेकंड्स में इट वॉज अ कंप्लीट ब्लैकआउट कार्ली के लिए। चंद घंटों के बाद कार्ली की आंखें खुली, उसका पूरा जिस्म बहुत दर्द कर रहा था, सर एकदम भारी हो रहा था, आंख धीरे से खोल के वो सोच रही थी कि वो आखिर कहां पर है। फिर उसने देखा सफेद दीवारें और मशीन की बीपिंग साउंड, उसे अंदाजा हुआ कि ओके आई एम इन द हॉस्पिटल राइट नाउ। और फिर वो सारी मेमोरीज वापस आने लगी, सब कुछ याद आने लगा कि क्या क्या हुआ था। उसे याद आया कि लास्ट जो उसकी मेमोरी है वो ये है कि गाड़ी टकरा गई थी। वो अपना सर पकड़े उठने की कोशिश कर रही थी, इतने में एक नर्स आती नजर आई उसे, और कार्ली ने जैसे ही नर्स को आते हुए देखा उन्होंने बात करना शुरू करी। कार्ली ने बोला, नर्स मेरे साथ एक लड़का था मार्कस, वो कहाँ पर है, मुझे उससे बात करनी है। एंड नर्स ने ऑब्वियसली बहुत सीरियसली कार्ली को बोला, यू नीड टू रेस्ट, आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, लेकिन मैम जो आपके साथ थे ही इज़ डेड, हम उन्हें नहीं बचा पाए। एंड कार्ली पूरी तरह से बिखर गई, बिकॉज उसे मार्कस सच में बहुत अच्छा लगता था, उसे हंसाता था, वाइब मिलती थी और उसे लगता था कि बहुत बढ़िया रिश्ता हो सकता है आगे जाके, बट फिर ये हो गया बीच में। एक महीना बीत गया इस बात को, 8 अप्रैल आ चुकी थी, कार्ली जो थी वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी थी, और इस वक्त ऑन द 8th of April वो अपनी स्पेनिश क्लास में थी नॉर्थ पोर्ट हाई स्कूल में। टीचर सामने थी और जो वो पढ़ाने की कोशिश कर रही थी, कार्ली का कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं था, वो ध्यान नहीं दे पा रही थी क्लास में, उसे पूरा समझने की उसने लाख कोशिश करी बट शी कुड नॉट कॉम्प्रिहेंड, बिकॉज

वो फिजिकली भले ही हील हो चुकी थी, ठीक हो गई थी, लेकिन इमोशनली बहुत ज्यादा टूटी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मार्कस को अचानक क्या हुआ, और उसे कुछ पता भी नहीं चला कि मार्कस अचानक से ऐसा क्यों बिहेव कर रहा था। ये एक ऐसी मिस्ट्री बन चुकी थी जिसको वो सॉल्व नहीं कर पा रही थी, और वो उस वक्त अकेली थी, आसपास कोई भी नहीं था वो चीज देखने के लिए जो उसने देखी। मार्कस का वो हाल, जिस हाल में उसने देखा, नोबडी नोज। तो ये मिस्ट्री उसी से जुड़ी रही। मीडिया में जब ये खबर फैली, क्योंकि एक स्कूल की बहुत बड़ी बात थी, तो मीडिया ने तो क्या क्या नहीं छापा। मीडिया ने बोला, एक नौजवान लड़का पिकअप ट्रक चलाते हुए अपना कंट्रोल खो बैठा और पेड़ से टकरा गया ट्रक, जो खबरें छापते लोग। सो दे वर टाइपिंग ऑल दीज हेडलाइंस। मगर कार्ली जानती थी कि ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं था जो छापा जा रहा है कि लूज कंट्रोल, नौजवान लड़का पिकअप ट्रक चलाते हुए ऑफ रोड हुआ और टकरा गया। ऐसा नहीं था, कुछ था। उस वक्त मार्कस एक ट्रांस में चला गया था, एक अजीब से जोन में चला गया था। उसे कुछ तो हुआ था, पर वो समझा नहीं पा रही थी किसी को भी। स्पीड नहीं बढ़ाई उसने एकदम से, वो बाद में जब वो ट्रांस हुआ तब उसकी स्पीड बढ़ी। कोई मौसम खराब नहीं था, किसी किस्म की रोड़ा नहीं था सड़क पे, बस वो अचानक से फ्रीज हो गया, एकदम से जैसे अकड़ गया। कुछ तो हुआ, किसी चीज ने ट्रिगर किया, पर नोबडी नोज। अब स्कूल के अंदर जो बातचीत चल रही थी वो ये थी कि हो सकता है कि जब मार्कस कार्ली के साथ डेंटिस्ट के यहाँ गया, तो वहां पे जो वो करता है ना, सुन कर देते हैं दांत को ठीक करने के लिए, कुछ ना कुछ उसने कराया होगा। तो हो सकता है कि सेडेशन की दवाइयों की वजह से कोई रिएक्शन हो गया, या तो कोई बहुत ही रैंडम सा मेडिकल इवेंट हुआ और उस वजह से ही हुआ, मगर हुआ दवाइयों की वजह से ही होगा, ऐसा लोग स्कूल में मान रहे थे। मगर फिर उनको गलत साबित करने के लिए सामने आ गई ऑटोप्सी रिपोर्ट। मार्कस की जो ऑटोप्सी रिपोर्ट थी उसमें किसी भी किस्म की दवाइयों का ट्रेस नहीं था, नो ट्रेस ऑफ एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन, कुछ नहीं, और उसे सीजर भी नहीं हुआ था, कोई ब्रेन एन्यूरिज्म भी नहीं हुआ था, कोई स्ट्रोक भी नहीं आया था। तो सारी की सारी थ्योरीज जितनी भी लोगों ने बनाई वो सारी गलत निकली। जब उसे स्ट्रोक नहीं आया, ब्रेन एन्यूरिज्म नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो आखिर हुआ क्या? और ये जो इंसिडेंट था, इट बिकेम अ मिस्ट्री, और ये मिस्ट्री बहुत बहुत गहरी होती गई। मगर इस इंसिडेंट में, ये जो एक्सीडेंट हुआ, इसमें कोई भी आगे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, क्योंकि डिपार्टमेंट ने मान लिया था कि ये एक महज एक्सीडेंट है, इसमें कोई गहरी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। और कार्ली ऑब्वियसली एक 16 साल की लड़की, वो क्या ही कर लेती, कौन उसकी सुनने वाला था। कार्ली ने भी ये मान लिया था कि कभी इस बात का जवाब नहीं मिलेगा कि आखिर गाड़ी में मार्कस को क्या हुआ था। इट विल रिमेन अ मिस्ट्री। कार्ली के लिए बहुत मुश्किल था नॉर्मल लाइफ में एकदम से वापस जाना। हो सकता है कि अगर उसे पता होता कि मार्कस के साथ क्या हुआ था, तो शायद वो अपनी नॉर्मल लाइफ में जा पाती, मूव कर पाती, लेकिन उसे खुद नहीं पता क्या हुआ, एंड दैट वॉज बॉदरिंग हर। और सिर्फ कार्ली की लाइफ में नहीं, मार्कस एक बहुत पॉपुलर बच्चा था, बहुत पॉपुलर बच्चा था, सब उससे मोहब्बत करते थे, बड़े बड़े मेमोरियल्स होते थे उसके लिए, स्टूडेंट्स गैदर होते थे, चांसलर्स आते थे, प्रिंसिपल्स रखते थे बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट उसके लिए। बहरहाल जब ये स्पेनिश क्लास में बैठी हुई थी अभी कार्ली, और कोशिश कर रही थी फोकस करने की, तो इतने में कार्ली ने क्लास अटेंड करते करते सुना, स्कूल में एक अनाउंसमेंट सिस्टम होता है, एक तो घंटी होती है, और नॉर्थ पोर्ट हाई में एक अनाउंसमेंट सिस्टम था जहां से जो टीचर्स हैं या प्रिंसिपल हैं वो कुछ अनाउंस कर सके। एंड उसे एक आवाज सुनाई थी कि आवाज आने वाली है, और जैसे ही माइक ऑन हुआ, कार्ली का ध्यान और पूरी क्लास का ध्यान उस तरफ चला गया। माइक पर अनाउंसमेंट करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल थे, मिस्टर जॉर्ज केनी। अमूमन बड़े पॉजिटिव रहते हैं, उनकी टोन भी हमेशा पैपी रहती है, लेकिन जब वो माइक पे बोलना चाह रहे थे तो उनकी आवाज ऐसे टूटी हुई थी, एक किस्म का डर उनकी आवाज में था। उन्होंने अपना गला साफ किया और फिर बोले, वेरी सैड टू अनाउंस, एक और स्टूडेंट की जान जा चुकी है, सब प्लीज असेंबली की तरफ आ जाएं। उन्होंने इतना सा अनाउंस किया एंड सब हक्के बक्के रह गए।
कार्ली सोच रही थी।

कैसे हो सकता है दो महीने में दो लोगों की जाने गई और दोनों की दोनों बड़ी अजीब तरीके से. एक तो मार्कस जो समझ नहीं पाई वो अभी तक, और जो दूसरी दूसरी जान गई वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड थी, तो उसने खुद के साथ कुछ किया. सो ये इसलिए भी वेर्ड थी क्योंकि नॉर्थ पोर्ट हाई ऐसी जगह थी जहां ये हो नहीं सकता है, मगर ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था. कुछ हफ्ते और बीते और मई का महीना आया. कार्ली के लिए और सबके लिए ये केस ऑलरेडी बड़ा अनबिलीवेबल था, लेकिन अब ये केस अनथिंकेबल भी हो गया था. अब सोचना ही मुश्किल हो गया था और अब शक की सुइयां जा रही थी क्योंकि एक और स्टूडेंट की जान जा चुकी थी. अब सब जाग रहे थे क्योंकि सबको अब शॉक लग गया था. दो का लगा था कि इत्तफाक हो सकता है, मगर तीन का ना. देयर हैज टू बी समथिंग रॉन्ग. और अभी स्कूल में ऐसा माहौल हो गया था कि वो इंतजार कर रहे थे चौथी बुरी खबर का. यू नो समटाइम्स ज्यादा हो जाता तो यू ब्रेस योरसेल्फ कि अब भी कुछ हो सकता है. मगर फिर एक बहुत ही अजीब ट्विस्ट आया इस केस में. कार्ली जो थी वो अपने कंप्यूटर पे थी और सोशल मीडिया पे घूम रही थी. सोशल मीडिया पे जाते जाते उसने एक पोस्ट देखा और वो उसके स्कूल का ही पोस्ट था. वहां पे स्टूडेंट ने, उसके फेलो स्टूडेंट ने एक चीज पोस्ट करी थी और उसने लिखा कि तीनों स्टूडेंट के बीच में एक चीज कॉमन है, और वो चीज जो कॉमन है वो छोटा सा मैसेज जो उसने लिखा उस पोस्ट ने पूरे के पूरे केस को बदल कर रख दिया. दरअसल सब लोगों के पेरेंट्स को लगता था कि वो अपने बच्चे के इंप्रूवमेंट के लिए एक ही शख्स को जिम्मेदार ठहराएं और वो है प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल मिस्टर जॉर्ज केनी. मगर मिस्टर जॉर्ज केनी का एक बहुत बड़ा राज भी था. बहुत दिनों से वो पेरेंट्स और स्टाफ मेंबर्स से मिलकर बहुत सारे पर्सनल इश्यूज रिजॉल्व करते थे और उन्होंने एक प्लान शुरू किया था, एंग्जाइटी मैनेजमेंट, मेंटल हेल्थ इश्यूज. वो चाहते थे कि बच्चों का जो कॉन्सेंट्रेशन है, माँ बाप का कॉन्सेंट्रेशन है, टीचर्स का जो फोकस है वो बढ़ता चला जाए. ना दिस इज वेयर मामला और बिगड़ा. उन्होंने स्टूडेंट और स्टाफ मेंबर्स के लिए एक खास सेशन रखा और ये सेशन था हिप्नोसिस का, मतलब किसी को हिप्नोटाइज करना. वो बुलाते थे दो स्टूडेंट्स को हर दिन, हर दिन दो स्टूडेंट्स को बुलाते थे और एक प्राइवेटली रिकॉर्डेड सेशन होता था और उन्हें हिप्नोटाइज करते थे और वो सेम चीज टीचर्स पर भी करते थे. कभी कभी पूरी की पूरी स्पोर्ट्स टीम को बुला लेते थे और हिप्नोटाइज करते थे गेम से पहले ताकि वो गेम्स बहुत अच्छे खेल सके. उन्होंने ये चीज खुद तो करी ही करी, मगर उन्होंने ये हिप्नोटिज्म की चीजें, किताबें बच्चों को दी ताकि वो खुद पे हिप्नोटिज्म कर सके. खुद मिस्टर जॉर्ज केनी ने एक ब्रीफ कोर्स लिया था हिप्नोसिस पे, पर कोई ऐसा लाइसेंस नहीं मिला था उन्हें कि वो इसे प्रैक्टिस कर सके लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. बट वो ऐसा लगातार कर रहे थे. वो ये कह रहे थे कि स्कोर सुधरेगा, बच्चों के स्कोर सुधरेंगे और स्पोर्ट्स में सुधार आएगा. ये सब कुछ ठीक चल रहा था, अभी भी ये पकड़े नहीं जाते, लेकिन एक साइड इफेक्ट था. मां बाप ने नोटिस किया कि उनके बच्चे जो हैं वो अब अलग सा बिहेव कर रहे हैं, जैसे उनकी पर्सनैलिटी नहीं है वो वैसा बिहेव करने लगे, बहुत ही अजीब से हो गए, जैसे खुद के घर में अजनबी हों, एकदम दीवार घूरते रहते हैं, कुछ बात नहीं करते हैं और अपने आप को हार्म भी करते हैं. जब तीसरे स्टूडेंट के बारे में बताया कि वो भी नहीं बच पाया और इस सोशल मीडिया पोस्ट पे वो पहुंची तो पता लगा कि तीनों के तीनों ने सेशन ज्वाइन किया था मिस्टर जॉर्ज केनी का. ये एक स्टूडेंट की वजह से जब केस में ब्रेक आया, ये केस बहुत बड़ा हो गया और अब भागने का कोई रास्ता नहीं था जॉर्ज केनी के पास. एंड पुलिस ने उन्हें धर दबोचा, उन्हें उन पे चार्ज लगाया गया फॉर प्रैक्टिसिंग थियोरोपेटिक हिप्नोसिस बिना किसी लाइसेंस के और उन्हें एक साल का प्रोबेशन मिला. इसके साथ साथ स्कूल वालों ने इन तीनों बच्चों के घर वालों को $600,000 ईच दिए, अलग अलग ईच बेसिकली. और डॉक्टर द प्रिंसिपल जॉर्ज केनी वापस तो बाहर आए

0: लेकिन कभी उन्हें टीचिंग करने का मौका नहीं मिला बिकॉज ऑब्वियसली। ये केस के पूरे हो जाने के बाद जब ये खबर बहुत ज्यादा फैल गई थी, सो अमेरिकन स्कूल्स में उस दौर में विद इन लाइक कितने साल हो चुके, 2011 तो अभी ज्यादा साल नहीं है, पर उस टाइम में जो स्कूल के अंदर प्रोग्राम्स लाए गए उनको बहुत ईजी बनाने की कोशिश की जाने लगी बिकॉज कुछ स्कूलों में हिप्नोटिज्म और ये सब प्रैक्टिस हो रहा था। एंड देन दे फिगर आउट कि कौन कौन से स्कूल में हो रहा है, और इस केस की वजह से देर वर लाइक रेडी आप नंबर सुनने के लिए, देर वर मोर देन 27 स्कूल्स जहां पे ये सेम प्रैक्टिस की जा रही थी। एंड 27 तो नहीं पर एटलीस्ट 10-12 स्कूल्स में ये बात फैलाने वाले खुद जॉर्ज कैनी थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि इससे स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी में सुधार आता है। सो या दिस वॉज द केस। एंड अब आपके हवाले 666-22107 नंबर है, 666-22107 आपके मैसेजेस के इंतजार में। मैं दोहा वाला कबीर, 666-22107 दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ आपसे कहते हुए कि अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं। मास्सलाम।
1: आप सुन रहे हैं बेस्ट ऑफ शोज ऑन उर्दू रेडियो FM 101।

0: वेलकम एक सामीन, एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम पुलिस और आवाम में। और जैसा कि आप सब सुन रहे थे कि इस प्रोग्राम में हम ट्रैफिक सेफ्टी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, और दरमियान में जो ब्रेक गुजरा है इसमें भी काफ़ी जो है ना ट्रैफिक के हवाले से ही हमारी जो बातें हो रही थी सुन रहे थे हम। तो इत्तेफाकन ये आज हमारे प्रोग्राम के साथ भी पूरा इसका इसकी मुताबकत हो गई है। तो इसी हम आहंगी में हम आगे बढ़ते हैं, और ट्रैफिक कानून के हवाले से जो हमने ब्रेक से पहले गुफ्तगू की है सिलसिले में कि बुनियादी कानून है भाई ट्रैफिक सिग्नल्स की पाबंदी, सुर्ख इशारा और लाल बत्ती और ये रेड लाइट्स, ये दरअसल हमारे इंसान जानों की हिफाजत की अलामत है। तो आपने ये इशारे नहीं तोड़ने कभी भी, और इसका ख़ास ख्याल रखना है। चौराहे के हवाले से भी हमने काफ़ी गुफ्तगू उसकी अहमियत के हवाले से कि भाई इस सिलसिले में भी आप आगाह रहें और इस आगाही को आम करें। और मज़ीद हम अगले निकात की तरफ आगे बढ़ेंगे, और रफ्तार के हवाले से हम अपने मेहमान से वजाहत तलब करेंगे कि भाई रफ्तार के हवाले से आप हमें क्या कहना चाहते हैं, इसको हम कैसे यानी काबू में रखें या फिर काबू में नहीं रखेंगे, अगर हद से तजावज़ कर जाए तो इस सिलसिले में क्या कुछ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो चले रुख करते हैं हमारे मेहमान का। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं फर्स्ट लेफ्टिनेंट सुल्तान अहमद अस्वेदी, जिनका ताल्लुक ट्रैफिक अवेयरनेस डिपार्टमेंट से है। سيادة الملازم أول نجد ترحيب بكم في منتصف البرنامج، يا أهل وسهلا وحياكم الله معنا.
1: الله
0: سامعين الكرام، نعم سيادة الملازم، بخصوص السرعة، يعني هناك سرعة محددة في كل شوارع، فماذا ترون بخصوص تجاوز السرعة المحددة على الطرق؟
1: نعم صحيح، تعتبر تجاوز السرعة المحددة على الطريق هو تجاوز لقانون المرور في حد ذاته. إذا لكل طريق وسرعته المحددة، وعلى كل قائد مركبة تقيد بهذه السرعات من أجل سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق. وفي حال عدم الامتثال للسرعات المحددة للطرق يطبق على كل من مخالف القانون حسب المادة 36 من قانون المرور.
0: جميل سامعین کرام، جیسا کہ ہمارے مہمان نے بتایا کہ سپیڈ لیمٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سپیڈ لیمٹ کو فالو کرنا ہی ضروری ہے، اگر کوئی سپیڈ لیمٹ کو فالو نہیں کرتا، اس کی پابندی نہیں کرتا، گویا کہ وہ خود قطر کی جو یعنی قانون المرور ہے اور ٹریفک کے حوالے سے جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی میں وہ اس کا اس کی شمولیت ہوتی ہے۔ تو اس

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: तो वो ट्रॉमा उसको जब भी जाता है या जाता है, मतलब भाई आप 6 महीने से काम कर रहे हैं और खतर में तो माशाल्लाह सारे फ्लाईओवर से, कहा कि नहीं मैं एक फ्लाईओवर के नीचे से जा रहा था, ऊपर एक्सीडेंट देखा मैंने और ऊपर पुलिस खड़ी थी, एम्बुलेंस खड़ी थी, तो मुझे वो याद आ गया। तो इवेंट उसको हम कहते हैं ना अकल बातें जो कहते हैं, जो अपनी सबकॉन्शियस है उसमें बहुत सारी चीजें दफन कर देते हैं हम लोग, लेकिन एक चीजें सडनली ट्रिगर करती हैं। जैसे इसका ये हादसा हो गया कि भाई फ्लाईओवर से जा रहा था मैं और मैंने देखा एक्सीडेंट है और पुलिस खड़ी है, एम्बुलेंस खड़ी है, तो मुझे वो याद आ गया। उसके बाद से मुझे फिर वो रिपीटेडली आते रहा। तो पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर में ये है कि पैनिक अटैक थोड़े दिन के लिए आते हैं, खत्म हो जाते हैं, डिसऑर्डर लंबे होते हैं, लंबा फर्स्ट मतलब 2-3 महीने खींचते हैं इसको, तो तब जो है आदमी को इलाज की जरूरत पड़ती है।
1: तो फिर वो उस पेशेंट को जैसे
0: जी मतलब पेशेंट को मैंने पेशेंट को मैंने समझाया कि भाई कुछ तो उसने कहा कि सर मुझसे अब नहीं होता, मैं रिजाइन कर जाता हूँ। तो खैर मैंने इसको इलाज दिया और वो दवाई खाई, उसके बाद 1 महीने बाद वापस आया, कहता कि डॉक्टर साहब मैं 50% ठीक हो चुका हूँ। फिर और 1-2 महीने बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं उसका जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स था 4-4 मंथ्स का ड्यूरेशन दिया, उसके बाद स्लोली मैंने मेडिकेशन बंद कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 साल से काम कर रहा है अभी।
1: अच्छा,
0: वही ड्राइविंग है। कहता सर तो मैं फ्लाई ओवर के ऊपर जाता हूँ ऊपर से भी अभी।
1: इसमें एक बहुत अहम पॉइंट ये कि आमतौर पर ये फियर है और ये कि मेडिसिन के हवाले से, जैसे आपने कहा लोग ना मेडिसिन लेना जो है वो फोबिया है
0: जी।
1: आपके पास जी, जी, आपको जी, जी, बताया तो आप बेसिकली ये है ना कि क्या समझते हैं
0: जी इसमें जी। हमारे खास बरसगीर के माहौल में और यही है कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकेट्रिक के पास जाते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो पागल हो गया क्या, जबकि साइकेट्री सिर्फ पागलों का इलाज नहीं करते हैं, पागलों का इलाज एक पार्ट ऑफ साइकेट्री है। जैसे ये एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है या आपका जो है ओसीडीज हैं या पैनिक अटैक्स हैं, ये दूसरे है घर में बच्चों के मशाकिल हैं, मियां बीवी के मशाकिल हैं, आपके जॉब पे प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे है कॉन्सेप्ट साइकेट्री में आते हैं। और जब हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो हमारा जहन बना होता है कि ये दवाई देगा मुझे और मुझे सुला देगा।
1: जी बिल्कुल,
0: और दवाई ज़िंदगी भर खाना पड़ेगी मुझे, तो ऐसा ये गलत बिल्कुल लोगों का तस्वीर है, गलत फहमी लोगों की कि हर दवा जो है नींद की नहीं होती है और हर दवा आपको हमेशा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक उसका ख़ास मुआयन वक्त होता है और मुद्दत होती है जिसमें आपका पूरा कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद जिस तरह हम ग्रेजुअली स्टार्ट करते हैं उसी तरह ग्रेजुअली इसको टेपर ऑफ करके बंद कर देते हैं।
1: ठीक ठीक। अच्छा, एक और फियर जैसे आमतौर पर है डॉक्टर साहब के, वो कहते हैं कि ये मेडिसिन जो हम लेते हैं देते हैं डॉक्टर्स, तो उससे वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्या ये क्या है?
0: ये कुछ हद तक सही है ये।
1: अच्छा
0: जी, साइकेटिक मेडिकेशन में देखिए एक्चुअली इनडायरेक्टली वेट इंक्रीज़ करती है। होता ये है कि आपके जहन में दबाव है, आप परेशान हैं, घबराहट में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, आपका कंसंट्रेशन कम हो चुका है, तो उसमें आदमी की जो है भूख कम हो जाती है। तो जब ये दवाई खाते हैं तो आदमी का जहन खुल जाता है, उसके जहन में अच्छी अच्छी बातें आती हैं, पॉजिटिव एनर्जी आती है, सुकून महसूस करता है, तो जाहिर सी बात है उसको खाने का भी मन लगता है फिर, तो इनडायरेक्टली वो जो है खाना भी ज़्यादा खाने लगता है।
1: ठीक।
0: तो हम उस वक्त एडवाइज़ ये करते हैं कि भाई आप एक्सरसाइज ना छोड़ें, कम अज़ कम रोज़ाना 1/2 घंटे से लेकर 45 मिनट तक वॉकिंग कंपलसरी करें।
1: ठीक
0: जी। वैसे आजकल बहुत सारे मेडिकेशन आ गई हैं जिसमें वेट इंक्रीज़ नहीं होता है।
1: ठीक ठीक, इस तरह से वेट जो है वो जी डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ा सा और मैं इसमें और डिफरेंट टाइप्स की, जैसे कि कोई बाइपोलर है या एंजाइटी, मतलब वो अलग चीज़ें हैं, ओसीडी आपने कहा
0: जी। एंजाइटी के जो है 5 डिसऑर्डर्स हैं
1: जी।
0: एक तो होता है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, दूसरा है फोबियाज
1: जी,
0: तीसरा है पैनिक अटैक्स
1: जी,
0: चौथा है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो ओसीडी कहते हैं, और पांचवा और आखिरी है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर।
1: ठीक।
0: जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर जनरलाइज है, जिसका नाम जैसे ही बता रहा है कि तकरीबन सबको हो सकती है एंग्जाइटी, एक मौका
1: कोई भी काम कर रहे हैं, कोई एग्जाम,
0: टेंपरेरी एग्जाम फियर है, टेंशन
1: या
0: है,
1: कोई भी आप किसी भी इवेंट मतलब काम करने जा रहे हैं, कोई बिजनेस कुछ
0: स्टेट पे तकरीर करना है आपको, या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप, किसी से नहीं मुलाकात
1: कर रहे हैं आप शुरू कर रहे हैं, वो भी
0: जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो उस वक्त जो एंग्जाइटी होती है वो नेचुरल एंग्जाइटी होती है, जनरलाइज एंग्जाइटी होती है, इसमें कोई एक खास चीज नहीं होती है। दूसरी जो है आपका फोबियाज है, फोबियाज एक ख़ास चीज़ के लिए होता है, जैसे बाज़ लोगों को खौफ होता है, डर होता है लिफ्ट से
1: जी,
0: कि वो ऊपर जाऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या बाज़ लोगों को हाइट का डर होता है, बाज़ लोगों को जो है जहाँ पानी का भी डर होता है, बाज़ लोग जो है जहाँ भीड़ होती है, जहाँ लोग ज़्यादा होते हैं वो अवॉइड करते हैं।
1: ठीक।
0: तो ये सोशल

0: हो जाती है, ये फोबिया है,
1: ये फोबिया
0: जी,
1: ठीक।
0: और तीसरा जो है उसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मेरे ख्याल से लास्ट मुलाकात में हमने इस पर तफसील से बात की थी
1: जी जी,
0: कि ये जो है तो वसवसे जो कहते हैं, वसवस कहरी जो कहते हैं, ये होती है वो। और आजकल के माहौल में जो यहाँ जो सियासी माहौल चल रहा है उसके हिसाब से जो लोगों में जो ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर,
1: ठीक।
0: एक ट्रॉमा हो गया, जैसे लफ्ज बता रहे हैं आपका, ट्रॉमा के बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हो जाता है आदमी को। जैसे यहाँ पर थोड़े कुछ दिन पहले जब ड्रोन और मिसाइल्स के अटैक हो रहे थे तो काफ़ी लोग आवाज़ों से परेशान थे, घर हिल जा रहा है, घबराहट हो रही है, तो इससे जो है एंग्जाइटी डिसऑर्डर ज़्यादा हो रहे थे,
1: ठीक ठीक।
0: तो लोगों में जो है ये एक ट्रॉमा होता है। दूसरा ट्रॉमा ये हो सकता है कि घर में लड़ाई हो गई है, या जो है किसी का मेरे साथ ताल्लुकात ख़त्म हो गए हैं, कोई मेरा करीबी दोस्त था वो बिल्कुल छूट गया है, या तलाक हो गए है किसी में, या घर में फैमिली इशूज़ हो गए हैं, तो एक ट्रॉमा होता है जिसकी वजह से ये स्ट्रेस डिसऑर्डर उसको हो जाता है।
1: ठीक ठीक ठीक। ये जो इस तरह से हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स हैं है एनजाइटी की, मगर जैसे आपने कहा कि पांच डिफरेंट टाइप्स हैं उसमें पोस्ट, इसमें फोबियाज के पे थोड़ा और बात करना चाहूँगी डॉक्टर साहब, कि बाज़ुकात कुछ जो हैं वो पानी से जैसे फोबिया है, और हाथ जो धोते रहते हैं वो भी ये इसी के हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि अच्छा इसको क्लीनिंग मतलब सफाई की बहुत वो है, ये ओसीडी है,
0: वो ओसीडी है।
1: अच्छा
0: जी
1: ठीक।
0: उसमें ओसीडी में लास्ट नहीं बताया था आपको मैं पिछली मुलाकात में भी, कि ओसीडी जहन में आदमी के एक ख्याल आता है कि भाई शायद मैंने सही नहीं किया है काम
1: जी,
0: तो उस काम को दोबारा करने के लिए, परफेक्ट करने के लिए, सबसे सही करने के लिए बार बार आदमी वो चीज़ रिपीट करता है, चाहे मर्द हो या ख्वातीन हज़रात हों, वो बार बार वो चीज़ें दोबारा दोहराते रहते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि हाथ धोने का है
1: जी,
0: उनमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो डर होता है कि यार मेरे हाथ में साफ़ नहीं किए मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा, अक्सर लोगों में यही होता है कि मैंने हाथ साफ़ नहीं किए मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा
1: जी,
0: जरासीम का डर होता है, इसकी वजह से एक ने हज़ार बार लोग घंटों गुजारते हैं सिर्फ हाथ धोने के लिए, और पेशेंट आते हैं तो मैं पास देखता हूँ कि जिल्द तकरीबन की उखड़ी होती है, इतनी बार हाथ धोते हैं, तो ये वसवसे होते हैं। दूसरा है कि आप देखेंगे कि लोग बार बार चेक करते हैं कि लॉक किया नहीं किया मैंने,
1: बिल्कुल, बिल्कुल,
0: ताला डाला नहीं डाला, गाड़ी में बैठ के आते फिर जाके नहीं, फिर चेक करके आते हैं, तो ये भी जो है वसवसे हैं। और कुछ और काम करना हो, जैसे मैंने कल मुझे कुछ एक अपॉइंटमेंट है 7 बजे का मिसाल के तौर पे, तो मुझे आज रात से टेंशन होती है कि मुझे 7 बजे पहुंचना है, मैं चाहता हूं कि मैं 6:30 बजे पहुंच जाऊं, वक्त से पहले पहुंच जाऊं,
1: ठीक।
0: तो ये
1: और उसी टेंशन में वो फिर वो
0: बिल्कुल
1: रात भी नींद भी नहीं आएगी,
0: बिल्कुल
1: ठीक ठीक, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें होती है। इसमें डॉक्टर साहब फिर क्या, जब आप पेशेंट मसलन आपके पास आते हैं तो क्या वो ठीक हो जाते हैं?
0: 99% पेशेंट ठीक हो जाते हैं।
1: अच्छा
0: जी। और इलाज के जो है दो तरीके होते हैं, एक तो दवाई की होती है ज़रूरत
1: जी,
0: उसके साथ साथ जो है काउंसलिंग जो कहते हैं, थेरेपी सेशन जो कहते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट
1: जी,
0: तो वो ज़रूरी होता है। तो मैं आमतौर पर पेशेंट को दवाई देता हूँ एक जो वक्त मुअय्यन के लिए, मुद्दत के लिए
1: जी,
0: कि ये भाई आप दवाई खाएं, क्योंकि अगर आप उस वक्त जब आदमी बिल्कुल परेशान है, बिल्कुल टेंशन में है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, अगर आप उसको जो है काउंसलिंग के भेजते हैं या थेरेपी सेशन के लिए उसको भेजते हैं, कहीं जाइए उनसे बात करिएगा, तो बोलेगा यार आप क्या बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे यहाँ दो जो हार्मोन्स हैं दिमाग में, डोपामिन और सेरोटोनिन, उसका उथल फुथल होता है।
1: अच्छा,
0: तो ये दवाएँ क्या करती हैं, उसका नॉर्मल लेवल पर ले आती हैं, तो जब आदमी की समझ ठीक होती है, उसके समझ आता है कि बात क्या करनी है, सामने वाला बात क्या कर रहा है, उसके हिसाब से वो जो है समझ पाता है, फिर उसको थेरेपी सेशंस काम में आएंगे।
1: ठीक। वो थेरेपिस्ट मतलब अलग से हैं,
0: वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं,
1: क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जी जी। डॉक्टर साहब ये हमारे लिसनर हैं, पूछ रहे हैं कि इस तरह जो आप बात कर रहे हैं कि जैसे हाथ धोने की आपने बात की है, तो इसमें क्या है, वो तो वैसे ही सफाई पसंद होते हैं जो कुछ लोग, तो क्या ये ख्याल नहीं किया जा सकता?
0: नहीं, सफाई पसंद तो सब होते हैं, और सफाई पसंद अच्छी चीज़ है, लेकिन बताया ना आपको, इस इतना एक सफाई कि आपका उसमें सारा वक्त उसी में लग जा रहा है आपका, आपकी सोशल लाइफ ख़राब हो रही है, आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, और आपकी ऑक्यूपेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है, तो ये बीमारी होती है। वरना आमतौर पर जो आदमी सफाई करता है, ठीक है, घर साफ होना चाहिए, नीट होना चाहिए, कचरा कूड़ा नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल अच्छी चीज़ है, लेकिन ये चीज़ की वजह से इतना आदमी उसके अंदर लग जाए कि उसके अपने दूसरे चीज़ें ख़राब हो रही हैं, असर हो रही है उस पर दूसरे चीज़ें, और दूसरी चीज़ों में वो ध्यान नहीं दे पा रहा है, काम बराबर नहीं कर पा रहा है, तो ये चीज़ें जो है ओसीडी कहलाती हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, इसमें एनजाइटी के डिफरेंट आपने 5 टाइप्स या 5 डिसऑर्डर्स हम कहेंगे अलग अलग से हैं वो आपने हमें बताए हैं, तो इसमें जो

0: सोशल लाइफ जो है या साइकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल जो भी फैक्टर्स भी होते हैं
1: जी.
0: तो उसमें जो पेशेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है. आपके पास कब आते हैं पेशेंट्स, किस वक्त?
1: जी,
0: क्योंकि एक तो जैसे कि हम समझते भी नहीं है कि हाँ ये कोई मसला है या कोई मेंटल हेल्थ इशू
1: जी,
0: है.
1: जी, जी.
0: जी.
1: जब वो कहते हैं ना पर ज़्यादा हर चीज़ ज़्यादा हो जाती है और काबू नहीं कर पाते हैं, समझ में नहीं आता क्या किया क्या जाए, और उनकी जो है पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ जब डिस्टर्ब हो जाती है तो वो लोग कहते हैं कि भाई अब कुछ हेल्प लेना चाहिए, तब आते हैं पेशेंट्स. और अगर इनिशियली होता ये ना कि हम खुद समझते हैं कि भाई ये एंगजाइटी है, ठीक है भाई हो रही है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगी, एक दिन दो दिन, लेकिन जब लंबा अरसा खींच देती है, दो महीने या ज़्यादा हो जाते हैं, तो तब आदमी ज़्यादा परेशान रहता है, तब उसको इलाज की ज़रूरत पड़ती है.
0: ठीक. तो कितनी देर तक अगर कोई इस तरह की अलामतें कोई महसूस करे तो फिर उसे कंसल्ट करना ज़रूरी है? जैसे आपने कहा कि शुरू में तो हम यही कहते हैं कि एंग्जाइटी है या कुछ इस तरह से घबराहट है तो ठीक हो जाएगी.
1: दो से चार हफ्ते, दो हफ्ते आमतौर पर हम कहते हैं कि दो हफ्ते तक आपको जो अलामतें आती हैं, जो आप तकलीफें, मतलब जो आप महसूस करती हैं जिन चीज़ों को, वो दो हफ्ते तक अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो वो ठीक है. उसके बाद अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और आपकी ज़िंदगी पे असर कर रही है, वो आपके मामूलात ख़राब हो रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से रुजू होना चाहिए.
0: जी ठीक. और डॉक्टर साहब, जो किस तरह के ज़्यादातर, पहले तो यही था एक कॉन्सेप्ट ये है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, तो आप क्या कहते हैं इस वक्त, जैसे कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा है और जो नई नई जो रिसर्च चीज़ें वो भी सामने आ रही हैं और जो पेशेंट्स हैं उनके वो भी गुजरते हैं उस पूरे उसमें से, तो आप क्या समझते हैं कि अभी भी ऐसा है कॉन्सेप्ट के लोग नहीं आते आप
1: जो स्टिग्मा जो था ना लोगों में, जी
0: मेडिकल कंसल्टेशन नहीं लेते,
1: जी साइकियाट्रिक कंसल्टेशन स्पेशली, लोगों में जो स्टिग्मा था वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया हो गया है आपके सामने और बेतहाशा जो है लोगों को मालूमात हासिल हो रही हैं, हर चीज़ आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, लोगों का जहन खुल रहा है, इनको पता चल रहा है कि भाई ये भी एक जो है जिस तरह दूसरे बीमारियाँ होते हैं ये भी इसका भी इलाज हो सकता है, इसके भी क्योर हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है इसका, तो लोगों में शोर ज़्यादा बढ़ गया है और लोग अल्हम्दुलिल्लाह अब इसको मान रहे हैं कि भाई ये साइकियाट्रिक बीमारी है, इसका भी इलाज हो सकता है.
0: ठीक. तो इस तरह से, और जैसे आपने कहा कि अगर दो हफ्ते से ज़्यादा अगर कोई महसूस करता है कि वो जो भी काम कर रहा है वो कुछ नॉर्मल नहीं है, डॉक्टर साहब मैं पेशेंट की बात तो है मगर ये जो फैमिली मेम्बर्स हैं या कोलीग्स हैं या फ्रेंड्स हैं वो भी इस चीज़ को महसूस करते हैं या वो उसे क्या किसा?
1: जाहिर सी बात है,
0: इस पर
1: जब मुझ पर कोई तब्दीली आती है तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं कुछ मुझ पर तब्दीली आई है ना, तो मेरे अतराफ में जो लोग रहते हैं, चाहे घर वाले हों या बच्चे हों, बेगम हों या माँ बाप हों, भाई बहन हों या मेरे कोलीग्स हों या मेरे रूममेट हों, ये लोग चीज़ें देखते हैं कि भाई आपकी कुछ चेंज तब्दीली आई है आपके अंदर, आप जो पहले थे वैसे नहीं हैं, या तो आप जल्दी गुस्सा करने लगे हैं या चीज़ें आप भूल जा रहे हैं या कुछ परेशान हो रहे हैं, आप रात में सो नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा रेस्टलेस हैं, तो ये चीज़ें नोट करके कहते हैं भाई देखिए आपकी चीज़ें हो रही हैं. उस वक्त इंसान को इदराक होता है कि मालूम होता है कि हाँ यार मेरे अंदर कुछ चीज़ें हो रही हैं, चल रहा है कुछ.
0: तो इस तरह से फिर वो कंसल्टेशन जो है वो लेते हैं. इसमें यहाँ की अगर हम बात करें, जैसे आपने पहले भी एक जो है वो एग्जांपल दी, इस तरह में कुछ और अगर आप शेयर करना चाहें, क्योंकि हमारे लिसनर्स भी और मैं ख़ुद भी इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि हमें पता चले कि किस तरह से पेशेंट्स जो हैं आपके पास आते हैं, किस तरह से मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं जिन पर बार बार बात की जाती है, तो उस हवाले से कुछ
1: मैं बताया ना आपको, जहाँ आदमी काम करते हैं, जहाँ मर्द हजार काम करते हैं या कोई शख्स जिस माहौल में काम कर रहा है, या अभी हाल हाल में मुझे एक केस आया था, वो इंजीनियर था बेचारा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है और यहाँ मशहूर कंपनी में काम करता है वो, तो उसको एक टारगेट दिया गया था कि भैया टारगेट करना है आपको, तो इत्तेफाक से वो टारगेट कर चुका था वो, लेकिन उसको डर था कि शायद फिर बॉस मुझे कुछ बोले, तो उसने तीन चार दिन तक जॉब पर रिपोर्ट नहीं की, तो वही कहा कि भाई आप जॉब पर क्यों नहीं आ रहे हैं, कहते आऊँगा, तो उसके कुलीग ने कहा कि भाई ये जॉब नहीं जा रहा है, तो फिर उसने मेरे पास देखा कि भाई डॉक्टर साहब देखिए ये काम बराबर करता है, काम में परफेक्ट है और बिल्कुल लीडिंग है ये और टीम लीड है ये, इसके बावजूद भी इसको खाली डर है, अन्य से जब प्रेजेंटेशन करता है तो ये घबरा जाता है, तो उस खौफ से ये अवॉइडेंस रहता है कि भाई मैं पता नहीं लोग मुझको देख के हंसेंगे, मैं है बिल्कुल फेल हो जाऊंगा, लोग बोले क्या ये तो फ्लॉप हो गया है, इसको तो बेकार है, इसको कुछ पता ही नहीं है, तो उस वक्त जो मतलब प्रेजेंटेशन मेरा होता है जो बेकार गया, अगर ख़राब हो गया प्रेजेंटेशन अगर मेरा, तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और मैं जो है शर्मिंदगी से लोगों को फेस नहीं कर सकूँगा, तो इसमें लोग जो है अवॉइडेंस शुरू करते हैं,

0: जो अतराफ के जो लोग हैं वो उनको बताएं कि भाई ये चीज़ें इनक्रेज करें इनको कि आएँ डॉक्टर पास जाएँ इलाज कराएँ इसका, ये ठीक हो सकता है।
1: ठीक जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और इस तरह की बहुत सारे जो केसेस हैं वो सामने आते हैं कि बिल्कुल यही कि फियर है कि
0: जी।
1: वैसे तो आपने बता दिया कि फियर और एंजाइटी में
0: लोगों में मालूम नहीं थी ना पहले ज़माने में, ये था कि लोगों को पता नहीं था कि भाई ये भी एक साइकेट्रिक बीमारी हो सकती है, ये भी इसका इलाज भी हो सकता है। और आप जो फरमा रही थी कि लोग जो है ज़िंदगी भर दवाई खाती हैं, बिल्कुल मैं जब साइकेट्रिक जॉइन किया तो मेरा भी यही था कि ज़िंदगी भर दवाई दे दो लोगों को और सुला दो। लेकिन जब आप हकीकत देखते हैं तो इसके बरक्स होता है कि लोग बास बीमारियां होते हैं जिनकी दवाएं इनको खानी पड़ती हैं लंबे अरसे तक, बास होती हैं जो वक्ती तौर पे कि भाई मुझे जैसे आप खुदा ना खास्ता आपका हाथ टूट गया हो तो आप प्लास्टर डालते हैं, प्लास्टर तो हमेशा नहीं रहेगा, उसके बाद फिर आप
1: टाइम
0: बिल्कुल टाइम, कुछ टाइम रखते हैं 4 से 6 हफ्ते रखते हैं अगर ज़्यादा हो गया तो, उसके बाद फिर फिजियोथेरेपी करते हैं फिर आप नॉर्मल हो जाते हैं। तो उसी तरह जो है ये भी उसी तरह बीमारी है, लोग टेंशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं और ये मुख्तलिफ किस्म के एंगजाइटी डिसऑर्डर आते हैं। तो ये जब इलाज करेंगे उसके बाद साइकोलॉजिकल सेशंस लेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल बैक नॉर्मल हो जाते हैं, दवाई बंद हो जाती हैं।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: सक्सेस की शुरुआत होती है एक छोटी सी सोच के साथ, एक आइडिया से।
5: ये आइडियाज कहाँ से आते हैं, क्या माइंडसेट्स होते हैं, क्या अप्रोच होती है,
4: ये जानना बहुत जरूरी है। इस शो में बात होगी लीडरशिप, सेल्फ डेवलपमेंट और डिसीजन मेकिंग पर जो आपको एम्पावर करेगी। हर गेस्ट होगा एक पावर हाउस ऑफ मोटिवेशन और हर एपिसोड एक नई कहानी, एक नई इंस्पिरेशन। जरूर सुने शो पावर टॉक्स हर सैटरडे दोपहर 1 बजे से आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107। पावर टॉक्स, हर लफ्ज में ताकत, हर बात में मोटिवेशन।
6: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: कैसेस आज हम बात कर रहे हैं एंजाइटी, क्योंकि सबको ही होती है मगर उसमें किस एक्सटेंट पर पहुंचे तो हमें डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। और ये कि क्या क्या अलामतें हो सकती हैं डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल में बताया। डॉक्टर साहब आपके पास आते हैं जैसे कि हम डायग्नोस करते हैं कोई भी जो डिज़ीज़ है तो इसको भी जो डायग्नोसिस जो है वो की जाती है, कोई टेस्ट कराए जाते हैं या हिस्ट्री जो है वही होती है जो
0: बड़ा बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अक्सर लोगों में ये होता है कि जो मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं या डिजीज़ होते हैं वो ब्लड टेस्ट में है या सीटी स्कैन में है, MRI में है या जो भी मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होते हैं उसमें पता चल जाता है। साइकेट्री का मेन होता है कि हम हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है और इसमें 99% हमारे डायग्नोसिस जो होते हैं मुलाकात से होते हैं, बातचीत से होते हैं, उनके जब हम जब बात करते हैं उनके समझते हैं उनको जब उनकी तकलीफें जानने की कोशिश करते हैं तो जब बताते हैं क्या क्या अलामतें हैं क्या क्या चीज़ें उनके अंदर हैं उसके हिसाब से हम तशखीस करते हैं उनकी फिर।
1: अच्छा जी, ठीक ठीक। ये भी स्किल है,
0: ये स्किल है
1: जी,
0: ये टेस्ट नहीं स्किल है।
1: जी जी
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ज़ाहिर है फिर आपकी ट्रेनिंग और उसमें
0: जी
1: होता है,
0: इसमें ट्रेन किया जाता है। जी ज़ाहिर सी बात है।
1: ठीक ठीक जी। लिसनर जैसे आप सुन रहे हैं मैं भी आपके साथ ही उसी में शामिल हूँ और जैसे कि पूछ रही हूँ सवाल और कोई भी आप सवाल पूछना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पर। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर जो है वो मैसेज कर सकते हैं, SMS कीजिए और 6622107 पर आप हमें SMS कर सकते हैं। ये डॉक्टर साहब इसमें ये सिर्फ हिस्ट्री और उस पर बाकी टेस्ट जो हैं वो नहीं करवाए जाते। बाज़ डॉक्टर साहब ऐसा भी होता है कि अगर किसी को जैसे मेडिकली कोई प्रॉब्लम है लाइक एनीमिक है या इस तरह से कोई डेफिशिएंसीज हैं तो उस वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं।
0: हम साइकेटिक डिसऑर्डर डायग्नोस करने से पहले सारे मेडिकल कॉसेस रोल आउट करते हैं कि कहीं कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो ना हो, उसको कुछ मेडिकल इश्यूज हैं अगर जिसकी वजह से ये हो रहा है तो पहले उसको ट्रीट करते हैं। ऑर्गेनिक कॉज कहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं एनीमिया है, जाहिर सी बात है एनीमिया में थकावट होती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है उसमें भी तो, लेकिन वो एंग्जाइटी नहीं है, एनीमिया की वजह से हो रही है
1: जी.
0: तो जब सबब पता है आपको एक ऑर्गेनिक कॉज है उसका और अंडरलाइंग इसका रीजन है तो पहले उसको ट्रीट किया जाएगा बाद में फिर साइकेट्रिस्ट आएंगे इंशाल्लाह.
1: अच्छा अच्छा अच्छा बिल्कुल जी. क्योंकि सर के कुछ केसेस जो हैं वो सामने आते हैं कि फिर वो अगर वो मेडिकली ठीक हैं जैसे खासतौर पर एनीमिया की बात करें विटामिन डी की डेफिशिएंसी की बात करें जैसे आपके पास तो इस तरह के केसेस आते हैं तो उनमें देखने में ये आया कि ऐसा है कि वो फिर बहुत ज़्यादा एनजाइटी और उसमें फिर चले जाते हैं
0: जी. बताए ना आपको इसलिए हम मेरे पास जब कोई पेशेंट आता है तो पहले सारे मेडिकल कॉजेज रूल आउट करता हूँ और नॉर्मल जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं ब्लड टेस्ट होते हैं जो चीज़ें रूल आउट करने के विटामिन के हो शुगर की हो आयरन की हो लीवर के टेस्ट हैं और लिपिड वगैरह टेस्ट हैं सारे टेस्ट मैं करवाता हूँ. तब सारे टेस्ट जब नॉर्मल हो जाते हैं तो कहता हूँ कि भाई हाँ आप बताइए क्या है आपके. और अक्सर मेरे पास जो पेशेंट आते हैं खासतौर पर साइकेट्रिस्ट के पास ये सारे डॉक्टर के पास जाके हमारे पास लास्ट में डॉक्टर साहब कहते हैं भाई ये आपका मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है आप साइकेट्रिस्ट जाके मिल लें. तो उस दरमियान में सारे उनके जितने टेस्ट पॉसिबल हैं ECGs हैं MRIs हैं जो पॉसिबल टेस्ट हो सकते हैं वो पहले से डॉक्टर साहब कर चुके होते हैं तो हमें रिपोर्ट देकर पता चला कि भाई सब नॉर्मल है तो फिर हम साइकेट्रिक इशू की डिस्कस करते हैं उनसे.
1: ठीक है. इसमें डॉक्टर साहब थोड़ा सा हमें बताइए कि कौन से ऐसे विटामिन हैं जैसे आपके पास पेशेंट भी आते हैं कि वो डिफिशेंट हों तो कुछ रुझान हो जाते हैं उनका कि जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं लाइक एंजाइटी कि वो उनमें हो.
0: सबसे बड़ा जो मसला कॉमन मसला है वो है थायराइड का.
1: अच्छा.
0: थायराइड हाइपोथायराइड जब हो जाता है तो उसमें जो है थकान हो जाती है डिप्रेशन होता है एंग्जाइटी ज़्यादा होती है.
1: ठीक है.
0: दूसरा सबब है एनीमिया आयरन डिफिशेंसी में जब खून में जो है आयरन की कमी हो जाती है तो उसके वजह से ये होता है. और जनरलाइज वीकनेस जो होती है जनरलाइज विटामिन डिफिशेंसी जो होती है. तीसरा जो है कॉमन दूसरा जो और जो कॉमन चीज़ें होती हैं जो पास लोगों को जो इरिटेबल बाउल डिसऑर्डर होते हैं कि भाई कुछ भी खाओ हजम नहीं हो रहा मुझे कुछ भी खाओ मुझे पेट में तकलीफ हो रही है.
1: अच्छा.
0: और मुझे बार बार डकारें आ रही हैं तो ये जो है अंडरलाइंग एंग्जाइटी हो सकती है अंडरलाइंग आपका जो है गैस्ट्रोएंटेरिटिस कॉज भी हो सकते हैं इसके. तो इसको रूल आउट करके हम आगे बढ़ते हैं फिर.
1: ठीक. डॉक्टर हमारे साथ हैं हमारे लिसनर हैं और व्हाट्सएप पर उन्होंने ज्वाइन किया है रिजवान खान. सलाम कह रहे हैं आपको.
0: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु.
1: और कह रहे हैं कि मैं मुझे किसी छोटे से भी जो काम करना होता है तो घबराहट हो जाती है जैसे आवाज़ से हाथ पाँव का कांपना और इसी तरह से जो ब्रीदिंग सांस है उस पर काबू ना होना जैसे किसी के साथ बहस करने में या लोगों के सामने कुछ परफॉर्म करने में जैसे आप हमें बता भी रहे हैं कि बहुत सालों से है लेकिन पहले ऐसा नहीं था. मैंने यहाँ इलाज भी किया लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ. एक वो मेडिसिन उन्होंने लिखा है ज़ोलोफ्ट
0: जी
1: और जो है वो इस्तेमाल किया है. इसके अलावा क्या करूं मुझे ख़ास कर कामों में बहुत परेशानी होती है. रिजवान खान
0: बिल्कुल इस वक्त जो है दवा की ज़रूरत पड़ती है इलाज की ज़रूरत पड़ती है. बताया ना आपको कि आपके जो है अगर कोई
1: पर्सनल वो भी और ये दो मेडिसिन लिखी हैं.
0: अच्छा. प्रिंटर्स वो ट्रैक्सिटिन है और ज़ोलोफ्ट जो है सेरेट्रोलिन है.
1: अच्छा.
0: 25 लेने 50 दे रहे हैं शायद.
1: ये नहीं लिखे, सिर्फ नाम लिखे.
0: तो इसमें देखिए आपको खुद कह रहे हैं जनाब रिजवान साहब कि आप जब कोई काम करते हैं तो आप घबराहट बेचनी शुरू हो जाती है. तो अगर आप अपना रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करें आप सोचें कि भाई घबराहट क्यों हो रही है कि वाकई ये माकूल है या गैर माकूल है कुछ सबब है इसका या ऐसा ही आपको घबराहट हो रही है. कुछ सबब है तो फिर इलाज की जरूरत नहीं है क्योंकि पता है आपको भाई उसका जो है आउटकम ये होने वाला है मुझे. लेकिन आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो चीज़ हो सकती है जो चीज़ नहीं हो सकती है और आमतौर पर जो चीज़ नहीं हो सकती है उसको लेके आप घबराहट परेशान हो रहे हैं घबरा रहे हैं तो ये एंटिसिपेशन आपका फियर में है और ये फियर आपको जाके एंग्जाइटी में लीड कर रहा है. तो ये इसका तरीका ये है कि ये जो आप इलाज ले रहे हैं इलाज ठीक है लेकिन मुझे पता नहीं कि इलाज कितने दिन खाए आप और कितना डोज था इसका इसके बाद इलाज के कितने दिन के बाद आपने क्या साइकोलॉजिस्ट के पास कोई डॉक्टर रेफर किया नहीं किया है तो ये
1: जरूरी
0: जी.
1: ठीक है.
0: और सारे जो चीज़ें बताए हैं कि मुझे जो है गला सूखने लगता है पसीने आने लगते हैं ये सारे अलामतें पैनिक अटैक्स की हैं एंग्जाइटी की हैं.
1: ठीक ठीक. तो अभी जैसे मेडिसिन भी ले रहे हैं तो अभी दोबारा जो है वो कंसल्ट करें.
0: जी मैं चाहूँगा दोबारा डॉक्टर के पास जाएं जिसने आपको मेडिकल लिखा है तो हो सकता है आपको दोबारा फिर से हिस्ट्री ले आपकी फिर से आपके जो है तशखीस करें और उसके हिसाब से फिर आपको दवाई दें.
1: ठीक ठीक. और बिल्कुल ये बिल्कुल इसी में आपने हमें डिटेल में बताया कि क्या क्या पेशेंट के साथ होता है सेम
0: जी सिचुएशन. बिल्कुल बिल्कुल वही सिचुएशन है रिजवान साहब की.
1: जी
0: जी.
1: इस तरह फिर ये कि वो ठीक हो जाते हैं मसलन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब
0: बिल्कुल बताया आपको 99% पेशेंट ठीक हो जाते हैं.
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह
0: अल्हम्दुलिल्लाह.
1: ठीक ठीक. ये भी बात लिसनर्स में बार बार डॉक्टर साहब से भी रिपीट कर रही हूँ क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि एक दफ़ा अगर किसी को कोई भी मेंटल इशू हो गया है तो वो थोड़े थोड़े दिनों के बाद अगर ठीक भी हो जाता है तो फिर दोबारा हो सकता है।
0: उस पे होता ही है ना कि अगर आप दवाई एकदम अब्रप्टली बंद कर दिए तो रिलैप्स के चांस ज़्यादा होते हैं।
1: अच्छा,
0: दूसरी चीज़ ये होती है कि आदमी उस चूँकि एक ट्रामा से गुजर चुका है, एंग्जाइटी है, डिसीज से गुजर चुका है, तो उसको हमेशा डर होता है कि दोबारा कहाँ ना आ जाए वो चीज़, तो हंसा

0: पास हो जाता है
1: जी,
0: तो ज़्यादा विजिलेंट हो जाता है कि भाई पता नहीं फिर होगा क्या। तो उस वक्त उसको अगर थेरेपी सेशन दिए जाए और उसको बताया जाए कि भाई किस तरह अगर अलामतें आती हैं आपके पास, ये सिम्टम्स आते हैं, तो किस तरह उसको आप ओवरकम कर सकते हैं बगैर दवा के।
1: ठीक ठीक, थोड़ा सा डॉक्टर पूछना चाहूँगी, जैसे आप किस तरह से पेशेंट को, ज़ाहिर है एज ए साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट थोड़ा सा डिफरेंस तो होता है, तो आप क्या मतलब स्टार्ट करते हैं पेशेंट को, किस तरह से उसका ट्रीटमेंट हम कहेंगे इसको, तो मैनेजमेंट
0: जी, मेडिकेशन स्टार्ट करता हूँ मैं मेनली हम SSRIs होते हैं, ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। और
1: हर एक को करते हैं या वो डिपेंड्स ऑन द पेशेंट?
0: जी जब पेशेंट को ट्रीटमेंट शुरू करना होता है तो पेशेंट सारे ट्रीटमेंट के लिए नहीं होते हैं, जैसे आप बताया आपको ना कि माइल्ड एंग्जाइटी है उनको
1: जी,
0: कि तो उनको भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, उनको हम सिर्फ कहते हैं भाई आप थोड़ा सा चेंज करें अपने आप को और थेरेपी सेशन को भेज देते हैं हम। लेकिन जब लगता है कि ये नहीं, ये थेरेपी सेशन के अभी उस तरफ रेडी नहीं है तो उनको हम इलाज स्टार्ट करते हैं। तो उसमें मेनली हम TCS सेकेंड यूज करते हैं, फर्स्ट SSRI जी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं।
1: ठीक है
0: जी, उसमें मेडिसिन और पास लोगों को जो, चूँकि इस वक्त होता ही है कि एंगजाइटी की वजह से नींद नहीं आती है
1: जी,
0: तो कुछ नींद के लिए भी हम लोग नींद की दवा नहीं, एक थोड़ा सा जो है जहनी सुकून की दवा देते हैं, तो उससे आदमी रिलैक्स भी हो जाता है।
1: मगर हम यही है कि वो नींद की मेडिसिन जो है वो दी जाती है कि नींद आ जाए, या सिर्फ उसको रिलैक्सेशन के लिए देते हैं?
0: रिलैक्सेशन देते हैं, नींद की जो मेडिसिन होती है वो कंट्रोल मेडिकेशन होती है, वो हर एक नहीं लिख सकता, उसके लिए स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन चाहिए।
1: ठीक है,
0: तो वो बहुत कम हो लिखते हैं लोग, लेकिन चूँकि आपका जो दवाई स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मेरे को ज़्यादा सोमाटिक कंप्लेंट्स हैं, बॉडीली पेन है मुझे, नेक पेन है, शोल्डर पेन है, और मुझे पता है कि इसका सबब एंग्जाइटी से हो रहा है, तो मैं जब एंग्जाइटी की दवा इसका इफेक्ट दिखाने के लिए मुझे 8 से 10 दिन लगेंगे या 2 हफ्ते लगेंगे उसका इफेक्ट असल आने के लिए।
1: अच्छा,
0: तो उस वक्त तक आदमी परेशान हो जाएगा ना।
1: ठीक है,
0: तो उस वक्त उसको हम पेन किलर भी देते हैं कि भाई पेन किलर भी लें आप, ताकि आप जो है रिलैक्स हो जाएं।
1: अच्छा अच्छा, क्योंकि जो है पेशेंट वो ये भी सीने में दर्द है तो उससे की कंप्लेन होती है,
0: बिल्कुल सीने में
1: तो
0: दर्द है, सर दर्द है, मेरे शोल्डर
1: पे शॉर्टनेस
0: जी,
1: तो चेस्ट भी,
0: आमतौर पे शोल्डर पे, बैक पे ज्यादा लोग आते हैं, हेडेक से आते हैं लोग, तो
1: हेडेक
0: जी जी, तो इनको
1: और बिल्कुल हेडेक जो है वो बहुत ज्यादा
0: जी, थोड़ा सा माइल्ड पेन किलर देखें हमारे मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे मेडिकेशन का ये है कोई भी साइकोट्रॉपिक मेडिकेशन 8 से 10 दिन में इफेक्ट शुरू होता है उसका, और 2 वीक्स में उसका पता चलता है कि हाँ इसको मेडिसिन काम कर रही है।
1: ठीक, तो फिर कितने देर तक आप जो है वो मेडिसिन यूज़ करवाते हैं?
0: आमतौर पर 2 to 4 months
1: जी,
0: उसके बाद ग्रेजुअल जब भी कहता है कि मैं बिल्कुल 100% ठीक हो चुका हूँ, तो उसके बाद मैं अपना पर्सनली जो है एटलीस्ट फॉर ए मंथ कंटिन्यू करता हूँ मेडिकेशन, उसके बाद फिर स्लोली टेपर करते हैं उसको, डोज कम करके फिर ख़त्म करते हैं।
1: ठीक, तो उस दौरान जो है पेशेंट का वेट वगैरह ज़्यादा होता है, मगर आपने जैसे बताया कि आप कुछ ऐसी मेडिसिन हैं कि उससे,
0: बहुत सारी मेडिकेशन आ गए हैं जिससे वेट नहीं बढ़ता है आदमी का, अभी पहले जमाने जैसे TCS बताया आपका हमें, इससे काफ़ी वेट बढ़ता और उससे नींद आती ज़्यादा
1: जी,
0: तो वो एक थी। अब थोड़ा सा है साइंस तरक्की कर गई है, फार्माकोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो पिछले कुछ मतलब 2 decades पहले से 5 या 6 है दवाई हुआ करती थी, अब माशाल्लाह से जो है तकरीबन 15-20-25 ही हो गई दवाई।
1: ठीक, इसमें डॉक्टर साहब आपके पास जो पेशेंट आते हैं किस एज ग्रुप के ज़्यादा आते हैं आपके पास?
0: अच्छा, मैं चूँकि अडल्ट साइकेट्रिस्ट हूँ तो मेरे पास 18 के बाद ही आते हैं, और एंगजाइटी के ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं under 40 होते हैं मेरे पास।
1: अच्छा
0: जी, मोस्टली मेरे पास 30 to 40 years के जो है देखा हूँ मैं, 90% पेशेंट वही होते हैं जो 30-40 एज में होते हैं जिनको एंगजाइटी होती है।
1: तो आप क्या समझते हैं कि क्या है, मतलब क्यों एंगजाइटी इस एज ग्रुप में ज़्यादा है?
0: जी, उसका असबाब जैसे बताया ना आपको कई हैं, इस एज में ये होता है जहाँ आदमी जॉब चेंज करता है अपना, शादी होती है, माहौल चेंज होता है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाता है आदमी कमाने के लिए, या रिलोकेशन होता है, या फिर जो है जॉब का माहौल ऐसा होता है कि भाई उसको थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, एडजस्ट होने प्रॉब्लम होती है, तो उसको एंग्जाइटी शुरू हो जाती है फिर वहाँ से।
1: ठीक ठीक, कि ये सारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा,
0: एनवायरमेंटल फैक्टर्स ज़्यादा, बिल्कुल।
1: और इसमें ये भी है कि डॉक्टर साहब क्या जैसे इस एज ग्रुप में पूरे एक स्पेसिफिक किसी एक स्टेज पे पहुंच के इंसान को ये सारी सिम्टम्स सारी अलामत शुरू हो सकती हैं, या पहले ही कुछ ना कुछ उसमें एंजाइटी का जो है वो होता है?
0: बड़ा बड़ी अच्छी बात कही आपने, आमतौर पर होता ये है कि कुछ कुछ अलामतें होती हैं और उसको इग्नोर करता है आदमी, कहता है कि ये ठीक है यार, लेकिन इस एज में जो है पीक पे हो जाती है चीज़ें ही, तो तब लगता है कि नहीं यार मुझे तब मुश्किल हो रही है, कुछ करना चाहिए इसका, वरना एंगजाइटी हो जाती है हर एक को।
1: ठीक ठीक, कि एंजाइटी जो है वो हो सकती है, मगर ये कि ये कितनी देर, लिसनर्स आपसे बता रहे हैं कि अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर आप अपने आप को कुछ समझते हैं कि कुछ ऐसे हम काम कर रहे हैं या कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जो कुछ एबनॉर्मल हैं,

0: तो इसमें क्या वो फौरन इमरजेंसी में इस तरह के आते हैं पेशेंट?
1: 90% इमरजेंसी जो आते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स पेशेंट, वो सारे पता है ना, सारे उनके टेस्ट होते हैं, ईसीजी कर लेते हैं, डर जाते हैं, ईसीजी होता है उनका, कार्डियोलॉजी वक्फ पूरा हो जाता है उनका, फिर पता चलता कि नहीं कुछ नहीं है, तो उस वक्त उसको पता होता है कि भाई ये मुझे जो है एंजाइटी है, कोई कार्डियक प्रॉब्लम या कोई हार्ट का प्रॉब्लम या मेरा कोई और कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
0: ठीक ठीक, इसमें सब हमें जो एक कॉल है हम जी कर देंगे। हेलो जी, मैं कट ऑफ हो गई जी। डॉक्टर साहब, इसमें और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे हम प्रिवेंटिव मेजर्स पे बात करें, हम अपने लिसनर्स की तरफ चलेंगे और सुनेंगे कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद जुल्करनैन बात कर रहा हूँ।
0: जी जुल्करनैन साहब, क्या पूछेंगे डॉक्टर साहब से?
2: बस डॉक्टर साहब से ये जो मैं बातें सुन के काफ़ी मेरे इल्म में इजाफा हो रहा था, और मैं इसका एक पार्शली इस तरह मैं जिक्र करना चाहता हूँ एक्सपीरियंस, कि आपकी सेहत काफ़ी डाउन हो या जैसे इन्वायरमेंट ऑफिस में या घर में आपके ऊपर काफ़ी असरअंदाज करे, तो उस वक्त भी इंसान सेल्फ थॉट में चला जाता है, उसको इस तरह की सोच या ऐसी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, यानी इसको देख के भी। और ये मैंने देखा है कि साइकोलॉजिकल या आसाबी नर्वस सिस्टम जब हो तो उसमें किसी से बात करते हुए आते जाते या दरवाज़ा भी बजे, और ये मीटिंग वाली बात तो बिल्कुल परफेक्ट है, ये तो मैं एक्सपीरियंस हो चुकी है, लेकिन
0: तो ये सभी एक्सपीरियंस मेरा ख्याल कर लेते हैं जी।
2: जी, तो इस सिचुएशन में खाने पीने की इन हैबिट्स की, और एक और चीज़ भी देखा है कि अगर आप आइसोलेशन में हो जाए ना, बैठ जाए, तो वो आपकी सेल्फ थॉट्स इसको बढ़ा देते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा, एक चीज़ बड़ी अच्छी इसमें है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं, मस्जिद में जाएं, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें या तवज्जो करें। बाज़ूकत इंसान को ना इसमें बड़ी नेगेटिव थॉट्स भी आने लग जाती हैं अपने आप को ना, वो मायूसी की तरफ, लेकिन वो जब वो फिर ज़हन में आता ना अल्लाह तक ना तुम रहमत अल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, या ऐसी चीज़ें इंसान को बड़ी तकवीत देती हैं। और एक चीज़ और भी मैंने देखा है कि ये जो लोग अभी अपनी फैमिली या उनसे टू मच कनेक्शन है ना हर वक्त, ये भी मेंटली स्ट्रेस को बड़ा बढ़ा देता है, और उसकी वजह से।
1: ज़ुल्फ़िकर साहब, आपकी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैं, ज़रा तफ़सील बताएं कि फैमिली कनेक्शन के मतलब क्या है इसका?
2: फैमिली कनेक्शन का मतलब है कि कहीं भी आते जाते फ़ोन में लगे हैं, कहीं बच्चे को प्रॉब्लम हो गई, कहीं मिसिस को हो गई, कहीं उसमें झगड़ा हो गया, वो हो गया, तो हर वक्त किसी ना किसी ऐसी बुरी खबर सुन सुन के ना वो मेंटली तौर पे एक तरफ अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है, या मेंटली तौर पे स्ट्रेस में आ जाता है कि यार कोई ना कोई इशू ही है, यानी वो हर वक्त जो बंदा ऐसी खबरों में भी रहे।
1: जी, ऐसे अच्छा, बंदे को मैं खाली यही मशवरा देता हूँ कि अपना फ्लिप द थॉट्स, कि अपने जो है अपनी सोच को थोड़ा बदलें, कि भाई उसमें ये सोचें कि भाई अच्छी बात ये है कि मैं फैमिली से कनेक्ट हूँ और मैं कुछ फैमिली के लिए कुछ कर सकता हूँ ना, तो ये इसको आप नेगेटिव थॉट्स को अगर पॉजिटिव कर देते हैं तो आपकी एंग्जाइटी वहीं पर ख़त्म हो जाती है, कि आपको एहसास हो गया कि भाई आप ज़िम्मेदार हैं घर के, आपकी फैमिली पर डिपेंड है आपके, और आपको जो मशाकिल हैं, जो प्रॉब्लम घर पर आ रहे हैं, उसको सॉल्व करने का आप ही ज़रिया हैं, तो आपके अंदर एक ताकत आ जाती है, ईजाबी ताकत कहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, इसमें आप जो है और अच्छे ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये समझ, अगर मैं नहीं कर पाऊँ तो ये वही कहता है स्पेकुलेशन है कि आप अगर मगर में जब जाते हैं तो आपको एंग्जाइटी हो जाती है।
2: हाँ, ये किसी वक्त में कर लिया, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, अचानक खबर आ गई, वो आ गई, ऐसी जो चीज़ें काम में कोई काम कर रहा हूँ वो आ गया। बाकी आपकी बात से मैं एग्री हूँ कि अल्लाह ताला ने ये जो अगर उसको ये अहलियत दी है, ये जिम्मेदारी दी है, वो निभाए, लेकिन हर वक्त अगर इसी चक्रों में रहेगा ना तो ना जो काम कर पाएगा ना और चीज़ें जो हैं जैसे ड्राइविंग है या और कई इंपॉर्टेंट चीज़ें वो नहीं कर पाएगा। बाकी मैं आपकी बात को नेगेटिव,
1: उसका तरीका ये है ज़ुल्करनैन साहब कि आप जो है बस वक्त टेलीफोन ना आंसर करें। आप जब ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग में सिर्फ ड्राइविंग जो काम कर रहे हैं, जिस वक्त आप, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ दोबारा मैं, तो आप जी जी आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग पे कॉन्सेंट्रेट करें, आप जहाँ मंजिल मकसूद पहुँचते हैं पहुँच जाएँ, उसके बाद फिर फोन देखें क्या है
0: सेल्फ,
1: या फिर जो है आप जो जॉब कर रहे हैं, फिर आपका जो है जो टारगेट है या जो आपका जो फिलहाल जो काम में मशगूल हैं आप, वो काम खत्म कर लें, फिर उस पर ध्यान दें, क्योंकि आप एक साथ तीन चार काम करने जाएंगे तो आप किसी काम पर जो है कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाएंगे ना।
2: सही सही, हमें याद आ रहा है कि आज से 15-20 साल पहले वीकली हम लोग कॉल करते थे, तो उसमें भी लोग ना उस वक्त, अच्छा एक चीज़ आपकी सडनली हो रही है और कुछ एक दो दिन बाद सेटल डाउन हो रही है, इसमें भी बड़ा फर्क आ जाता है। बात लंबी हो गई, चले मैं आपका आंसर सुनता हूँ।
0: चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब।
1: तो ज़ुल्करनैन साहब जो बताया ना कि फैमिली जो है कॉल करती है, इसमें एक्चुअली देखा जाए,
0: एक और कॉल है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब।
0: जी हेल्थ गाइड जी, आप कौन बात कर रहे हैं?
3: जी मैं महमूद बोल रहा हूँ, आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा चल रहा है, मैं इसको सुन रहा हूँ
0: जी। बहुत शुक्रिया।
3: मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था, ये जो एंग्जाइटी जो है, मेरी एज जो है 70+ है
0: जी,
3: और ये एंग्जाइटी की वजह से बॉडी पे भी कुछ असर होता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा मुझे जब एंग्जाइटी

0: की होती है तो मेरा पूरा जिस्म जो है वो मैं निढाल हो जाता हूँ, ऐसे लगता है जैसे ड्राउन हो रहा हूँ। तो ये इसका कोई इलाज है
1: जी? जरा महमूद साहब खैरियत हैं आप?
0: जी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह।
1: जी जी, आप जो बता रहे हैं ना, ये जिस्मानी सिम्टम्स जो है ना, सोमैटिक कंप्लेंट जो कहते हैं, बिल्कुल
0: जी
1: ये होती हैं। इसमें जो अच्छा। है जी जी, इसमें आदमी थकान ज़्यादा महसूस करता है, मसल टेंशन हो जाती है उसको, कंसंट्रेशन कम होने लगता है, अनवांटेड अननेसेसरी पेन्स शुरू हो जाती हैं, दर्द होने लगता है यहाँ वहाँ, तो ये भी एंग्जाइटी से होता है जी।
0: अच्छा, नहीं मुझे ये पता करना था या कि ये कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है कोई विटामिन की या कुछ ऐसी, लेकिन मैंने महसूस किया कि जब भी एंग्जाइटी या डिप्रेशन होती है तो मेरी बॉडी जो है
1: बिल्कुल
0: मैं फील करता हूँ कि आई एम जस्ट ड्राउनिंग, यू नो।
1: एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एंग्जाइटी डिप्रेशन में सोमैटिक कंप्लेंट्स आपके, बताया ना पहले मैं अपने टॉक में बताया था कि चूंकि हमारे दिमाग को अल्लाह ताला ने जबान नहीं दी है बोलने के लिए, मैं स्ट्रेस में हूँ, तो ये बॉडी सिम्टम्स सोमैटिक कंप्लेन शुरू हो जाते हैं, एकदम बॉडी स्टिफ हो जाना।
0: क्या इलाज है कि फिर कंट्रोल करे आदमी अपने आप पे?
1: अगर ये आपको बार बार हो रही है तो इसका इलाज करें, अगर कम हो रही है तो अपने आप को जो है साइकोलॉजी के पास जाएं, उसका कुछ बताएगा सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, थेरेपी देगा, आपको ठीक हो जाती है इंशाल्लाह।
0: अच्छी बात है, चलिए बड़ी अच्छी बात है, थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह
2: ख्याल रखिएगा
0: आदमी
2: खुद। जी बिल्कुल सही बात है आपकी, खुद जब तक उसमें से नहीं निकलेगा डॉक्टर साहब, ये भी एक सवाल
1: है। हमेशा आदमी का जो इरादा होता है ना कि मैं, अगर मैं हमेशा पेशेंट कहता हूँ कि तीन चीज़ें याद रखना हमेशा, कि आई मी एंड माई सेल्फ, अगर मैं ठीक नहीं हो सका तो मुझे कोई और ठीक नहीं कर पाएगा। अगर मैं ये ठान लूँ कि मैं ठीक नहीं होऊंगा तो आप कितनी दवाई खाएंगे आप ठीक नहीं होंगे, और अपना ख्याल जी जी बिल्कुल अपना ख्याल आपको रखना है, कोई आपका ख्याल नहीं रखने वाला है, तो अगर आप जहन में ये ला लेते हैं आप तो आप बिल्कुल बेहतर रहते हैं।
0: हाँ, बस आदमी अपने आप को मशगूल रखे, इसका यही इलाज है कि आदमी घर से बाहर निकल जाए और किसी काम में जो है बिजी हो जाए।
1: अच्छा, अच्छी चीज़ याद दिलाई आपने, उसमें एक तरीका ये होता है कि आप जहाँ बैठे हैं वो माहौल चेंज करें फौरन, जैसे आप किसी रूम में ऑफिस में बैठे हैं तो बाहर निकल जाएं, थोड़ा एक वॉकिंग करने दो मिनट के तीन मिनट के लिए, या किसी और जो है बैठे हैं तो कोई और टीवी देख लें या कुछ और प्रोग्राम देख लें या मोबाइल में कुछ एक स्क्रीन कुछ और देख लें, तो इसमें आदमी के जो उस वक्त जो इंपल्सेस होते हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं।
2: ठीक,
0: बिल्कुल सही कहा आपने
1: जी,
0: थैंक यू सो वेरी मच, बड़ा अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका,
1: जज़ाकअल्लाह खैर,
2: बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज जी। डॉक्टर साहब अब थोड़ी सी प्रिवेंटिव मेजर्स पे आगे, टाइम बहुत कम है, कुछ हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी इस तरह की सिचुएशन को,
1: एंग्जायटी को प्रिवेंट तो करने का कोई तरीका होता नहीं है, लेकिन आपको बस ये कर सकते हैं कि जब आपको पता चला कि एंग्जायटी हो रही है तो उस वक्त आप किस चीज़ को कर सकते हैं जिसके से एंग्जायटी कम हो जाती है
2: जी।
1: तो सबसे पहले ये है कि आप एनालाइज करें कि वाकई ये क्या चीज़ जो मेरा रिएक्शन हो रहा है कि इसके काबिल है रिएक्शन, इतना रिएक्शन करना चाहिए मुझे, इतना रिएक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप वहाँ से उठ के हट जाएं
2: जी,
1: जो माहौल में आपको लग रहा है कि टेंशन हो रही है आपको, जगह बदल लें, पानी पी लें, थोड़ी वॉकिंग कर लें, किसी से बात कर लें
2: जी,
1: और कुछ अपना जो है जहन चेंज करने के लिए कुछ और डाइवर्ट कर दें थॉट्स को आप, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं
2: जी। सब कॉल है मगर टाइम हमारा बहुत शॉर्ट है,
1: चलो बिल्कुल शॉर्ट आंसर दे देंगे फिर
2: जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी रेडियो ऑफ कर दीजिए और टाइम बहुत शॉर्ट जी, क्या पूछना चाहेंगे?
3: वालेकुम
2: जी जी,
3: टाइम कम होने की वजह से मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि हमारा कभी किसी इंटरव्यू के लिए जाता या नमाज इमामत के लिए खड़ा होते हैं वो घबराहट सा हो जाता है, तो उसको क्या एंजाइटी बोलते हैं कोई ये?
1: जी हाफिज साहब, जी हाफिज साहब जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मेरे पास काफी पेशेंट्स हैं जो मस्जिद के आइमा हैं, उनको ये होता है कि खासतौर पर जब फजर की नमाज पढ़ानी हो या जो है नमाज जो खिरात के साथ पढ़ानी होती है, मगरिब हो या शाह हो, तो उनको थोड़ा टेंशन आ जाता है कि मेरी जो है तिलावत सही नहीं होगी, मेरे बखारिज सही नहीं होंगे, ये एंग्जाइटी है,
2: तो इसमें क्या करें जी? डॉक्टर साहब आपको बताते हैं, चलिए बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा जी। डॉक्टर साहब क्या आप कहेंगे
1: इस पर? सबसे पहले ये करना है कि आपको पता होगा कि आप एक सबब पता है आपको, मैं जा रहा हूँ कि ये खौफ गैर मुबर्रर है, गैर मतलब कोई फितरी खौफ नहीं है मेरा है कि मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने कुछ हो जाएगा, तो होता नहीं है, आप काफ़ी अरसे से नमाज़ पढ़ाते होते हैं लेकिन आप सडनली कुछ ख्याल आ जाता है जहन में कि पता नहीं पीछे कोई बड़ा आदमी पड़ा होगा मेरे या कुछ किसी ने कुछ कह दिया कि भाई आपकी तिलावत में आपने गलती की है, तो अपनी वो जहन में वो चीज़ रख लेता है, तो वो इवेंट को आप निकाल दें बाकी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे फिर
2: जी इंशाल्लाह। जल्दी से आप दोबारा ये प्रोग्राम सुनना चाहें तो जुमे को सुबह 8 बजे आप ये प्रोग्राम सुन सकते हैं। आप मैसेज देंगे
1: लास्ट में? मैसेज मैं यही कहूँगा कि नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ।
2: बिल्कुल जी लिसनर्स, और ये जो है ज़रूरी है और इस पर फोकस भी करना, हमें सोचना भी, और इस तरह से एंजाइटी को जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ओवरकम कैसे करना है, तो ये भी बहुत एक अहम नुक्ता है जिस पर हमें सबको गौर करना है।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: मोबाइल हाथ में है, लेकिन फैमिली पास होकर भी दूर हो चुकी है. क्या आप भी चाहते हैं कि घर के रिश्ते फिर से मजबूत हों और फैमिली के साथ गुजारा वक्त फिर से कीमती लगे? तो सुनिए फैमिली ओरिएंटेड शो जो दिलों को करीब लाता है. संडे से थर्सडे शाम 4 से 5 बजे आरजे महविश खान के साथ डियर फैमिली शो जो रिश्तों को जिंदा रखता है.
3: स्टूडेंट्स के लिए आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है कि कौन सा रास्ता चुने. नए करियर ऑप्शंस की वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं. डॉक्टर, इंजीनियर या AI एक्सपर्ट, करना क्या है? इस उलझन को सुलझाने के लिए करियर कंपास सीजन टू जहां मिलेगी वो गाइडेंस जो आपको कंफ्यूजन से निकाल कर बनाएगी कॉन्फिडेंट. एक्सपर्ट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन, ऑन स्पॉट क्वेरीज के जवाब और वो टिप्स जो आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे. तो जरूर सुने शो करियर कंपास सीजन 2 आरजे नाजिया के साथ हर सैटरडे शाम 4 बजे से ओनली ऑन FM 107. दिल से दीजिए.
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
5: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू. दोस्तों, मेरे यानी सरवर मिर्ज़ा के साथ आइए जानते हैं वज़ारत दाखला से वीकली अपडेट.
6: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सरवर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में. वज़ारत दाखला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आप और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ. और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है. MOI वीकली अपडेट आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सर्वर.
5: जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक ने ऐलान किया है कि इन्वेस्टिगेशन सेक्शन को मदीना खलीफा की मेन बिल्डिंग से लुसैल एरिया मुंतकिल कर दिया गया है. इस हवाले से वाजे किया गया है कि ये सेक्शन अब लुसैल पुलिस स्टेशन बिल्डिंग में अपनी सर्विसेज फराहम करेगा. आम पब्लिक के लिए सेक्शन की वर्किंग टाइमिंग्स संडे से थर्सडे तक सुबह के वक्त में होगी, जो कि 6:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक मुकर्रर की गई है. अवाम को ये भी हिदायत दी गई है कि बिल्डिंग में दाखिल होने के लिए मेन गेट का इस्तेमाल किया जाए. असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर फॉर टेक्निकल एंड स्पेशलिस्ट अफेयर्स और चेयरमैन सुप्रीम कमेटी फॉर द टैक्टिकल एक्सरसाइज स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल सुएदी की सरपरस्ती में GCC सिक्योरिटी एजेंसीज की मुश्तरका टैक्टिकल एक्सरसाइज अरेबियन गल्फ सिक्योरिटी 4 के लिए सुप्रीम कमेटी ने अपना 4th इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक्किद किया. इजलास के दौरान एजेंडा के तमाम नुकात का जायजा लिया गया और GCC ममालिक के दरमियान मुश्तरका सिक्योरिटी इंटीग्रेशन और तआवुन को फरोग देने के लिए मुनासिब सिफारिशात मंजूर की गईं. वजीर दाखला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद

बिन खलीफा अल सानी की जानिब से मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर अफेयर्स शेख अब्दुल अजीज बिन फैसल बिन मोहम्मद अल सानी ने रियासत कतर के वफद की सरबराही की, जो GCC ममालिक के बुजराए दाखिला के गैर मामूली इजलास में शिरकत के लिए रियाद में GCC जनरल सेक्रेटरेट के मरकज पर मुनक्कद हुआ। इजलास के दौरान खलीजी सतह पर मुश्तरका सिक्योरिटी तआवुन को मजबूत बनाने और सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका कोशिशों को मुस्तहकम करने के तरीकों पर गौर वखोज किया गया, ताकि इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फरोग दिया जा सके। इसके अलावा इजलास के दौरान रियासत कतर ने इस बात पर जोर दिया कि GCC ममालिक के दरमियान मुसलसल सिक्योरिटी तआवुन और इंटीग्रेशन जरूरी है, ताकि नए पैदा होने वाले हालात और मुश्तरका चैलेंजेस का मुअस्सर तौर पर मुकाबला किया जा सके। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल आपको, आपके घर वालों को और दूसरों की जिंदगियों को खतरे में डाल सकता है। अपने मोबाइल को हमेशा साइड पर रखें, ताकि अपने साथ साथ दूसरों की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जा सके। आपकी यह आदत व एहतियात किसी की जान बचा सकती है। महफूज ड्राइविंग के लिए जरूरी है कि पूरी तवज्जो सिर्फ रोड पर हो और हर किस्म के डिस्ट्रैक्शन से बचा जाए। अपनी और दूसरों की सेफ्टी के लिए ड्राइविंग के वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें और किसी की जिंदगी को रिस्क में ना डालें। ड्राइव करते वक्त पूरी तवज्जो रोड पर रखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बड़ा हादसा बन सकती है। और याद रखें, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी की हिफाजत करना भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि ये छोटी छोटी एहतियात आपको और आपके आसपास के लोगों को महफूज रखती है। जिम्मेदार फर्द होने के फर्ज को अदा करते हुए बहुत ही एहतियात और ख्याल से ड्राइविंग कीजिए। पुलिस एकेडमी के प्रेसिडेंट मेजर जनरल अब्दुर्रहमान माजिद अल सुलैती की मौजूदगी में पुलिस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट की नुमाइंदगी करते हुए पुलिस एकेडमी ने सीनियर ऑफिसर्स कोर्स के ग्रेजुएट्स की तकरीब तकमील मनाई, जिसमें मुतअद्दिद ऑफिसर्स ने भी शिरकत की। ये तकरीब द टॉर्च दोहा में मुनक्किद हुई और इस कोर्स में 22 अफसरान शामिल थे जो कर्नल के ओहदे पर फाइज थे, और ये कोर्स 3 हफ्तों पर मुश्तमिल था। इस अरसे के दौरान शुरका ने मुख्तलिफ नजरियाती और अमली प्रोग्राम्स और लेक्चर्स में हिस्सा लिया, जिनका मकसद क़यादत, इदारी सिक्योरिटी और इदारी सलाहियतों को बेहतर बनाना था, जबकि मॉडर्न सिक्योरिटी काम की जरूरियात के मुताबिक पेशवराना महारत को मजबूत करना भी इसका हिस्सा था। सीनियर ऑफिसर्स कोर्स को एक लाजमी स्ट्रेटेजी कोर्स के तौर पर देखा जाता है, जो शुरका के करियर में एक अहम एकेडमिक और प्रोफेशनल मरहला समझा जाता है। पुलिस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट के किरदार को तस्लीम करते हुए और कोर्स सुपरवाइजर्स की कोशिशों और उन पर मुनक्किद रवानी के दौरान दी गई हिमायत और निगरानी को सराहते हुए ग्रेजुएट्स ने इंस्टीट्यूट को एक यादगार शील्ड पेश की, जिसकी नुमाइंदगी डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट कर्नल डॉक्टर नाइफ मोहम्मद अल मन्नाई कर रहे थे। इसके बाद तकरीब के इख्तिताम पर ग्रेजुएट्स में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। पुलिस अकेडमी के सिक्योरिटी रिसर्च एंड स्टडी सेंटर की नुमाइंदगी कर रही वजारत दाखिला ने 35वें दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर में अपनी खास पवेलियन के साथ शिरकत की है। ये इवेंट दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर या DECC में मुनक्किद हुआ। पवेलियन खसूसी सिक्योरिटी और कानूनी इशाद के मजमुए की नुमाइश करती है। जनरल और लीगल एंड सिक्योरिटी स्टडीज और अकेडमी के अहम अवार्ड और कामयाबियों को नुमाया भी करती है। इस नुमाइश में बच्चों के लिए मुख्तलिफ सेमिनार्स, पैनल डिस्कशंस और इंटरएक्टिव प्रोग्राम्स भी पेश किए गए हैं, जो जदीद तालीमी तरीकों के जरिए सिक्योरिटी से मुतालिक आगाही और कम्युनिटी की अकदार को फरोग देने के लिए बनाए गए हैं। ये शिरकत इल्म को फैलाने, कौमी सकाफती तहरीक की हिमायत और कानूनी और पुलिसिंग के मामलात में कम्युनिटी की शमूलियत को बढ़ाने के लिए वजारत के अज़्म की निशानदेही करती है। दोस्तों, रोड मार्किंग्स यानी सड़क पे जो निशानात होते हैं, वो सड़क की जुबान होते हैं। इन पर अमल करना ट्रैफिक की हिफाजत को बढ़ाता है और लोगों को महफूज रखने के लिए बहुत अहम है। ट्रैफिक साइंस और मार्किंग्स पर अमल कीजिए। याद रखिए कि एक दूसरे का ख्याल रखते हुए हम सब मिलकर इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर सकते हैं। और हाँ, ट्रैफिक के कानून की तामील करने से हम अपनी और रोड पर अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी को महफूज कर सकते हैं। रियासत कतर और शामी

0: अरब जमहूरिया की वजारत दाखिला के दरमियान सिक्योरिटी तावन को बढ़ाने और महारत के तबादले के फ्रेमवर्क के अंदर कतर की वजारत दाखिला के मुतअद्दिद सिक्योरिटी और खुसूसी महकमों ने शाम की वजारत दाखिला से एक वफ्द का इस्तकबाल किया। इस दौरे का मकसद वफ्द को सिक्योरिटी और पब्लिक सर्विसेज ऑपरेशंस में कतर के जदीद तजुर्बे से वाकिफ कराना था। वफ्द ने क्रिमिनल एविडेंस एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, एयरपोर्ट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और इकोनॉमिक एंड साइबर क्राइम प्रिवेंशन डिपार्टमेंट का दौरा किया। दौरे के दौरान वफ्द को ऑपरेशनल वर्क फ्लो, फराहम की जाने वाली सर्विसेज और जदीद तरीन सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज, एप्लीकेशंस और पुलिसिंग की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए तैनात किए गए सिस्टम्स के बारे में ब्रीफिंग दी गई। ये दौरा मुश्तरका सिक्योरिटी तावन को फरोग देने और खुसूसी टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी डोमेन्स में महारत और बेहतरीन तरीकों के तबादले को फरोग देने के लिए दोनों ममालिक के अज़्म की निशानदेही करता है। दोस्तों, मसाजिद और आसपास के घरों के करीब गलत पार्किंग न सिर्फ ट्रैफिक को रोकने का सबब बनती है, बल्कि ये इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स और पुलिस कार्स के लिए भी बहुत बड़ी रुकावट है। जब इन व्हीकल्स को जल्दी से गुजरना होता है तो किसी भी हादसे का खतरा लाहक बढ़ जाता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पार्किंग की आदतों में बेहतरी लाएं और दूसरों के लिए रास्ता खाली रखें। अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी गाड़ी सही जगह पर पार्क करें तो हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने इलाके के हर शख्स के लिए फायदा मंद साबित हो सकते हैं। इस तरह हम अपनी कम्युनिटी को सेफ, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल बना सकते हैं। हमारी छोटी सी सोच और मेहनत से न सिर्फ ट्रैफिक का मसला हल होगा बल्कि हमें अपनी रिलीजियस और सोशल ड्यूटीज को बेहतर तरीके से अदा करने में मदद मिलेगी। वजारत दाखिला का कहना है कि हम सब मिलकर इस मसले को हल करने में अपना हिस्सा डालें और एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बनें जहां सबके लिए रास्ता खुला हो और सेफ्टी पहली तरजीह हो। सामईन, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वीकली अपडेट का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचा। अगली मुलाकात तक के लिए प्रोग्राम डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए और याद रखिए, कानून की पासदारी और एहतराम कीजिए, कानून आपकी हिफाजत करेगा।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जब सवाल बहुत है और जवाब ढूंढना उतना ही मुश्किल लगता है, तो बच्चों और यंग माइंड्स को चाहिए एक ऐसी रहनुमाई जो दिल से भी हो और दीन से भी। गाइडिंग लिटिल हार्ट्स, एक ऐसा प्रोग्राम जो हम आपके लिए ला रहे हैं जो बच्चों को मजबूत वैल्यूज और मासूम दिलों को रोशन रास्ता देता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे सिर्फ ग्रो ना करें बल्कि स्ट्रॉन्ग वैल्यूज के साथ ग्रो करें, तो ये सफर उनके लिए जरूर सुनिएगा। गाइडिंग लिटिल हार्ट्स RJ सफा के साथ हर जुमे की शाम 5 बजे से सिर्फ FM 107 पर, बिकॉज दिस शो इज एन इंस्पायरिंग कंपेनियन फॉर स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ।
3: हर इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ सुनिए प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल हर संडे रात 8 बजे से RJ सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
0: दोस्तों, ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए इनके सोर्स को वेरीफाई करके अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। याद रखिए, आपकी आगाही आपकी हिफाजत है। फेक एडवर्टाइजमेंट के जरिए फ्रॉड का शिकार होने से बचिए। अपनी हिफाजत के लिए हमेशा ऑफर्स और प्रोमोशंस के जायज होने की तस्दीक करें। आमतौर पे कम कीमत पर रेसिडेंशियल

0: प्रॉपर्टीज और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज को लेने के लिए ऑनलाइन प्रोमोशंस किए जाते हैं। FM 107 आपसे कहता है कि अगर आपको किसी ऑनलाइन फ्रॉड्स पर शक है तो इकोनॉमिक एंड साइबर क्राइम्स कॉम्बेटिंग डिपार्टमेंट से राब्ता करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: कोई ऐसी किताब है जो किताबों को समझने में मदद करे, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो मस्ती मजाक में ही सही लेकिन लाइफ के लेसन्स भी दे पाए।
2: कस के जूता, कस के बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी।
1: वेल, ये कोई सुपरफिशियल एड नहीं है, सच्चाई है, क्योंकि FM 107 लेकर आया है एक खास शो फॉर स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स गाइड, द स्टूडेंट्स गाइड। तो सुनिए हर मंडे दोहा वाले कबीर के साथ, कबीर के साथ, द स्टूडेंट्स गाइड, एंड बी द गाइडिंग लाइट फॉर स्टूडेंट्स, हमारे साथ दोपहर 3:30 से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर

0: चाहेंगे, हमारी तो कुर्बानी आ रही है अगले अगले हफ्ते जी। ये जो आयत आपने जिसका जिक्र किया ना, इसका तज़किरा ये लईन अल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा वलकिन अलहुत्तक्वा मिनकुम, ये सूरतुल हज की आयत है। तो ये आपने याद दिला दी, ये मैं सोच रहा था कि इस आयत पर भी गुफ्तगू करूँगा, लेकिन बहुत अच्छा हुआ आपने इस मौजू को याद दिलाया। और यही हकीकत है कि तकवा के लिए हम, अगर ये कहते हैं ना कि अगर बाज़ शरीक हो जाते हैं, जैसे गाय के हवाले से बात हो तो चार पाँच सात तक शरीक होते हैं, ऊँट में भी शरीक होते हैं सात बंदे, तो तकवा बहुत मैटर करता है। आप कितना किलो होगा क्या होगा जी जी
1: कुर्बानी करके फ्रिज में रखे जा रहे हैं। मौलवी साहब जो हजरत वो खा सकते हैं हम लोग, अरे भाई खा सकते हैं, लेकिन उसका एक हुकूक है, आप अदा कीजिए। फ्रिज में रखकर खाने वाला कुर्बानी का वक्त नहीं, आप खुद खाइए, अपने पड़ोसी को देखिए, अपने रिश्तेदार को देखिए, मोहल्ले में गरीब फकरा को देखिए। कुर्बानी का असल मकसद तो ये था, लेकिन आदमी लोग अरे कौन जाएगा यहाँ, ज्यादातर काट के फ्रिज में रखते है, बस आराम से खा रहे हैं।
0: मोहम्मद सरफराज भाई, आपकी इस बात से फ्रिज में रखने की बात से मुझे एक बात एक हदीस याद आई, उसमें अहले मदीना में कुछ इस तरह के हाजतमंद अफराद आए थे, तो उस वक्त कुर्बानी का वक्त था, तो कहा गया था उनसे कि तुम लोग जो है ना, नबी सल्लम की तरफ से कहा गया तुम लोग तीन दिन से ज़्यादा का गोश्त जो है ना जमा मत रखो अपने पास, यानी उससे ज़्यादा जो वो ज़रूरतमंद अफराद को दे दो। फिर कहा गया जब वो हाजतमंद लोग चले गए, और फिर दूसरा यानी दूसरे साल की बात है, तो उस वक्त फिर कहा गया आप रख सकते हो जमा अपने पास रख सकते हो और खाओ पियो और जो बांटो मसला नहीं है। लेकिन अगर हमारे यहाँ हाजतमंद अफराद हैं, ज़रूरतमंद अफराद हैं, बाज़ ऐसे होते हैं जिनके पास जो साल में एक दो मरतबा गोश्त खाने का मौका उन्हें मिलता है, तो ज़रूर हम इस तरह जो है ना खोज तलाश करके ऐसे लोगों तक पहुँचाएँ जो हकीकत में
1: जा रहा है, तो आपसे वो खाना आपके लिए मतलब मुनासिब नहीं है, क्योंकि आपके वजह से उनको तकलीफ हो रहा है कि बताओ अल्लाह ताला किसी के यहाँ गोश्त बरामद कर रहा है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। तो ये भी एक है, इंसान आज बने अभी कुछ दिन पहले एक गुजरे है सुन, हमारे तो मतलब होश वो थोड़ी देर के लिए लगे की इल्म हो या कोई भी जिसमें दयाकारी हो, फरमाते हैं एक कयामत के दिन जन्नत के

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: दिल से देसी।
4: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: अपनी बीवी को जितना हो सके सबके सामने इज्जत दीजिए। मर्दानगी की बेहतरीन सतह ये बुलंदी है कि मर्द की वजह से औरत की आंख में आंसू ना आए। इस नसीहत को मजबूती से पल्ले बांध लीजिए। याद रखिए कि ताल्लुक और रिश्ते इज्जत के मोहताज होते हैं, जितनी इज्जत दी जाए उतने ही गहरे होते हैं।
1: पैगाम ऑन FM 107।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्त उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामने किराम, आज हम एक ऐसी दुआ पर बात करेंगे जो हर मुसलमान की दिल की गहराइयों से निकलती है। वालिदैन के हक और उनके अजीम कुर्बानियों की याद दहानी है इस दुआ में, और इस दुआ का जिक्र कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल में आया है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए मेरे रब, मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मुझे मोहब्बत व शफ़क़त से पाला है। अमीन कराम, इस दुआ के दो पहलू हैं। एक तो हमें अपने माँ बाप और वालिदैन के लिए भी इस तरह की दुआएं ज़रूर करनी चाहिए, साथ साथ हमें अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से भी वो ख्याल रखना है कि ये बड़े होकर मुझे यही दुआ करेंगे मेरे लिए, तो मुझे भी रहमत के साथ, शफ़क़त के साथ, सब्र के साथ इनकी तरबियत करनी है, इनके साथ रहम व करम का मामला करना है। वैसे अमूमी तौर पर, फितरी तौर पर माँ बाप हर कोई अपने बच्चों के साथ शफ़क़त और नरमी का ही मामला करता है, लेकिन बाज़ औक़ात हम भी कुछ ज़्यादती कर लेते हैं, तो उस वक्त हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इस दुआ को याद रखें कि भाई हम जैसे ही मामला कर रहे हैं कि हमारे बच्चे भी हमारे लिए यही दुआ करेंगे। रब्बी, ए रब, ए मेरे रब, यानी वो ज़ात जिसने मुझे पैदा किया, पाला और नेमतें अता फरमाई, इरहमहुमा, वालिदैन पर अपनी ख़ास रहमत फरमा दुनिया में भी और आखिरत में भी, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे कि उन्होंने बचपन में मुझे पाला, मेरी ज़रूरियात पूरी की, मेरी तकलीफ़ें बर्दाश्त की और अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करके मेरी परवरिश की। तो यहाँ वालिदैन के एहसानात का बदला देना तो मुमकिन नहीं, तो सामने किराम, वालिदैन के एहसानात का बदला देना तो मुमकिन नहीं, तो उनके लिए हर वक्त हमारी तरफ से सबसे बड़ी खिदमत यही हो सकती है कि उनके लिए हम रहमत और मगफरत की दुआ करते रहें, सेहत व आफियत की दुआ करें, और मगफरत के हवाले से वालिदैन के लिए काफ़ी सारी ऐसी दुआएं आई हैं कुरान में जहां मुख्तलिफ क़स्सों में मुख्तलिफ तरीक़े से वालिदैन के लिए बिलखसूस दुआओं का, वालिदैन के लिए बिलखसूस दुआ का ज़िक्र है। तो सामने किराम, इस दुआ का जो तरबियती पहलू है, इस पर मैंने पहले भी कहा कि यहाँ कुरान ने इंसान को उसकी तफूलियत याद दिलाई कि जब वो बिल्कुल बेबस था, वालिदैन ने उसकी हर ज़रूरत पूरी की, तो यहाँ हर एक के लिए बचपन की याद दहानी है ताकि हम अपने बड़ों के साथ सही मामला करें। जब वालिदैन ज़ईफ़ हो जाए, उनकी तबीयत में कमज़ोरी या चिड़चिड़ापन आ जाए, तो भी उनके साथ शफ़क़त, एहतराम और सब्र का मामला करना ज़रूरी है, ख़ुसूसन उनके बुढ़ापे के ज़माने में इसकी अहमियत तो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वालिदैन की खिदमत और उनके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आना, हुस्न सलूक करना, तो ये दुआ हमें कई कीमती सबक देते हैं। इसमें वालिदैन की खिदमत की बात आई है, कुरान ने बराह रास्त दुआ के ज़रिए उनकी अज़मत को उजागर किया। इसी तरह औलाद के फ़र्ज़ के

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: एक सफर अल्फाज का जो दुनिया को बदल गया, किताबें जो सिर्फ लिखी नहीं गईं, बल्कि सोचने का रंग भर गईं, जिन्होंने तारीखों को जन्म दिया और इंसानियत को नए रास्ते दिखाए। हम आपको ले जाएंगे किताबों की उसी जहान में जो तारीख और तहजीब दोनों को रोशन करती हैं। अल्फाज जो तारीख लिखते हैं।
3: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड। भाई एक ऐसा सफर जहां हम उन किताबों की कहानी सुनते हैं जिनके अल्फाज ने दुनिया भर के लोगों को बदला या बेहतर सोच दी है और जिंदगी को एक नए अंदाज से देखना सिखाया है। हर एपिसोड में एक ऐसी किताब पर हम बातचीत करते हैं जिसने दुनिया भर के सोचने वालों का तरीका बदल दिया है, और आज हम एक ऐसी ही किताब पर बातचीत करने वाले हैं जिसने दुनिया भर के लाखों कायरीन के दिलों को छुआ है, और वो है द सीक्रेट। लिखने वाले हैं रोंडा बर्न्स।

एक सोच है, एक नया अंदाज़े ज़िंदगी है, और इस किताब का नाम है, जैसे मैंने अर्ज़ किया, The Secret. और लिखने वाले हैं होंडा बाइन. ये किताब दुनिया भर में काफी लोगों की जिंदगी पर असर डाल चुकी है. आज का प्रोग्राम सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए भी बनेगा. दोस्तों, आज हम सिर्फ पेजेस ही नहीं पलट रहे हैं इस किताब के, बल्कि अपनी सोच, अपनी आदतों और अपनी नजर को एक नए एंगल से देख रहे हैं. इसलिए आज का ये वक्त, आज के ये कुछ लम्हात सिर्फ एक कहानी नहीं, हमारी जिंदगी का हिस्सा भी है. तो साहब, द सीक्रेट की बुनियादी पैगाम बहुत सीधे हैं, लेकिन उतना ही गहरे भी हैं. ये किताब कहती है कि हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनती है. जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं और जो हम बिलीव या यकीन करते हैं, वही चीजें हमारी जिंदगी में वापस आती हैं. इस किताब के राइटर इस कंसेप्ट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से एक्सप्लेन करते हैं. इसका सीधा मतलब ये है कि आप जो सोचते हैं, कायनात उसी किस्म का जवाब आपको देती है. अगर हम सिर्फ मसाइल या कमी और डर पर फोकस करते हैं तो वही ज्यादा होता चला जाता है. भाई, दिमाग उसी तरीके से हमें बनाता चला जाता है ना, और ये तो हमें सिखाया जाता है. हमारे बड़े भी कहते हैं और हमारा दीन भी कहता है कि अच्छा सोचो, अच्छा ही सोचो और अच्छी ही उम्मीद रखो. और सुभान अल्लाह, उम्मीद रखना भी एक ईमान का हिस्सा है. लेकिन अगर हम शुक्र, उम्मीद और यकीन का साथ देना छोड़ देते हैं या उसके साथ जीना छोड़ देते हैं तो हमें मुश्किलों का सामना होता है. और वहीं इसके बरअक्स, हमें अगर यही चीजें हम फॉलो करते हैं तो जिंदगी और भी बेहतर होती चली जाती है, धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाती है. तो भाई, इस प्रोग्राम के दौरान हम आपसे कोई गायबाना बात नहीं करने जा रहे हैं या ख्याली बातें नहीं करने जा रहे हैं. ये जो बुक है द सीक्रेट, हमें ये बताती है कि सोच और जज्बा मिलकर अमल बनाते हैं. जब हम सिर्फ पॉजिटिव बात नहीं कहते बल्कि उसे महसूस भी करते हैं, तब असर अच्छा होता है. और इसके राइटर रोंडा बर्न कहती हैं कि अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिल और दिमाग में उसे पा चुके होते हैं या उसे पाने का एहसास कीजिए. तो ये भी जरूरी है कि हम अपनी रोजमर्रा की नॉर्मल सोच पर भी गौर करें. हम सुबह उठकर किस मूड में होते हैं, शिकायत के साथ या शुक्र के साथ? तो भाई, ये चीजें असर डालती हैं ना, क्योंकि वही सोच पूरे दिन शेप करती है. अच्छा मूड होता है, सुबह सुबह अच्छे उठते हैं. तो ये चीजें हमारे खुद के हाथ में हैं दोस्तों. चलिए जी, अब थोड़ा डिटेल में अब बात करते हैं और जानते हैं कि बुक ऑफ द वीक, ये जो द सीक्रेट किताब है, इसको हमने क्यों चुना है और इससे हमें क्या पैगाम मिलता है. एक्चुअल में हमें ये किताब क्या सिखाती है? भाई, किताब के मुताबिक जिंदगी में तीन बुनियादी कदम होते हैं, आस्क, बिलीव एंड रिसीव. मतलब पहला कदम ये है कि आप

ये भी है कि ये बहुत सी जबानों में ट्रांसलेट हुई. ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक द सीक्रेट प्रोडक्ट्स और बुक्स 52 यानी 52 से ज्यादा लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं. वहीं 50 लैंग्वेज और मल्टी मिलियन सेल्स का जिक्र भी मिलता है. जब कोई मैसेज इतनी जबानों में फैलाया जाए तो उसका मतलब होता है कि उस मैसेज में कोई बात तो ऐसी है जो अपनाई जा सकती है. भाई आपको जो अच्छा लगे आप रख लें, जो अच्छा ना लगे उसको छोड़ दें. ये तो हमें बड़े समझाते ही हैं. तो जैसे होप, कंट्रोल और बेटर फ्यूचर का ख्वाब होता है दोस्तों, वहीं अगर हम अपने ऊपर काम करें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं. हर मुल्क में लोग स्ट्रेस से गुजरते हैं, हर कल्चर में लोग चाहते हैं कि उनकी मेहनत का नतीजा निकले. इसलिए इस बुक का आइडिया दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में लोगों को अपने आप से मिलता जुलता लगा, चाहे वो इसे किताबी समझें या माइंडसेट ट्रेनिंग. भाई इम्पैक्ट का एक पहलू ये भी है कि इस किताब ने लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी के लफ्ज़ से दोबारा इंट्रोड्यूस करवाया. जब किताब कहती है कि आप अपनी सोच से अपनी रियलिटी को शेप करते हैं तो इसका एक साइड इफेक्ट ये होता है कि इंसान अपने आप को विक्टिम कम समझने लगता है. लेकिन यहाँ बैलेंस ज़रूरी है. हर प्रॉब्लम सिर्फ सोच की वजह से नहीं होती, कभी हालात, इकॉनमी, हेल्थ और सोशल फैक्टर्स भी होते हैं. इसलिए बेस्ट अप्रोच ये है कि आप इस कंसेप्ट को ब्लेम की जगह चॉइस के लिए यूज करें. भाई जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है मैं उस पर फोकस करूं. मेरा एटीट्यूड, मेरा एफर्ट्स, मेरी प्लानिंग, मेरी आदतें, ये सब मेरे हाथ में है. जब ये माइंडसेट स्ट्रांग हो जाता है दोस्तों तो इंसान छोटी छोटी चीजों में भी बेहतर करना शुरू कर देता है. दोस्तों दुनिया में सेल्फ हेल्प का मार्केट हमेशा से स्ट्रांग रहा, लेकिन द सीक्रेट ने इसे और ज्यादा कॉमर्शियल और विजिबल बना दिया. भाई बुक और फिल्म ने 2009 तक ह्यूज सेल्स जनरेट किए और रिलेटेड मर्चेंडाइज भी निकाले. ये चीज़ कुछ लोगों को पसंद आती है और कुछ को नहीं, लेकिन मार्केट रियलिटी ये है कि जब लोग किसी मैसेज से इमोशनली कनेक्ट करते हैं तो वो उससे रिलेटेड टूल्स भी लेना शुरू कर देते हैं. जर्नल्स, प्लानर्स, विजन बोर्ड किट्स, ग्रेचुटी नोटबुक्स वगैरह वगैरह. इसका एक पॉजिटिव साइड ये है कि लोग प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉलो करते हैं. नेगेटिव साइड ये हो सकता है कि कोई इंसान शॉपिंग को सेल्फ इम्प्रूवमेंट समझ ले. इसीलिए दोस्तों असल चीज आपकी डेली प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी में छुपी है. एजुकेशन पर इम्पैक्ट को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता. जब टीचर्स और ट्रेनर्स पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट और ग्रोथ माइंडसेट की बात करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं वही आइडिया होता है कि सोच और एफर्ट से आउटकम्स इम्प्रूव हो सकते हैं. द सीक्रेट का मैसेज कभी कभी सिंप्लीफाइड होता है, लेकिन इसने एक सीधा सा लेसन पॉपुलर किया. आप अपने दिमाग को जिस डायरेक्शन में ट्रेन करते हैं आपका बिहेवियर उसी तरफ जाता जाता है. इसका प्रैक्टिकल रिजल्ट ये होता है कि स्टूडेंट्स अपने आप से बेहतर बात करना सीखते हैं, अपनी तैयारी को नेगेटिव प्रिडिक्शन से साबोटाज नहीं करते और अपने गोल्स को क्लियर लिखते हैं. यहाँ पे बेस्ट अप्रोच ये है कि पॉजिटिव सोच के साथ रियलिस्टिक प्लानिंग भी हो, यानी टाइम टेबल, प्रैक्टिस, फीडबैक और इम्प्रूवमेंट. इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप का एंगल भी बहुत इंटरेस्टिंग है. भाई ग्रेचिट्यूड और अप्रिसिएशन एक मैग्नेट की तरह काम करता है. जब आप अपने पार्टनर, अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स के लिए शुक्र अदा करना शुरू करते हैं तो आपका एटीट्यूड सॉफ्ट हो जाता है और कन्फ्लिक्ट्स कम होने लगते हैं. इसका दुनिया पर असर इस तरह आया कि लोग कंप्लेंट्स की जगह अप्रिसिएशन की लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं. सोशल मीडिया पर भी थैंक यू, ब्लेसिंग्स, गुड वाइब्स जैसे एक्सप्रेशंस कॉमन हो गए हैं. अब ये हर जगह जेन्युइन हो जरूरी नहीं, लेकिन ट्रेंड ये जरूर बना कि लोग पॉजिटिविटी को पब्लिकली एक्सप्रेस करते हैं. अगर इस ट्रेंड को मैच्योर तरीके से यूज किया जाए तो फैमिलीज में मोहब्बत बढ़ती है, वर्क प्लेस में कोऑपरेशन इम्प्रूव हो सकता है और फ्रेंडशिप में एम्पैथी आ सकती है. दोस्तों हेल्थ और मेंटल वेलबींग पर द सीक्रेट का इम्पैक्ट दो तरह से देखने में आया है. एक तरफ किताब का मैसेज लोगों को होप देता है, स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है और ग्रेचिट्यूड प्रैक्टिस से मूड लिफ्ट होता है. दूसरी तरफ अगर कोई इंसान सीरियस बीमारी या डिप्रेशन में हो तो सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से ट्रीट करने की कोशिश करें और मेडिकल हेल्प ना लें तो प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है. इसलिए आप अपनी सोच को हेल्दी रखें, दुआ करें,
होप रखें, ग्रेचुटी

जरूर करें, लेकिन साथ-साथ प्रोफेशनल गाइडेंस, थेरेपी, डॉक्टर्स कंसल्टेशंस और प्रैक्टिकल रूटीन्स को भी इम्पोर्टेंस दें। भाई किस तरीके से हमें बताया गया, हमारे दीन में भी तो ऐसे ही है कि पहले अपना काम करो, फर्ज अदा करो और फिर अल्लाह से उम्मीद रखो। तो दुनिया में इस बैलेंस की बात बढ़ने लगी और सेल्फ हेल्प को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के साथ कनेक्ट किया गया। दोस्तों इस किताब का एक मेजर कल्चर इम्पैक्ट विजुअलाइजेशन का ट्रेंड है। आज आप एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स और परफॉर्मर्स को देखें, वो अपनी परफॉर्मेंस से पहले सीन इमेजिन करते हैं। ये कंसेप्ट न्यू नहीं, लेकिन इस किताब से इसे हाउस होल्ड टर्म बना दिया। विजुअलाइजेशन का प्रैक्टिकल बेनिफिट ये होता है कि आपका दिमाग अपने टारगेट को क्लियर देखता है और फिर स्टेप्स प्लान करना आसान हो जाते हैं। जब टारगेट होता है दोस्तों तो इंसान कंफ्यूज रहता है, लेकिन जब आप डिटेल्स में इमेजिन करते हैं, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी रूटीन कैसी है, मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, तो दिमाग नेचुरली अलाइनमेंट ढूंढता है। इसलिए दुनिया में विजन बोर्ड्स और गोल जर्नलिंग का क्रेज आया। ऑफिशियल द सीक्रेट प्लेटफॉर्म पर भी लैंग्वेजेस और प्रोडक्ट्स का मेंशन इसी एक्सपेंशन को शो करता है। भाई मीडिया स्टडीज के एंगल से देखें तो द सीक्रेट ने स्पिरिचुअलिटी प्लस सेल्फ हेल्प को एंटरटेनमेंट फॉर्मेट में पॉपुलर किया। तो भाई कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म के तौर पर डिस्क्राइब की गई और कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इंटरव्यू के जरिए प्रेजेंट किया गया। जब कोई आइडिया सिनेमैटिक म्यूजिक, स्टोरीज और इंस्पायरिंग टोन में प्रेजेंट होता है तो ऑडियंस इमोशनल लेवल पर कनेक्ट करती है। यही वजह है कि इस कंसेप्ट का स्प्रेड फास्ट हुआ। लेकिन यहाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है दोस्तों, ऑडियंस को ये समझना कि स्टोरी और इंस्पिरेशन के साथ रियलिटी चेक्स भी जरूरी है। भाई आप होप क्रिएट करें लेकिन फॉल्स गारंटीज ना दें। आप मोटिवेशन दें लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी मेंशन करें। इस बैलेंस से ऑडियंस को बेनिफिट मिलता है। एक और वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि द सीक्रेट ने लोगों को लैंग्वेज ऑफ ऑडियंस सिखाया। पहले लोग अक्सर बोलते थे मेरे पास नहीं, मुझे या मुझसे नहीं होगा, मेरे लिए इम्पॉसिबल है, वगैरह वगैरह। तो इस किताब के बाद काफ़ी लोगों ने अपनी लैंग्वेज चेंज करनी शुरू की। मैं सीख रहा हूँ, मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं चांसेस ढूंढ सकता हूँ। भाई ये सिर्फ वर्ड का चेंज नहीं होता, ये आइडेंटिटी का चेंज होता है। आप जब अपने आप को कैपेबल बोलते हैं तो आप ज़्यादा ट्राई करते रहते हैं।

0: दुनिया भर में कोचिंग कल्चर इसलिए ग्रो हुआ कि लोग चाहते थे कोई उन्हें गाइड करे कि नेगेटिव सेल्फ टॉक से कैसे निकले। भाई द सीक्रेट ने इस डिमांड को पॉपुलर डिस्कोर्स में ला दिया। किताब की क्रिटिसिज्म का सबसे सेंसिटिव पॉइंट विक्टिम ब्लेमिंग का रिस्क है। कुछ क्रिटिक्स का कहना होता है कि अगर आप हर चीज को थॉट्स का नतीजा समझें तो फिर किसी मुश्किल सिचुएशन का शिकार इंसान को भी आप ब्लेम कर सकते हैं, जो अनफेयर है। भाई मैसेज ये हो कि आप अपनी सोच को बेहतर बनाएं, लेकिन साथ ही ये भी हो कि आप किसी की तकलीफ का मजाक ना बनाएं, ना उसे ब्लेम करें। कंपैशन और रियलिटी एक साथ चलती हैं दोस्तों। ये अप्रोच हमें काफी मैच्योर बनाती है और सेल्फ हेल्प को इंसानियत तक पहुंचाती है। दोस्तों आप जरा सोसाइटी लेवल पर देखें तो इस किताब ने चैरिटी और गिविंग की लैंग्वेज को भी एम्प्लीफाई किया। जब आप ग्रेटिट्यूड और एबंडेंस का माइंडसेट रखते हैं तो आप शेयरिंग के लिए ज्यादा ओपन होते हैं। ये ट्रेंड बहुत सी कम्युनिटीज में देखा गया। लोग इंस्पायर होकर वॉलंटियर वर्क, डोनेशंस और हेल्पिंग कल्चर को प्रोमोट करते हैं। जब आप खुद को कुछ करने के लिए लगा देते हैं तो आप अपने जहन को भी बेहतर बना रहे होते हैं। जब आप खुद को ब्लेस्ड समझते हैं तो आप ओपन हो जाते हैं। इसलिए इस किताब का इम्पैक्ट सिर्फ पर्सनल सक्सेस नहीं, कभी कभी सोशल वॉर्म्थ भी बन जाता है। हाँ, ये हर जगह परफेक्ट नहीं, लेकिन कन्वर्सेशंस का रुख व्हाट आई कैन गिव की तरफ जरूर जाता है और ये सोसाइटी के लिए हेल्दी साइन है। दोस्तों दुनिया में द सीक्रेट जैसी किताबों का इफेक्ट एक और जगह नजर आता है, वर्क प्लेस मोटिवेशन और एचआर कल्चर में, जो आज की जिंदगी का एक बहुत अहम और बड़ा हिस्सा है। कंपनीज टीम बिल्डिंग में ग्रेटिट्यूड सर्कल्स, एप्रिसिएशन ईमेल्स और रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करती हैं। इसका सीधा नतीजा ये होता है कि एम्प्लॉयज अपने आप को सीन फील करते हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास होता है उनको। जब इंसान अप्रिशिएटेड होता है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनता चला जाता है और कन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। लेकिन यहाँ पर बैलेंस जरूरी है। सिर्फ पॉजिटिविटी की बात करके ओवर वर्क को जस्टिफाई ना किया जाए। भाई रियलिस्टिक वर्क प्लेस कल्चर वो होता है जहाँ पॉजिटिविटी के साथ बाउंड्रीज भी रिस्पेक्टेड हों। और इसलिए इस किताब का बेस्ट यूज ये है कि आप एनवायरमेंट को सपोर्ट बनाएं। चलिए दोस्तों अब इम्पैक्ट को डेली रूटीन की लैंग्वेज में समझते हैं। द सीक्रेट ने बहुत से लोगों को मॉर्निंग रूटीन की तरफ पुश किया। सुबह उठकर शुक्र अदा करना, अपनी दीनी चीजें पूरी करना, अपनी इबादत पूरी करना और गोल्स को पूरा करना, फिर काम ब्रीदिंग, फिर डे प्लानिंग वगैरह वगैरह। ये रूटीन से दुनिया भर में पॉपुलर हुए और सोशल मीडिया पर ये बातें आम होती चली गईं। इससे फायदा ये हुआ कि लोग रिएक्शन के मोड में दिन स्टार्ट नहीं करते बल्कि इंटेंशन के मोड में स्टार्ट करते हैं। आप इमेजिन करें, जब आप सुबह फोन की नोटिफिकेशन से दिन स्टार्ट करते हैं तो माइंड स्कैटर्ड होता है, लेकिन जब आप 2 मिनट शुक्र से स्टार्ट करते हैं तो जहन कितना सुकून पाता है। ये छोटी सी शिफ्ट पूरे दिन का टोन सेट कर देती है। इसीलिए इस किताब का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट लाइफस्टाइल डिजाइन के कंसेप्ट को भी मजबूत करता है। भाई ग्लोबल कल्चर में एक और चेंज ये आया कि लोग अपनी सोच को सीरियसली लेने लगे। पहले सोच को बच्चों की बात समझा जाता था, लेकिन इस किताब ने बड़ों को ये बात सिखाई। इसका फायदा यह है कि इंसान अपनी जिंदगी को सिर्फ सर्वाइवल तक लिमिट नहीं रखता बल्कि ग्रोथ तक ले जाता है। लेकिन यहाँ फिर एक रिस्पॉन्सिबल नोट ये कि भाई सोच के साथ डिसिप्लिन जरूरी है। सोच को रियलिस्टिक स्टेप्स में कन्वर्ट करना जरूरी है, वरना फ्रस्ट्रेशन होता है। इसलिए जब आप कोई चीज इंस्पायर करती है तो साथ ही ये भी बताती है कि भाई सोच प्लान जो है उसको बेहतर बनाइए। छोटे गोल, छोटी डेडलाइन, छोटे एक्शंस वगैरह वगैरह। दुनिया में सेल्फ हेल्प का मैच्योरिटी लेवल तब बढ़ता है दोस्तों जब इंस्पिरेशन और प्लानिंग दोनों एक साथ चलती हैं।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: सफर अल्फा

0: आज का जो दुनिया को बदल गया, किताबें जो सिर्फ लिखी नहीं गईं, बल्कि सोचने का रंग भर गईं, जिन्होंने तारीखों को जन्म दिया और इंसानियत को नए रास्ते दिखाए। हम आपको ले जाएंगे किताबों की उसी जहान में जो तारीख और तहजीब दोनों को रोशन करती हैं।
1: तो दोस्तों, द सीक्रेट का इम्पैक्ट रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के डिस्कशंस पर भी हुआ है, क्योंकि इसमें यूनिवर्स बेहतरीन चीज़ जो हमारे अंदर की एनर्जी है और फेथ जैसे लैंग्वेज आते हैं। राइटर के मुताबिक बुक अपने तीन स्टेप्स प्रोसेस करती है कि भाई वो क्या है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तो इसको भी कोर्ट के कंटेक्स्ट में मेंशन किया गया है और इससे लोग डिफरेंट बैकग्राउंड्स में अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन लेते हैं। कुछ लोग इसे प्योरली स्पिरिचुअल समझते हैं, कुछ लोग इसे साइकोलॉजिकल टूल समझते हैं और कुछ लोग इसे मार्केटिंग समझते हैं। भाई बेस्ट अप्रोच ये होती है कि आप इसे माइंडसेट एंड ग्रैटिट्यूड के लेंस से प्रेजेंट करें, ताकि हर जानने वाले और समझने वाले को ये मैसेज मिल सके। यानी आप किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते कि भाई एक ही तरह से समझ लो चीज़ को। आप बस इतना कर सकते हैं कि अपनी सोच को आप क्लीन कर सकते हैं, अपने गोल्स को क्लियर कर सकते हैं और शुक्र के साथ एक्शन ले सकते हैं, और ये यूनिवर्सल मैसेज बन जाता है। वर्ल्ड इम्पैक्ट का एक पहलू होप इकॉनमी भी है। जब दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, लोग होप बेस्ड कंटेंट की तरफ ज़्यादा जाते हैं। द सीक्रेट ने होप को एक सिस्टम की शक्ल दी, विजुअलाइजेशंस, ग्रैटिट्यूड, एफर्मेशंस। इसलिए क्राइसिस के दिनों में भी लोग इस किताब को रिविजिट करते हैं। भाई ज़रा सोच के देखिए, जब कोई इंसान अपनी जॉब लूज कर दे या कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, तो उस वक्त दिमाग किस कदर नेगेटिव हो जाता है या नेगेटिविटी में चला जाता है। ऐसे मैसेज या ऐसे वक्त में या ऐसे हाल में अगर कोई फ्रेमवर्क मिल जाए जो कहे रुक जाओ, अपनी सोच को रीसेट करो, तो वो एक इमोशनल सपोर्ट बन जाता है, एक दोस्त की तरह, एक पार्टनर की तरह। इसलिए इम्पैक्ट सिर्फ सक्सेस स्टोरीज का ही नहीं बल्कि इमोशनल कोपिंग का भी होता है। हाँ, ये रिप्लेसमेंट नहीं, लेकिन सपोर्ट डेफिनेटली हो सकती है, और इसी सपोर्ट की वजह से इस किताब का नाम बार बार वापस आता है। तो साहब, किताब का कंसेप्ट ये है कि कम्युनिटी सर्कल्स जो हैं उनको भी शेप किया जाए। दुनिया भर में बुक क्लब्स, ऑनलाइन ग्रुप्स और सेमिनार बनाए जाएं जहां लोग अपने एक्सप्रेशंस को शेयर कर सकें। इस शेयरिंग से एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग डेवलप होता है। जब आप दूसरे लोगों को स्ट्रगल और प्रोग्रेस शेयर करते हुए देखते हैं या सुनते हैं, तो आपको लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं। ये फीलिंग बहुत पावरफुल होती है दोस्तों। इसीलिए द सीक्रेट का इम्पैक्ट सिर्फ इंटेलेक्चुअल नहीं, सोशल भी है दोस्तों। लेकिन यहाँ कॉजन की बात है, कॉजन लेना ज़रूरी है या कॉजन आ जाता है कि हर स्टोरी को एब्सोल्यूट ट्रुथ ना समझा जाए। पढ़ने वालों को ये मैसेज मिलना चाहिए कि हर इंसान की जर्नी डिफरेंट होती है। आप अपनी स्पीड से चलें, अपनी कंडीशंस को समझें, यानी हर चीज़ को समझकर, हर चीज़ को समझते हुए कदम उठाएं। इस मैच्योरिटी से कम्युनिटी सपोर्ट हेल्दी रहता है। भाई मनी माइंडसेट की अगर बात करें तो इसके इम्पैक्ट को भी छुआ है इस किताब ने, क्योंकि इस किताब में प्रॉस्पेरिटी पर भी फोकस किया गया है। ऑफिशियल पब्लिशर पेजेस और समरीज ये बताती हैं कि बुक पैसों से, हेल्थ से, रिलेशनशिप से और हैप्पीनेस पर अप्लाई करने की बात करती है। इससे दुनिया में फाइनेंशियल मोटिवेशन कंटेंट का बूम आता है। लोग बजटिंग के साथ साथ पैसों को ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करना सीखते हैं और इन मुख्तलिफ चीज़ों पर बात भी करने लगते हैं। कई लोगों को रियलाइज़ हुआ कि उनके अंदर मैं पैसा डिज़र्व नहीं करता, ये पैसा गंदी चीज़ है, जैसी बिलीव्स बैठी हुई हैं। जब आप बिलीव्स को चैलेंज करते हैं तो आप अर्निंग और सेविंग हैबिट्स को भी इम्प्रूव करते हैं। लेकिन यहाँ दोबारा बैलेंस, यानी कि सिर्फ बिलीव से ही पैसा नहीं आता दोस्तों, स्किल्स से, एफर्ट से, मार्केट नॉलेज से और प्लानिंग भी चाहिए होती है। तो बेस्ट मैसेज यही है कि माइंड सेट प्लस स्किल सेट, ये दोनों मिलकर काम कर

करते हैं कुछ लोग द सीक्रेट बुक को इसलिए पसंद करते हैं कि ये उन्हें होप और कंट्रोल देती है और कुछ लोग इसलिए डिसलाइक करते हैं कि ये लाइफ को ओवर सिंपलीफाई करती है भाई इस बहस का पॉजिटिव आउटकम ये है कि ऑडियंस क्रिटिकल थिंकिंग सीखती है ना तो आज अगर मैं बात करूं इस किताब के हवाले से तो ये कहा जा सकता है कि हर बुक एक लेंस होती है दोस्तों आप डिसाइड करें कि आपको क्या यूजफुल लगता है ना भाई हाईलाइट ये किया गया है कि साइंटिफिक क्लेम्स पर डिबेट करी जाए इसलिए आप सबको मैं ये कहूँगा कि टेक अवेज जो हैं उनको चूज़ कीजिए ग्रैटिट्यूड की हैबिट्स हैं गोल्स की क्लियरिटी हैं नेगेटिव सेल्फ टॉक का कंट्रोल है और डेली एक्शंस वगैरह अगर सिर्फ चार चीज़ों पर भी काम किया जाए तो लाइफ बेहतर हो सकती है आप बेहतर फील कर सकते हैं भाई बिना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के दोस्तों दुनिया में कंटेंट क्रिएशन पर भी द सीक्रेट का इंपैक्ट आया है आज आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अगर देखें तो यहाँ पर कितनी टिप्स देखने के लिए मिलती हैं अफर्मेशन ऑडियोज देखें विजन बोर्ड ट्यूटोरियल्स देखें ये सब कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं और इस ट्रेंड का बेनिफिट ये है कि पॉजिटिविटी शेयर होती है लोग इंस्पायर होते हैं लेकिन नुकसान ये हो सकता है कि कंटेंट ख़राब भी हो जाता है कभी कभार आपको दूसरी तरफ भी ले जाता है सिर्फ कोट्स या कहना चाहिए रियल वर्क मिसिंग होना ही इसमें परेशानी वाली बात नहीं होती बहकना भी इसका एक मसला होता है इसलिए एडवांटेज ये है कि आप डेप्थ तक जा सकते हैं और समझ सकते हैं और ये भी कि हर जगह प्रोसेस समझा जा सकता है ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या है ग्रेटिट्यूड का टाइम क्या है ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिकल स्टेप क्या है ये सारी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं सीखी जा सकती हैं कि उनको फोकस किया जाए जो चीज़ परफेक्ट हो लाइफ के अंदर पर ये भी नहीं कि सिर्फ इन पे ही हम डिपेंड करें बल्कि बेटर नेक्स्ट स्टेप पर हम बिलीव करें और ये रियलिस्टिक पॉजिटिविटी है तो दोस्तों अब इम्पैक्ट ऑन यूथ की बात करते हैं जो युवा पीढ़ी पे जवान पीढ़ी पे जो इस किताब को पढ़ते हैं उनका क्या असर पड़ा है यंग जनरेशन को इस बुक का आइडिया इसलिए अपील करता है कि ये उन्हें ख्वाब और कॉन्फिडेंस देती है लेकिन यूथ के लिए गाइडेंस ज़रूरी भी होती है भाई सिर्फ विजुअल्स ही ना करें या विजुअलाइज ही ना करें स्किल बिल्ड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप स्टूडेंट हैं तो पॉजिटिविटी के साथ स्टडी प्लान भी हो अगर आप जॉब सीकर हैं तो अफर्मेशंस के साथ सीवी इंप्रूवमेंट हो नेटवर्किंग हो और इंटरव्यू प्रैक्टिस भी होनी चाहिए इसी तरह अगर आप फिटनेस चाहते हैं तो हेल्दी ईटिंग और एक्सरसाइज का रूटीन भी हो इस तरह इस किताब का मैसेज युवा पीढ़ी को कंफ्यूज नहीं करता बल्कि मोटिवेट करता है ग्लोबल इंपैक्ट का बेस्ट वर्जन वही है जहां सेल्फ हेल्प को प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कनेक्ट किया जाए और ये एक ब्रिज का काम करता है दो लोगों के बीच में किताब और उसके पढ़ने वाले के दरमियान और किताब का इम्पैक्ट सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस पर भी हुआ है लोग अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखे हैं अब आप सोचें दिन भर में हम कितनी बार अपने आप को नेगेटिव लेबल कर देते हैं मैं स्लो हूँ मैं लकी हूँ मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ वगैरह वगैरह भाई जब आप इस पैटर्न को पकड़ लेते हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी को रीराइट कर सकते हैं मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ मैं प्रैक्टिस से बेहतर हो सकता हूँ दोस्तों ये आइडेंटिटी शिफ्ट दुनिया भर में थेरेपी और कोचिंग के थ्रू भी डिस्कस होती है द सीक्रेट ने इस डिस्कशन को मेन स्ट्रीम लैंग्वेज दी यानी आप अपने माइंड के नरेटर को चेंज कर सकते हैं और जब नरेटर चेंज होता है तो इमोशंस चेंज होते हैं और इमोशंस चेंज होते हैं तो डिसीजंस चेंज होते हैं और ये चेन इफेक्ट वर्ल्ड इम्पैक्ट का हिडन पार्ट है दोस्तों एक और पहलू ग्रेटिट्यूड कल्चर का भी है ऑफिशियल पेजेस पर भी द सीक्रेट की इंटेंशन यही बताई जाती है कि जॉय वेलबींग अबंडेंस की तरफ गाइड करें यानी ग्रेटिट्यूड की पावर इसलिए स्ट्रांग होती है कि यह आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाती है जब आप शुक्र करते हैं आपका दिमाग स्कार्सिटी से निकल कर अबंडेंस की तरफ जाता है प्रैक्टिकल लेवल पर आप छोटी चीजों का शुक्र करते हैं सेहत फैमिली जॉब सेफ्टी रूफ फूड हर एक चीज इससे माइंड काम होता है स्ट्रेस हार्मोन

हार्मोन्स कम होते हैं और डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है। भाई आज दुनिया में ग्रेटिट्यूड जर्नल्स का ट्रेंड इसलिए है कि लोग अपनी अटेंशन को दुनिया भर में ट्रेन करना चाहते हैं और इसी की वजह से ये बुक द सीक्रेट का लॉन्ग टर्म कल्चरल फुटप्रिंट है। अब यहाँ से हम थोड़ा हाउ सोसाइटी कंज्यूम होप पर बात कर लेते हैं। जब कोई बुक सिंपल प्रॉमिस करती है दोस्तों तो लोग जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए किताब को कभी कभी तो टू गुड टू बी ट्रू भी कहा गया है। लेकिन अगर आप मैसेज को मैच्योर लेंस से देखें तो ये प्रॉमिस से ज़्यादा प्रैक्टिस बन सकता है ना। अब हम अगर अपनी और आपकी ही बात करें तो आप रिजल्ट को कंट्रोल नहीं करते लेकिन प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। आप अपनी इंटेंशन, एफर्ट्स, हैबिट्स कंट्रोल करते हैं। रिजल्ट अल्लाह की मर्जी, सर्कमस्टांसेस और टाइम पर डिपेंड कर सकता है। इसलिए बेस्ट इंटरप्रिटेशन ये है, पॉजिटिव माइंडसेट से आप अपना बेस्ट वर्जन एक्टिवेट करते हैं और जब आप बेस्ट वर्जन में होते हैं तो आप अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा नोटिस करते हैं और बेहतर डिसीजंस लेते हैं और ये रियलिस्टिक सोशल मैसेज बन जाता है। दुनिया में इस किताब ने एक और चेंज ये किया है कि लोग कंप्लेंट डिटॉक्स की बात करने लगे हैं, यानी दिन भर में कितनी कंप्लेंट्स हम बोलते हैं और वो हमारे मूड को कितना डाउन करती हैं। जब आप कंप्लेंट कम करते हैं आपका मूड नेचुरली अपलिफ्ट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स डिस्कस ना करें, मतलब ये है कि प्रॉब्लम डिस्कस करते हुए सॉल्यूशंस भी ढूंढें। भाई एक प्रैक्टिस ये है कि आप ये शुरू करें कि मैं आज एक दिन में 10 कंप्लेंट्स काउंट करूंगा और उनको 10 सॉल्यूशंस में कन्वर्ट करूंगा। ये एक्सरसाइज पढ़ने वालों को एम्पावर करती है। भाई इस किताब का ग्लोबल इम्पैक्ट का प्रैक्टिकल फेस ये है कि लैंग्वेज और फोकस को रीट्रेन करा जाए। आप अपने घर, ऑफिस, दोस्तों के सर्किल में भी इस अप्रोच से पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं। इस बुक का इम्पैक्ट फेथ इन पॉसिबिलिटीज के कल्चर को भी स्ट्रॉन्ग करता है। आज दुनिया में इनोवेशन और स्टार्टअप्स का जमाना है दोस्तों, पॉसिबिलिटी माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फाउंडर पहले ही कह दे कि नहीं होगा तो प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं होता। इस किताब के जरिए पॉसिबिलिटी को इमोशनली अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, लेकिन रियल दुनिया में पॉसिबिलिटी को स्ट्रक्चर चाहिए। रिसर्च है, प्लानिंग है, टेस्टिंग है, फेलियर्स हैं, लर्निंग है। तो इसीलिए द सीक्रेट का बेस्ट यूज एंटरप्रेन्योर्स और क्रिएटर्स के लिए ये हो सकता है कि वो अपनी फेयर बेस्ड थिंकिंग को रिड्यूस करें और एक्शन बेस्ड थिंकिंग बढ़ाएं। भाई आप अपने जहन को Why not का सवाल सिखाइए, फिर how का प्लान बनाइए। ये कॉम्बिनेशन वर्ल्ड इम्पैक्ट को यूजफुल बनाता है, वरना सिर्फ ख्वाब ही ख्वाब रह जाते हैं। तो दोस्तों आप चलिए लॉन्ग रनिंग बेस्ट सेलर के हवाले से बात करें या इसके वाली बात करें तो इम्पैक्ट के तौर पर देखें। पब्लिशर सोर्सेज और ऑथर के ऑफिशियल पेजेस ये शो करते हैं कि द सीक्रेट लॉन्ग लास्टिंग बेस्ट सेलर और ग्लोबल इम्पैक्ट का पार्ट बन चुकी है। ऐसी बुक्स का इम्पैक्ट इसलिए ड्यूरेबल होता है कि हर जनरेशन को एक सिंपल मैसेज दे देती है। जिस तरह कुछ क्लासिक बुक्स हर दौर में रेलिवेंट रहती हैं, इसी तरह ये बुक भी या इसका मैसेज भी लोग अपने फेस के हिसाब से इंटरप्रेट कर लेते हैं। कोई इसे करियर के लिए यूज करता है, कोई हीलिंग के लिए, कोई रिलेशनशिप के लिए, वगैरह वगैरह। और ये फ्लेक्सिबिलिटी ही इसका राज है। और जब कोई मैसेज फ्लेक्सिबल हो तो वो कल्चर में घुल मिल जाता है और फ्रेजेस, हैबिट्स और रिचुअल्स की शक्ल ले लेता है। दोस्तों इस प्रोग्राम के एंड की तरफ आते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि द सीक्रेट का वर्ल्ड इम्पैक्ट तब सबसे हेल्दी होता है जब हम इसे टूल बॉक्स समझें, फाइनल ट्रूथ नहीं। टूल बॉक्स में से आपको जो टूल सूट करता है आप यूज करिए। मिसाल के तौर पर ग्रेजुएट्यूड का टूल है, विजुअलाइजेशन का टूल है, सेल्फ टॉक का टूल है और वहीं क्लियरिटी ऑफ गोल्स का टूल है। और साथ में आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करें, मेहनत, अल्लाह सुबहाना व ताला से दुआ, सब्र और कंसिस्टेंसी दोस्तों, क्योंकि लाइफ एक रात में चेंज नहीं होती, लाइफ छोटी छोटी चेंजेस से चेंज होती है। और जब आप छोटी तब्दीली को सेलिब्रेट करते हैं तब आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होता है। दोस्तों अगर आप चाहें तो आज से इस किताब का एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज को ले सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, जो दुनिया

0: के लोग यूज कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड लिस्ट को अगर देखें आप रोज सिर्फ पांच चीजें लिख लें जिनके लिए आप शुक्र अदा करें यह चीज बहुत सिंपल हो सकती है आज वक्त पर उठ जाना घर का सुकून किसी दोस्त को मैसेज सेहत का बेहतर फील करना तिलावत करना इबादत करना काम का एक टास्क कंप्लीट करना वगैरह वगैरह इस लिस्ट का मकसद ये नहीं कि आप प्रॉब्लम्स को डिनाई करें मकसद ये है कि आप अपनी अटेंशंस को बैलेंस करें क्योंकि अटेंशंस जिस तरफ जाती हैं एनर्जी भी उधर जाती है जब आप शुक्र को हैबिट बना लेते हैं आपका माइंड रेजिलियंस बिल्ड करता है और रेजिलियंस ही वो चीज है जो दुनिया में हर सक्सेसफुल इंसान को अलग बनाती है ये छोटा सा प्रिंसिपल आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ देगा और जब ग्रोथ आती है दोस्तों तब जिंदगी में होप नेचुरली बढ़ती है और होप ही वो रोशनी है जो अंधेरे से बाहर निकालती है या बाहर का रास्ता दिखाती है तो दोस्तों आज हमने इस किताब के जरिए ये देखा कि किस तरीके से दुनिया भर पे इसका इम्पैक्ट पड़ा जो बैलेंस्ड है रियलिस्टिक है और प्रैक्टिकल है पूरे तरीके से इस किताब ने दुनिया को एक सिंपल मैसेज दिया कि आपकी सोच आपका फोकस और आपका शुक्र आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेप करता है साथ ही इस पर डिबेट भी रही और ये भी जरूरी है कि हम ब्लाइंड प्रोमिसेस के बजाय मैच्योर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें अगर आप इस प्रोग्राम से सिर्फ एक चीज लेकर जा रहे हैं तो वो ये हो कि आज से अपनी लैंग्वेज और अपनी अटेंशन को थोड़ा सा बेहतर कर दीजिए शुक्र क्लियरिटी और छोटे एक्शन बस ये तीन चीजें मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस प्रोग्राम में आपको बहुत कुछ महसूस हुआ होगा और अपनी लाइफ में एक नया स्टेप लेने में ये प्रोग्राम आपको मदद करेगा अल्लाह सुभान व तआला आपको खुश रखे अपनी हिफाजत में रखे और आपके आज के दिन को और मजीद जिंदगी को और भी बेहतर बनाए तो दोस्तों इसी के साथ सरवर मिर्जा और प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शकीब अहमद जी को इजाजत दीजिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी
1: अरे मौसी जी कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो FM 107 दिल से देसी दिल से देसी
2: Excuse me. अच्छा यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है
3: आ, उसके लिए तो
2: वैसे कतर की हिस्टोरिकल जगह जानने के लिए कहाँ जाना सही रहेगा
3: वैसे वो तो देखो
2: इवेंट के लिए ये मुल्क नया है क्या करें क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है
3: एक मिनट रुको ना मिलेगी पूरी जानकारी मिलेगी FM 107 पे प्रोग्राम कतर 101 RJ फजील के साथ जानिए लाइफस्टाइल ट्रेडिशन हिस्ट्री और कल्चर के बारे में हर इतवार सुबह 10 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
0: दोस्तों ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 55 के क्लॉज नंबर 3 के तहत गाड़ी चलाते वक्त 10 साल की उम्र से कम के बच्चों को आगे वाली पैसेंजर सीट पे बैठालने की इजाजत नहीं है बच्चों को आगे वाली सीट पे बैठालने से आप ड्राइविंग करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं बच्चों को गाड़ी की बैक सीट पे बैठालने से आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत में मदद मिलती है FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है
4: हर इंसान के पीछे एक कहानी है एक जज्बा है एक ख्वाब है जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं एक नई रूहानी मुलाकात एक नया जज्बा एक नई सोच के साथ सुनिए प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल हर संडे रात 8 बजे से RJ सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
5: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कोई ऐसी किताब है जो किताबों को समझने में मदद करे, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो मस्ती मजाक में ही सही लेकिन लाइफ के लेसन्स भी दे पाए।
2: कसके जूता कसके बेल्ट खोस के अंदर अपनी शर्ट मंजिल को चली सवारी।
1: वेल, ये कोई सुपरफिशियल एड नहीं है, सच्चाई है, क्योंकि FM 107 लेकर आया है एक खास शो फॉर स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स गाइड, द स्टूडेंट्स गाइड, द स्टूडेंट्स गाइड एंड बी द गाइडिंग लाइट फॉर स्टूडेंट्स।
3: अस्सलामुअलैकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफ एम 107 पे। आप मुझे कभी ये बोलते भी नहीं सुनेंगे कि दोस्तों अस्सलामुअलैकुम, चूंकि हम दोस्ती का अलग मुद्दा है, अलग टॉपिक है, अलग जगह है, अलग टाइम है, लेकिन आज जो है आज स्टूडेंट्स गाइड में दोस्ती की बात होगी। ये मेन पिलर है भाई, मैं ज़्यादा इसके आई विल नॉट रन अराउंड द बुशेस, देन मैं कुछ भूमिका नहीं बांधूंगा। सिंपल सी बात है, आज स्टूडेंट्स गाइड में स्टूडेंट्स की जिंदगी के तमाम पहलू हमने छू लिए, करियर वाइज, पढ़ाई के हिसाब से, लेकिन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है और वो है दोस्ती। तो आज इस बारे में बात करेंगे। Meanwhile, we talk about it. आप जरूर अपने दोस्तों के बारे में मुझे बताइए, आपके कौन से बहुत अजीज दोस्त है, कौन से अजीज दोस्त बनने के प्रोसेस में है और कौन से अजीज दोस्त जो लग रहे थे वो है ही नहीं। तो WhatsApp 666-22107, 666-22107 and also social media handles FM107 Qatar, FM107 Qatar. तो जरा शुरू करते हैं इसके बारे में। देखो स्टूडेंट्स गाइड मतलब समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट्स के लिए कुछ होगा भाई इसमें, जिन्होंने पहली मरतबा सुनना भी शुरू किया है। है, ऑफ कोर्स है, इसमें हमेशा मैं एक लाइन कहता हूँ, इट माइट साउंड क्लीशे टू अ लॉट ऑफ पीपल, लेकिन ये ज्ञान नहीं है, सिंपल। ये आपका एक कंफर्ट जोन होना चाहिए जहाँ पे आके आपको कोई वो बात बताए जो आप खुद से करते रहते हैं। इट्स जस्ट दैट मैं थोड़ा सा उसे इलेबोरेट या एक्सपेंड कर देता हूँ, लगता है कि चलो मेरा कोई दोस्त मुझसे बात कर रहा है जिसके सामने मैं आराम से कुछ भी बोल सकता हूँ। तो आज वही दोस्त आपसे दोस्ती के बारे में बात करना चाहता है, दैट इज व्हाट वी विल टॉक अबाउट। पढ़ाई लिखाई के बारे में, करियर के बारे में हम बात करते रहते हैं और करेंगे आने वाले वक्त में, लेकिन आज जो स्टूडेंट लाइफ को आसान बनाती है चीज, उसके बारे में बात होगी। वो चीज जो आपको आपके स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर बाहर तक काम आ रही होती है, और वही है दोस्ती, वो रिश्ता है भाई जो हम खुद चूज करते हैं। कभी दोस्त हमें हंसाते हैं, कभी मुश्किल वक्त में सहारा दे देते हैं, ये बातें तो आपने सुनी है, पर आपने कभी इस तरीके से सोचा है कि दोस्त एक टाइम पे सब कुछ होता है आपके लिए, है ना? जो बातें आप माँ बाप से नहीं कह सकते वो आप दोस्त से कह देते हैं, जो बातें आप भाई बहन से नहीं कह पाते वो अपने दोस्त से कह देते हैं, जो बातें अपने टीचर्स या किसी और से, इवन योर पार्टनर्स आगे जाके आप उनसे नहीं कह पाएंगे, वो अपने दोस्तों से कह पाएंगे। दोस्त बहुत सारे किरदार निभाते हैं जिंदगी में, और ये सारे ही जो

मैंने बताए हैं रिलेशंस, ये सारे के सारे कूट कूट के में भरे होते हैं, बट यू नीड टू फाइंड देम. एंड क्या होता है कि दोस्ती में अगर आपने ज्यादा दिमाग लगाया तो भी दिक्कत है, और पूरी तरह से दिल लगा लिया तो भी दिक्कत है. दैट्स व्हाई कहते हैं कि दोस्ती जो होती है ना, आप चूज करते हैं. योर सर्कल मींस अ लॉट. आपकी सोहबत जो है वो सबसे जरूरी है. आप किन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं वो सारी चीजें डिसाइड करेंगे. तो अभी जो स्कूल में है, जो कॉलेजेस में है, मैं उन्हें इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ कि दोस्ती तुम्हारी गलत है, बदल दो. नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि सारे के सारे तुम्हारे ग्रुप में ना एकदम शांत बच्चे, बिल्कुल जो शरारत नहीं करते वही होने चाहिए. नहीं नहीं नहीं नहीं, ग्रुप में यू नीड समबडी. थोड़ा क्योटिक होना चाहिए, एक थोड़ा साइलेंट होना चाहिए, एक थोड़ा सा क्रेजी होना चाहिए. हर किस्म की पब्लिक आपकी ग्रुप में होनी चाहिए. अब जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, आप उन चेहरों को सोचिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कि आपके ग्रुप में वो क्रेजी कौन है ना, जो ज़्यादा सोचता नहीं, वो कौन है जो आपका सबसे साइलेंट दोस्त है, ग्रुप में खड़ा रहता है चुपचाप, और वो कौन है जो बहुत बातों नहीं है, तो कौन है जो बातें बनाना जानता है. एंड यू विल फाइंड दीज फेसेस अराउंड यू. मगर आज इनकी इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है स्कूल में, कॉलेज में, अच्छे दोस्तों की पहचान क्या है, टॉक्सिक जो टॉक्सिक लोग हैं फ्रेंडशिप उनसे बचिए, और हमारे जो डिस्कशन पॉइंट्स हैं, डिस्कशन कह रहा हूँ डिस्कशन करने के लिए, वो उनमें नंबर वन है कि दोस्ती किस तरीके से इंसान की पर्सनैलिटी बनाती है. जिनके बीच आप उठते बैठते हैं अब वही हो जाते हैं, आप चाहें या ना चाहें. आप ये बोल सकते हैं कि मैं उनके बीच बैठता हूं पर मैं उनको नहीं, मैं उनसे इन्फ्लुएंस नहीं हूं, बट समवेयर डाउन द लाइन आपका दिमाग वहीं जाएगा जहां आपका ग्रुप आपको ले जाएगा, आप चाहें या ना चाहें. दैट्स अ फैक्ट. एंड स्टूडेंट लाइफ में लोनलीनेस कम होती है भाई. हम उनमें से रहे, बारिश हो रही है लेकिन दोस्त ने कह दिया कि भाई कल मैं स्कूल आ रहा हूं, बारिश हो तूफान आए तो हम जाएंगे, भले पूरे क्लास में तीन बच्चाए हो और तीन दोस्त हम ही हो, तो वी विल एंजॉय इट टू द फुलेस्ट. मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग बोर हैं जो कहते हैं नहीं नहीं सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, स्कूल टाइम वेरी क्रिटिकल. इट इज क्रिटिकल, बट आपके पास क्या रह जाएगा बताने के लिए, सोचने के लिए आगे जाके, जब आप ऐसे दोस्ती नहीं बनाएंगे जो थोड़े से क्रेजी हो. थोड़े से दिमाग के हिले हुए दोस्त भी बहुत जरूरी है जिंदगी में. ग्रुप स्टडीज वाले तो है ही दोस्त आपके, है ना, जिनके साथ आप बैठ के डिस्कशन करते हैं, बताते हैं उनको, उनसे पूछते हैं, टीम वर्क में काम आते हैं. अरे ये दोस्त जो होते हैं मुंह पे नहीं कहते लेकिन ये अंदर से बहुत इमोशनली अटैच होते हैं आपसे, एंड आप भी नहीं बोल रहे होते बिकॉज यू नो इसमें कोई वो टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है. यू डोंट हैव टू एक्सप्रेस इट एवरी सिंगल डे कि भाई यार तू मेरा दोस्त है, यार कितना पक्का दोस्त है. यही तो खास बात है ना दोस्ती की, कोई एक्सप्रेशन नहीं, नथिंग नीडेड. आप बस साथ में चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, यही दोस्ती है. अब आपके हिसाब से अच्छा दोस्त कौन होता है ये आप डिसाइड करके मुझे बता सकते हैं, है ना, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे. पर मैसेजेस करता रहेगा 666-22-107 पर. एंड अब जरा स्कूल में दोस्ती के रोल पे बात करते हैं. कुछ भी हो जाए, आप कितने भी आगे बढ़ जाएं, जो भी कॉलेजेस में है ना, मैं उनसे बात कर रहा हूं जो भी स्कूल में, आप जो स्कूल में हैं बेटा, आप उनसे बात करना जो कॉलेजेस में पहुंच चुके हैं. दे विल रिमेंबर देयर फ्रेंड्स जो उनसे स्कूल में मिले थे. तो आप अगर चाहते हैं कि आपके स्कूल वाले दोस्त वो आपको याद रहे, एंड यू हैव स्ट्रॉन्ग मेमोरीज विद देम, जो आपकी अपनी मेमोरीज हैं जो शायद दुनिया में कोई समझ भी नहीं पाएगा, जान भी नहीं पाएगा, योर सीक्रेट जोक्स, है ना, योर सीक्रेट थिंग्स, योर नोसेंस जो आपने इधर उधर फैलाई है, जो रायता आप सब मिलके फैलाते हैं, वो बहुत जरूरी है जिंदगी में, है ना. पढ़ाई के अलावा ये सब भी जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं है, वरना आप रोबोट हैं बिना दोस्ती के. सो मेक फ्रेंडशिप एंड मेक इट स्ट्रॉन्गर. फाइंड पीपल जो आपकी, जिनसे आपकी वाइब मैच होती है. जरूरी नहीं है कि आपकी और उनकी शख्सियत सेम हो, नॉट नेसेसरी. अरे मेरा दोस्त टॉपर था, मैं टॉपर नहीं था भाई, हमारी शख्सियत बिल्कुल ही अलग है, पर मैंने उसको चुना, उसने मुझे चुना, है ना, क्योंकि एक कंफर्ट जोन हो जाता है कि आप अपना भाई पढ़ाई में एक नंबर है, भाई को कोई अगर हाथ लगाएगा तो छोड़ेंगे नहीं, तो उस टाइप की दोस्ती बिल्डअप होती है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट. तो ये दोस्ती आपको स्कूल में मिलती है, खजाना है, है ना, पढ़ाई में मदद मिलती है. बहुत सारे अच्छे दोस्त होते हैं जो आपके होमवर्क में आपकी मदद करते हैं. हमारे टाइम पे फोटोस्टेट कराने के लिए दोस्त को ढूंढना नहीं पड़ता था, है ना, यू नो वेयर टू गो. आजकल के बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़हीन हैं, उनको तो फोटोस्टेट की जरूरत नहीं पड़ती. आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ हाउ एंड व्हाई फ्रेंडशिप इज इंपॉर्टेंट. नोट्स शेयर करना, ये भी दोस्ती है. कई दोस्ती बहुत सिंपल सी होती है और वो इतनी खिल के जो है इतनी बड़ी हो जाती है जिंदगी में.
एग्जाम्स की प्रिपरेशन, जब आप इतने स्ट्रेस में होते हैं, कॉल आती है, दोस्त बोलता है भाई अभी तो मैंने इतना ही पढ़ा यार, तू पहुंच गया पांचवें, या तुम पहुंच गए यार पांचवें चैप्टर पे, ये कैसी बात हुई, देन यू हैव

0: वेरी फन कॉम्पिटिशन एंड यू लाइक ठीक है मेरा दोस्त पांच पर है या तीन पर है ठीक है वी आर जस्ट डूइंग दिस टूगेदर देर इज नो कॉम्पिटिशन कभी कभार इन फैक्ट द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट इज किसी और के लिए चेयर करने की जो फीलिंग होती है किसी और के लिए ये बड़ी खास होती है ये आपको बड़े हो के अचानक से नहीं आएगी आपके अंदर नहीं आएगी यू विल बी मोर डिप्लोमेटिक और जब दोस्ती खास होती है उस दोस्त के लिए चेयर करना यू वॉन्ट हिम और हर टू विन ये जो फीलिंग है ना बॉस ये आपको स्कूल में मिलेगी ये छोड़ना नहीं हर तरीके के दोस्त बनाना है ना एंड कॉन्फिडेंस यही लोग बिल्ड करेंगे आपका हो सकता है कि आपके पांच दोस्तों का ग्रुप है चार उनमें से एकदम शांत है लेकिन जो पांचवा है ना उसकी बैटरी फुल चार्ज रहती है डबल ए बैटरी पर है वो और वो जो है रुकने का नाम नहीं लेगा या नाम नहीं लेगी है ना तो वो उन चारों में कॉन्फिडेंस पैदा करती है या करता है जो उसके साथ में दैट इज वाई यू नीड डिफरेंट फ्रेंडशिप इन अ सर्कल है ना कोई एक होना चाहिए थोड़ा म्यूजिशियन टाइप का कोई एक गाने वाला कोई एक बढ़िया थोड़ा सा लाउड है कोई बड़ा शांत है ये वैरायटी जो है ना आपको क्योंकि आने वाली दुनिया में मिलेगी जब आप स्कूल से निकलेंगे कॉलेज से निकलेंगे जॉब्स में जाएंगे देन यू डोंट हैव अ चॉइस देन यू हैव टू डील विद एवरी पर्सन फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं है कोई कहने का हक नहीं है बट अगर आप शुरुआत में ही इन सारे कैरेक्टर से मिल लें उनसे दोस्ती कर लें तो दुनिया बहुत आसान लगती है बहुत आसान लगती है आपका स्टेज फेयर होगा ना ये चुटकियों में गायब हो जाएगा चुटकियों आप स्कूल में उनके साथ पार्टिसिपेट करें ना गो आउट आपको कोई दोस्त पार्टिसिपेट कर रहा है तो पूछो यार मैं भी पार्टिसिपेट करूं क्या इवन इफ यू डोंट नो द थिंग आप पार्टिसिपेशन दिखाएं स्पोर्ट्स में जाएं एक्टिविटीज में जाएं आपको इंकरेजमेंट करने वाला वही दोस्त होगा है ना लंच शेयरिंग कितनी खूबसूरत चीज है अपने अपने घरों से हम लेके आते हैं ये तो बड़े लोगों ने बना दीजिए पॉटलक करेंगे पॉटलक बच्चे बचपन से और हम लोग सालों से पॉटलक ही तो कर रहे हैं घर के वो नूडल जो बिल्कुल लंच बॉक्स का शेप ले चुके होते हैं या वो पराठे जिन्हें गर्म करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे साथ मेरा दोस्त खा रहा है और हमें नहीं जरूरत है किसी अवन ओवन की क्योंकि वो जो शेयरिंग है दैट इज द बॉन्ड वी शेयर और ये बॉन्ड जो है ना ये ही है वो दोस्ती जो आपको स्कूल में कॉलेज में आपकी जिंदगी को आसान बनाती है इनके बिना आप क्या कर लेंगे खाली कुछ नहीं स्कूल में कॉलेज में तो दोस्त चाहिए ही चाहिए यही तो है जो आपको घर से थोड़ा बाहर निकालते हैं चलाया थोड़ा सा ट्रिप्स इनके साथ होती है गेम्स इनके साथ होते हैं एंड आपकी क्लासरूम के मोमेंट्स जो आगे जाके आप चेरिश करते हैं अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ एक सिंपल साइकोलॉजी है आपको अगर लगता है ना कि सिर्फ किस्से सुनाने के लिए मुझे अपने क्लास में कुछ शरारती बच्चों से मेरी दोस्ती हो जाए तो मजा आएगा नहीं इट इज नॉट अबाउट गेटिंग फ्रेंडशिप फ्रेंड्स विद पीपल जो थोड़े शरारती हैं सिर्फ इसलिए कि आपको आगे जाके किस्से चाहिए नहीं आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है आपका जो फेयर होता है वो दिल में कहीं ना कहीं दुनिया से डील करने का वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है ऑफकोर्स बुरी संगत से दूर है लेकिन इतनी जल्दी जज ना करें किसी क्योंकि हो सकता है आपका एक दोस्त जो है वो अलग भेजेगा डजंट मीन ही इज रॉन्ग है ना कुछ लोग आपके ग्रुप में होंगे जो अलग सोचते हैं आपसे अगर वो थोड़ा सा अलग सोचते हैं ओपिनियन रखते हैं अरे बहुत अच्छी बात है डिफरेंट ओपिनियन होने चाहिए आपके फ्रेंड सर्कल में हर कोई आपसे एग्री करे जरूरी नहीं है और अच्छी बात भी नहीं है ना नो मैटर व्हाट आगे जाके आपको यस मैन तो नहीं चाहिए तो मॉरल पॉइंट क्या है मॉरल पॉइंट ये कि स्कूल के दोस्त आपकी जिंदगी की मेमोरीज का बेस बनाते हैं इनका होना बहुत जरूरी है बॉटम लाइन खत्म बात मैं ये कहना चाह रहा हूं ठीक है आप जरा कॉलेज वालों से बात करूंगा मैं जो कॉलेज में आ चुके हैं ये मेरी काफी सारी बातें अभी तक समझ गए होंगे जो बहुत गहरी करी है और बड़े लोग तो मुस्कुरा रहे होंगे जो अभी नौकरियों पर देखो कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ से थोड़ी नहीं बहुत डिफरेंट होती है यहाँ इंडिपेंडेंस होता है एक किस्म का साथ में प्रेशर भी होता है नया एनवायरमेंट होता है हो सकता है कि आपके जो दो स्कूल में थे वो सेम कॉलेज में ना हो अगर ऐसा लग बाय चांस हो गया है तो आपकी लॉटरी है भाई साहब और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर वही नई चेहरे नया एनवायरनमेंट अब इस नए एनवायरनमेंट इस नए चेहरों से डील करने के लिए क्या चाहिए अरे वही स्कूल वाली दोस्ती वही लोग तो काम आएंगे अगर वो आपके साथ जुड़े हुए हैं ना कॉलेज के नए दोस्त नए एनवायरनमेंट हलवा कुछ नहीं लगेगा कितना भी नया कल्चर हो कितने भी एडजस्टमेंट इश्यूज हो एवरीथिंग विल बी फाइन इन कॉलेजेस अगर आपके स्कूल वाले दोस्त आपसे जुड़े हुए हैं और अगर इनमें से स्कूल वालों में से किसी भी दोस्त में से एक भी आपकी कॉलेज में आ गया आहा फिर तो आपका ये मोहल्ला यूं समझिए कॉलेज ही आपका है और इसके फायदे बहुत होते हैं जब कॉलेज में गहरी दोस्ती होती है करियर गाइडेंस मिलती है भाई या बहन है ना, और स्पेशली जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आप मेल फीमेल हो, आप डजंट मैटर, ये इसमें जेंडर बायसनेस है ही नहीं. अगर आपकी फ्रेंड्स या आपके फ्रेंड अच्छे हैं, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, करियर तक, करियर तक. और एंड ऑफ द डे आपको ग्रुप प्रोजेक्ट्स तो मिलेंगे, उसमें क्या बनना चाहते हैं आप, वो बोरिंग बच्चा जिससे कोई बात नहीं करता. आई एम सो सॉरी, ये कड़वे शब्द हैं लेकिन ये सच है, ये सच है. और प्लीज मैं जो नए नए माँ बाप बने, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको. अपने बच्चों को ना ऐसी बिल्ड कीजिएगा कि वो ना ऐसा ना हो कि गुमसुम सा हो जाए. कई लोग इस बारे में भी तारीफ करते हैं, हमारा बच्चा तो बड़ा चुप रहता है. ये ज्यादा अच्छी बात नहीं है, ये ज्यादा अच्छी बात नहीं है. प्लीज मेक हिम और हर टॉक, है ना, ये जरूरी है. पर्सनैलिटी ट्रेड बचपन में अच्छा लगता है कि बच्चा शांत है, बड़े होकर शांति बहुत तकलीफ भी दे सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इमोशनल सपोर्ट अगर इन लोगों को कोई देगा बाहर ना, घर वालों के अलावा, और मुझे बताने की जरूरत क्या है, हम सब तो जानते हैं ना, हम लोग स्कूल में रहे, कॉलेज में रहे, एक मोमेंट लाइफ में ऐसा आता है जब हमें जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है वो ना तो घर वाले दे सकते, है ना, वो ना कहीं और से मिलेगा. माँ बाप से अगर आप फ्रेंक हैं, आज के बच्चे होते हैं तो बात दूसरी, वरना दोस्त ही है ना, दोस्त से तो आप शेयर करते हैं ना अपने बहुत सारे प्रेशर्स, वो राज वही लोग तो जानते हैं. और इसमें काफी सारी चीजें पैदा होती हैं, कॉलेजेस में स्पेशली, इसमें आपको बच के रहना है. बिकॉज जितनी अच्छी और गहरी दोस्ती कॉलेजेस में हो सकती है, आफ्टर स्कूल ऑफकोर्स, आफ्टर बिल्डिंग द बेस, उसमें प्रॉब्लम है कॉम्पिटिशन की. कोई कितना, जैसे हम कहते हैं ना हमारी भाषा में, कौन कितना गुन्ना है कौन कितना तेज है, कोई जेलस है, कोई फेक है. यहां पे जाके आपको फेक फ्रेंडशिप्स नजर आना शुरू हो जाएंगी.
1: कोई ऐसी किताब है जो किताबों को समझने में मदद करे, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो मस्ती मजाक में ही सही लेकिन लाइफ के लेसन्स भी दे पाए.
2: कस के जूता, कस के बेल्ट, खौस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी.
1: well, ये कोई सुपरफिशियल एड नहीं है, सच्चाई है, क्योंकि FM 107 लेकर आया है एक खास शो फॉर स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स गाइड, द स्टूडेंट्स गाइड.
0: वो दुनिया का असली चेहरा जिसका सामना आपको

मत करना। चलो इस एडवाइस को हटा दे। एक जो एडवाइस है कॉलेज टाइम के लिए, अपने पर्सनल सीक्रेट्स हर किसी से शेयर मत करना। आपको लगेगा कि कॉलेज का सबसे कूल बच्चा बनना है मुझे, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। उसमें होगा क्या कि यू विल हैव 10-15 फ्रेंड्स टुगेदर, लेकिन सच सुनोगी, आपको चाहिए सिर्फ 3 या 4। ये जो आपने इतना बड़ा कुनबा बना रखा है ना, वो आपको हाइप जरूर देंगे बट मजा नहीं आएगा। ये हाइप जब डेड होगी ना, मैं आपकी भाषा बात कर रहा हूँ, जेंजी भाषा में हाइप, यू नीड हाइप्स, पीपल लाइक दैट व्हेन यू आर फेमस इन कॉलेजेस। मगर जब ये हाइप डाई होती है ना ब्रो, दिक्कत हो जाती है। तो अपने ना पर्सनल सीक्रेट्स कोई गिने चुने 3 या 2 रखना। ये जो 2-3 रहेंगे ना तुम्हारे साथ, ये बहुत काम आने वाले हैं और आप भी इनके काम आइए। इट गोज बोथ वेज। तो पॉजिटिव कंपनीज जो आपको चूज करनी है, वो ऑटोमेटिकली कॉलेज में आप आइडेंटिफाई कर लेंगे और आपको मिल जाए। अब जरा पहचान कर लेते, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप मुझे भी क्रिटिसाइज कर रहे होंगे कि इस पे इसने ये वाली बात नहीं की। देखो, अच्छा दोस्त और बुरा दोस्त, इन दोनों की बहुत ही डिवाइडेड निशानियां हैं जो आपको समझने की जरूरत है। अच्छा दोस्त कौन है? बहुत ही सिंपल है, वो आपकी इज्जत भी करता है, आपको मोटिवेट भी करता है, सक्सेस के लिए पुश करता है। वो आपसे मोहब्बत में बात नहीं करेगा, स्पेशली लड़कों की बात कर रहा हूँ। ये थोड़ी बोलेगा कि भाई यू नो व्हाट, इफ यू विल डू दिस नाउ यू विल शाइन वन डे। लड़कियों के लिए मोटिवेशन अलग होता है, लड़के क्या बोलते हैं, भाई कर लें यार, फेमस हो जाएगा भाई, हमारा भी कुछ फायदा है प्लीज। मेरे दोस्त ऐसे करते हैं, आज भी मैं वीडियो नहीं बना रहा था, मुझसे कहते भाई कर लो यार, हम भी बोले यार हमारा दोस्त यूट्यूब पर, क्या यार तुम बड़े आलसी हो। ये एक मोटिवेशन है ना, ये उनकी मोहब्बत दिखाने का तरीका है। और ये वही बोलेगा जिसको आपकी पड़ी हो, वरना लोग तो खींचने में लगे रहेंगे। कॉलेज से शुरू हो जाएगा मामला ये। तो जो आपके सक्सेस के लिए आपके जितना तैयार है ना, वो आपका दोस्त है। और जो मुश्किल वक्त में साथ दे दे ना, आज के टाइम पे क्या कहते हैं उसे, 3 AM कॉल्स, यू नो, इफ यू हैव अ 3 AM फ्रेंड, जीत गए आप दुनिया, जीत गए। सबसे बड़ी जीत ये है कि आप किसी एक, 10 नहीं, सिर्फ एक शख्स के बारे में कह सकते हैं कि मेरा भाई या मेरी बहन नहीं है, सगी नहीं है, ये सगा भाई नहीं है, लेकिन मैं रात को 3 बजे भी कॉल कर दूं ना, कॉल उठेगी। ऐसा दोस्त आपको बनाना पड़ेगा, ये तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बिकॉज अगर ऐसा कुछ नहीं है, माई फ्रेंड व्हेन यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग, मैं इसमें आपको चाशे लगा के नहीं बताऊंगा, ये फैक्ट है। आजकल की दोस्ती थोड़ी मैकेनिकल हो चुकी है, वैसी रॉ नहीं है, पर बनाइए रॉ। आई थिंक इसमें माँ बाप का रोल बहुत ज्यादा होना चाहिए टू मेक दीज किड्स अंडरस्टैंड कि परिभाषा क्या है दोस्ती। एग्जाम्पल, अगर आप फेल होते हैं किसी भी चीज में अपनी जिंदगी में, फिर भी कोई आपका दोस्त आपके साथ आपको हिम्मत दे रहा है ना, वो है पार्टी मेट। अब बुरे दोस्त की निशानियां बताऊं मैं आपको, इट्स गोइंग टू बी हार्ड ऑन अ लॉट ऑफ पीपल, फिर भी सुन लो, नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो आपको खींच के ऐसी आदतों में डाले जो आपका दिल भी कह रहा है कि गलत है, तो ये दोस्त नहीं है। एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम वेस्ट कराने वाला दोस्त, इन लोगों से बच के रहना भाई। देखो, अपने टाइम में मस्ती सब करते हैं, करनी भी चाहिए, है ना, करनी भी चाहिए, बहुत जरूरी है, लेकिन जो आपका टाइम बिल्कुल खोटी करा दे, ऐसा भी दोस्त नहीं चाहिए। हाँ, जो ज्यादा जाया करा रहा टाइम को। और तीसरा मेन, द बैक बाइटर्स, ये जरा माँ बाप जरा साइड हो जाए, मैं बच्चों से बात करना चाह रहा हूँ, जस्ट यू एंड मी, वन ऑन वन, जो टीनेजर्स हैं एंड मी, बैक बाइटर्स बहुत मिलेंगे। इसलिए मैंने पहले पॉइंट क्या बोला, अपने जो सीक्रेट चीजें हैं ना, वो हर किसी से मत बांटना। आई नो समटाइम्स हाइप में आके बोल दोगे फिर दिक्कत हो जाएगी, तो मत बोलना। 2-3 बनाना कॉलेज में पक्के वाले, एकदम सॉलिड वाली दोस्ती, वही काम आएंगी, वो उतनी चाहिए, बाकी चाहिए ही नहीं, है ना। तो ये बैक बाइटर्स, और जो चौथा पॉइंट है वो है जलने वाले। ये तो आप आंखों से देख सकते हैं, इसमें तो मुझे कोई गाइडेंस देने की जरूरत भी नहीं है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, बिकॉज यू आर, जितने भी टीनेजर सुन रहे हैं, यू आर मच मोर इंटेलिजेंट देन आई एम और प्रॉब्ली लॉट ऑफ पीपल, सो ये आप पे छोड़ता हूँ। फुल कॉन्फिडेंस है मेरा आप पे भरोसा भी कर रहा हूँ कि आप जो है जेलेसी वालों को तो अपने से दूर रखें। बाकी कोई बात करनी हो ना, कर लेना, FM 107 कतर आपका भाई है यार, मैं हूं ना आपका भाई, क्या टेंशन है। एंड बुरे दोस्त से डिस्टेंस बनाना

0: भी याद रखिए, समटाइम्स यू हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग डिफिकल्ट डिसीजंस. वो आपकी कमजोरी नहीं है, आपका विजडम है. जैसे बुरी आदत छोड़ना मुश्किल काम होता है, पर आप छोड़ते हैं, है ना. जल्दी उठते हैं सुबह सुबह, आदत नहीं है. दैट इज योर विजडम टेलिंग यू कि भाई उठना है, क्यों नहीं उठना है. वैसे बुरे दोस्तों से दूर हो जाना ये भी कमजोरी नहीं है, विजडम है, पीस ऑफ माइंड है. एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है, सुकून ना, और क्या चाहिए. देखो मैं अगले पॉइंट पे जो आ रहा हूं ना, वो भी इसी के अराउंड है, और वो इमोशनल सपोर्ट और मोटिवेशन को लेके बात करता है. ये जितना भारी टॉपिक उतना है नहीं. लेट मी मेक इट इजी फॉर यू. इमोशनल सपोर्ट और मोटिवेशन, ये सुनने में भारी लग रहा है, लेकिन मैं, लेट मी ब्रेक इट डाउन. मुझे मौका दो. स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, कई मरतबा मस्ती मजाक के बीच में स्ट्रेस हो जाता है ना. आजकल तो लोग लिख भी देते हैं एंग्जाइटी हैशटैग प्रेशर, एक कॉमन सी बात है, पर ऐसे वक्त में कौन काम आता है. अब कुछ बातें होती नहीं बोल पाते भाई, माँ बाप से नहीं कह पाते, हम आज तक नहीं कह पाते. तो बात ही नहीं है, माँ बाप बोलेंगे हमारा बच्चा भी हमें सब बताता है. ना जी, ऐसा नहीं होता है. कुछ बातें बच्चा सिर्फ अपने दोस्त को ही बताता है, और उसका दोस्त ढंग का निकलना बहुत जरूरी है. इसीलिए आपका सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो आपका स्ट्रेस भगाएगा. दोस्तों से बात करें ना, दिल हल्का कर लेना, है ना. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मोटिवेशन जो है ना, ये एक ऐसी चिड़िया है जो आपको मोमेंटरीली मिलती है, पर अगर दोस्त बढ़िया हो ना तो हर कदम पे मिलती है. एग्जाम्स के बाद आपकी सपोर्ट करना, फेलियर में आपको इंकरेज करना, आपकी किसी से बहस हो जाए तो आपकी साइड में खड़े रहना. दोस्त पता है कौन है, जो आपके नाम को आपके पीछे डिफेंड करता है व्हेन यू नॉट देयर, दैट इज योर फ्रेंड. जब आप नहीं है ना उस महफिल में, और आपका दोस्त आपके लिए आवाज उठा सके, बोलेगा भाई उसके बारे में नहीं सुनूंगा, दैट इज अ फ्रेंड. दैट इज अ फ्रेंड यू नीड, यू रियली नीड अ फ्रेंड. और ऐसे 10 दोस्त बनाओगे तो नहीं मिलेगा, वो 2-3 में मिलेगा. और यही लोग हैं जो आपको इंकरेज करेंगे, आगे बढ़ेंगे. एंड यू विल नॉट इवन नो, मैं क्या तो रहा हूं, लड़कियां में भी फीमेल्स, आई नो दे एक्सप्रेस एंड दे आर वेरी गुड एट एक्सप्रेसिंग. हम लड़के नहीं कर पाते एक्सप्रेस, तो हमारा थोड़ा सा अलग एजेंडा है. बट बोथ जेंडर्स, यू नो, रिगार्डलेस ऑफ यू बीइंग मेल और फीमेल, फाइंड फ्रेंड्स लाइक दिस, जो आपको ना पीछे भी आपके डिफेंड कर, कि इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा, साफ सीधी बात. इनसे क्या होता है ना, एक कंपेनियनशिप बनती है फॉर लाइफ टाइम.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
0: बॉलीवुड क्या बेचना चाह रहा है आपको, यही तो बेचना चाह रहा है. तो जितनी भी दोस्ती वाली मूवीज बनी, यही तो बेच रहा है ना. कहां से आ रहा है आइडिया, कोई आराम से, ये कोई क्रिएटिव आइडिया तो नहीं है, तो हो क्या दिखा दिया मुझे, असल जिंदगी से तो आ रहा है. मैं बोलते बोलते मेरी तक आंखें ना बोलेंगी, बिकॉज आई कैन सी माई 3-4 फ्रेंड्स राइट इन फ्रंट ऑफ मी. हम सब ने एक दूसरे को डिफेंड किया है कुछ बोला जरा जरा सी बात पे, कि भाई के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा मैं, भाई ने बोल दिया तो करने का तो करने का. दैट शुड बी देयर. यू नो, हम रिसेंटली एक बारे में बात कर रहे थे, मैंने बोला था एंड आई वॉज आस्किंग FM 107 पर शो के दौरान, कि क्या अगर आपका दोस्त किसी को पसंद नहीं करता है तो क्या आपकी उससे दोस्ती आपको जमेगी. लोगों ने इसमें बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दिए. माय आंसर इज कि भाई मेरे दोस्त को अगर कोई चीज़ नहीं पसंद है ना, साफ सीधी बात, मुझे भी नहीं पसंद है. मैं उसको जाके लड़ नहीं रहा हूँ उस तीसरे बंदे से, नहीं, पर मेरे दोस्त को नहीं अच्छा लग रहा तो नहीं अच्छा लग रहा, बात खत्म हो गई. मेरी इससे दोस्ती है, भाई कह दिया इसको तो बात खत्म. दैट लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस हर किसी को बिल्ड करना आना चाहिए. That is what friendship is. वो नहीं जो जरूरत के टाइम में बदले. So make your friends without any terms or conditions. जितने भी colleges में, please ये मेरी कोई भी ज्ञान मत लेना, ये वाला ले लेना. तो इसमें क्या होगा, आप toxic friendship से दूर हो जाएंगे, अच्छे दोस्त आपकी success के लिए cheer करेंगे, and आपका emotional balance जिंदगी भर बना रहेगा. आप सोचेंगे जिंदगी भर, yes bro, मैं आपको बता रहा हूँ, दोस्ती अच्छी वाली ना आपको कहीं से भी निकाल सकती है. कितनी भी खतरनाक डिफीट हुई हो आपकी लाइफ में, अगर आपके पास बढ़िया दो दोस्त है ना, मैं 3 भी नहीं कह रहा, लो 2 कह रहा हूं, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं. और ये तो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि आपके जितने जो आपका

आपकी जो कंपनी है वही डिसाइड करेगी कि आप कैसे हैं ना? तो आप देख लीजिए आपको कैसा बनना है, उस हिसाब से आपकी दोस्ती देख लीजिए। तो उम्मीद है कि आज का भी आपको शो अच्छा लगा होगा, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि लोग ये बोलें कि भाई तुम तो ध्यान दे। देखो मैं ओपिनियन देना चाहता हूँ, ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं भी यहाँ पे आके आपको डिप्लोमेटिक आंसर्स दे दूँ या स्टेटमेंट दे दूँ तो उससे किसी का भला नहीं होने वाला मेरे ओपिनियन से। हाँ, यू कैन गो अगेंस्ट माई ओपिनियन और फॉर इट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं बीच का रास्ता नहीं निकालूँ। सो जो लोग मेरे आज की पूरी बात के हक में, थैंक यू सो मच, जो नहीं है प्लीज पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड और बात कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते बात। तो सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar, इस नाम से हर जगह मौजूद है। एंड सोशल मीडिया के अलावा जो हमारा व्हाट्सएप है 666-22-107, ये भी मौजूद है। एंड हमने स्टूडेंट्स गाइड में फ्रेंडशिप डे बना लिया, पर मनाना पड़ा। मेरे पास बहुत सारे और भी टॉपिक थे, पर मैंने कहा हमने बहुत सारी बात कर ली है, करियर गाइडेंस, ये गाइडेंस, वो गाइडेंस, एक काम करते हैं कि उस बारे में तो बात कर लें जिससे बुद्धि बिल्कुल सही रास्ते पर है, और वो दोस्ती ही है ना। आई नो दोनों की दोस्ती अलग होती है, लड़कियों की दोस्ती अलग होती है, लड़कों की दोस्ती थोड़ी अलग होती है, बट रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दोनों ही दोस्ती को ऐसे ही रखना चाहिए जहाँ पे यू नो यू सी थ्री पीपल टुगेदर वॉकिंग और आप बोल सकें बचपन के दोस्त लग रहे हैं। होता ना जब आप तीन बड़ों को भी साथ में देखते हैं बोलते हैं अरे आप तीनों कब से जानते एक दूसरे को, दैट क्वेश्चन शुड कम अप, लगना चाहिए अरे भाई साहब ये है दोस्ती सालों से। आज अगर मैं फक्र से कह पा रहा हूँ कि मेरे तीन दोस्त चार दोस्त हैं जिन्हें मैं पूरे पूरे 27 सालों से जानता हूँ, तो ये मेरे लिए सबसे प्राउड बात है। आई नो देम, मतलब अगर मैं उनसे बात भी नहीं कर रहा हूँ बट वी आर फ्रेंड्स, मैं आज भी एनी टाइम आई कैन गिव देम अ कॉल एंड दे विल बी ऑन कॉल। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने स्कूल टाइम पे और कॉलेज टाइम पे वो बॉन्ड बना के रखा, वो बॉन्ड बना के रखी। आप करियर में फोकस करें, बेशक करें, बेशक करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जिंदगी रिलाई करती है उसको, है ना। आप जो है तमाम चीजें करें, पर प्लीज इतने सीरियस मत हो जाना एक कट ऑफ हो जाओ। दोस्ती जरूर करें, एक भी चलेगा, वो एक जो है आपके लिए 5-6 दोस्त ढूंढ देगा, कोई टेंशन नहीं है, पर वो एक एंकर चाहिए, है ना। वरना समुद्र में जो जहाज वो खो जाते हैं, वास्ट समुद्र में जिनका पता नहीं लगता कि जहाज कहां तक चला गया। तो मैं कहानी भी सुनाता हूँ जो बोलता हूँ ना कि उसके बाद वो जहाज समुद्र में था और फिर कोहरे की चादर में खो गया, वो वाला जहाज समुद्र में। बी ए शिप जिसका एंकर है, इसे रुकना भी आता है, मैन्यूवर करना भी आता है, और अगर आइसबर्ग भी आ जाए तो उससे टेढ़ा होकर निकलना भी आता है। वो है पार्टनरशिप और वो है कंपेनियनशिप जो आपको ढूंढनी है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, लाइफ के सारे खूबसूरत मोमेंट्स उसी में। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, अपने दोस्तों को स्पेशली एट द एज व्हेन आप कॉलेज में हैं ओवर क्रिटिसाइज मत करना किसी बात को लेके, है ना, और अंडर क्रिटिसाइज भी मत करना किसी बात को लेके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी दोस्ती को चला के रखेगी ना, वो है आपका सच बोलना, है ना। समटाइम्स यू फील कि अपने दोस्त को बता दूं क्या मैं ये चीज बोलनी चाहिए, मुझे नहीं बोलनी। आपको लग रहा है आपका दोस्त फंसा हुआ है कहीं पर, है ना, आप डिप्लोमेट होने के चक्कर में या बुरा लग जाएगा नहीं बता रहे, डोंट डू दैट। उसको बुरा लगेगा कि आपने सच बोला, हो सकता है बिल्कुल बुरा लगेगा, लेकिन आपका सच उसके काम आ जाएगा, बता रहा हूँ, दोस्ती और स्ट्रांग हो जाएगी। तो अपनी फ्रेंडशिप में यस मैन मत रखो। इफ यू हैव यस मैन इन योर लाइफ, टाइम टू डिजॉल्व देम कंप्लीटली, देन ओनली आपका जो दिमाग है वो अपनी जगह पर रहेगा। That's all I wanted to say. और अगर आप मुझे अपना दोस्त मानते हैं, मान लेना चाहिए अब तक तो इतनी मेहनत करने के बाद, तो मुझे भी बताइएगा। 666-22-107 नंबर, 666-22-107 एंड ऑल्सो सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar। स्टूडेंट्स गाइड के अगले एपिसोड में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, बट फॉर नाउ दिस इज दोहा वाला कबीर, आपका दोस्त साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा कि आप बेहद बेहद जरूरी हैं।

0: इंडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107।
2: दिल से देसी FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
3: फ्रॉड अवेयरनेस।
4: सर आपका पार्सल कस्टम में अटक गया है, क्लियरेंस के लिए पेमेंट करनी होगी। एक्साइटमेंट है गिफ्ट का और खौफ है फाइन का, बस इसी का उठाते हैं ये फायदा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरा नाम है वेद और ये है फ्रॉड अवेयरनेस। इस तरह का स्कैम कहलाता है फेक कुरियर और कस्टम स्कैम। इस किस्म के स्कैम में लोगों को बोला जाता है कि कोई इंटरनेशनल पार्सल आया है, कभी गिफ्ट, कभी डॉक्यूमेंट या कभी प्राइस के फॉर्म में। फिर क्लियरेंस फीस मांगी जाती है, जब आप वो पे कर देते हैं तो कस्टम ड्यूटी और फिर उसके बाद पेनल्टी, एक के बाद एक ये सारे चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। पर सच तो ये है ना पार्सल होता है और ना ही किसी तरह का कस्टम इशू। भाई सोचने वाली बात तो ये है कि अगर आपने पार्सल ऑर्डर ही नहीं किया तो कस्टम का कॉल क्यों आया है। यहीं से आप समझ जाएंगे कि ये एक फेक कॉल है। कुरियर कंपनीज व्हाट्सएप पे पेमेंट नहीं लेती है, तो याद रखिए जिसका पार्सल नहीं उसका कस्टम भी नहीं।
3: सतर्क रहे, सावधान रहे। फ्रॉड अवेयरनेस
2: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
5: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

हैं आप सभी का इस्तक है, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे जर्मनी के एक मशहूर फुटबॉलर जिनका नाम है रूडी वॉयलर। यहाँ दोस्तों रूडी वॉयलर जर्मनी के फुटबॉल की तारीख के सबसे मशहूर खिलाड़ियों और कोचेज में से एक हैं। उन्होंने अपनी शानदार स्ट्राइक स्किल्स की वजह से दुनिया भर में शोहरत हासिल की। रूडी वॉयलर ने जर्मन नेशनल टीम के लिए बहुत अहम गोल स्कोर किए हैं और 1990 फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी की कामयाबी में बड़ा किरदार अदा किया। इटली में हुए उस वर्ल्ड कप में जर्मनी ने फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर ट्रॉफी जीती थी और वॉयलर टीम के सबसे भरोसेमंद फॉरवर्ड्स में से शामिल थे। उनकी स्पीड, फिनिशिंग और फील्ड पर लीडरशिप की वजह से फैंस उनको बहुत पसंद करते थे। दोस्तों प्लेयर के तौर पर रिटायरमेंट के बाद भी उनका फुटबॉल से रिश्ता खत्म नहीं हुआ था। वो जर्मनी के हेड कोच बने और 2002 फीफा वर्ल्ड कप में जर्मन टीम को फाइनल तक पहुंचाया, जहां ब्राजील के हाथों उनको शिकस्त मिली, यानी जर्मन टीम को शिकस्त मिली। बहुत कम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जर्मनी इतना अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन वॉयलर की कोचिंग और टीम मैनेजमेंट ने सबको मुतासिर किया। रूडी वॉयलर को जर्मन फुटबॉल का एक लेजेंड माना जाता है। उनके कंट्रीब्यूशन सिर्फ गोल्स तक महदूद नहीं रही, बल्कि उन्होंने जर्मनी के फुटबॉल कल्चर को भी मजबूत बनाया। उम्मीद है आपको आज का यह स्पोर्ट्स हाइलाइट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है. इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो. यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम. आइए अलहा अशरफुल समान के साथ और आरजे महविश खान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दे. रोजाना 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर.
5: दोस्तों, इमरजेंसी नंबर 999 एक अहम जरूरी नंबर है. याद रखिए, अगर आपको किसी इमरजेंसी में मदद की जरूरत हो तो सबसे पहले अपने आप को पूरी तरह से पूरी सिचुएशन में शामिल करें. अगर आप खुद पे या दूसरों पे खतरा महसूस कर रहे हैं तो बिना किसी हेजिटेशन के 999 पर कॉल करें. जब आप कॉल करें तो अपना पूरा पता, अपनी हालत और जरूरी मालूमात, जैसे कि किस किस्म की इमरजेंसी है, किस वक्त का इशू है और किस जगह पे आप हैं, ये सब बताना बहुत जरूरी है. ये मालूमात देकर आप अपनी मदद के लिए जल्दी से रिस्पॉन्स हासिल कर सकते हैं. 999 पर कॉल करते वक्त ये जरूरी है कि आप पूरी तरह से शांत रहें. अगर आप घबराएंगे तो मदद देने वाले को आपकी बात समझने में मुश्किल हो सकती है, इसलिए अपनी कॉल को क्लियर और ठीक से देना जरूरी है. जब आप 999 पर कॉल करते हैं तो ये कॉल डायरेक्टली इमरजेंसी सर्विसेज सेंटर तक पहुंचती है. वहां पर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स आपसे बात करते हैं और सिचुएशन के मुताबिक आपको मदद फराहम करते हैं. अगर आपको मेडिकल मदद की जरूरत है तो एम्बुलेंस भेजी जाती है. अगर किसी कुदरती तूफान या नेचुरल डिजास्टर का सामना है तो रेस्क्यू टीम और सिविल डिफेंस भी आपकी मदद के लिए आती है. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है.
6: एक अच्छी दोपहर वो होती है जहाँ अपनों का साथ हो और दिलों की बात हो.
7: दिलों की बात हो
6: तो अपने अपने कुर्सी की पेटियां बांध लें, क्योंकि अब आफ्टरनून का माहौल बदलने वाला है.
7: बदलने वाला है.
6: पेश है आफ्टरनून एक्सप्रेस.
8: जहाँ इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का होगा एक बेहतरीन संगम. आरजे नाजिया और आरजे सरवर के साथ
9: हर टॉपिक पर होगी खुलकर बात, हंसी मजाक, लाइव इंटरेक्शन
8: और बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स.
9: चाहे आप घर पर हो या अपनी कार में, बनाइए अपनी आफ्टरनून को यादगार.
8: तो ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजे नाजिया और आरजे सरवर के साथ
9: सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी
1: Qatar's most heard radio station, FM 107.
3: FM 107.
1: Dil Se Desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti।
2: कभी नोटिस किया है जैसे जैसे मौसम बदलता है बॉडी का मूड भी थोड़ा बदलता जाता है। कभी ठंड में सुस्ती आ जाती है, कभी गर्मी में एनर्जी ड्रेन हो जाती है और कभी बारिश के साथ सर्दी खांसी फ्री में आ जाती है। वेल, आज हम बात कर रहे हैं सीजनल हेल्थ केयर टिप्स की। सच ये है कि हर सीजन अपनी एक पर्सनालिटी लेकर आती है और बॉडी को हर बार थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। विंटर में बॉडी ज्यादा एनर्जी कंजर्व करती है, इसलिए थकान थोड़ी ज्यादा फील होती है, मूवमेंट कम हो जाते हैं और कंफर्ट फूड के करीब चले जाते हैं। इस सीजन में बॉडी को वार्म्थ, मूवमेंट और इम्यूनिटी सपोर्ट चाहिए होता है। थोड़ी धूप, थोड़ा स्ट्रेचिंग और बैलेंस्ड खाना विंटर का बेस्ट कॉम्बो है। फिर आता है समर। गर्मी में बॉडी का सबसे बड़ा काम होता है खुद को ठंडा रखना, खुद को कूल रखना। पसीना सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं, बॉडी का नेचुरल कूलिंग सिस्टम होता है। इस सीजन में डिहाइड्रेशन क्वाइटली स्नीक इन करती है, इसलिए अपने पानी, फ्लूइड्स और लाइट फूड बहुत जरूरी हो जाते हैं। हेवी मील और डायरेक्ट सनलाइट बॉडी को थका देती है। और अगर बात करें मॉनसून की तो इसकी तो अपनी अलग ही कहानी है। मिट्टी की खुशबू के साथ इन्फेक्शन का रिस्क भी आता है। इस सीजन में डाइजेशन थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है और इम्यूनिटी का टेस्ट होने लगता है, इसलिए सफाई, फ्रेश फूड और प्रॉपर रेस्ट मॉनसून के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। सीजनल हेल्थ का मतलब ये नहीं कि हर सीजन में सब कुछ चेंज कर दिया जाए। वेल, इसका मतलब होता है छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस लाए जाए, जैसे कि कपड़ों का सिलेक्शन, स्लीप टाइमिंग, फूड चॉइसेस और हाइड्रेशन लेवल। बस थोड़ा सा ट्वीक करें और बाकी सब सेट है। इनफैक्ट एक और इम्पोर्टेंट बात, सीजन चेंज के टाइम बॉडी सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती है। तब अगर आप थकान, कोल्ड या लो एनर्जी फील करते हैं तो उसे इग्नोर मत कीजिए। ये बॉडी का तरीका होता है कहने का कि थोड़ा सपोर्ट चाहिए आपकी बॉडी को। सीजनल केयर का सबसे सिंपल रूल है ऑब्जर्व एंड अडैप्ट। बॉडी को सुनो, मौसम को समझो और रूटीन को जेंटली एडजस्ट करो, क्योंकि जब आप बॉडी के साथ फ्लो में रहते हो ना तो सीजन चाहे कोई भी हो हेल्थ स्टेबल ही रहती है। और जब हेल्थ स्टेबल होती है तो जिंदगी थोड़ी लाइट लगती है, थोड़ी इजी और काफी ज्यादा सुकून देने वाली। इसलिए याद रखे, मौसम बदलते रहेंगे पर आपकी सेहत का ख्याल हर मौसम में बहुत जरूरी है। एंड योर हेल्थ मैटर।
1: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti।
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: Values are values. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main hoon Nazia aapke saath and welcome to the segment called Our Values. Bada hi kamal ka segment hai jahan hum baat karte hain kisi na kisi important topic pe. तो आज भी हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे और वो है हाउ टू बिल्ड एन इमरजेंसी सेविंग्स फंड. कितना कमाल का टॉपिक है अगर इस पे बात की जाए तो मुझे लगता है मैं घंटों बता सकती हूँ. ज्ञान बांटना बड़ा आसान लगता है लेकिन हाँ उस पे अमल करना थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर है बट इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं. तो चलिए आज मिलकर इस टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम और आप मिलकर एक दूसरे को सिखाएं कि किस तरह से हमें इमरजेंसी सेविंग्स फंड जो है उन्हें बिल्ड करना है. देखिए वैसे अगर देखा जाए तो भाई इमरजेंसी सेविंग्स फंड ऐसा कोई फंड हम जो है ना अपनी लाइफ में क्रिएट करते ही नहीं है, ना बिल्ड करते हैं ना यकीन करते हैं. अल्लाह ना करे किसी को किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी हो बट ये वर्ड अपने आप में ना इतना भारी भरकम है. द मोमेंट यू लिसन इमरजेंसी अरे लगता है क्या हॉस्पिटल कोई गया है, ये वाली फीलिंग आ जाती है. और शायद कोई भी नहीं चाहता इस तरह की सिचुएशन के लिए पहले से हम तैयार रखें खुद को. लेकिन हाँ जिंदगी जो है ना वो अनप्रडिक्टेबल है. जिंदगी हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलती. कभी अचानक नौकरी का मसला आएगा, कभी मेडिकल इमरजेंसी आ ही सकती है, या फिर घर का कोई ऐसा जरूरी खर्चा जो निगलेक्ट ही ना किया जाए. ऐसे हालात में सबसे ज्यादा जो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है वो है इमरजेंसी सेविंग्स फंड. देखिए इमरजेंसी सेविंग्स फंड वो पैसे होते हैं जो हम सिर्फ मुश्किल वक्त के लिए साइड पर रखते हैं. पहले तो ये सवाल उठेगा कि क्या आप ऐसा कोई पैसा साइड पर रखते हैं कि नहीं रखते हैं. अगर नहीं रखते हैं तो आज से अभी से इस आदत को अपना लीजिए. ये फंड जो है वो आपके आपके जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है उसे तो कम करते ही करता है और हमें बड़े फैसले बड़ी घबराहट से भी बचा लेता है. जी हाँ अब बात करती है कि इमरजेंसी सेविंग्स फंड क्या होते हैं और ये क्यों जरूरी होते हैं. पहले तो इसे समझते हैं कि है क्या. तो इमरजेंसी सेविंग फंड्स जो है एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है. इसका मतलब ये है कि अगर कल को इनकम रुक जाए, अल्लाह ना करे कोई अचानक ऐसा खर्चा बढ़ा जाए जो आपको पुश करे लोन लेने के लिए या क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए या हो सकता है लोगों से पैसे बोरो करने के लिए, मदद मांगने के लिए, तो ऐसे में अगर आप गिल्टी महसूस करते हैं तो ये फंड आपको कॉन्फिडेंस देगा. बहुत से लोग इसलिए टेंशन में रहते हैं क्योंकि उनके पास बैकअप नहीं होता. थोड़ा सा पैसा भी अगर इमरजेंसी के लिए अलग रख लिया जाए तो प्रॉब्लम्स को हैंडल करना आसान हो जाता है. ये फंड सिर्फ पैसे नहीं है, मैं कहती हूँ ये पीस ऑफ माइंड है. इमरजेंसी फंड बनाने का पहला कदम क्या होना चाहिए. देखिए इमरजेंसी फंड बनाने का जो कदम है वो आपका पहला माइंडसेट है. नेगेटिव माइंडसेट के साथ इस फंड को ना बनाइए, एक पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़िए. इमरजेंसी फंड बनाने का पहला और सबसे बड़ा कदम है आपकी नियत और आपका स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट. ये सोच लेना कि कल से सेविंग शुरू करनी है काफी नहीं होगा दोस्तों. आपको क्लियर डिसीजन लेना होता है कि ये अमाउंट चाहे छोटा ही क्यों ना हो लेकिन सेविंग मैं जरूर करूंगा या करूंगी. इसके बाद आप अपने मंथली एक्सपेंसेस का अंदाजा लगाइए. आपको पता होना चाहिए कि एक महीने में रेंट, खाना, बिल, ट्रांसपोर्ट और जरूरी चीजों पर कितना खर्चा होता है. जनरली सजेशन ये होते हैं कि इमरजेंसी फंड कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, इसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं. लेकिन अगर आप इतनी बड़ी रकम भी सेव नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, छोटी सी शुरुआत लेकिन होनी तो चाहिए. बहुत से लोग जो हैं वो छोटी सेविंग को सेविंग ही नहीं मानते. बहुत से लोग सेविंग इसलिए शुरू नहीं करते कि उन्हें लगता है इतनी छोटी सी रकम का क्या होगा. लेकिन रियलिटी ये है कि सेविंग का मतलब कंसिस्टेंसी है, अमाउंट नहीं, क्वांटिटी नहीं. आप 50 रियाल से 100 रियाल से भी शुरुआत कर सकते हैं और जैसे ही सैलरी आए पहले इमरजेंसी फंड के लिए उसे अलग कर दें बिना कुछ खर्च किए. अगर पॉसिबल हो तो इमरजेंसी फंड के लिए अलग बैंक अकाउंट ही खोल लीजिए. जहां आसानी से पैसे आप डालें और आप उसको टच भी ना करें। इससे होगा ये कि टेम्पटेशन आपकी कम हो जाएगी और शायद सेविंग डिसिप्लिन डेवलप होगा। इमरजेंसी फंड को सेफ जगह रखना भी जरूरी है। इमरजेंसी सेविंग्स को हमेशा ऐसी जगह रखें जहां पैसा सेफ हो, जरूरत पर फौरन आपको मिल जाए और किसी तरह का कोई रिस्क ना हो। इसीलिए इमरजेंसी फंड्स को स्टॉक, क्रिप्टो या कई बार रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में भी लगाना ठीक नहीं होता। सिंपल सेविंग्स अकाउंट या फिर इजली एक्सेसिबल ऑप्शन।

0: आप उसको इमरजेंसी फंड में डाल ही दें। ये आदत बड़ी कमाल की है और इससे आपका जो है वो ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। ये भी जरूरी है कि इमरजेंसी फंड को सिर्फ वाकई इमरजेंसी के लिए ही यूज ना किया जाए, इसको लाइफस्टाइल के लिए यूज ना किया जाए, ये फंड ही आपके लिए बना रहे। देखिए, इमरजेंसी फंड बनाना एक बहुत ही अच्छी आदत है जो इंसान के लिए जरूरी भी है, चाहे इनकम ज्यादा हो या कम। ये फंड आपको मुश्किल वक्त में सहारा देता है। इसकी शुरुआत आज से कीजिए। याद रखिए कि इमरजेंसी फंड ये लग्जरी नहीं है, ये आपकी जरूरत है और इसकी शुरुआत आज से ही हो सकती है। फिलहाल मुझे तो इजाजत दीजिए और इंशाल्लाह आपकी मेरी मुलाकात होगी एक और अमेजिंग से टॉपिक पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी,
2: आर यू रेडी? फ्राइडे शाम 8 बजे लेकर आ रहे हैं आरजे फजील, वो शो जिसका इंतजार होता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन, सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके फेवरेट ट्रैक्स।

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए, फ्राइडे 8 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद RJ फजील, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: घर में खाना अगर बच्चों की पसंद का हो तो घर में सुकून बना रहता है। अब आप सोचिए अगर आपके घर में ही एक नन्ना शेफ छुपा हो तो प्रॉब्लम जड़ से ही खत्म है ना। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं खास शो जिसमें आपके घर के उस नन्हे शेफ को मिलेगी इंस्पिरेशन और रेसिपीज का खजाना। आरजे सरवर के साथ सुनिए जूनियर शेफ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जूनियर शेफ। भाई वो शो जहां आपका रेडियो बन जाता है किचन और आपकी इमेजिनेशन एक इंडक्शन, और जहां कुकिंग होती है इजी, एक्साइटिंग और फुल ऑफ फ्लेवर। मैं हूं सरवर मिर्जा और अब हम करेंगे स्लाइसिंग, टॉसिंग, टेस्टिंग और टॉकिंग फूड, सब कुछ आपके घर या कार की कंफर्ट के साथ। और ये प्रोग्राम आपका किचन बनेगा, आपका कंफर्ट जोन बनेगा और आपकी क्रिएटिव चेक होगी। और दोस्तों जब आप इस रेसिपी को बना लें तो इसकी तस्वीर हमारे व्हाट्सएप नंबर 6622107 पे जरूर शेयर करें, भाई हम आपकी क्रिएशन देखने के लिए एक्साइटेड रहेंगे। तो दोस्तों आज का एपिसोड एक नई दुनिया का सफर है, एक ऐसी कुजीन जो सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि एक आर्ट भी है। आज हम बात कर रहे हैं जापानीज डिश सुशी की। भाई सुशी एक सिंपल डिश लगती है लेकिन असल में ये फ्लेवर्स, टेक्सचर और प्रेजेंटेशन का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होती है। तो इस प्रोग्राम में हम ना सिर्फ सुशी बनाना सीखेंगे बल्कि इसे समझेंगे, फील करेंगे और एंजॉय भी करेंगे। तो आप रेडी हो जाइए क्योंकि ये सफर थोड़ा यूनिक और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों जब आप सुशी का नाम सुनते हैं तो अक्सर लोग फौरन रॉ फिश या इससे कुछ और मुतालिक तसव्वुर कर लेते हैं, लेकिन असल में सुशी का बेसिक एलिमेंट है राइस, चावल, स्पेशल वेनिगर्ड राइस जो इस डिश की फाउंडेशन होता है। इस राइस को बाद में फिश, वेजिटेबल्स या दूसरी इंग्रेडिएंट्स के साथ कंबाइन किया जाता है। यानी सुशी सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि एक कंसेप्ट है जहां सिंप्लिसिटी और बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बात आज के एपिसोड को और भी इंटरेस्टिंग बना देती है क्योंकि हम एक ऐसी रेसिपी एक्सप्लोर करने वाले हैं जो बेसिक है लेकिन बहुत एलिगेंट है। तो आज हम जिस स्टाइल की सुशी बनाएंगे दोस्तों वो सिंपल होम स्टाइल सुशी होगी जो बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। आपको किसी हाई लेवल शेफ बनने की जरूरत नहीं है यहाँ पर इस पॉइंट पर। ये डिश घर पर बहुत आसानी से बन जाती है या बन सकती है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस, सब्र और थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होती है। सुशी की खास बात यह है दोस्तों कि इसमें कुकिंग का काम कम होता है और असेंबलिंग का काम ज्यादा होता है, जिस पर हम आजकल बात कर रहे हैं। इससे पिछले एपिसोड में हमने तिरामिसू भी बनाया था, एक बेहतरीन अरेबिक डेजर्ट, तो उसमें भी ऐसे ही था कि असेंबलिंग ज्यादा थी, कुकिंग कम थी। तो ये जानिए कि ये बिल्कुल तिरामिसू की तरह ही एक लेयर्ड या असेंबल डिश है जहां हर चीज अपनी जगह पर परफेक्टली सेट होती है। आज का प्रोग्राम भी इसी स्मूथ और रिलैक्स्ड फ्लो के साथ आगे बढ़ेगा। अगर आप पहली दफा सुशी बना रहे हैं तो बिल्कुल फिक्र ना करें, इस प्रोग्राम में हम हर चीज स्टेप बाय स्टेप इतनी डिटेल से समझाने वाला हूं मैं आपको कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सुशी जो है बनाना एक काम और फोकस्ड प्रोसेस है, बस ये याद रखिएगा। इसमें जल्दी बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों, बल्कि हर चीज को धीरे धीरे सेट करना है तो ये इसके लिए तैयार रहिएगा। भाई राइस बनाना, फिलिंग्स प्रिपेयर करना और फिर रोल बनाना, ये सब स्टेप एक सीक्वेंस में होते हैं और जब ये सब कंबाइन होते हैं तो रिजल्ट्स एक सिंपल लेकिन क्लासी डिश होती है जो हर किसी को इम्प्रेस कर सकती है। तो दोस्तों कुकिंग में सबसे जरूरी चीज सिर्फ रेसिपी नहीं होती बल्कि उसकी फीलिंग होती है। आप जब सुशी बनाते हैं तो आप एक ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे होते हैं जहां हर चीज बैलेंस के साथ होती है। राइस ज्यादा नहीं, फिलिंग ज्यादा नहीं, बस कुछ मेजर्ड चीजें आपको इसके अंदर लगानी है। भाई आज का एपिसोड आपको सिर्फ एक डिश ही नहीं सिखाएगा बल्कि आपके अंदर एक डिसिप्लिन और एप्रिसिएशन भी डेवलप करेगा सब छोटे शेफ से मेरी मुराद है। तो ये एक्सपीरियंस आपके लिए बिल्कुल नया होगा लेकिन बहुत इंजॉयबल भी होगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए अपने किचन सफर के अगले मरहले के लिए। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले बात करेंगे किचन सेफ्टी के बारे में, क्योंकि भाई सुशी में हम फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के साथ काम करते हैं और हाइजीन यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो भाई हम ये इंश्योर करेंगे कि आपका एनवायरनमेंट बिल्कुल साफ हो ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ कुकिंग शुरू करें। तो कहीं भी मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए और बढ़ते हैं आगे किचन सेफ्टी की जानिब। तो दोस्तों अब जब हम सुशी बनाने के लिए किचन में काम शुरू करने वाले हैं तो सबसे पहला रूल है सेफ्टी और हाइजीन। सुशी एक ऐसी डिश है जहां फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का यूज होता है, इसलिए सफाई का ख्याल रखना और भी जरूरी हो जाता है। भाई सबसे पहले अपने हाथों को अच्छी तरह वॉश करें कम से कम 20 सेकंड तक, ताकि कोई बैक्टीरिया या जर्म्स ना रह जाएं, जैसा कि हम पहले भी बताते आए हैं। फिर अपना वर्किंग एरिया क्लीन करें, काउंटर है, कटिंग बोर्ड है और यूटेंसिल्स वगैरह है, सब साफ होना चाहिए। सुशी में रॉ या लाइटली प्रोसेस्ड आइटम्स यूज होते हैं, इसलिए कंटेमिनेशन से बहुत बचना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक क्लीन किचन ही सेफ कुकिंग की पहली निशानी होता है, ये हमेशा याद रखिए। तो भाई अब बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स के सेफ्टी की, जो सुशी में सबसे क्रिटिकल होती हैं। सुशी के लिए जो राइस यूज होता है वो है स्पेशली प्रिपेयर किया हुआ राइस, और उसे फ्रेश यूज करना होता है। इसी तरह अगर आप फिश या सी फूड यूज कर रहे हैं तो वो फ्रेश और हाई क्वालिटी होना चाहिए। और वहीं अगर आप बिगनर हैं या पहली बार बना रहे हैं तो कुक्ड इंग्रेडिएंट्स या वेजिटेबल से शुरू कर सकते हैं, जो सेफर ऑप्शन होता है। कॉमन सुशी इंग्रेडिएंट्स में राइस, नोरी शीट्स और वेजिटेबल्स और फिश शामिल होती हैं, ये तो हम जानते ही हैं। और ये जरूरी है कि आप हर इंग्रेडिएंट को ध्यान से हैंडल करें और फ्रिज से निकाल कर ज्यादा देर तक उसको ओपन ना छोड़ें, रूम टेम्परेचर में उसको खुला मत रखिएगा। किचन सेफ्टी में एक और इम्पॉर्टेंट चीज है यूटेंसिल्स का साफ होना या सही इस्तेमाल करना भी। दोस्तों सुशी बनाते वक्त आपकी नाइव्स और कटिंग बोर्ड से यूज करना ये बहुत जरूरी है कि इस पर ध्यान दिया जाए, इसलिए उन्हें प्रॉपरली हैंडल करना बहुत जरूरी है। नाइफ हमेशा शार्प होना चाहिए, क्योंकि जो ब्लंट या जो खुट्टल छुरी होती है ना, देसी अल्फाज में बोलूं तो वो ज्यादा स्लिप वगैरह कर जाती है और चोट लगने का रिस्क होता है। जब आप वेजिटेबल्स या फिलिंग कट करते हैं तो अपनी फिंगर्स को सेफ पोजिशन में रखें, कटिंग बोर्ड स्लिप नहीं होना चाहिए, इसलिए उसे स्टेबल सरफेस पर ही रखें। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एक सेफ और कॉन्फिडेंट कुकिंग एक्सपीरियंस देती हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं राइस हैंडलिंग की, जो सुशी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सुशी राइस स्टिकी होते हैं, तो इसलिए जब आप उसे हैंडल करते हैं तो हाथ गंदे होने का चांस होता है। इसलिए एक सिंपल टिप ये है कि हाथ को हल्का सा गीला रखें ताकि राइस चिपके नहीं। ये टेक्निक सिर्फ कन्वीनियंस के लिए नहीं बल्कि हाइजीन के लिए भी हेल्पफुल होती है। राइस को ज्यादा देर तक ओपन छोड़ने से बचें, क्योंकि एनवायरनमेंट के जर्म्स उस पर इजीली लग सकते हैं। हर स्टेप को क्लीन और कंट्रोल्ड तरीके से करना ही बेस्ट प्रैक्टिस है। दोस्तों सुशी एक डेलिकेट डिश है, इसलिए पेशेंस और केयरफुल हैंडलिंग भी सेफ्टी का ही हिस्सा है। रोल बनाते वक्त जल्दी नहीं करनी बल्कि धीरे धीरे प्रेशर अप्लाई करना होता है। अगर आप जल्दी करेंगे तो रोल टूट सकते हैं या इंग्रेडिएंट्स बाहर आ सकते हैं। ये ना सिर्फ प्रेजेंटेशन खराब करता है बल्कि सफाई और हाइजीन को भी इफेक्ट करता है। सुशी बनाने का असल फन तब आता है जब आप काम और फोकस के साथ काम करते हैं। हर मोमेंट कंट्रोल्ड और स्मूथ होनी चाहिए। तो अब आपने किचन सेफ्टी के तमाम बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लिए हैं दोस्तों, तो अब आप कॉन्फिडेंस के साथ सुशी बनाना शुरू कर सकते हैं। याद रखें, एक सेफ एनवायरनमेंट ही एक सक्सेसफुल डिश का बेस होता है। जब आप क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करते हैं तो आपकी कुकिंग भी नेचुरली बेटर होती है। अब हम अपने प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ने वाले हैं, और वो ये कि हम जो स्टार हैं इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनसे मुलाकात करेंगे, जहां हम सुशी के हर इंग्रेडिएंट को डिटेल में समझेंगे। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि अब हम और भी इंटरेस्टिंग हिस्सा स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम अपने प्रोग्राम के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग हिस्से में एंटर हो चुके हैं, मीट द इंग्रेडिएंट्स। सुशी एक सिंपल लगने वाली डिश है दोस्तों, लेकिन इसकी असल ब्यूटी इसके इंग्रेडिएंट्स के बैलेंस में होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट की, सुशी राइस। ये शॉर्ट ग्रेन राइस होता है जो स्पेशली विनेगर, शुगर और नमक के साथ सीजन किया जाता है। ये राइस ही सुशी की फाउंडेशन होती है। अगर राइस सही प्रिपेयर ना हो तो पूरी सुशी का टेस्ट इफेक्ट होता है, इसलिए राइस का टेक्सचर स्टिकी और सॉफ्ट होना जरूरी होता है ताकि वो इजिली रोल भी हो और बाइट भी अच्छी फील दे। तो दोस्तों अब बात करते हैं नोरी शीट्स की, जो सुशी का आउटर रैपिंग होती हैं। नोरी असल में ड्राइड सी वीड होती हैं जो पतली शीट की फॉर्म में आती हैं और ये थोड़ी सी क्रिस्प होती हैं और इसका टेस्ट थोड़ा सॉल्टी और सी लाइक होता है। जब हम सुशी बनाते हैं तो राइस को नोरी पर स्प्रेड करते हैं और फिर रोल बनाते हैं। तो ये जो शीट है इसका काम सिर्फ रैपिंग नहीं होता बल्कि ये फ्लेवर भी इनहेंस करती हैं। ये सुशी को एक यूनिक टेस्ट और स्ट्रक्चर देती हैं। अगर ये शीट ना हो तो सुशी का असली फील नहीं आता, इसलिए ये छोटा सा इंग्रेडिएंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों सुशी को इंटरेस्टिंग और कस्टमाइजेबल भी बनाया जा सकता है। सुशी की सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी मर्जी से फिलिंग चूज कर सकते हैं। कॉमन फिलिंग्स में वैसे तो क्यूकम्बर, एवोकाडो, कैरेट और कुक्ड सी फूड या फिश शामिल होती हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप वेजिटेबल से स्टार्ट कर सकते हैं। खीरा है, इसकी फ्रेशनेस बेहतर होती है। एवोकाडो है, इसकी क्रीमीनेस बेहतर होती है और कैरेट थोड़ा क्रंच ऐड कर देता है। तो ये कॉम्बिनेशन ना सिर्फ हेल्दी होता है दोस्तों बल्कि टेस्ट में भी परफेक्टली बैलेंस्ड होता है। तो आइए अब बात करते हैं फिश या प्रोटीन की, जो सुशी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनती है। ट्रेडिशनल सुशी में फ्रेश फिश जैसे सैमन या ट्यूना भी यूज होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप रॉ फिश ही यूज करें। आजकल बहुत से लोग कुक्ड ऑप्शंस यूज करते हैं जैसे श्रिम्प्स या चिकन, या सिर्फ वेजिटेरियन सुशी भी बनाई जा सकती है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी सुशी को हर किसी के लिए सुटेबल बना देती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी प्रोटीन या फिलिंग आप यूज करें वो फ्रेश और सेफ हो। क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स ही आपके फाइनल रिजल्ट को परफेक्ट बनाते हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं फ्लेवर इनहेंसर की तरफ, जैसे कि सोया सॉस। भाई वैसे तो पिकल्ड जिंजर वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं, सोया सॉस डिपिंग के लिए यूज होती है जो सुशी को सॉल्टी और उमामी टेस्ट देती है कह सकते हैं। वैसे भी थोड़ा सा स्पाइसी होता है और सुशी के टेस्ट को एक स्ट्रॉन्ग किक देता है। पिकल्ड जिंजर का रोल थोड़ा डिफरेंट होता है जो हर बाइट के बाद आपके टेस्ट को रिफ्रेश करता है, और ये तीन चीजें सुशी एक्सपीरियंस को कंप्लीट करती हैं और आपके टेस्ट को इनहेंस करती हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों राइस सीजनिंग की, जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। सुशी राइस को सिर्फ बॉईल नहीं किया जाता बल्कि उसे विनेगर, शुगर और नमक के मिक्सचर से फ्लेवर दिया जाता है। ये कॉम्बिनेशन ही राइस को स्लाइटली टैंगी और स्वीट टेस्ट देता है जो बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करता है। अगर राइस ब्लेंड हो तो सुशी का असली मजा नहीं आता, इसलिए राइस का सीजनिंग बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। और ये एक ऐसी चीज है जो आपके सुशी को बेसिक से स्पेशल बना देती है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुशी के इंग्रेडिएंट्स ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, तो हमने देख ही लिया, समझ ही लिया, सिंपल चीजें होती हैं इसके अंदर। बिल्कुल राइस है, नोरी शीट्स हैं और कुछ फिलिंग्स वगैरह, लेकिन इन सिंपल चीजों को सही तरीके से कंबाइन करना ही एक आर्ट है दोस्तों। हर इंग्रेडिएंट्स अपना एक रोल प्ले करता है, कोई टेक्सचर देता है, कोई फ्लेवर और कोई स्ट्रक्चर। तो ये कोऑर्डिनेशन ही सुशी को एक बैलेंस्ड डिश बनाती है दोस्तों। इसलिए जब आप इंग्रेडिएंट्स यूज करें तो उनकी इंपॉर्टेंस को समझें और उन्हें रेस्पेक्ट के साथ हैंडल करें। तो दोस्तों जब आप तमाम सुशी के बेसिक इंग्रेडिएंट्स को डिटेल में समझ चुके हैं तो बढ़ते हैं आगे और कुकिंग स्टार्ट करते हैं, तभी तो आपको हर चीज का रोल क्लियर होगा। तो यही फर्क होता है एक बिगिनर और एक कॉन्फिडेंट कुक में। जब आप इंग्रेडिएंट्स को समझकर यूज करते हैं तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बेटर होते हैं। अब हम प्रोग्राम के सबसे एक्साइटिंग हिस्से की तरफ बढ़ने वाले हैं दोस्तों, रेडी हो जाइए, जहां हम स्टेप बाय स्टेप सुशी बनाना शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब वो वक्त आ गया है जहां हम एक्चुअल कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है सुशी राइस बनाना। आप राइस को अच्छी तरह वॉश करें जब तक पानी क्लियर ना हो जाए, फिर उसे कुक करें। जब राइस रेडी हो जाता है तो इसे थोड़ा ठंडा होने दें। अब इसमें विनेगर, शुगर और नमक का मिक्सचर ऐड करें और जेंटली मिक्स करें। ये मिक्सचर राइस को वो खास टेस्ट देता है जो सुशी की पहचान होता है। राइस को ज्यादा मैश नहीं करना, बिल्कुल हल्की मूवमेंट्स से मिक्स करना है ताकि ग्रेन्स अपनी शेप मेंटेन करे रहें। और ये स्टेप पूरी सुशी का बेस तैयार करता है, इसीलिए इसे बहुत अटेंशन के साथ करिएगा। अब जब राइस प्रिपेयर्ड हैं तो हम फिलिंग्स रेडी करते हैं। क्यूकम्बर को पतली स्ट्रिप्स में कट करें, एवोकाडो को केयरफुली स्लाइस करें और अगर आप कोई और फिलिंग यूज कर रहे हैं जैसे कैरेट या कुक चिकन वगैरह तो उन्हें भी लंबे और थिन शेप में कट कर लीजिए। ये शेप इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब हम रोल बनाएंगे ना तो फिलिंग इवनली एडजस्ट होनी चाहिए। अगर फिलिंग मोटी होगी तो रोल प्रॉपरली क्लोज नहीं होगा, इसलिए यहाँ थोड़ा सा पेशेंस और नीट कटिंग जरूरी है। आप देखेंगे कि जितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी उतनी ही स्मूथ आपकी सुशी बनेगी। रोलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो एक बेम्बू मैट या फ्लैट सरफेस लें और उस पर एक जो शीट है, नोरी शीट जो है, उसको रखें शाइनी साइड नीचे की तरफ, ये याद रखिएगा। अब अपने हाथ हल्के से गीले कर लें, नम कर लें और राइस का एक लेयर नोरी पर स्प्रेड करें। राइस को इवनली स्प्रेड करें लेकिन ऊपर के एज पर थोड़ी सी जगह खाली छोड़ें ताकि बाद में हम रोल सील कर सकें। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर राइस अनइवन होगा तो रोल भी ठीक नहीं बनेगा। आप धीरे धीरे इस प्रोसेस को फील करें, जल्दी बिल्कुल मत कीजिएगा। भाई आपने समोसे वगैरह भी बनाए होंगे, गुजिया भी बनाई होंगी, तो जितनी भी फिलिंग वाली चीजें हैं है सब कुछ बस उसी तरह, बस इस बार हम कुछ जैपनीज ट्राई कर रहे हैं, ये याद रखिए। तो दोस्तों अब हम फिलिंग ऐड करते हैं। राइस के बीच में एक लाइन बनाकर अपनी फिलिंग्स अरेंज करें। क्यूकम्बर, एवोकाडो और जो भी आपने प्रिपेयर किया है, ज्यादा फिलिंग ऐड ना करें क्योंकि फिर रोल टूट सकता है। बैलेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आप फिलिंग्स को प्लेस करते हैं तो ट्राई करें कि वो सेंटर में अलाइंड हो ताकि रोल इवनली बन सके। और ये वो मोमेंट है जहां आप अपनी क्रिएटिविटी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल के साथ सिंपल और बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ही बेस्ट रिजल्ट देता है। अब हम रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। बेम्बू मैट को धीरे से लिफ्ट करें और नोरी को अपनी तरफ फोल्ड करते हुए रोल करें। प्रेशर हल्का और कंट्रोल्ड होना चाहिए, ना ज्यादा टाइट और ना बिल्कुल लूज। जैसे जैसे आप रोल करते हैं फिलिंग्स को अंदर से सेट हुई फील करते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है दोस्तों, लेकिन जब आप काम रहते हैं तो रोल ऑटोमेटिकली शेप ले लेते हैं। भाई स्प्रिंग रोल भी तो कभी ना कभी बनाया ही होगा, बस ऐसे ही याद कर लीजिए। लास्ट एज को हल्का सा पानी लगाकर सील करें ताकि रोल ओपन ना हो और ये एक कंप्लीट सुशी रोल बन जाएगा। दोस्तों अब आते हैं कटिंग के स्टेप पर, जो इक्वली इम्पोर्टेंट है। एक शार्प नाइफ लें और उसे हल्का वेट करें ताकि राइस उस पर चिपक ना जाए और रोल को धीरे धीरे इक्वल पीस में कट कर लें। आप 6 या 8 पीस बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन साइज। कटिंग के वक्त प्रेशर ज्यादा नहीं देना वरना शेप खराब हो सकता है। हर स्लाइस को नीटली कट करना सुशी की प्रेजेंटेशन का इम्पोर्टेंट हिस्सा होती है। जब आप पीसेस को साइड बाई साइड रखते हैं तो आपको एक ब्यूटीफुल पैटर्न नजर आता है। अब आपकी सुशी ऑलमोस्ट रेडी है, फिनिशिंग टच देना बाकी है। आप इन रोल्स को प्लेट पर अरेंज करें और उनके साथ सोया सॉस, वसबी और पिकल्ड जिंजर सर्व करें। भाई यही वो कॉम्बिनेशन है जो सुशी एक्सपीरियंस कंप्लीट बनाता है। प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेकर रोल्स को नीट तरीके से प्लेस करें। आप चाहें तो थोड़ा सेसमे सीड्स भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, तिल जो होते हैं, जो लुक और टेस्ट दोनों को एनहेंस करेंगे। ये एक सिंपल डिश को एक क्लासी फील देते हैं। तो दोस्तों मुबारक हो, आपने अपनी सुशी सक्सेसफुली प्रिपेयर कर ली है और ये प्रोसेस शायद पहली दफा थोड़ा डिटेल्ड लगा होगा। मैंने कोशिश पूरी करी, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये और इजी होता जाएगा। जब आप अपनी बनाई हुई सुशी को देखेंगे ना तो आपको अपनी मेहनत का रिजल्ट नजर आएगा। तो बहुत ही ज्यादा मजेदार सुशी बनाई जा सकती है, बस ये है कि थोड़ी लगन चाहिए और थोड़ा सा टाइम। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और अब के प्रोग्राम के हिस्से में टेस्ट एंड टॉक टाइम का की बात आती है। तो साहब वो खूबसूरत लम्हा जहां हम इंतजार की घड़ियां खत्म करते हैं, तो चलिए अपनी बनाई हुई सुशी को टेस्ट करते हैं। जब आप प्लेट को अपने सामने रखते हैं तो सबसे पहले नजर आती है इसकी नीटनेस और कलरफुल लुक। व्हाइट राइस, ग्रीन एवोकाडो और नोरी का डार्क कलर सब मिलकर एक बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं। अब एक पीस उठाइए, उसको हल्का सा सोया सॉस में डिप करिए और धीरे से बाइट लें। पहली ही बाइट में आपको राइस की सॉफ्टनेस और हल्का सा टैंगी फ्लेवर फील होता है जो फौरन फिलिंग के फ्रेश टेस्ट के साथ कंबाइन हो जाता है। ओए होए होए होए, ये एक नया और रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस होगा दोस्तों जिन्होंने पहली बार बनाई है सुशी। जब आप सेकंड बाइट लेते हैं तो आपको फ्लेवर का एक इंटरेस्टिंग मिक्स महसूस होता है। राइस का हल्का सा मीठा और विनेगर वाला टेस्ट, नोरी का थोड़ा सा सॉल्टी और सी लाइक फ्लेवर और फिलिंग की फ्रेशनेस, ये सब एक साथ ब्लेंड होते हैं। सुशी का खास पॉइंट ही ये होता है कि इसमें हर चीज बैलेंस होती है, एक ही चीज ओवर पावर नहीं करती बल्कि हर इंग्रेडिएंट अपना रोल प्ले करता है। अगर आप खीरा यूज कर रहे हैं तो उसकी क्रिस्पीनेस आपको लाइट फ्रेशनेस देती है, जबकि एवोकाडो एक क्रीमी टेक्सचर ऐड करता है और ये कॉन्ट्रास्ट ही सुशी को यूनिक बनाता है। तो चलिए दोस्तों अब थोड़ा फोकस करते हैं टेक्सचर पर, जो सुशी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा होता है। जब आप सुशी के पीस की बाइट लेते हैं तो आपको डिफरेंट टेक्सचर एक साथ फील होते हैं। राइस सॉफ्ट और स्लाइटली स्टिकी होता है, नूरी थोड़ी सी चुई फील देती है और फिलिंग अपनी अलग टेक्सचर एक साथ एक्सपीरियंस को कम्प्लीट करती है। ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल बैलेंस होती है, इसीलिए कोई हैवी फील नहीं होती। सुशी का एक फायदा ये भी है दोस्तों कि ये लाइट होती है और आप इसे कंफर्टेबली इंजॉय कर सकते हैं बिना हैवीनेस के। तो दोस्तों अब बात करते हैं ओवरऑल फ्लेवर हार्मनी की। सुशी का असल मैजिक इसी में होता है कि इसमें सिंपलिसिटी और बैलेंस दोनों होते हैं। सोया सॉस थोड़ा सॉल्टी टच देता है, वैसे भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो एक हल्का सा स्पाइसी किक देता है और पिकल्ड जिंजर हर बाइट के बाद आपके टेस्ट को रिफ्रेश कर देता है। ये सब मिलकर एक कंप्लीट एक्सपीरियंस बनाते हैं। सुशी आपको ये नहीं लगने देता कि आप कुछ बहुत हैवी या ऑयली खा रहे हैं, बल्कि ये एक फ्रेश और क्लीन टेस्ट देता है जो बार बार खाने का दिल करता है। दोस्तों अब जरा सोचिए कि जब आप ये सुशी अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को सर्व करेंगे तो उनका रिएक्शन कैसा होगा। भाई नॉर्मली लोग सोचते हैं कि सुशी सिर्फ रेस्टोरेंट्स में ही अच्छी बनती है, लेकिन यकीन जानिए जब आप उन्हें अपनी बनाई हुई सुशी सर्व करते हैं तो वो प्लेजेंटली सरप्राइज हो जाते हैं। और ये एक ऐसा डिश है जो सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि प्रेजेंटेशन की वजह से भी इम्प्रेस करता है। याद रखिएगा, आप छोटी प्लेट में नीटली अरेंज करके सर्व करें तो ये

0: और भी प्रोफेशनल लगती है ये मोमेंट आपके लिए बहुत सेटिस्फाइंग होता है तो दोस्तों आज हमने सिर्फ सुशी को टेस्ट नहीं किया बल्कि उसे फील भी किया और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको सिखाता है कि सिंपल इंग्रेडिएंट से भी एक बैलेंस्ड और डिलीशियस डिश बन सकती है सुशी आपको ये भी बताती है कि कुकिंग सिर्फ मसालों और हीट का ही नाम नहीं बल्कि प्रेसिशन और हार्मनी का भी नाम है अब हम अपने प्रोग्राम के फाइनल सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कुक इट अगेन चैलेंज जो हमारे छोटे शेफ के लिए उस्ताद के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ओके तो ये सेगमेंट इसलिए डिजाइन किया गया है कि ताकि आप सिर्फ एक बार सुशी बनाना ना सीखें बल्कि इसे दोबारा ट्राई करें और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें तो दोस्तों सुशी के साथ कितनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं आप डिफरेंट फिलिंग ट्राई कर सकते हैं जैसे कि सिर्फ वेजिटेबल सुशी या एवोकाडो के साथ एक क्रीमी वर्जन या फिर कुक्ड चिकन या श्रिम्प के साथ एक नया फ्लेवर सुशी का बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसे अपने टेस्ट के मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं आप राइस की क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं या फिलिंग्स कॉम्बिनेशन के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं यह आपको एक फ्रीडम देता है कि आप अपनी सिग्नेचर सुशी बना सकें जो आपके स्टाइल को रिफ्लेक्ट करे जब आप किसी डिश को दोबारा बनाते हैं दोस्तों तो आप उसे सिर्फ रिपीट नहीं करते याद रखिए बिल्कुल आप उसे बेहतर बनाते हैं हर दफा आपको कुछ नया सीखने को मिलता है शायद आप अगली दफा रोल को ज्यादा टाइट बना सकते हैं या स्लाइसिंग को और नीट कर सकते हैं ये छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स ही आपको एक कॉन्फिडेंट कुक बनाती हैं आज का सुशी एक्सपीरियंस आपके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है दोस्तों इसे दोबारा ट्राई करके आप इसको अपने कंट्रोल में ले सकते हैं बैलेंस और प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं तो दोस्तों अब प्रोग्राम के आखिरी भाग में एक इंटरेस्टिंग आइडिया ये है कि आप इस चैलेंज को एक फन एक्टिविटी बना दें अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ मिलकर सुशी बनाएं और फिर कंपेयर करें कि किसका रोल ज्यादा नीट और टेस्टी बना ये सिर्फ कुकिंग नहीं एक बॉन्डिंग एक्टिविटी भी बन सकती है किड्स के लिए भी ये बहुत इंजॉयबल होती है क्योंकि ये एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है जहां आप रोल बना सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं तो दोस्तों जब आप अपने हाथों से सुशी बनाकर सर्व करते हैं और लोग उसे एंजॉय करते हैं तो एक खास सेटिस्फेक्शन मिलता है ये फीलिंग आपको मोटिवेट करती है कि आप और भी डिशेस ट्राई करें सुशी एक स्टार्ट है दोस्तों लेकिन इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आप और एडवांस्ड सुशी स्टाइल भी ट्राई कर सकते हैं या दूसरी क्यूजींस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप खुद पर ट्रस्ट करें हर एक्सपर्ट भी एक दिन बिगिनर था दोस्तों ये हमेशा याद रखिए और आप भी इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं तो भाई आज के प्रोग्राम में हम ये कह सकते हैं सफर में हमने सिर्फ सुशी बनाना ही नहीं सीखी बल्कि कुकिंग को फील भी किया और कुक इट अगेन चैलेंज के जरिए हमने हर स्टेप को एंजॉय किया आगे कर भी सकते हैं और हमेशा याद रखिए कि प्रैक्टिस आपको बेहतर बनाती चली जाती है मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रोग्राम को उतना ही एंजॉय किया होगा जितना मैंने आपके साथ शेयर करते हुए किया है आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस को यादगार बनाएं इसी के साथ मैं आपसे आज के प्रोग्राम से इजाज़त लेता हूँ अपना ख्याल रखिए अगली दफा तक अपनी मॉर्निंग्स ब्राइट रखिए और अपने मील्स माइंडफुल रखिए यह है जूनियर शेफ जहाँ हर बाइट में है मजा और सेहत का प्रॉमिस तो साहब प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और मुझे सरवन मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देश
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामिन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में आसर की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाहु अकबर।

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 पर पैगाम।
2: वक्त एक अनमोल खजाना है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। गया वक्त कभी लौट कर नहीं आता। वक्त का एक लम्हा एक तोला सोने से भी ज्यादा कीमती होता है, जबकि आप एक लम्हे को एक तोला सोने की कीमत अदा करके खरीद नहीं सकते। जब से ये दुनिया वजूद में आई है, वक्त एक ही रफ्तार से रवान दवा है। इंसान तमाम चीजों को अपने काबू में कर सकता है, मगर वक्त और मौत को अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकता। इसमें कोई शक नहीं कि मुश्किल वक्त बताए बगैर आ जाता है, लेकिन यह इंसान को बहुत कुछ सिखा कर ही जाता है। याद रखिए कि मुश्किल वक्त में दूसरों के काम आना बहुत बड़ी नेकी है। दुनिया में रहते हुए मुश्किल वक्त सभी पर आता है, किसी का सब्र देखने के लिए और किसी का ज़र्फ़ देखने के लिए।
1: पैगाम ऑन FM 107।

0: साइंस कैन बी फन? ना, साइंस विल बी फन, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स होंगे तभी तो थ्योरीज फैक्ट्स बनेंगी, है ना? तो बस दुनिया बदलते देखिए हमारे साथ, क्योंकि हम करेंगे फन साइंस एक्सपेरिमेंट दोहा वाले कबीर के साथ, एक इजी एंड सेफ एनवायरनमेंट में। सुनिए और देखिए हमारे साथ ये खास शो जूनियर साइंटिस्ट, सिर्फ FM 107 पर। दिल से देखिए।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कबीर, FM 107 पर। जी दोहा वाला, वही प्रोफेसर साहब जो जूनियर साइंटिस्ट बोल के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। नहीं, मैं अभी थोड़ा सा साइंस में तेज हो गया हूं, सो आई हैव लिटिल मोर कॉन्फिडेंट देन एवर। आई एम लिटिल बिट कॉन्फिडेंट देन एवर, क्योंकि इतने सारे एपिसोड्स करने के बाद अगर मैं गिनती भी करूँ तो हमने 14 एक्सपेरिमेंट्स कर लिए अभी तक, एंड इट हैज़ बीन अ राइड, मजा ही आ गया। तो जूनियर साइंटिस्ट का आज का एपिसोड भी बहुत बहुत खास होने वाला है। शाउट आउट टू ऑल द जूनियर साइंटिस्ट आउट देयर, जितने भी बच्चे नन्हे साइंटिस्ट मुझे सुन रहे हैं, दिस इज योर वेरी नाइस अंकल प्रोफेसर साइंटिस्ट, व्हाट एवर यू वांट टू कॉल मी। लेकिन ये हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जो घर पे मुमकिन है, और ये मैं बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि ये ऐसा ज्ञान दे देगा, शो के नाम में साइंटिस्ट है तो बड़ा ही भारी कुछ बताएगा। नहीं, भारी नहीं, बहुत हल्का। इनफैक्ट अगर बच्चों को छोड़ के बड़े भी क्यूरियस हैं तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट अगर आपके घर में बच्चे हैं उनके साथ आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, इट क्रिएट्स अ कॉमराडरी जहाँ पे आपके बच्चे आपके साथ कुछ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इवेंचुअली एक कंपैशनेट रिलेशनशिप बनता है और भी ज्यादा कंपैशन आता है उसमें, बट दैट इज अप टू यू। मेरा तो काम है जी आपको एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट बताना। And before I begin, social media handles पे आपको आना है 666-22107, 666-22107। यहाँ पे आइएगा। In case you do any experiment, तो please हमें टैग जरूर जरूर कीजिएगा। कई सारे बच्चे मैसेजेस करते हैं, I love the fact कि बच्चे मेरे भी ये वाले शोज भी सुनते हैं, so I love it। So FM 107 Qatar, FM 107 Qatar, और बाकी आप मॉर्निंग में, इवनिंग शोज में जब भी मुझे सुने आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं एंड बता सकते हैं कि कैसा लगा। उसके लिए व्हाट्सएप 666-22107। चलो अभी शुरू करते हैं। तो आज का शो जो है बड़ा सिंपल है। मैं हमेशा कहता हूँ साइंस इज ऑल अराउंड अस, इतने इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं साइंस के, और आज मेरा एक बहुत ही फेवरेट और जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बात करूंगा। इट इज कॉल्ड इनर्शिया। नाम थोड़ा मुश्किल है आई नो, और पता होने के बाद भी लगता है ये इनर्शिया क्या होता है, लेकिन यकीन कीजिए कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल और बहुत ही मजेदार है। सबसे अच्छी बात जानते हैं, आज का एक्सपेरिमेंट आप घर पर सिर्फ और सिर्फ दो चीजों से कर सकते हैं, सिर्फ दो चीजें। एक आपको क्या चाहिए, सिक्का, कॉइन चाहिए, और दूसरा चाहिए आपको अ प्लेइंग कार्ड, कोई भी ट्रम्प कार्ड हो सकता है जो भी आपके घर पे हो, एंड कोई लेबोरेटरी की जरूरत नहीं है, कुछ एक्सपेंसिव इक्विपमेंट लेना ही नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, बस ये दो चीजें और काम हो जाएगा। अब शुरू करने से पहले मैं एक सवाल आपकी तरफ फेंकना चाहता हूं। अगर हम एक कार्ड के ऊपर कॉइन रखें और फिर कार्ड को बहुत तेजी से खींच लें तो क्या होगा? You might have done this experiment a lot of times. क्या हो? Coin card के साथ चला जाएगा, coin side में गिर जाएगा, या coin सीधा नीचे गिर जाएगा? अब जरा सोचिए, इसका जवाब छुपा है न्यूटन के मोशन के एक जबरदस्त रूल में। आपको क्या लगा मैं आर्ट्स का स्टूडेंट था? भाई साहब पढ़ाई वापिस कर ली है, न्यूटन की बातें करता हूँ आजकल मैं। तो अब जरा सेटअप कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा दो ही चीजें, तो सेटअप ज्यादा मुश्किल होगा नहीं, माँ बाप को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। दीज एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस स्पेशली, ये तो बच्चे खुद भी कर सकते हैं। तो आपको चाहिए क्या, एक छोटा मेटेलिक कॉइन और एक फ्लैट प्लेइंग कार्ड, वो कोई भी कार्ड हो सकता है, पोकेमोन कार्ड, रेसलिंग कार्ड, विच एवर कार्ड यू हैव, ऊनो कार्ड, एनीथिंग। कार्ड को टेबल पे आप प्लेस कर दीजिए, ठीक है? अब कॉइन को कार्ड के बिल्कुल सेंटर पर बैलेंस करिए। सिंपल स्टेप है ना, आप इमेजिन करिए, सबसे पहले कॉइन बिल्कुल आराम से रेस्ट मोड में, हाँ कोई छेड़ नहीं रहा उसको, नो तकलीफ, कार्ड हल्का और स्मूथ है। अब हम कार्ड को एक फास्ट फ्लिक देने वाले, एकदम से शॉक जैसे लाइफ देती रहती है। तो कॉइन छोटा है, गोल और चमकदार है, कार्ड हल्का है, इजिली स्लाइड हो सकता है। अगर आप घर पर ट्राई कर रहे हैं तो इंश्योर करिए कि सरफेस भी फ्लैट हो, ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा कर्व्ड सरफेस पे रखे हुए, तो कार्ड को प्लेस भी एक फ्लैट सरफेस पे कीजिएगा। अब एक्सपेरिमेंट मत करिए, पहले प्रेडिक्ट करिए ना, पहले आपस में मिली जुली भगत करनी है आपको। साइंस में प्रेडिक्शन जानते हैं सबसे ज्यादा जरूरी है, ऑल द थ्योरीज दैट आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेडिक्शन एंड देन द एक्सपेरिमेंट एंड देन द ट्रायल्स एंड फेलियर्स एंड एवरीथिंग। सो आपके ख्याल में क्या हो जाएगा, हाँ, आप समझते हैं इनर्शिया को, जब तक आप ही सोचिए। तो इनर्शिया को समझने के लिए सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं, विच इज वेरी सिंपल। इनर्शिया का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट का अपनी करंट स्टेट को मेंटेन करना, इज इनर्शिया। काश मैं खुद का ही टीचर होता तो आज साइंस का सब्जेक्ट होता। बट या, दैट इज व्हाट इनर्शिया इज। किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी करंट स्टेट को मेंटेन करना इज इनर्शिया। सिंपल अगर लफ्ज में बताऊं तो, अगर कोई चीज रेस्ट में है और वो रेस्ट में रहना चाहती है तो वह इनर्शिया है। अगर कोई चीज मूव कर रही है तो वो मूव करती रहनी चाहिए तो वो इनर्शिया है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे चेंज ना करे। वेरी गुड। अब एग्जाम्पल वन लेते हैं, कार की ब्रेक। जब गाड़ी अचानक से नहीं तो घोड़े की आवाज होगी, बट यू गेट द पॉइंट राइट। जब गाड़ी अचानक से ब्रेक लगाती है तो आपकी बॉडी आगे की तरफ झटके से आप आगे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी मूव कर रही है ना, और इनर्शिया की वजह से मूव करते रहना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल टू, ऑन द अदर हैंड, शॉपिंग कार्ट को आप पुश करें वो चलता रहेगा जब तक फ्रिक्शन उसे रोक ना दे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, फुटबॉल को जब आप लात मारते हैं वो रोल करता रहता मोशन में राइट, दैट इज इनर्शिया। देन द स्विंग वन, आप स्विंग पे कभी बैठे? पता नहीं आजकल के बच्चे स्विंग पे होते नहीं होते, मुझे तो पता भी नहीं है, बहुत ज्यादा मैं दुनिया से अलग हूं। पर स्विंग को अगर आप पुश करेंगे वो कंटिन्यूसली मूव करती रहती राइट, दैट इज अ पार्ट ऑफ इनर्शिया। अब जरा न्यूटन के फर्स्ट लॉ को यहां पे ले आते हैं, यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अंग्रेजी में, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स। सिंपल भाषा, चीजें अपनी हालत चेंज करना पसंद नहीं करती जब तक कोई बाहर से उन्हें डिस्टर्ब ना करे। मतलब हम सब जो है टेक्निकली इनर्शिया में ही है। मैं भी नहीं चाहता मुझे कोई बाहर की फोर्स डिस्टर्ब करे, मैं ऐसे ही ठीक हूं, मैं भी अपनी ही सिचुएशन में, अपने ही पोस्चर में, अपनी सिचुएशन में रहना चाहता हूं। तो क्या हुआ? दिस इज इनर्शिया राइट। तो अब फाइनली वक्त आ गया एक्सपेरिमेंट का। कार्ड को टेबल पर रखिए, फ्लैट सरफेस एज आई मेंशन, और कॉइन को कार्ड के ऊपर बैलेंस करिए। अब एक शार्प और फास्ट फ्लिक दीजिएगा, उसे खींच लो उसको। क्या हुआ? कार्ड साइड में निकल गया लेकिन कॉइन हॉरिजॉन्टली मूव नहीं हुआ, कॉइन सीधा नीचे गिर गया। रिजल्ट आया ना, ये है इनर्शिया। कॉइन रेस्ट में था, कार्ड को आपने फोर्स दे दी बाहर से, एक्सटर्नल फोर्स, कार्ड मूव कर गया लेकिन कॉइन ने मोशन रेजिस्ट की, वो रेस्ट में रहना चाहता था, फिर ग्रेविटी ने उसे नीचे पुल कर दिया। ये ग्रेविटी भी ना, तो इस वजह से ऐसा हो गया। आप स्लो मोशन में इमेजिनेशन को अपने ऑन कीजिए, ठीक है? इमेजिन करिए स्लो मोशन में फिंगर फ्लिक करती है राइट, कार्ड तेजी से निकलता है, कॉइन एक सेकंड के लिए ऑलमोस्ट सेम जगह रहता है और ग्रेविटी कहती है अरे तुम भी आओ। दिस इज अमेजिंग। अगर आप नॉर्मली से देखेंगे तो इट इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट, पर अगर आप देखें साइंस के नजर से इट इज एक्चुअली रियली अमेजिंग। और उस नजर से देखने पर ही साइंटिस्ट दुनिया में पैदा हुए, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट करने का मकसद भी। लेट्स गो डीप डाइव इन दिस एक्सपेरिमेंट। अगर आप कार्ड को स्लोली खींचेंगे तो फ्रिक्शन कॉइन को भी साथ ले जाएगी, ठीक है? तो इसलिए हम स्लोली नहीं खींचते, वरना साथ साथ आ जाएगा। लेकिन अगर आप फ्लिक कर देंगे, मतलब झटका देके खींच दिया आपने, तो कॉइन को मूव होने का टाइम ही नहीं मिलता। तो डिस्कशन इस पे कहां के रुकता है? यानी यहां पर क्या हो रहा है, यहां एक और फोर्स काम कर रही है और वो है फ्रिक्शन, जिसके बारे में हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में पढ़ा भी था। फ्रिक्शन कॉइन और कार्ड के दरमियान होती है। फास्ट फ्लिक आपने झटका दिया, कम टाइम फ्रिक्शन के पास था, स्लो पुल किया, ज्यादा टाइम फ्रिक्शन को दे दिया आपने। फ्रिक्शन को भाव नहीं देने का, नहीं तो एक्सपेरिमेंट थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है? तो आप इनको एज कैरेक्टर्स इन अ साइंस समझिए। और मैं हमेशा से कहता हूं, जब भी आपको कोई साइंस का टर्म समझ में ना आए तो ऑलवेज कंसिडर दैट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू अ पर्सन। वो एनालॉजी अगर आप देंगे तो आपके लिए सबसे ज्यादा आसानी रहेगी। आप इसको बंदा समझ लें या बंदी समझ लें कि जी ये फ्रिक्शन है, तो वैसे करके समझेंगे ना तो आपको जल्दी जल्दी याद होगा। आप अगर आप इनर्शिया को भी कोई बंदा बंदी समझ लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी इनर्शिया का डेफिनेशन को, इनर्शिया की डेफिनेशन को समझने में। कुछ वर्ड साइंस के ऐसे होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जो हम जानते हैं इन द बैक ऑफ आर माइंड, लेकिन वो सही टाइम पे बाहर नहीं आती डेफिनेशन। वो इसलिए कि हमने उन्हें समझा नहीं, याद किया है। दोनों में बहुत फर्क होता है, समझना और याद करना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब एनालॉजी भी हो जाते हैं, तो इमेजिन किसी ने आपके नीचे से जो चेयर है खींच ली। स्कूल में करते हैं ना लोग, कॉलेज में करते हो, करना नहीं है, अच्छी बात नहीं है, पर मैं इसे पास्ट टेंस बना देता हूँ। अच्छा ठीक है, करती थी एक टाइम पे, करती थी। तो चेयर जो है वो अचानक से खींच ली, बंदा बैठा या बंदी बैठी हुई, आप नीचे गिर जाएंगे क्योंकि आपकी बॉडी इनर्शिया की वजह से सेम प्लेस पर रहना चाहती है, वो इनर्शिया में है ना, सेम प्लेस पर रहना चाहती है। अब खींची चेयर तो आप थोड़ी उड़ के पीछे चले गए, आप वहीं के वहीं रहे पर गिर गए। अब एक फन इसमें वेरिएशन लाते हैं, थोड़ा फर्क पड़ेगा, बी रेडी फॉर। अब जो कॉइन आपने लिया था उसकी जगह कोई हैवी कॉइन ले लीजिए, इंडियन ज्यादा रिलेट कर पाएंगे भाई, वो जो भारी वाला पांच वाला कॉइन होता है समझ गए ना, वो समझा देना, कोई भारी कॉइन ले लीजिए। अब ऑब्जर्व कीजिए क्या आप डिफरेंस पाएंगे, कुछ डिफरेंस आएगा क्या, क्या इनर्शिया स्ट्रॉन्गर फील होती है, क्या हो जाएगा। अब अगर एक और वेरिएशन दें, चलिए कॉइन को हटाइए, आप कार्ड को ही थिक कर दीजिए, पता नहीं थिक कार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर है आपके पास कार्ड तो आप ये भी एक वेरिएशन दे सकते हैं, एक थिक कार्ड को इस्तेमाल करें। प्लास्टिक कार्ड ट्राई कर लीजिए, प्लेइंग कार्ड ट्राई करिए, और फिर नोटबुक का जो कवर है उसे ट्राई कीजिए। एक और वेरिएशन दो मजेदार वाली, मल्टीपल कॉइन्स, दो या तीन कॉइन्स स्टैक करिए एक के ऊपर एक, क्या होगा, क्या होगा भाई साहब, क्या होगा, सोचिए सोचिए सोचिए, बताइए जल्दी से बताइए। और ये इस दौरान एक्सपेरिमेंट करते करते आप मुझे टैग भी कर सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पर, FM107 Qatar, FM107 Qatar, साथ ही में व्हाट्सएप भी करते रहा करें, कौन सा एक्सपेरिमेंट आपका फेवरेट है ये भी जरूर बताइएगा 666-22107 पर। नाउ द चैलेंज टाइम, जैसे मैंने कहा साइंस में प्रेडिक्शन अजम्पशंस थ्योरी इट्स ऑल फाइन करना पड़ता है, तो प्रेडिक्शन चैलेंज क्या है, अगर कॉइन एक के ऊपर एक छोटा इरेजर रख दें आप, कॉइन के ऊपर एक छोटा सा इरेजर रख दें, क्या होगा बताइए। यू टेक योर टाइम, जब तक मैं आगे बढ़ता हूं फिर मैं इन सब सवालों के आंसर दूंगा। अब इनर्शिया को ही हम असल जिंदगी में देख लेते हैं, सीट बेल्ट जो है जो आपकी गाड़ी में आपको लगानी चाहिए, जान की फिक्र नहीं तो चलान देने से डरते ही होंगे, तो सीट बेल्ट इनर्शिया की वजह से जरूरी है, कार रुकती है बॉडी मूव करती रहती है ना, है ना, तो सीट बेल्ट आपको क्या करती है, रोक देती है आपको भाई। अब तीन वजह सीट बेल्ट लगाने की आपके पास, ठीक है, एक तो आपकी जान का खतरा है उससे बचिए, फिर आपको चलान का खतरा है चलान से बचिए, और तीसरा सीट बेल्ट आपको रोक रही है, इनर्शिया की इज्जत कीजिए, ये भी इज्जत मांगती है। अब अगर मैं ये एग्जांपल बिल्कुल आसमानी बना दूं, स्पेस में ले जाऊं, स्पेस में फ्रिक्शन बहुत कम होती है, याद है हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में शेयर किया था, स्मॉल रिविजन हो जाएगा, इसलिए प्लैनेट्स जो होते हैं, जो ग्रह हैं प्लैनेट्स हैं, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, करते रहते हैं, फ्रिक्शन ही बहुत कम है। अब जरा धरती पे आ जाएं तो आइस स्केटिंग एग्जांपल ले लीजिए, आइस पर लोग स्मूथली ग्लाइड करते चले जाते हैं मक्खन की तरह, बिकॉज अगेन स्पेस वाला मामला है, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कम, दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग। अब टेबल क्लॉथ एक ट्रिक है जो आपने अक्सर वीडियोस में और बहुत सारे सो कॉल्ड मैजिशियंस को करती हुई देखी होगी, मैं भी इसी मामले में एक सस्ता मैजिशियन हूँ, मैं भी ये ट्रिक कर लेता हूँ। मैजिशियंस टेबल क्लॉथ खींच देते हैं ना, और टेबल पे प्लेट्स मोस्टली प्लेस रहती हैं, पर प्लेट्स नहीं गिरती, नीचे कपड़ा हट जाता है, बोलते हाँ ये कैसे किया, ये साइंस है, साइंस की ये तो ब्यूटी है, ये है इनर्शिया। अब बिल्कुल देसी लोगों के लिए एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, बस का, बस सडनली मूव करना चालू करे, आप क्या होते हैं, आप पीछे गिर जाते हैं, पीछे आपको एक पुश आता है, किसने धक्का थोड़ी दिया, ये क्या है, ये इनर्शिया है। एयरप्लेन का एग्जांपल ले लीजिए, जो अब हम लोग यहां पे आए गए तो एयरप्लेन इज द बेस्ट एग्जांपल, टेक ऑफ के वक्त बॉडी सीट पर प्रेस होती है ना, पीछे आपको लगता है कि मैं अभी पीछे हो गया, तो ये भी एक पार्ट ऑफ इनर्शिया है। अब जरा एक छोटे से क्विज की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो बहुत सारी चीजें, बट बिफोर आई कंटिन्यू जस्ट अ रिमाइंडर, आप प्लीज प्लीज प्लीज एक तो हमें टैग किया करें, इन एक्सपेरिमेंट्स का मकसद ये नहीं कि सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए है, शो है तो जी बोल दिया कर दिया चले गए, नहीं नहीं नहीं, ये एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं आई एम टेकिंग इट वेरी सीरियसली, और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई ना कोई एक बच्चा, 10 में से 1 बच्चा भी अगर इसे सीरियसली लेगा तो हो सकता है कि उसे साइंस से मोहब्बत हो जाए। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसको स्कूल्स में काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पढ़ाया जाता है, कुछ टीचर्स हैं जो बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं, बट क्योंकि आजकल सोर्स इतना ज्यादा है, आप अलग अलग जगह से साइंस के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग तरीके से आसान तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट, ये रेडियो भी एक वही तरीका है जो आपको साइंस के कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझा सकता है, रिगार्डलेस ऑफ योर एज। हो सकता है कि आपके स्कूल में अभी जिस क्लास में हैं आप, आपकी क्लास में ये कॉन्सेप्ट अभी आया ना हो, पर अगर आप बच्चों को पहले से बता के रखेंगे बेटा इसे इनर्शिया कहते हैं, या कोई जूनियर साइंटिस्ट मुझे सुन रहा है और उसे समझ लिया इनर्शिया क्या है, तो जब ये इनर्शिया का सब्जेक्ट उसके पास आएगा तो वो पहले से रेडी रहेगा ना, कितनी अच्छी बात है, ये खुशनसीबी है आज के ये जेनजीज की, जेनजीज के आगे वालों की भी, क्या कहते हैं उनको पता नहीं, अल्फा कहते हैं नहीं, जेनएक्स कहते हैं, कुछ तो कहते हैं, आई एम नॉट रियली अवेयर ऑफ ऑल द टर्मिनोलॉजी बट आई एम नॉट दैट ओल्ड इनफ टू, पर ठीक है मैं कहीं बीच में अटक गया हूँ, हम मिलेनियल्स की ही प्रॉब्लम है, एनीवे आप समझ गए ना, तो ये प्रमोट कीजिए, उन तक पहुंचाइए, तब जाके मजा है इस बात का, इस शो का तभी मकसद पूरा होगा, ये करने भर के लिए नहीं है। ओके लेट्स गैदर आवर सेल्फ फॉर अ मिनी क्विज, रेडी, एक क्विज खेलें। ओके तो कार जब ब्रेक लगाती है तो बॉडी किस डायरेक्शन में जाती है बताइए, मैसेज कीजिए 666-22107 पर। दूसरा सवाल आपके स्टीरियो सेट पर, कॉइन क्यों नहीं मूव हुआ जब आपने खींचा नीचे से कार्ड को, क्यों नहीं मूव हुआ बताइए। तीसरा, फास्ट फ्लिक बेटर है या फिर स्लो, मतलब कार्ड जिस पे आपने कॉइन रखा है उसे आप बहुत मोहब्बत से खींच रहे हो, हो बिल्कुल छलका के, तो वो ज्यादा सही है या फिर फास्ट खींचेंगे तब हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा होगा, ये बताइए। और इनर्शिया किस चीज की रेजिस्टेंस है, आंसर डिस्कशन पे आप पहुंचेंगे। साइंस सिर्फ फॉर्मूला के अराउंड थोड़ी घूमती है, साइंस ऑब्जर्वेशन है। आपको क्या लगता है ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, मैं बच्चों से ही बात कर रहा हूँ, खातिब हूँ, क्या लगता है बच्चों, ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट बने जिनको आप किताबों में पढ़ते हैं, वो गुस्सा भी आता है,

तलाशे और तराशे। तराशे का कैसे, जब आपका माइंड इन चीजों के लिए ओपन रहेगा, है ना। जब इनर्शिया, ये बड़ों के लिए, जब इनर्शिया आपसे कोई छोटा बच्चा पूछेगा तो क्या आप बता पाएंगे, आप बोलेंगे बेटा स्कूल में पढ़ा था, भूल गया, अब याद नहीं आ रहा इनर्शिया क्या, कुछ तो होता था। तो अभी आपका भी रिविजन है। तो ये शो में नाम इसका जूनियर साइंटिस्ट है, बट हमारा मकसद ये कि हर किसी तक ये शो वैसे ही पहुंचे कि एक जनरल ऑडियंस के किस्म का लगे, कि आपको ये ना लगे हाँ सर बच्चों को ज्ञान मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है। अरे भाई मेरी बात सुन लीजिए, मैं भी कोई साइंस के स्टूडेंट थोड़ी हूँ, बट देन इनर्शिया इज एज अ कॉन्सेप्ट मैंने कुछ दिन पहले देखा था जब ये एपिसोड तैयार हो रहे थे, एंड आई फिगर्ड आउट कि भाई पढ़ना पड़ेगा। सो देन आई फिगर्ड आउट फ्यू थिंग्स, और ये सारे एग्जाम्पल्स उसी की उपज है। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं और आसान भाषा में। तो फैक्ट नंबर वन क्या है, अर्थ भी, हमारा जो अर्थ है इनर्शिया की वजह से ही लगातार मूव कर रहा है। दिस इज इनर्शिया व्हिच इज मेकिंग द अर्थ मूव। ओके, फैक्ट नंबर टू क्या है, एस्ट्रोनॉट्स जो फ्लोटिंग फील आती है उन्हें, दैट इज बिकॉज मोशन और ग्रेविटी अलग अलग तरीके से एक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो लोग फ्लोट कर रहे हैं, है ना। अब फैक्ट नंबर तीन, देसी फैक्ट के क्या थे, ट्रेन जो है जब सडनली रुक जाती है तो पैसेंजर्स को झटका फील होता है, ये भी इनर्शिया का हिस्सा है। नाउ फैक्ट फोर, रोलर कोस्टर्स में कभी आप बैठे, बाय द वे बैठिए, क्योंकि पता नहीं बच्चे आजकल जाते हैं राइड्स वगैरह में, जो लोग माँ बाप ले जा रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। तो रोलर कोस्टर राइड जो होती है वो इनर्शिया की वजह से ही एक्साइटिंग लगती है। अगर वो सिंपल रहती, फॉर एग्जाम्पल आप किसी रोलर कोस्टर में बैठ गया, अगर इनर्शिया का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, इनर्शिया एग्जिस्ट नहीं करती, अल्लाह ताला कहते कि नहीं जी सिर्फ ग्रेविटी है इसी से काम चलाओ, तो आपको मजा भी नहीं आता उसमें। उसका जो मजा है ना, जो एक्साइटमेंट है रोलर कोस्टर की, वो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से, इनर्शिया की वजह से ही है। जब रोलर कोस्टर घूमता है कभी आप अपनी जिस जगह बैठे हैं उससे चिपक जाते हैं ना, पीछे की तरफ आ जाते हैं, एक अजीब सा पुश मिलता है छाती को, आगे जाते हैं अब अगेन एक पुश मिलता है, पुल मिलता है, तो ये इनर्शिया की ही वजह है और क्या ही। तो अभी आज हमने इस इन एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या सीखा उन पे जरा नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हमने बात करी कि भैया इनर्शिया क्या होता है, आई होप इनर्शिया क्लियर हो गया होगा। तो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट बहुत बहुत सिंपल है, क्या है इनर्शिया बताइए, याद है ना, कहा था ना रिविजन करना बहुत जरूरी है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी करंट स्टेट को मेंटेन रखना, सिंपल है। अब हम जैसे मैंने कहा किसी आदमी को ना, आपको कोई दोस्त ले लेते हैं ठीक है, जो बिल्कुल ढीठ है, आपको कोई फ्रेंड है स्कूल का तो वो बहुत ज्यादा स्टबन है, तो उसको आप इनर्शिया नाम दे दीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो इनर्शिया कैसा हुआ कि भाई मेरा दोस्त है इनर्शिया, अपनी करंट स्टेट को मेंटेन रखता है भाई, वो इनर्शिया, किसी ऑब्जेक्ट का अपनी करंट स्टेट को मेंटेन रखना इन वेरी सिंपल टर्म्स इज इनर्शिया। ये है रिवीजन आज के एक्सपेरिमेंट का, आई होप कि ये क्लियर हो गया और बच्चों को भी ये जरूर सिखाएं, पढ़ाएं उन्हें बार बार बार बार इस बारे में बताएं। तो इनर्शिया क्या होता है आज हमने जाना। दूसरा, कॉइन और कार्ड का एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट में कोई भारी भारी चीज का हमने इस्तेमाल भी नहीं किया, बिकॉज नॉट रियली रिक्वायर्ड। सिर्फ सिंपल, आपको एक कार्ड चाहिए पर एक स्मूथ सर्फेस इस्तेमाल कीजिएगा। कार्ड आप वेरिएशन कर सकते हैं, कभी कभार कार्ड के ऊपर जब आप कॉइन जो प्लेस कर रहे हैं उस कार्ड को आप जब फ्लिक करके खींच के निकालेंगे तो कॉइन वहीं रह जाएगा, गिर सकता है, बट इट विल स्टे इन इट्स पोजिशन, ये इनर्शिया है। आप कॉइन को आप हैवी कर सकते हैं, कार्ड को थोड़ा थिक ले सकते हैं, दैट इज अप टू यू, वो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन हैं, आप डिफरेंट वेरिएशन के साथ बच्चों को समझा सकते हैं और बच्चे ये घर में खुद भी कर सकते हैं। और हमने जाना न्यूटन पाजी दी पहली लॉ। न्यूटन भाई साहब का जो पहला लॉ है वो भी बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है, और जो पहला लॉ है उसे अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल दिए हैं आपको, पर मैं अंग्रेजी में और फिर उसको सिंपल भाषा में फिर से बता देता हूँ, जस्ट बिकॉज रिवीजन है, बच्चों के लिए आसान करना है। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, किताबी डेफिनेशन क्या कहती है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। क्या मतलब हुआ, चीजें अपने हाल पर रहती हैं, पसंद करती हैं, या चीजें अपनी हालत चेंज करना पसंद नहीं करती हैं। ये है पहली लॉ ऑफ न्यूटन, जब तक कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उन्हें पुश ना करे तब तक मामला सेम टू सेम रहता है।

सिंपल एज दैट. कितना आसान है ना. अब फ्रिक्शन का रोल हमने सीखा, फ्रिक्शन का रोल हमने कहा स्पेस में भी होता है, फ्रिक्शन के बारे में कितना कुछ जाना हमने. फ्रिक्शन सब चीजें बदल सकती है. कल हमने पिछले जो एक्सपेरिमेंट है, कल कह रहा हूँ पिछले एक्सपेरिमेंट हमने जाना, जो ये आप ग्रोसरी स्टोर में जो ट्रॉली से खेलते हैं ग्रोसरी वाली, वो जब जाती रहती है फ्रिक्शन है, उसे आगे तक ले जा रही है ना खींच के. रियल लाइफ एग्जांपल्स हमने कितने सारे लिए, गाड़ी का ब्रेक लगना, बस का ब्रेक लगना, प्लेन का टेक ऑफ होना, आपका रोलर कोस्टर में बैठना, ये सारे असल जिंदगी के एग्जांपल्स हैं और वेरिएशन और चैलेंजेस हमने कर लिए. तो ऐसा नहीं कि इनर्शिया सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो ऑब्जर्व करने पे दिख रही है या फिर ये सिर्फ कॉन्सेप्ट भर है, मगर इनर्शिया का ना होना कैन ऑल्सो बी अ फॉल्ट. जैसे मैंने कहा ना, रोलर कोस्टर का मजा ही नहीं आएगा आपको अगर इनर्शिया नहीं होगी. तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने इसको बनाया ऐसे कि इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ज़बरदस्त है कि आपको झूले से लेकर हर जगह ये मिलेगा, और जहाँ ये नहीं है वहाँ आपको चीज़ें खलेंगी. और सबसे इम्पोर्टेंट क्या सीखा हमने कि साइंस हर जगह पर है, हर जगह पर है ना. तो अगर आप भी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट बताना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें बताएं. और बताएं भी ऐसे कि आपको ये ना लगे कि अरे ये हो सकता है पहले बात कर चुके होंगे, कोई ऐसी दिक्कत बात नहीं है. हो सकता है कि पहले बात की होगी लेकिन आपकी बात अलग है भाई, आप बताएंगे तो मज़ा आएगा ना. जैसे अब हम एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर रहे हैं, आप भी एक्सपेरिमेंट में बता सकते हैं कि भाई इनर्शिया जो कार में होता है, रॉकेट्स में होता है, फुटबॉल में नजर आता है जब आप किक मारते हैं, प्लैनेट्स में होता है ना, और हमारी बॉडी में ये फोर्स है जिसको हम इनर्शिया कहते हैं. दैट इज हाउ इट इज. अगर चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जस्ट इन केस वाला एग्जाम्पल. अगर आप रनिंग कर रहे हैं और अचानक से रुकने की कोशिश करेंगे तो आपने क्या किया, आपने पावर ब्रेक लगाए अपने, तो क्या होगा, आपकी बॉडी आगे झटका लेती है ना, आगे की तरफ जाते ना एकदम से. अगर आप भागते वक्त एकदम से ब्रेक लगाए, सॉरी फॉर द बैड साउंड इफेक्ट्स बाय द वे, तो अगर आप एकदम से रुकेंगे तो आगे की तरफ झटका लगता है. क्यों लगता है? अगर बस सडनली ब्रेक लगाती है सब पैसेंजर्स पीछे क्यों गिर जाते हैं? ये सब कुछ इनर्शिया ही तो है, ये सब कुछ इनर्शिया है. तो किसी भी चीज का अपने करंट मोशन को मेंटेन करना इज इनर्शिया. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, वो रेस्ट में रहना चाहता है. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो मूव करना चाहता है. न्यूटन की फर्स्ट लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए, वेरी सिंपल. एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स. अब एक और एग्जांपल है, एंड आई हैव रिटन दिस क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी फिट होता है. भाई जो ज्यादा साइंस वाले हैं, अगर ये मजाक भी लगे तो चलेगा, क्रिटिसाइज मत करना, ठीक. कबीर अंकल का दिल बहुत कमजोर है. तो इमेजिन करिए आप फ्राइडे के दिन जो है सुबह सुबह उठे, लेटे हुए हैं बेड पर, अम्मी ने आवाज दी, उठो बेटी, उठो बेटा, लेकिन आप उठना नहीं चाहते, मन नहीं कर रहा है. ये भी इनर्शिया है, मन नहीं कर रहा है. ये ऑब्जेक्ट सोचने समझने की ताकत को जुगा, आनंद भाई हो गए आप, आपका मन ही नहीं कर रहा है उठने का. दिस इज ऑल्सो इनर्शिया. बॉडी रेस्ट में और रेस्ट में रहना चाहती है. तो मम्मी बोले उठो उठो उठो उठो सर उठो, तो आपको क्या बोलना है, मम्मी आई एम सो सॉरी, मैं अभी इनर्शिया में हूँ, मन नहीं कर रहा है मेरा. हमें बोलेंगे क्या, कहाँ पर है इनर्शिया में, है साइंस कैसे आई इसमें. आप बोल देना मैं वो रेडियो सुन रहा था तो कबीर अंकल ने मुझे बताया इनर्शिया ऐसा होता है. तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ, मैं आलस नहीं दिखा रहा हूँ, ये दिखा रही हूँ आलस नहीं है मम्मी, ये इनर्शिया है. हाँ, आप जरा हिस्ट्री ऑफ इनर्शिया में चले जाइएगा, मम्मी और भी सवाल पूछ सकती है ना. तो बताइएगा, सबसे पहले गैलीलियो ने, जो गैलीलियो थे, उन्होंने मोशन को डीपली स्टडी किया था. गैलीलियो भाई साहब ने ऑब्जर्व किया कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो मूविंग ऑब्जेक्ट कभी नहीं रुकेंगे नहीं भाई, वो तो फ्रिक्शन है, ले जा रही है आगे तक खींच के. आइजक न्यूटन भाई साहब जो थे, उन्होंने इनर्शिया को ऑफिशियली एक लॉ बना दिया. ये सारे साइंटिस्ट की मिलीभगत रही है, एक ने देखा, एक ने समझा, एक ने उसे लॉ ही बना दिया. एंड न्यूटन से पहले जो पुराने लोग थे वो सोचते थे कि ऑब्जेक्ट्स नेचुरली रुक जाते हैं, लेकिन एक्चुअली फ्रिक्शन उन्हें रोकती है. मैं आपको एक चीज समझाता हूँ. कई मरतबा क्या होता है,

देख सकते हैं, आंखों देखी चीज है, बट आप ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि ये हो कैसे रही है. एंड यू गेट कंफ्यूज. कोई पूछेगा अच्छा क्या देखा भाई, मैंने गाड़ी रुकते हुए देखी. कैसे रुकी? ब्रेक से. ब्रेक से रुकी. कैसे रुकी? ब्रेक से. आप बोलेंगे ब्रेक से रुकी और क्या. तो ये कॉन्सेप्ट समझाने का जो जो जो कला है वो तब आती है जब आप ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और सिमिलर चीजें अपने अराउंड ढूंढते हैं. इसलिए मैंने पहले कहते थे साइंस इज ऑल अराउंड अस. जब आप अपने आसपास चीजों को देखने लगते हैं तो आपको समझ में आता है यार ये तो हर जगह साइंस लग रही है, क्या कमाल की बात है. और इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी एक चीज होती है. पता है क्या लगा आपको इनर्शिया के टाइप की होती है? भाई साहब इनर्शिया भी अलग अलग टाइप की है, पर आपको इनर्शिया पहले पता होना चाहिए. वो आपको क्लियर कर दिया मैंने. सारे एग्जांपल देखे इनर्शिया के, एग्जांपल्स आप और सुनिए. टाइप क्या क्या है? एक होती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहता है, जैसे कि आप फ्राइडे के दिन बिरयानी खाई पड़ गए, मन नहीं कर रहा, तो यह है इनर्शिया ऑफ रेस्ट. टेबल पर रखी किताब, कॉइन कार्ड पे, सोफा पर पड़ा कुशन, आप बेड पे पड़े हुए, दिस इज ऑल इनर्शिया ऑफ रेस्ट. अब है इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट मूव करते रहना चाहता है. एक रोलिंग फुटबॉल, आपने लात मारी फुटबॉल रोल कर रही है, एक मूविंग कार, रनिंग फैन, आप ऑफिस जाते हुए, दिस इज ऑल इनर्शिया ऑफ मोशन. चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं. फिर आता है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन मेंटेन करना चाहता है, सेम डायरेक्शन. एग्जाम्पल क्या है? कार आपने ली, आप जो है जब कार का ब्रेक लगाते हैं एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना पीछे, दिस इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. तो ये जो चीज है ये आपको ध्यान में रखनी है. एंड एवरी टाइम यू सी समथिंग लाइक दिस ऑब्जर्व. एंड बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज पूछो बड़ों से सारे सवाल. आपकी वजह से ना सुनो ये बड़े भी भूल चुके हैं, इनको याद आएगा, है ना. तो इनका भी टेस्ट ले लेना. आपका मैं टेस्ट ले नहीं सकता, आप तो माशाल्लाह मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन इन बड़ों का टेस्ट लिया करो, इनसे पूछ लिया करो, है ना. अर्थ का मोशन पूछो इनसे, पूछना ये बताओ अंकल अर्थ कंटिन्यूसली मूव कर रहा है क्यों, ऐसे करके पूछ लेना, ठीक है. बताना नहीं मैंने कहा. और ये भी पूछ लेना कि ये भी बता दीजिए मम्मी ये अर्थ घूमते घूमते रुकता क्यों नहीं है, ये बताइए. जवाब बता दूं? जवाब आप पहले तैयार रखना, क्योंकि स्पेस में फ्रिक्शन ऑलमोस्ट होती नहीं है, इसलिए अर्थ कभी रुकता ही नहीं है. फ्रिक्शन ही तो रुकती है ना, अभी हमने क्या सीखा. तो जब फ्रिक्शन ही नहीं है तो अर्थ कहां से रुकेगा. एक और काम करना है, ये सवाल भी नोट कर लो. पेंसिल पेन है कुछ हैंड नोट करो. एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट फील करते हैं, क्यों करते हैं ये भी पूछना. इसके बाद रॉकेट्स पर जाना सीधा, वहां बोलेंगे अरे कहां तक पहुंच गया ये. रॉकेट इंजन फोर्स प्रोवाइड करते हैं, कैसे जा रहे हैं ऊपर, क्या हो रहा है. सैटेलाइट्स की बात कर लेना, बहुत भारी बात लगेगी कि सैटेलाइट्स इनर्शिया और ग्रेविटी से, ग्रेविटी के बैलेंस और ऑर्बिट में रहते हैं, वरना वो कहां रहे हैं ऑर्बिट में, बेचारे मजबूर है कहां जाएं. तो ये जो सैटेलाइट्स हैं वो इनर्शिया और ग्रेविटी की वजह से तो बैलेंस्ड में है, वरना तो हो जाए काम इनका भी. तो बस ब्रेक लगे बॉडी फॉरवर्ड. कार्पेट डस्टिंग फॉर एग्जाम्पल, कार्पेट शेक करते हैं, है ना, एकदम हिला दिया, धड़ धड़ धड़ झाड़ दिया उसको, डस्ट इनर्शिया की वजह से अलग हो जाती है. क्लियर है? ये वाला भी सीन है. ये ज्यादा अच्छा एक्सपेरिमेंट हो सकता है, पर वो ये धूल मिट्टी का, दूसरे में आपको बता नहीं रहता, वरना बच्चे जो है वो सारे के सारे कारपेट आपके साफ कर देंगे. तो जो कारपेट अगर आप शेक करते हैं, थोड़ा झाड़ते हैं, तो डस्ट उस पर सटती है, ये इनर्शिया की वजह से सटती है. आस्क ये क्वेश्चन, पूछिए कि झाड़ने की वजह से डस्ट कैसे निकल गई. तो बड़े क्या बोलेंगे, झटक के निकल गई ना. पर पूछना नहीं नहीं नहीं, झटक के निकल नहीं गई, कैसे निकली, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे. तो कॉन्सेप्ट है इनर्शिया का. पेड़ लाते हैं, पेड़ के ऊपर से आम गिर गए नीचे, इनर्शिया. टेबल क्लॉथ ट्रिक को मैजिशियन सस्ती वाली मैंने बताया आपको, बॉटल ट्रिक है ना, पेन फ्लिक है, ये सब कुछ है. अब आपके ब्रेन में भी मोशन है. सडन मूवमेंट्स क्या होते हैं, जब आप एकदम से मूव करते हैं, ज्यादा चक्कर आते हैं, डिजीनेस होती है, ये ब्रेन का मोशन है. रोलर कोस्टर एक्साइटमेंट इनर्शिया और एक्सेलरेशन की वजह से है. जिम की एक्सरसाइज देख लीजिए, वेट लिफ्टिंग आपने करी है ना, वेट लिफ्टिंग में इनर्शिया फील होती है, तभी तो डोले शोले बन रहे हैं. तो इंपॉर्टेंट रूल क्या है इसका, मास और इनर्शिया आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं. ज्यादा मास इक्वल्स ज्यादा इनर्शिया. क्लियर है? ये चीज आप ध्यान में रखिए. फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए. तो ये चीजें अगर आप याद रखेंगे देन एवरीथिंग इज क्लियर. तो आज हमने मेरे और बहुत सारे लोगों के पसंदीदा टॉपिक बात करी, विच वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया.

0: साइंस. एंड अगर आप भी कुछ जुड़ना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, आपके मन में कोई एक्सपेरिमेंट जो आप दे देना चाहते हैं, तो प्लीज प्लीज बताइएगा. FM 107 Qatar इस नाम से वैसे हम हर जगह मौजूद हैं. एंड आप मुझे भी शोज के दौरान, अलग अलग शोज के दौरान मैसेज जरूर कीजिएगा 666-22-107 पर. जूनियर साइंटिस्ट से दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिएगा, क्या आप बेहद बेहद जरूरी है. मास्सलाम.
1: जूनियर साइंटिस्ट सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी
2: आप FM 107 इसीलिए लगाते हैं बिकॉज हर घंटे सबसे ज्यादा गाने हम बजाते हैं.
3: द रेडियो स्टेशन विद मोर म्यूजिक FM 107 दिल से देसी.

0: दोस्तों, रेकलेस और लापरवाह ड्राइविंग जिंदगियों और मालो दौलत के लिए एक सीरियस खतरा है और एक संगीन ट्रैफिक वायलेशन भी है, और इसके लिए सख्त सजाएं दी जाती हैं जिनमें कैद और गाड़ी की जब्त शामिल है। विदारत दाखला अपने इरादों का वाज़े तौर पर इजहार करती है कि वो ट्रैफिक कवानीन को मजीद मुसलसल तौर पर नाफिज करेगी ताकि कम्युनिटी की सिक्योरिटी और खुशहाली को महफूज रखा जा सके। रेकलेस और लापरवाह ड्राइविंग ना सिर्फ जिंदगियों को खतरे में डालती है बल्कि ये दूसरे लोगों के लिए भी मुसीबत का सबब बनती है। ऐसे रवैये सिर्फ ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं करते बल्कि समाजी और कौमी अमन और इत्मीनान को भी नुकसान पहुँचाते हैं। FM 107 इस बात की मुसलसल ताकीद करता है ताकि हम सब इससे सीखें और ऐसे रवैये इख्तियार ना करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: हे बच्चों, आर यू रेडी गेम्स, मस्ती, स्टोरीज और सुपर फन के लिए?
2: FM 107 पर आता है एक ऐसा शो जहां बोर होने का कोई चांस नहीं।
3: ये शो कौन सा है?
1: द सुपर किड शो।
2: Sunday to Thursday, 1:30 PM से 3 PM तक, only on FM 107, दिल से देसी।
3: I love the Super Kid Show, super fun.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कतर मीडिया कॉरपोरेशन का उर्दू रेडियो आपसे मुखातिब है।

0: वो ये की कफालत में एक ही छत छत के नीचे रहते हैं ना, जी वालदैन के साथ रहते हैं,
1: छत के नीचे रहने के तो एक मसला अलग है। मैं ये कहता हूँ कि क्या वो खुद कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे?
0: जी बिल्कुल खुद भी कमा रहे हैं, खुद भी कमा रहे हैं।
1: जो खुद कमा रहे हैं तो फिर वो बगैर पूछे भी कुर्बानी करेंगे तो अल्लाह ताला उनको अजरात फरमाएगा, और वो उस कुर्बानी के साथ ही अल्लाह ताला से ये भी दुआ भी कर लेंगे, याद है ये कुर्बानी मेरी तरफ से भी है, मेरे वालिद साहब की तरफ से है।

0: समीन, हमारा टेलीफोन नंबर है 443-443-77 और एक और टेलीफोन कॉल आ रही है जी, आ गई। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, ये मेरा नाम
0: मोहम्मद है। मोहम्मद भाई खुश आमदेद, क्या सवाल है मोहम्मद भाई?
1: ये मेरे दो सवाल है।
0: जरूर।
1: कुर्बानी जो है ये
0: साहिब
1: निसाब पे होती
0: है ना? मैं ज़कात क्या
1: ये कुर्बानी है ना, ये जो साहिब निसाब होता है ना, ये कुर्बानी के जो ज़कात के लिए जो साहिब निसाब होते हैं उस पे कुर्बानी होती है ना?
0: साहिब निसाब, निसाब तो ज़कात पे होती है ना, तो अब ये लोगों ने फतवा दिया हुआ है कि अगर साहिब निसाब नहीं है तो फिर उसको लिए कुर्बानी वो उस पर वाजिब नहीं है। कुर्बानी मुमकिन है, ज़रूर करनी चाहिए। जो कुर्बानी नहीं करता है उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्त वईद भी सुनाई है, यानी कुर्बानी कर सकता है। नहीं, मैं निसाब की बात छोड़िए, निसाब की बात तो ज़कात के हवाले से है ना। यहाँ पर निसाब की कोई शर्त नहीं है, कुछ लोगों ने लगाई है, जानता है, हम जानते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है कि अगर आपके पास निसाब है तो आपको कुर्बानी। अल्लाह ने सिर्फ इतना कहा कि जो लोग मनसा, यानी जिसके पास ये गुंजाइश है कि वो कुर्बानी कर सके और उसके बावजूद वो नहीं करता है, तो फिर वो चाहे यहूदियों के मरे, ईसाई हो के मरे, कुछ भी मरे, अल्लाह ताला को इस बात की कोई परवाह नहीं है। इतने सख्त अल्फाज अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाए हैं सिर्फ इसलिए कि वो कर सकता था, नहीं किए। आप कुर्बानी करने के लिए आपको कितने, 400-500 रियाल भी काफ़ी है ना? 400-500 रियाल जो है ये ज़कात के निसाब तो नहीं बनते, इसलिए यहाँ ज़कात के निसाब की शर्त अल्लाह के रसूल ने नहीं रखी है। कुछ उलमा ये कहते हैं, लेकिन वो दलील कम अज़ कम हमें तो बहुत कमज़ोर लगती है, इसलिए ठीक है, उनका इज्तिहाद है, उन्होंने किया ठीक, लेकिन अल्लाह के रसूल ने जिस ज़ोरदार तरीके से, जितनी शदीद तरीके से जो तरगीब दिलाई है कुर्बानी करने की, तो उसका ख्याल करते हुए हमें कुर्बानी करनी चाहिए। कर सकते हैं तो ज़रूर करें, नहीं कर सकते तो ठीक है, फिर मजबूरी है, लेकिन कर सकते हैं। उसके बावजूद नहीं नहीं नहीं, मैं तो इतने पैसे तो मेरे पास नहीं कि मेरे पास मैं उस पर ज़कात देने वाला बनूं, ज़कात देने वाला बनूंगा फिर मैं कुर्बानी भी कर दूंगा। ये जो पख लगाई गई है ये मुनासिब नहीं है, इस तरह नहीं लगाना चाहिए। अल्लाह के रसूल के कम अज़ कम मंशा नज़र नहीं आता। नहीं, ये तो जो फ़र्द कमा रहा है ना, मतलब अब्बा जी कमा रहे हैं, सारे आमदन उसकी आमदनी का ज़रिया अब्बा जी हैं, तो अब एक छोटा बच्चा कह के अब्बा जी आज आप इस दफ़ा आप कुर्बानी करें, मैं दूंगा, बच्चे के पास क्या है, वो अब्बा जी के पैसे हैं, चाहे ठीक है बच्चे को खुश करने के लिए ठीक है कह दें, हाँ ठीक है बेटे आपकी तरफ से, हालांकि वो सबकी तरफ से होती है तो सबकी तरफ से हो जाएगी, लेकिन जिसके पास इस्तात है, जो घर चला रहा है, जो घर का जिम्मेदार है, वो अपने घर की तरफ से कुर्बानी एक देगा। मसलन आपके शादी हो गई है, आपकी एक फैमिली है, यहाँ नहीं है, अपने वतन है, कहाँ भी है, एक एक घर तो है ना, एक यूनिट तो है, अब उस यूनिट की जिम्मेदारी आपके पास है, आप कमा भी रहे हैं, आप कुर्बानी कर भी सकते हैं, तो हाँ अब्बा जी कर देंगे, वो आपकी तरफ से हो जाएगी? नहीं, अब्बा जी अपने घर की तरफ से जिम्मेदार हैं, आप अपने यूनिट अपनी फैमिली के जिम्मेदार आप हैं भाई। इसी तरह हर फर्द जिम्मेदार है, जो भी कमा रहा है, जिसके पास पैसे हैं, आमदन है, गुंजाइश है कुर्बानी लेके, वो अल्लाह की राह में कुर्बान कर सकता है, उसे कुर्बानी करनी चाहिए।
1: और दूसरा सवाल ये था कि जो बायर है उसका कुर्बानी मुल्क में हो सकता है कि वो यार और कुर्बानी हो सकता है?
0: क्या मैं जरा दोबारा भाई कहिए कि क्या फरमा रहे?
1: मतलब एक बंदा है वो बायर है, चाहे बायर मुल्क में है, तो
0: ज़ाहिर अब मतलब हम लोग यहाँ पर खलीज में रहते हैं, बाहर अपने घर से बाहर है, अपने मुल्क से बाहर है, अपने हमारी फैमिलियाँ अपने मुल्कों में हैं, अगर और वहाँ पर आप पैसे भेज दें, वो अपने कुर्बानी ख़रीदें और ज़िबा करा दें या कर दें, खुद भी कर सकते हैं और करा भी सकती हैं, कुर्बानी दे सकती हैं, पैसे वगैरह बंदोबस्त चाहे वो उनके पास आपके पहले से भेजे हुए पड़े हों उसमें से दे दें, या आप और अपनी तरफ से फौरी इस मौके पर मज़ीद भेज दें तो वो उससे ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चूँकि वो कुर्बानी आपकी फैमिली की तरफ से हो रही है तो ज़िम्मेदारी वो आपकी है, उनके पास ذمہ داری نہیں ہوگی, اس لیے کہ وہ کر سکتے ہیں, لیکن

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

रिलेशनशिप्स एंड फेथ. जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, आपके पास एक नया दिन होता है, आप सांस लेते हैं, आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप चल सकते हैं, लेकिन कितनी ही दफा हमने रुक कर ये कहा हो अल्हम्दुलिल्लाह. कितनी दफा हम उन छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को नोटिस करते हैं जो हमारी जिंदगी को आसान बनाती हैं. देखिए, अक्सर हमारी आदत होती है कि हम उन चीजों पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं होती. मेरे पास ये नहीं है, मेरी लाइफ परफेक्ट नहीं है, दूसरों के पास मुझसे ज्यादा है, और आहिस्ता आहिस्ता ये सोच हमारे माइंडसेट को नेगेटिव बना देती है साथियों. लेकिन यहाँ एक पावरफुल चेंज आता है जब हम शुक्र को अपनी डेली हैबिट बना लेते हैं ना, तो भाई माइंड जो है ना वो गेम फ्लिप कर देता है पूरी पूरी. देखिए, शुक्र सिर्फ थैंक यू कहने का नाम नहीं होता साथियों, शुक्र एक फीलिंग होती है, एक सोच होती है, एक लाइफस्टाइल होता है. जब आप शुक्र करते हैं ना, तो आप अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं. आपको वो सब कुछ नजर आने लगता है जिसे आप पहले छोटा समझते थे या इग्नोर कर देते थे कि भाई ये तो डेली लाइफ की चीज है, कौन से कोई नई बात है. आपको सब कुछ नजर आने लग जाता है. चलिए एक छोटी सी रियल लाइफ सिचुएशन देखते हैं, ठीक है. यूं कह लें कि एक बच्चा है, उसका नाम है हसन, ठीक है. उसका एक नया दोस्त एक एक्सपेंसिव शश की मारता हुआ गैजेट लेकर आता है. हसन उसे देखकर उदास हो जाता है, उसे लगता है कि उसकी लाइफ कितनी ही बोरिंग है. ओहो, मेरे पास ये नहीं, मेरे दोस्त के पास है. लेकिन उसकी अम्मी उसे ये कहती है कि बेटा जरा सोचो, तुम्हारे पास क्या क्या है, इस चीज के ऊपर फोकस करो. अच्छा भाई, ये बात सुनकर हसन भी थोड़ा सा जो है ना वो हो जाता है, कॉन्शियस हो जाता है. आहिस्ता आहिस्ता वो अम्मी की बात के ऊपर सोचने लगता है, हाँ भाई क्या है मेरे पास. उसके पास एक केयरिंग फैमिली है.

0: इंसान का फोकस चेंज हो जाता है।
1: वो कंपेयर करना छोड़ देता है और अप्रिशिएट करना शुरू कर देता है, और ये है शुक्र का असर, यानी कि माइंडसेट चेंज हो जाता है भाई इंसान का। अच्छा, जब माइंडसेट चेंज होता है ना, तो सिर्फ आपकी सोच नहीं बदलती बल्कि आपके रिलेशनशिप्स भी बेहतर हो जाते हैं। जरा सोचिए, जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, आपने कह दिया थैंक यू अम्मी, शुक्रिया टीचर, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फ्रेंड, क्या होता है इससे? आपको पता है क्या होता है सामने वाले के दिल में क्या फील होता है, आपने कभी सोचा है? मैं बताती हूँ, सामने वाले को लव फील होता है, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, कनेक्शन। देखिए, शुक्र लोगों को करीब लाता है आपके। अच्छा, इसकी ना मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। एग्जांपल दी जाए ना, चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। एक बच्ची आयशा, ठीक है, आयशा और उसकी बहन के दरमियान अक्सर उकार झगड़ा होता रहता है। दोनों एक दूसरे की गलतियां निकालती रहती हैं, ये होता है, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग इन सिबलिंग्स। एक दिन उसकी टीचर ने उन्हें एक टास्क दिया। क्या था भाई टास्क? हर दिन एक दूसरे के बारे में एक अच्छी बात लिखो। शुरू में तो उन्हें बड़ा अजीब लगा, भाई हमारी लड़ाइयाँ खत्म नहीं होती, हम अच्छाइयाँ कहाँ से गिनना शुरू करेंगे? कहाँ ही कोई आयशा में कोई अच्छाई होगी, उसकी बहन ने सोचा होगा कि मैं क्या ही लिखूं उसके लिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ये नोटिस किया कि उनके दरमियान फाइट्स कम होने लग गई। और ऐसा क्यों था पता है क्यों? क्योंकि जब आप शुक्र करते हैं ना, तो आपका फोकस गलतियों से हटकर अच्छाइयों पर आ जाता है। टीचर ने जब ये कहा था ना कि आप एक दूसरे के बारे में कोई अच्छी बात लिखो, तो इसका मतलब था they had a task which they had to find stuff, good one, positive one. तो उन्होंने फोकस शिफ्ट किया ना, बजाय इसके कि लाउड नॉइजेस के ऊपर और झगड़े के ऊपर फोकस किया जाए, उन्होंने कहा भाई कुछ तो अच्छा होगा ही ना, टीचर ने कहा है मेरी कि लिखना है तो लिखना तो है। फिर क्या हुआ? माइंडसेट शिफ्ट हुआ, और बजाय इसके कि वो एक दूसरे की नेगेटिविटी देखती, लड़ाइयां इसलिए कम हुई क्योंकि वो फिर अब पॉजिटिविटी देखना शुरू हो गई थी। और सबसे गहरा असर पता है फेथ पर होता है इसका। देखिए, इस्लाम में शुक्र का बहुत हाई मकाम है। जब बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है ना, तो वो अपने रब के और ज्यादा करीब आ जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। ये सिर्फ मटेरियल चीजों की बात नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि मैं शुक्र करूंगा तो मुझे खिलौने ज्यादा मिल जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये मटेरियल चीजों की बात नहीं है, बल्कि सुकून की बात है, बरका और इनर पीस के बारे में बात हो रही है। अच्छा भाई, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल भी उठता है साथियों, क्या हम सिर्फ तब शुक्र करते हैं जब हमें सब कुछ अच्छा मिल रहा हो, या फिर मुश्किल वक्त में भी शुक्र किया जा सकता है? देखिए, ये वो लेवल है जहाँ असली ग्रोथ

0: हाल के लिए टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, वो उदास होता है जैसा कि मैं और आप हो सकता है, फ्रस्ट्रेट होता है जैसा कि एक यूजुअल चीज है, लेकिन उसका भाई उसे ये कहता है, समझाता है इसमें भी कोई खैर ही हो सकती है, यानी कि शायद तुम्हें ज्यादा मेहनत करने का सिग्नल मिल रहा है। बिलाल आहिस्ता आहिस्ता अपनी मिस्टेक को सोचता है और उससे सीखने की कोशिश करता है। और अगले टेस्ट में पता है क्या होता है, बिलाल के दिमाग में बात अड़ गई होती है कि उसे ज्यादा मेहनत करनी है, और अगले टेस्ट में वो बेटर करता है। अगर वो सिर्फ कंप्लेन करता रह जाता, जरा सोचिए ना, अगर वो रोना धोना ही लगाता कि नहीं भाई मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते, मेरे तो ये हो रहा है, मेरा तो वो मसला हो रहा है, मेरी टीचर अच्छी नहीं है, तो क्या होता, वो फ्लिप नहीं कर पाता ना माइंडसेट अपना। उसने क्या किया, उसने अपनी थोड़ी सी थिंकिंग चेंज की, उसके अपने भाई के ऊपर ध्यान दिया बात के ऊपर, और उसने थिंकिंग चेंज की। उसने कहा बजाय इसके कि मैं कंप्लेन करता रहूं, क्यों ना मैं अपने टाइम को यूटिलाइज करूं। अगर वो कंप्लेन करता रहता तो शायद वो ग्रो नहीं करता, लेकिन शुक्र ने उसे लर्निंग मोड पे डाल दिया। तो प्यारे लिसनर्स, शुक्र एक ऐसी हैबिट है जो आपकी जिंदगी के हर हिस्से को टच करती है, यानी कि माइंडसेट, रिलेशनशिप्स और फेथ। ये आपको नेगेटिव से ना पॉजिटिव की तरफ लेकर आती है, कंप्लेन से कंटेनमेंट पे लेकर आती है, और स्ट्रेस से सुकून की तरफ ले जाती है। साथियों, अब जरा आप अपने आप से जरा पूछिए कि मैं रोज कितनी दफा शुक्र करता हूँ, क्या मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स देखता हूँ या ब्लेसिंग्स भी नोट करता हूँ, क्या मैं लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ या उन्हें फॉर ग्रांटेड ले लेता हूँ। देखिए, ये सवाल आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, जरा सोचिए इन बातों पर, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई आज के इस नए सफर की शुरुआत यही से होती है साथियों, एक छोटी सी आदत से। हर दिन तीन चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, छोटी हो या बड़ी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आहिस्ता आहिस्ता आप ये देखते हैं कि आपकी सोच बदल रही है, आपका दिल हल्का हो रहा है और आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी आ रही है। तो साथियों, मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं गाइडिंग लिटिल हार्ट्स ऑन FM 107। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब हम इस टॉपिक को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे शुगर को एक पावरफुल डेली हैबिट बनाया जा सकता है। ये सफर अभी भी जारी है।
1: गाइडिंग लिटिल हार्ट्स RJ सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, बिकॉज दिस शो इज एन इंस्पायरिंग कंपेनियन फॉर स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ।
0: साथियों, थोड़ी देर पहले हमने ये जाना कि शुक्र सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, मतलब थैंक यू बोल देना कोई एक वर्ड नहीं है, बल्कि एक पावरफुल सोच है जो हमारी जिंदगी को अंदर से बदल सकती है। चले भाई, अब आगे मूव ऑन करते हैं डिटेल्स की तरफ और एक्सप्लोर करेंगे कि इस्लाम हमें शुक्र के बारे में क्या सिखाता है, ये हमारे माइंडसेट, हमारे रिलेशनशिप्स और फेथ को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है और कैसे हम इसे अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। प्यारे लिसनर्स, सबसे पहले एक सिंपल सी बात समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस्लाम में शुक्र का कॉन्सेप्ट बहुत ही गहरा और सेंट्रल है। ये सिर्फ थैंक यू कहने तक महदूद नहीं है। जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना, तो हम असल में ये एक्नॉलेज करते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है, चाहे वो छोटा है या बड़ा, वो अल्लाह की तरफ से है। ये एक रिकॉग्नाइजेशन है, एक रियलाइजेशन है और कनेक्शन है हमारे रब के साथ। देखिए, कुरान मजीद हमें ये भी बताता है कि अगर हम शुक्र करेंगे तो अल्लाह ताला हमें और ज्यादा देगा। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, और ज्यादा का मतलब सिर्फ पैसा, गैजेट्स या मटेरियल चीजें नहीं होती। कभी कभी और ज्यादा का मतलब होता है सुकून, इनर पीस, बरका और एक ऐसा दिल जो मुतमईन हो, जिसे तसल्ली हो, फुल ऑन पीस में हो। आपने शायद अपनी लाइफ में देखा होगा कि कुछ लोगों के पास ना सब कुछ होता है, लेकिन वो फिर भी रेस्टलेस से लगते हैं, मतलब उनको सुकून नहीं होता। और कुछ लोग सिंपल जिंदगी जीते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है। ये असल फर्क होता है शुक्र का। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दो क्लासमेट्स हैं, अली है, जैन है, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों के पास सिमिलर रिसोर्सेज हैं, सिमिलर एनवायरमेंट है, लेकिन अली हर वक्त कंप्लेन करता रहता है। उसे लगता है कि उसकी लाइफ अनफेयर है, मुझे ये नहीं मिला, मेरा टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, मेरे पास लेटेस्ट फोन नहीं है। होता ये कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी सोच नेगेटिव होती चली जाती है, वो छोटी छोटी चीजों में भी फ्रस्ट्रेशन फील करने लगता है। अब दूसरी तरफ तो जैन है भाई, उसकी लाइफ भी परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। हम में से किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती, मैं आपको ये बता दूं। तो वैसे ही जैन की लाइफ भी परफेक्ट नहीं है, यानी कि उसके भी चैलेंजेस हैं, बट उसके चैलेंजेस का अप्रोच जो है ना, वो बड़ा डिफरेंट है। वो हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ ही लेता है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हेल्दी हूँ।

अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सीखने का मौका मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सपोर्टिव फैमिली है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा जरा सोचें। देखिए ज़ैन का एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है, वो इमोशनली स्टेबल रहता है और उसका कॉन्फिडेंस भी स्ट्रांग है और यही चीज उसके कॉन्फिडेंस को भी स्ट्रांग बनाती है। दोनों की जिंदगी बिल्कुल सेम है लेकिन उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट है ना, और ये डिफरेंस शुक्र क्रिएट करता है। अब जरा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की तरफ आते हैं साथियों, एक नजर डालते हैं जहां हमें शुक्र का सबसे खूबसूरत और प्रैक्टिकल एग्जांपल मिलता है। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, लॉस हो गए, हार्डशिप्स हो गई, ऑपोजिशन हो गई, लेकिन कभी शुक्र को नहीं छोड़ा उन्होंने। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रातों को इतनी लंबी लंबी नमाजें पढ़ी थी कि आपके पांव मुबारक सूज जाते थे। जब आपसे पूछा गया कि आप इतनी इबादत क्यों करते हैं जबकि आपके गुनाह तो माफ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता क्या फरमाया, आपने फरमाया क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। ये जवाब सिर्फ एक जुमला नहीं है बल्कि एक पूरा माइंडसेट है। ये हमें ये सिखाता है कि शुक्र सिर्फ तब नहीं होता जब हम कुछ परफेक्ट मिल जाए हमें, बल्कि हर हाल में होना चाहिए ना। देखिए अब हम शुक्र के 3 लेवल्स को समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि प्रैक्टिस भी है। पहला लेवल दिल के सुकून का होता है, यानी कि आप जेन्युइनली ये फील करते हैं कि भाई मैं ग्रेटफुल हूँ फॉर एवरीथिंग आई हैव, ये अंदर का एहसास होता है। दूसरा लेवल होता है जबान से शुक्र करना, हम पढ़ते हैं ना तस्बीह पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहना अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को थैंक यू कहना। और तीसरा लेवल है अमल का शुक्र, यानी कि जो ब्लेसिंग्स आपको मिली है उन्हें सही तरीके से यूज करना। चलिए इसे भी एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए हमारे माइंड में। एक बच्ची, उसका नाम हिबा, जो बहुत अच्छी ड्राइंग करती है, उसे अल्लाह ताला ने क्रिएटिविटी दी है। अब अगर हिबा सिर्फ ये कह दे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं टैलेंटेड हूँ लेकिन अपनी स्किल्स को यूज ही ना करे, प्रैक्टिस ही ना करे या उस टैलेंट को वेस्ट करे, तो ये कम्प्लीट शुक्र तो नहीं होता ना। लेकिन अगर वो अपनी ड्राइंग से लोगों को खुश करे, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करे और इस टैलेंट को पॉजिटिव काम में यूज करे, तो ये अमल शुक्र के बराबर है। ये वो लेवल है जहाँ शुक्र एक एक्शन बन जाता है। अच्छा प्यारे लिसनर्स, आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताती हूँ जो कि मेरे दिमाग में अभी अभी आया कि शुक्र का असर सिर्फ आप तक नहीं होता बल्कि आपके रिलेशनशिप्स पर भी होता है। जब आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं ना, उनकी छोटी छोटी एफर्ट्स को नोटिस करते हैं, उनके दिल में आपके लिए बहुत मोहब्बत बढ़ जाती है, रिस्पेक्ट आ जाती है। जरा सोचिए ना, एक घर में जहाँ बच्चे अपनी अम्मी से थैंक यू से बात करते हैं, प्यार से उन्हें कमेंट्स देते हैं कि अम्मी थैंक यू आपने खाना बनाया हमारे लिए, या अब्बू आई अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क, पता है क्या होता है, ऐसे घर ना ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एनर्जी से भर जाते हैं, लव से भर जाते हैं। इस तरह दोस्ती में भी जब आप अपने फ्रेंड्स को वैल्यू देते हैं ना, उनकी अच्छाइयों को हाईलाइट करते हैं, तो आपके बॉन्ड्स आपके दोस्तों के साथ स्ट्रांग होते चले जाते हैं। जैसे कि आप यूं कह लें कि एक बच्ची है, उसका नाम है मासूमे और उसकी बेस्ट फ्रेंड नूर के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है, दोनों एक दूसरे से दूर रहती थी। फिर एक दिन मासूमे ने डिसाइड किया कि वो नूर के लिए ग्रेटफुल चीजों को याद करेगी, उसे दोस्ती अपनी वापस चाहिए थी। उसने याद किया कि नूर ने मुझे मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया था, वो मेरी बहुत बातें सुनती थी। ये सोच उसके एटीट्यूड को चेंज कर देती है, वो नूर से बात करती है, अप्रिशिएट करती है और आहिस्ता आहिस्ता उनकी दोस्ती वापस से स्ट्रांग हो जाती है। ये है शुक्र का मैजिक, ये रिलेशनशिप्स को हील करता है। अब एक और गहरी बात आती है इसी के साथ, क्या शुक्र सिर्फ आसानी के वक्त होता है या मुश्किल वक्त में भी शुक्र अदा किया जा सकता है? देखिए असल में सबसे पावरफुल शुक्र वो होता है जो मुश्किल वक्त में किया जाए। तो आप कहेंगे ये क्या बात हुई। देखिए जब आपके पास कंप्लेन करने को बहुत सारे रीजंस होते हैं ना, लेकिन फिर भी यू चूज, यानी कि आप कोई छोटी सी चीज ही ढूंढ लेते हैं जिसके लिए आप शुक्र अदा कर सकें, ये आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाता है भाई। अच्छा इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए एक बच्चा है, उसका नाम क्या रख लें हम, हाशिम है, ठीक है, वो उदास होता है, उसे लगता है कि सब खत्म हो गया है भाई जिंदगी से, लेकिन फिर वो ये सोचता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी भी चांस है इम्प्रूव करने का, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे समझ आ गया कि मुझे और मेहनत करनी है। ये माइंडसेट उसे विक्टिम बनने से बचाता है और लर्नर बना देता है, ये होती है ग्रोथ। वाह भाई वाह हाशिम। अच्छा शुक्र और सबर का कनेक्शन भी यहाँ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। जब सब कुछ अच्छा हो रहा हो तो

0: शुक्र। जब मुश्किल हो तो सबर, लेकिन जब मुश्किल में भी शुक्र करते हैं हम, तो आपका सबर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन एक बिलीवर को इमोशनली और स्पिरिचुअली बिल्कुल बैलेंस्ड बनाता है। अब मैं चाहती हूँ साथियों कि आप थोड़ी देर के लिए रुक कर अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या मैं रोजाना अपनी ब्लेसिंग्स को नोटिस करता हूँ? क्या मैं सिर्फ चीजों पर फोकस करता हूँ या जो मेरे पास है मैं उन पर भी फोकस करता हूँ? क्या मैं लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ या उन्हें फॉर ग्रांटेड लेता हूँ? क्या मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक वर्ड है या एक फीलिंग भी है? ये सवाल सिंपल लगते हैं साथियों, लेकिन अगर आप इन पर ऑनेस्टली रिफ्लेक्ट करें ना, तो ये आपकी जिंदगी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो प्यारे लिसनर्स, शुक्र एक ऐसी हैबिट है जो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होती है। ये एक दिन में नहीं आती, लेकिन जब आप कंटिन्यूसली इस पर काम करते हैं ना, तो आपका दिमाग ट्रेन हो जाता है, पता है किसकी तरफ? पॉजिटिविटी की तरफ। आप प्रॉब्लम्स के बीच बैठकर भी ब्लेसिंग्स देख सकते हैं, और ये बिल्कुल एक अलग ही डायमेंशन की स्टोरी है। तो भाई, आज का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, शुक्र को सिर्फ एक वर्ड नहीं रखें, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, दिल से फील करें, जुबान से एक्सप्रेस करें और अपने एक्शन से इम्प्रूव करें। क्यों? क्योंकि जब शुक्र आपकी आदत बन जाता है तो आपकी जिंदगी एक नई रोशनी से भर जाती है। तो साथियों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले आने वाले कुछ मिनटों में हम सीखेंगे कि कैसे प्रैक्टिकल टूल्स के जरिए हम शुक्र को डेली रूटीन का पार्ट बना सकते हैं। ये सफर अभी जारी है साथियों।
1: गाइडिंग लिटिल हार्ट्स आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, बिकॉज दिस शो इज एन इंस्पायरिंग कंपेनियन फॉर स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ।
0: तो भाई साथियों, आज हम अपने टॉपिक ग्रेटिट्यूड एज अ डेली हैबिट के ऐसे हिस्से की तरफ आ गए, जिसे हम कहते हैं टूल्स फॉर डेली लाइफ। तो भाई लिसनर्स, हर बड़ा चेंज छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। शुक्र भी ऐसी ही एक आदत है जो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होती है। इसीलिए कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल टूल्स हैं जो हर बच्चा या हर यंग लिसनर, या मैं कहूंगी कि एडल्ट्स भी अपनी डेली लाइफ में इसे यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला टूल है पॉज एंड नोटिस, यानी रुकना और देखना, समझना, सोचना। अक्सर हम इतनी तेज जिंदगी जी रहे होते हैं साथियों कि हमें हमारे आस पास रुक कर कुछ नोटिस करने का वक्त ही नहीं होता। सुबह उठते ही स्कूल, फिर शाम में होमवर्क, फिर स्क्रीन एक्टिविटीज और दिन खत्म। लेकिन अगर आप दिन में सिर्फ एक मिनट के लिए भी रुक जाए ना, और ये सोचें कि आज मेरे पास क्या है जिसके लिए मैं शुक्र अदा कर सकता हूँ, तो ये आपकी सोच को शिफ्ट कर देता है। अगर इसकी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ली जाए, तो एक बच्चा जो रोज स्कूल जाते हुए कंप्लेन करता है, इतनी गर्मी है, इतना ट्रैफिक है, मुझे नहीं जाना, मुझे नींद आ रही है। लेकिन एक दिन उसके टीचर ने उसे चैलेंज दिया कि रोज स्कूल आते हुए 3 चीजें नोटिस करो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। पहले दिन तो उसे ये सोच मुश्किल लगी, मेरे पास स्कूल है, मेरी यूनिफॉर्म क्लीन है, मेरा दोस्त मेरा वेट कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत बन गई। अब इससे होता ये है कि वो बच्चा कंप्लेन कम करता है और अप्रिशिएट ज्यादा करता है। ये छोटा सा पॉज उसकी पूरी सोच बदल कर रख देता है। चलिए अब दूसरे टूल की तरफ चलते हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल। ये मेरी बड़ी फेवरेट चीज है, मैं हमेशा कहती हूँ, यानी एक छोटी सी डायरी जहाँ आप रोज लिखें कि आप किस चीज के लिए थैंकफुल हैं। ये प्रैक्टिस सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। जब आप लिखते हैं ना, तो आपका दिमाग फोकस करता है पॉजिटिव चीजों पर। जरा सोचिए, एक बच्चा है जो अक्सर उदास रहता है, उसे लगता है कि भाई उसकी लाइफ बोरिंग है। फिर उसकी अम्मी ने उसे एक ग्रेटिट्यूड जर्नल ला कर दिया। वो मजे मजे की डायरीज नहीं आती, किसी के ऊपर यूनिकॉर्न बना होता है, किसी के ऊपर फुटबॉल थीम बनी होती है, वैसी वाली एक डायरी ला कर दी, एक जर्नल, और कहा कि भाई रोज 3 चीजें इसमें जरूर लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। शुरू में क्या होता है, उन्होंने लिखना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता कि भाई हाँ, मुझे आज आइसक्रीम मिली, हाँ मैंने आज कार्टून देखा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी एंट्रीज चेंज हो गई। आज मेरी फ्रेंड ने मेरी हेल्प की, आज मेरे टीचर ने मुझे अप्रिशिएट किया, आज मैं हेल्दी फील कर रही हूँ। कुछ हफ्तों बाद इंसान की पर्सनालिटी में नोटिसेबल चेंज आ जाता है भाई, वो ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, और ये है जर्नलिंग का असर। चले भाई, जर्नलिंग से आगे बढ़ते हैं, तो भाई तीसरे टूल की तरफ आते हैं, विच इज से आउट लाउड, यानी अपना शुक्र एक्सप्रेस करना। बहुत सारे लोग, बच्चे नहीं सिर्फ, बड़े भी इससे लैग करते हैं। भाई सिर्फ दिल में फील करना अच्छी बात है, ओके यू फील गुड, लेकिन जब आप उसे जबान से एक्सप्रेस करते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट डबल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह कहना, थैंक यू कहना, ये छोटे अल्फाज जरूर हैं, लेकिन इनका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। देखिए साथियों, कभी आपने अपनी अम्मी को थैंक यू कहकर देखा है? कुछ बच्चे नहीं एक्सप्रेस करते, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। अब अगर मैं आपको एक डेली लाइफ की मिसाल दूं, फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है जो कभी अपनी अम्मी को थैंक यू नहीं कहता, उसे लगता है कि ये तो उनका फर्ज है, ये तो उनका काम है, ये तो वो करेंगी। लेकिन एक दिन स्कूल में उसे ग्रेटिट्यूड के बारे में सिखाया गया, उसने घर आकर अपनी अम्मी को कहा, थैंक यू अम्मी, आप मेरे लिए इतनी

0: मेहनत करती हैं। उसकी अम्मी का रिएक्शन देखकर वो हैरान रह गया। उनकी आंखों से आंसू निकल आए खुशी के। उस दिन के बाद उस बच्चे ने रियलाइज किया कि एप्रिसिएशन से रिलेशनशिप्स कितने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और सामने वाले को अपनी इंपॉर्टेंस कितनी अच्छी लगती है किसी की आंखों में। अच्छा भाई, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो चौथा टूल है रीफ्रेम योर थॉट्स। ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी नेगेटिव सिचुएशंस को पॉजिटिव एंगल से देखना। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रॉब्लम को इग्नोर करें, बल्कि उसमें भी कोई ना कोई लर्निंग या ब्लेसिंग ढूंढ लें। जैसे अक्सर औकात होता है, किसी बच्चे का फेवरेट प्लान कैंसिल हो जाता है, वो अपसेट हो जाता है, जो कि हम लोग सब होते हैं। लेकिन फिर थोड़ा सा माइंडसेट चेंज कर देखें, लेकिन फिर वो बच्चा ये सोचता है कि शायद ये टाइम मुझे अपनी स्टडीज कंप्लीट करने में अवेल कर लेना चाहिए, या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का चांस मिल गया मुझे। ये रीफ्रेमिंग उसकी फ्रस्ट्रेशन को कामनेस में चेंज कर देती है। देख रहे हैं आप माइंड शिफ्ट कैसा होता है। तो भाई, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो पांचवे टूल की तरफ जाते हैं, ग्रेटिट्यूड इन डिफिकल्टी। ये सबसे एडवांस्ड लेवल है साथियों। गेम खेलते हैं ना, गेम में आते हैं ना ईजी, मीडियम, एडवांस लेवल। तो ये इस गेम का सबसे एडवांस लेवल है। जब सब कुछ अच्छा हो तो शुक्र आना चाहिए इंसान के अंदर, लेकिन जब मुश्किल हो तब सबर करना रियल स्ट्रेंथ होता है। अगर इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल लें तो जैन की मिसाल ले लेते हैं। जैन का स्पोर्ट्स ट्रायल क्लियर नहीं होता, वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता है, लेकिन फिर वो ये सोचता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ट्राई करने का मौका मिला है, मैं नेक्स्ट टाइम और बेटर प्रिपेयर कर आऊंगा। ये देख रहे हैं, ये माइंडसेट स्विच देख रहे हैं। ये सोच उसे गिव अप करने से बचा लेती है और उसे ग्रो करने का चांस देती है। इसी के साथ हम आगे बढ़े और देखें कि हमारा छठा टूल क्या है। तो छठा टूल है मेक इट अ हैबिट, यानी शुक्र को रूटीन का पार्ट बना लें। जैसे सुबह उठते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहना, सोने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहना। जब आप इसे एक रूटीन बना लेते हैं तो ये नेचुरली आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है, आपको उसके लिए डबल एफर्ट नहीं करना पड़ता। अच्छा, अगर एक डेली लाइफ की सिचुएशन लेना हम, तो अक्सर औकात ये होता है कि बच्चों के दरमियान, उनकी अम्मा के दरमियान ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई उनकी अम्मा उन्हें समझती नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि घर में ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की स्टार्ट की जाती है। उससे ये नोटिस किया जाता है कि उनकी अम्मी उनके लिए कितनी चीज़ें करती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं, उन्हें पढ़ाती हैं, पढ़ाई में मदद करती हैं, उनके लिए खाना बनाती हैं, उनके लिए कपड़े धोती हैं, उनके लिए घर साफ रखती हैं। जब आप ये ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड रखते हैं ना, और जब आप छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करने लगते हैं, तो फिर सिंसियरली आपका माइंड शिफ्ट करता है और आपको पता चलता है कि आपने क्या कहना है अपनी अम्मी को। और फिर आप कहते हो कि अम्मी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये एक सिंपल सेंटेंस लगता है, लेकिन इनसे उनकी अम्मी का और बच्चों का खुद का अम्मी की तरफ रुझान जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है। और ये सब कुछ इसलिए होता है, ये दिल की नरमी इसलिए आती है कि यू स्टार्ट नोटिसिंग द लिटिल थिंग्स, द स्मॉल लिटिल थिंग्स विच मैटर। अब जरा ना एक डीपर रिफ्लेक्शन की तरफ चलते हैं। क्या शुक्र सिर्फ अच्छे वक्त में किया जाए, या एक कांस्टेंट स्टेट है जो हर वक्त रह सकती है इंसान के अंदर? असल में शुक्र एक माइंडसेट है जो हर सिचुएशन में अपनी जगह बना सकता है। जब सब कुछ अच्छा हो रहा हो ना, तो इंसान को शुक्र करना चाहिए। जब मुश्किल वक्त हो तब भी शुक्र करना चाहिए, क्योंकि हर मुश्किल के अंदर कोई ना कोई ग्रोथ का चांस होता है साथियों। तो भाई, जाने से पहले साथियों, आज आपको ये बता दूं कि हमने ये सीखा कि शुक्र सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। ये हमारी सोच को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलता है, हमारे रिलेशनशिप्स को दूरी से कुर्बत में बदलता है, और हमारे ईमान को शक से यकीन में बदलता है। हमने ये भी सीखा साथियों कि शुक्र एक डेली लाइफ प्रैक्टिस है। पॉज करना, नोटिस करना, लिखना, एक्सप्रेस करना और रिफ्लेक्ट करना, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि शुक्र आपकी जिंदगी को छोटी छोटी खुशियों में, छोटी छोटी जो खूबसूरती होती है ना जिंदगी की, वो आपको दिखाता है। एक अच्छी सी स्माइल, एक मदद, एक नई सुबह, एक सांस जो आप लेते हैं, ये सब कुछ इट नीड्स ग्रेटिट्यूड। ये सब चीजें जब आप नोटिस करते हैं ना, तो जिंदगी ज्यादा मीनिंगफुल हो जाती है। तो भाई साथियों, मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे गार्डन लिटिल हार्ट्स ऑन एफएम 107। याद रखिए, शुक्र सिर्फ एक आदत नहीं है, एक नजरिया है, एक सोच है, एक रोशनी है जो आपके अंदर से हर अंधेरा मिटा सकती है। अपना ख्याल रखिए साथियों, बी ग्रेटफुल और जिंदगी को दिल से जिए। याद रखिए, बड़ों की इज्जत करें, छोटों का ख्याल रखें। मुझे यानी सफा को और हमारे साउंड डिजाइनर शहबाज को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। सुनते रहें एफएम 107, दिल से देसी।
1: गाइडिंग लिटिल हार्ट्स आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, बिकॉज दिस शो इज एन इंस्पायरिंग कंपेनियन फॉर स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ। एफएम 107

0: पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: दोस्तों, गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर होना एक अहम रोड सेफ्टी रिक्वायरमेंट है। हर थोड़े वक्त के बाद ये चेक करें कि वो वैलिड है या नहीं, और गाड़ी में इसे ऐसी जगह रखिए जहां इमरजेंसी के वक्त आसानी से मिल सके, और साथ ही इसके इस्तेमाल करने को भी यकीनी बनाएं। याद रखिए, ये छोटी सी तैयारी किसी इमरजेंसी में जान बचा सकती है। फायर सेफ्टी को इग्नोर ना करें, खुद को और दूसरों को महफूज रखने की कोशिश कीजिए। गाड़ी में एक फायर एक्सटिंग्विशर होना बेहद अहम है। अक्सर हम सीट बेल्ट और स्पीड लिमिट का ख्याल रखते हैं, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर का सोचना भूल जाते हैं। आग किसी भी वक्त लग सकती है, ओवरहीटेड इंजन, शॉर्ट सर्किट या फ्यूल लीक की वजह से। जब तक मदद आए, आपका फायर एक्सटिंग्विशर ही आपकी पहली डिफेंस होता है। अपनी सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी उठाइए और महफूज रहिए, और इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहिए। आज ही चेक करें क्या आपकी गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर है और क्या वो वैलिड है। FM 107 आपके खुशहाल सफर की ख्वाहिश करता है।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, आपकी सेफ्टी के लिए रोड सिर्फ डेजिग्नेटेड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से ही क्रॉस करें और ट्रैफिक सिग्नल्स का ख्याल रखें। पेडेस्ट्रियन सेफ्टी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें ना सिर्फ पेडेस्ट्रियन बल्कि ड्राइवर्स और अथॉरिटीज भी शामिल हैं। हमेशा अपने आसपास का ध्यान रखें और सिग्नल का इंतजार करें। अगर आपको क्रॉसिंग का वक्त मिल रहा हो तो उसका फायदा उठाएं और सेफली रोड क्रॉस करें। ट्रैफिक रूल्स का तायुन करना सबकी जिम्मेदारी है। जब भी आप रोड पार कर रहे हों, अपने सफर को इंतहाई एहतियात और आराम के साथ पूरा करें। कभी भी जे वॉकिंग ना करें और हमेशा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। ड्राइवर्स को भी ये जरूरी है कि वो पेडेस्ट्रियन का ख्याल रखें और उन्हें क्रॉस करने का मौका दें। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की सेफ्टी का ख्याल रखें और रोड पर हर वक्त एहतियात बरतें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107।
0: दिल से देसी।
3: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है।

0: FM 107 पर पैगाम।
1: शऊर की एक सफा वो है जहां इंसान बदकलामी का जवाब बदकलामी से देता है, ईंट के जवाब में पत्थर दे मारता है। शऊर की दूसरी सफा वो है जहां इंसान बदकलामी के जवाब में खामोशी इख्तियार करता है और बदकलामी करने वाले को उसके हाल पर छोड़ देता है। शऊर की एक तीसरी सफा भी है, इसमें इंसान ना सिर्फ ये कि अपने जज्बात पर काबू पाता है बल्कि बुरे अखलाक का जवाब बेहतरीन अखलाक से देता है। शऊर की यही तीसरी सफा है जो बदतरीन दुश्मन को भी बेहतरीन दोस्त में तब्दील कर देती है। शऊर की इस तीसरी सफा को अपनाने की कोशिश कीजिए।
0: पैगाम ऑन FM 107।
2: आप सुन रहे हैं FM 107।
3: FM 107।
4: दिल से देसी।
5: स्टूडेंट्स के लिए आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है कि कौन सा रास्ता चुने। नए करियर ऑप्शंस की वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। डॉक्टर, इंजीनियर या AI एक्सपर्ट, करना क्या है? इस उलझन को सुलझाने के लिए करियर कंपास सीजन टू जहां मिलेगी वो गाइडेंस जो आपको कंफ्यूजन से निकाल कर बनाएगी कॉन्फिडेंट। एक्सपर्ट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन, ऑन स्पॉट क्वेरीज के जवाब और वो टिप्स जो आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो जरूर सुने शो करियर कंपास सीजन 2 आरजे नाजिया के साथ हर सैटरडे शाम 4 बजे से ओनली ऑन FM 107। दिल से बीस।
6: दोस्तों, मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो। कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें। सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है।

0: 7 पर वेक अप वेक अप
1: Number one hits music station. Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti।
5: कभी नोटिस किया है जैसे जैसे मौसम बदलता है बॉडी का मूड भी थोड़ा बदलता जाता है। कभी ठंड में सुस्ती आ जाती है, कभी गर्मी में एनर्जी ड्रेन हो जाती है और कभी बारिश के साथ सर्दी खांसी फ्री में आ जाती है। वेल, आज हम बात कर रहे हैं सीजनल हेल्थ केयर टिप्स की। सच ये है कि हर सीजन अपनी एक पर्सनैलिटी लेकर आती है और बॉडी को हर बार थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। विंटर में बॉडी ज्यादा एनर्जी कंजर्व करती है, इसलिए थकान थोड़ी ज्यादा फील होती है, मूवमेंट कम हो जाते हैं और कंफर्ट फूड के करीब चले जाते हैं। इस सीजन में बॉडी को वार्म्थ, मूवमेंट और इम्यूनिटी सपोर्ट चाहिए होता है। थोड़ी धूप, थोड़ा स्ट्रेचिंग और बैलेंस्ड खाना विंटर का बेस्ट कॉम्बो है। फिर आता है समर। गर्मी में बॉडी का सबसे बड़ा काम होता है खुद को ठंडा रखना, खुद को कूल रखना। पसीना सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं, बॉडी का नेचुरल कूलिंग सिस्टम होता है। इस सीजन में डिहाइड्रेशन क्वाइटली स्नीक इन करती है, इसलिए अपने पानी, फ्लूइड्स और लाइट फूड बहुत जरूरी हो जाते हैं। हेवी मील और डायरेक्ट सनलाइट बॉडी को थका देती है। और अगर बात करें मॉनसून की तो इसकी तो अपनी अलग ही कहानी है। मिट्टी की खुशबू के साथ इन्फेक्शन का रिस्क भी आता है। इस सीजन में डाइजेशन थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है और इम्यूनिटी का टेस्ट होने लगता है, इसलिए सफाई, फ्रेश फूड और प्रॉपर रेस्ट मॉनसून के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। सीजनल हेल्थ का मतलब ये नहीं कि हर सीजन में सब कुछ चेंज कर दिया जाए, बल इसका मतलब होता है छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस लाए जाए, जैसे कि कपड़ों का सिलेक्शन, स्लीप टाइमिंग, फूड चॉइसेस और हाइड्रेशन लेवल। बस थोड़ा सा ट्वीक करें और बाकी सब सेट है। इनफैक्ट एक और इम्पोर्टेंट बात, सीजन चेंज के टाइम बॉडी सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती है। तब अगर आप थकान, कोल्ड या लो एनर्जी फील करते हैं तो उसे इग्नोर मत कीजिए। ये बॉडी का तरीका होता है कहने का कि थोड़ा सपोर्ट चाहिए आपकी बॉडी को। सीजनल केयर का सबसे सिंपल रूल है ऑब्जर्व एंड अडाप्ट। बॉडी को सुनो, मौसम को समझो और रूटीन को जेंटली एडजस्ट करो, क्योंकि जब आप बॉडी के साथ

0: होम में रहते हो ना तो सीजन चाहे कोई भी हो हेल्थ स्टेबल ही रहती है और जब हेल्थ स्टेबल होती है तो जिंदगी थोड़ी लाइट लगती है थोड़ी इजी और काफी ज्यादा सुकून देने वाली। इसलिए याद रखें मौसम बदलते रहेंगे पर आपकी सेहत का ख्याल हर मौसम में बहुत जरूरी है एंड योर हेल्थ मैटर।
1: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti.
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: News at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi।
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh। आप सुन रहे हैं उर्दू रेडियो कतर FM 107। फरकान शाही से समाअत कीजिए आज की ताज़ा तरीन खबरें। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियाँ। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने यमन के कौमी दिन के मौके पर बरादर मुल्क यमन के सदारती क़ियादत कौंसल के सरबराह रशाद मोहम्मद अल अलीमी के नाम तहनीती पैगाम इरसाल किया। वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी को मिस्र के बैनुल अक़वामी तआवुन और बैरून मुल्क मुक़ीम मिस्री शहरियों के उमूर के वज़ीर की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। गज़ा की तामीर नौ के लिए कायम कतरी कमेटी ने गज़ा में 50 पानी के कुओं की तामीर और 30 मिलियन लीटर पानी की फराहमी पर मुश्तमिल एक स्ट्रेटिजिक मंसूबा नाफिज किया है। इसराइली काबिज़ अफवाज की जानिब से सख्त पाबंदियों के बावजूद तकरीबन 70,000 फिलिस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा अदा की। और हिंदुस्तानी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जनूबी कोरिया के वजीर दिफा के साथ दिफा के शोबों में दो तरफा तआवुन के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए मुफाहमती याददाश्त और दीगर मुतअद्दद माहदों पर दस्तखत किए। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियाँ। अब समाअत कीजिए उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफसल नशरिया।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: Absolute Cinema.
3: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं. पर डोंट वरी, मैं हूं ना. भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107.

0: पर रिव्यू ऑफ द वीक, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा। रिव्यू ऑफ द वीक हर हफ्ते करते हैं, है ना। हर हफ्ते कोई ना कोई पिक्चर आती है ऐसी जिससे मैं रिव्यू करते हुए सोचता हूँ देसी पिक्चर कब आएगी। अरे दे दो देसी पिक्चर। आ गई देसी पिक्चर भाई। मैंने जब से रिव्यू ऑफ द वीक शुरू किया है, एक आई है देसी पिक्चर और आज आई है। बढ़िया होगा भाई, मौज आ गई। आज जो है मौसम बना देंगे इस शो को, जमा जहज बना दूंगा मैं। बाकी मैं दोहा वाला कबीर, लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, एफएम 107 पे मुझे सुनते हैं। और आज जो रिव्यू ऑफ द वीक है वो एक देसी मूवी का है भाई। बॉलीवुड ने फाइनली कुछ डिलीवर किया है, तो जरा झांकते हैं कि इसमें है क्या, मतलब झांकने लायक है कि है भी कि नहीं। और ये मूवी क्योंकि थिएटर्स में भी अवेलेबल रहेगी तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं। एंड दिस इज डायरेक्टेड बाय वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स, नॉट रियली अ फेवरेट डायरेक्टर, मतलब वन ऑफ द गुड डायरेक्टर्स दैट वी हैव इन बॉलीवुड। सो अपेरेंटली ये मूवी अच्छी हो सकती है नहीं हो सकती ये तो अभी नहीं बताऊंगा, अभी बता दूंगा तो फिर बाकी के मिनट क्या करेंगे आप, और मेरी भी तो नौकरी है तो सब बताऊंगा डिटेल में आपको, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का रिव्यू ऑफ द वीक, एक्शन। तो देखिए आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ उस मूवी का जिसका नाम बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड रखा गया है, और बॉलीवुड को आदत हो गई है लंबे लंबे नाम रखने की। इसका नाम है पति पत्नी और वो दो। मैं पक्का यकीन से कह सकता हूँ किसी ने बहुत तबीयत से बैठ के सोचा कि यार कुछ पति पत्नी और वो तो रख दिया है, कुछ अलग सा करते हैं। तो ये वो अलग सा करने की जो उपज है उस वजह से नाम निकल के सामने आया। मूवी बाय द वे लुकिंग एट द ट्रेलर आपको समझ में आएगा फुल मसाला है भाई, भरपूर मसाला है। रोमांटिक कॉमेडी है, शादी है, कन्फ्यूजन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अट्रैक्शन है, मॉडर्न रिलेशनशिप्स हैं, इन सब के अराउंड घूमती रहती है।
1: गुरु बच्चन साहब के शहर से हैं हम, आदमी शिष्टाचारी हैं, पति आज्ञाकारी हैं, और तो और वन विभाग में वरिष्ठ अधिकारी हैं।
0: डायरेक्टर जो उसके जैसे मैंने कहा वन ऑफ द गुड डायरेक्टर्स इन बॉलीवुड, मुदस्सर अजीज भाई ने इसको जो है मूवी को डायरेक्ट किया है। काफी लाइट हार्टेड एंटरटेनर है, और ये बनाने की कोशिश जो उन्होंने की है कॉमेडी और इमोशन दोनों को एक साथ मिलाने की, ये कोशिश आपको इस मूवी में नजर आएगी। फिल्म में ऑफकोर्स आयुष्मान खुराना है, सारा अली खान है, रकुल प्रीत सिंह है और वामिका गब्बी है। तो मुझे कभी नहीं लगा था कि आयुष्मान खुराना और सारा अली खान कभी साथ में देखने को मिलेंगे, मतलब सोचा तो मैंने रकुल प्रीत को भी साथ में नहीं था, सोचा तो मैंने वामिका को भी नहीं था, पर ठीक है आयुष्मान खुराना इज ट्राइंग टू डू समथिंग, क्योंकि पिछली मूवीज मैं बता नहीं सकता, मैंने थामा देखी थी भाई, थम गया था मैं 2 मिनट के लिए। मूवी वॉज एन एवरेज, बट वी वॉन्टेड आयुष्मान खुराना टू डू समथिंग। तो ये लीड रोल्स में सारे के सारे एक्टर्स हैं। फिल्म को काफ़ी मिक्सड से पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं, खासतौर पर कॉमेडी परफॉर्मेंसेज के लिए। अब जरा डिटेल्ड रिव्यू पर आते हैं इसके। तो पति पत्नी और वो दो, इसकी स्टोरी, एक्टिंग, डायरेक्शन, कॉमेडी, म्यूजिक, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स जिनकी डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनल एंगल, इसकी खामियां, क्लाइमेक्स, ओवरऑल इंपैक्ट, सब कुछ कवर किया जाएगा। ओरिजिनली ये मूवी जो थी, इस फिल्म की जो ओरिजिनल है पति पत्नी और वो, ये उसका स्पिरिचुअल सीक्वल है ऐसे मैंने पढ़ा कहीं पे, तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन इस बार नई कास्ट है, अलग सिचुएशन है, और साथ में स्टोरी को प्रेजेंट एक अलग तरीके से करने की कोशिश है। सो ठीक है, आई एम ऑल इन। मैंने पिछली मूवी ऑनेस्टली नहीं देखी है तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता, मगर सुना है कि मूवी बहुत प्रचलित, बहुत फेमस थी एंड पीपल यूज टू लव इट। सो 2019 इतना पीछे जा चुका है कि अब लगता है अरे वो तो कब की बात है, जब वायरस आया तब की बात है। बट स्टोरी क्या है, क्या ये इतनी इंगेजिंग है कि आप इसकी तरफ जा सकें, ये बताने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि अपनी स्टोरी जरूर बनाएं। आप हमें टैग कर दिया करें, देखिए सोशल मीडिया हैंडल्स पे जब भी आप रिव्यू सुने या मुझे सुने, कभी आपका दिल करे, मतलब रिक्वेस्ट है, मैं ज़बरदस्ती आपको फ़ोन तो यूज़ नहीं कर सकता हूं, वो तो आप अपने वालों को ना यूज़ करने दें, लेकिन फिर भी आप जब स्टोरी बनाएं तो हमें ज़रूर टैग कीजिएगा। FM 107 Qatar इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं, एंड दैट्स हाउ इट इज़। आप जुड़े रहेंगे तो बात बनी रहेगी एंड बात आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह।
1: समस्या? अबे हमारे जीवन में कहां से आएगी समस्या?
0: अब जरा कहानी बजाते हैं। तो फिल्म की कहानी जो है वो प्रयागराज के एक शादीशुदा आदमी के अराउंड घूमती रहती है, जिसकी शादी की जो जिंदगी है उसके बाहर बहुत कुछ हो रहा है। अंदर से तो उसकी लाइफ बड़ी परफेक्ट लगती है, मतलब बाहर से लाइफ बड़ी परफेक्ट लगती है, उल्टा बोल दिया मैंने, लेकिन अंदर से बड़ी ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। थोड़ा बोर किस्म का आदमी है, बोर्डम से जूझ रहा है, एक एक छोटी सी गलती उससे हो जाती है और एक नई एक्ट्रेस की एंट्री, नो आई एम सॉरी फॉर द बैड साउंड इफेक्ट, एंट्री जाती है तो जिंदगी टोटल केओस बन जाती है, लाइक टिपिकल बॉलीवुड मूवी। वहीं से शुरू हो जाती है कन्फ्यूजन, झूठ, शक और कॉमेडी का एक रोलर कोस्टर। अब ये थीम ऐसा नहीं कि आपने पहली मरतबा सुनी,

ओ ऐसा हो, लेकिन मूवी को प्रेजेंट करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग है। स्टोरी का सबसे मजबूत पॉइंट है इसकी सिचुएशनल कॉमेडी सेटअप। थैंक यू बॉलीवुड, मैं तंग आ गया था कि मीम्स को वो बार बार बार

कंफ्यूजन है इस बंदे को, आगे क्या करेगा? एंड यू फील कनेक्टेड क्योंकि आप चाहते हैं कि वो बंदा आपके हिसाब से सिचुएशन से निकले और फिर वो कुछ तीसरा ही रास्ता ले लेता है, विच इज जस्ट अमेजिंग. तो ये मूवी का रोलर कोस्टर पॉइंट है और यहाँ पे ही कॉमेडी है. एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है स्टोरी का, वो है इसकी एक्टिंग, लेकिन उसके बाद में बात करूंगा. कहीं कहीं मैं स्क्रीन प्ले से थोड़ा सा वो हुआ, क्या कहते हैं उसको, निराशा. तो स्क्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, लगेगा कि हाँ ये तो मुझे पता लग रहा है क्या होने वाला है, क्या यही होने वाला है, एंड देन वो हो जाएगा. तो बड़ा मिक्स्ड आपके दिल में रिस्पॉन्स आएगा, हाँ मुझे पता तो था, पर ठीक है तू पता तो था. वो जो फीलिंग आएगी वो काफी प्रेडिक्टेबल लगती है. कुछ सीन्स में आपको पहले से आइडिया हो जाएगा, अच्छा ये ट्विस्ट आने वाला है. और फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी इज सो स्लो भाई. मुझे लगता है कि जब मूवी दी जाती है प्रोड्यूसर बोलता नहीं मुझे तो भाई 3 घंटे की चाहिए, मुझे नहीं पता 3 घंटे की पिक्चर चाहिए. ये जो जिद है, एंड आई थिंक OTT प्लेटफॉर्म्स ने भी जिद कुछ दिनों पहले जाहिर करी थी कि दे वांट सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ मूवीज, और उस वजह से ये जबरदस्ती जो खींचना पड़ता है मूवी को वो सामने आ जाता है. बट आई होप कि बॉलीवुड इस चीज़ में सुधार करे. इंटरवल के बाद हालांकि ये वाली मूवी पति पत्नी और वो दो फिल्म रफ्तार पकड़ती, एंटरटेनमेंट का लेवल काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा. और ये बात ऑडियंस के रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगी. जब आप आसपास थिएटर में देखेंगे लोगों दे आर एंजॉइंग देमसेल्व्स, तो आपको भी मजा आएगा. बिकॉज इवेंचुअली जब मूवी देखने का जो समय होता है, जो माहौल होता है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. फिर रिमेंबर जब कोई हॉरर मूवी देखते हैं और आप अगर गलती से दोस्तों के साथ मूवी देख रहे हैं हॉरर, आपको वो डरने देंगे ही नहीं, देंगे ही नहीं. मुझे याद है नन 2 रिलीज हुई थी, सॉरी पहली बारी नन रिलीज हुई थी और मैं थिएटर में गया, मेरे दोस्त बहुत सारे थे उस टाइम पे रिलीज करने के, रिलीज होने के टाइम पे, और वो डरने ही नहीं दे रहे थे. नन जो है दरवाजे के पीछे वो चिल्ला रहे थे, देखो देखो आई आई आई चुड़ैल आई चुड़ैल, वो देखो चुड़ैल का हाथ दिखा मुझे. अब वो ऐसे बोल रहे कि आदमी डर ही नहीं सकता है. कॉमेडी मूवी के साथ भी यही है, अगर माहौल आपका इर्द गिर्द थोड़ा खुश मिजाज वाला है और आपको लगता है भाई पीपल आर एंजॉइंग देमसेल्व्स, देन यू फाइंड कॉमेडी अ बिट मोर अट्रैक्टिव. तो वो जो अट्रैक्टिवनेस है वो आपको इस मूवी में जरूर जरूर नजर आएगी. आप पूरी तरह से इसे अबॉलिश नहीं कर पाएंगे कि ना ना ना ये कोई कॉमेडी बनाइए, ये वाला रिएक्शन कम से कम आपका नहीं आएगा. अब जरा जाते हैं लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस पे. सबसे पहले आयुष्मान खुराना, वही इस मूवी की दिल जान धड़कन. उनकी कॉमिक टाइमिंग काफी नेचुरल है एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. वो एक कंफ्यूज्ड हस्बैंड का किरदार निभा रहे हैं और काफी बिलीवेबल है यार, बंदे ने बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग करी है.

है, ओवर एक्टिंग नहीं करी है, मतलब एक एक लिमिट तक वो पहुंच जाते हैं, आपको लगता है अरे रे रे आप गलती होगी, पर नहीं, छोटे छोटे एक्सप्रेशंस, एक ऑकवर्ड रिएक्शन, इन सब से ही तो कॉमेडी बनती है. एंड ही वाज एबल टू डू दैट. इमोशनल सीन्स में उन्हें थोड़ा बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत और भी ज्यादा है, बट ही डिड अ गुड जॉब, फेयरली गुड जॉब, बिकॉज उनका जो फिल्मोग्राफी है उनकी पूरी की पूरी, मैं थोड़ा थक गया था वो आयुष्मान खुराना देख देख के, जो वो करे जा रहे थे लगातार. ठीक है, एक आध मूवी बीच में अलग थलग हो जानी चाहिए, मगर एक ही लाइन ऑफ मूवीज करते करते और उन्हें देखते देखते, ऑफ कोर्स आई एम प्रीटी श्योर वो भी पक गए होंगे और हम भी पक रहे थे, बट फाइनली आयुष्मान खुराना अपने उस शेल से बाहर आए एंड ही डिड समथिंग रियली यूनिक. उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, डायलॉग डिलीवरी है सेकेंड हाफ में काफी काफी अच्छी. वो टिपिकल वो जो विकी डोनर के टाइम पे उनकी जो डायलॉग डिलीवरी थी वो आपको नजर आएगी इन द ओल्ड आयुष्मान खुराना, यू विल सी इन द थिएटर. काफी व्यूअर्स, इनफैक्ट नॉट जस्ट मी, बहुत सारे व्यूअर्स उनकी परफॉर्मेंस को काफी प्रेज कर रहे हैं और फिल्म की हाईलाइट भी बताई गई. सो कुडोस टू आयुष्मान खुराना, मैन योर बैक, आई एम सो हैप्पी दैट यू आर बैक. इनके अलावा जो अगली परफॉर्मेंस है वो है सारा अली खान. देखो यार, कुछ एक्ट्रेसेस होती हैं जिनको देख के आपको मन करता है कि ये बहुत क्रिंज है भाई, मत किया करो एक्टिंग, छोड़ दो, सिर्फ अच्छी दिखती हैं आप. लेकिन सारा अली खान से बड़ी उम्मीदें रही हैं. ही डिड टन्स ऑफ ओवर एक्टिंग, मतलब टन्स ऑफ इट. एंड बीच में मुझे लगा था कि सारा अली खान से मुझे जीरो उम्मीद है. इस मूवी में किरदार कैसा है? इस मूवी में सारा अली खान काफी एनर्जेटिक है और ऑफकोर्स उन्हें ग्लैमर पकड़ा दिया गया है. बट ये लोग ग्लैमर वाला रोल, उनका जो कैरेक्टर है वो स्टोरी में बहुत केओस और टर्मोइल लेके आता है, काफी मसाला ऐड करता है. और सारा का कॉन्फिडेंस स्क्रीन प्ले पर इस मूवी में फाइनली विजिबल है. कुछ कॉमेडी सीन्स में वो जेन्युइनली फनी लग रही है और ऑडियंस के रिएक्शन अगर आप देखेंगे मुताबिक तो she did a good job by the way. सीन को खींच लेना और एक तरीके से अपना बना लेना, ये मैंने सारा अली खान से नहीं उम्मीद की थी, मगर

0: she's doing that in the movie and I pretty much liked it. हाँ कुछ जगह जो उनकी basic problem है loud acting की वो नजर आएगी आपको. मतलब लगे यार सारा ज़्यादा हो रहा है अभी. वो feel हो जाएगी आपको. लेकिन जो commercial comedy का genre है उसके हिसाब से वो ठीक है. Like ठीक है. कुछ scenes में she's brilliant. But unlike आयुष्मान खुराना she's not stable enough. But you will still like her. उन्होंने जो पिछली movies करी हैं उससे तो 10 गुना एटलीस्ट बेटर इस मूवी उनको रोल मिला है. एंड रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो जो कैरेक्टर उन्होंने मिला है एक्सप्लोर करने के लिए इस मूवी में आई थिंक अगर ये पहले मिल जाता तो बहुत बढ़िया रहता. एंड शी शुड डू दीज काइंड ऑफ मूवीज. यू नो होता है कि आप बिपाशा बासु को देखते तो आप हॉरर से रिलेट कर देते हैं. मैं तो करता हूँ एटलीस्ट बिकॉज यू नो कि यार ये हॉरर कोई नहीं यार इसको हॉरर में रखो. यू डोंट वॉन्ट हर टू डू अदर रोल्स. है ना आयुष्मान खुराना के साथ क्या उन्होंने बहुत ही अतरंगी सतरंगी पिक्चरें करी हैं. बट विद सारा अली खान I want her to do comedy because serious scenes to I won't even comment. अब जरा आ जाते हैं रकुल प्रीत की परफॉर्मेंस पे. जो किरदार उन्हें मिला काफी काफी ज्यादा मैच्योर कैरेक्टर है. काफी कंट्रोल्ड उन्होंने परफॉर्मेंस दी एंड मैच्योर लगी भी. उनका रोल जो है काफी इमोशनली ग्राउंडेड है और वो इमोशन निकल रहे हैं फिल्म में. जब वो इमोशनल होती हैं या रिलेशनशिप पे फोकस्ड सीन्स हैं जिसमें उन्हें जज्बात दिखाने हैं उनके किरदार के जो स्पेशल ट्रेड्स हैं उनकी सिंसेरिटी परफॉर्मेंस में साफ नजर आ रही है. स्क्रीन पे जो उनका प्रेजेंस है स्क्रीन पे वो काफ़ी क्लासी है. उनकी केमिस्ट्री आयुष्मान खुराना के साथ काफ़ी डिसेंट है विच आई नेवर थॉट. जैसे मैंने शुरुआत में कहा मुझे लगा नहीं था रकुल प्रीत और आयुष्मान खुराना की जोड़ी इतनी अच्छी लग सकती है. बट इट काइंड ऑफ वर्क्ड. एंड तीसरा द सरप्राइज पैकेज वामिका गप्ते. वामिका सरप्राइज पैकेज है. उनका रोल कंपैरेटिवली काफी काफी फ्रेश है. नेचुरल फील होता है बिकॉज आई नेवर थॉट कि वामिका को ऐसी कोई पिक्चर मिलेगी जहां पर वो ऐसा कोई रोल कर रही होंगी. उनके एक्सप्रेशंस उनकी मासूमियत आप तक जरूर पहुंचेगी एंड यू विल कनेक्ट विद हर. सपोर्टिंग सीन्स भी मिले उन्हें जिसमें वो नोटिसेबल रहती हैं बिकॉज उन्होंने जो पिछली मूवीज करी इनका भी इतिहास अगर आप खंगालेंगे तो बहुत सारे इन्होंने सपोर्टिंग रोल्स किए हैं जिसमें ये नजर नहीं आती हैं. यू लाइक शी एग्जिस्ट आप जानते हैं ठीक है प्यारी दिख रही है खूबसूरत है माशाल्लाह लेकिन वो निखर के नहीं आती थी. मगर इसमें शी इज डेफिनेटली अ सरप्राइज पैकेज. फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट है वो भी काफी काफी स्ट्रांग है. इसमें विजय राज है कहने की बात ही नहीं है बंदे की. यार विजय राज के बारे में क्या ही तारीफ करूँ मैं. आई पर्सनली लव हिम अ लॉट. मैं पर्सनली उनसे मिला भी हूँ उनके साथ काम भी किया है. विजय राज इज अ डार्लिंग. वो बहुत बढ़िया बढ़िया स्टार कैपेबिलिटी रखते हैं एंड जब भी वो स्क्रीन पाएंगे इट्स डन. कोई उनसे कॉम्पिटिशन नहीं कर सकता. उनकी यूनिक डायलॉग डिलीवरी कॉमिक टाइमिंग सीन्स को हमेशा एलिवेट ही करेगी. ही नेवर बैक्स डाउन. मतलब विजय राज उनमें से हैं जिनको आप खराब पिक्चर में भी रख देंगे तो यू विल नोटिस विजय राज डूइंग विजय राज.
1: एब्सोल्यूट सिनेमा.
0: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं. पर डोंट वरी मैं हूं ना. भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग.
2: साथियों जिंदगी के सफर के लिए एक सही डायरेक्शन चाहिए और जब बात हो पैसे की तो सही गाइडेंस भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है. सेविंग बजटिंग फ्यूचर प्लानिंग या स्मार्ट इन्वेस्टिंग इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम मनी नेविगेटर एक ऐसा गाइड जो आपको लेके जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस के सफर पर. बिल्कुल प्रैक्टिकल बिल्कुल रियल लाइफ. सुनिए प्रोग्राम मनी नेविगेटर. मनी नेविगेटर एवरी मंडे 10 AM ऑनवर्ड ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी. योर गाइड फॉर स्मार्टर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन. सिर्फ सुनना ही नहीं समझना भी शुरू कीजिए.
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें.
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
2: सक्सेस की शुरुआत होती है एक छोटी सी सोच के साथ एक आइडिया से.
5: ये आइडियाज कहाँ से आते हैं क्या माइंडसेट्स होते हैं क्या अप्रोच होती है
2: ये जानना बहुत जरूरी है. इस शो में बात होगी लीडरशिप सेल्फ डेवलपमेंट और डिसीजन मेकिंग पर जो आपको एम्पावर करेगी. हर गेस्ट होगा एक पावर हाउस ऑफ

0: मोटिवेशन और हर एपिसोड एक नई कहानी, एक नई इंस्पिरेशन। जरूर सुने शो पावर टॉक्स हर सैटरडे दोपहर 1 बजे से आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107। पावर टॉक्स, हर लफ्ज में ताकत, हर बात में मोटिवेशन।
1: एब्सोल्यूट सिनेमा,
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक। रोलिंग
3: फैमिली सीन्स है इसमें। साइड एक्टर्स जो कैरेक्टर्स हैं फिल्म को काफ़ी ग्राउंडेड रखते हैं और कॉमेडी को सपोर्ट करते हैं, तो ज़बरदस्ती का ग्लैमर नहीं दिया है उन्हें कि आउट ऑफ द बॉक्स चले जाएं, लगे कि यार ये काफ़ी अननेचुरल सा लग रहा है। सो फाइनली ग्राउंडेड मूवी और विजय राज से सही काम ले लिया गया है इस बारी। डायरेक्टर साहब पर जाते हैं बिकॉज डायरेक्टर साहब के बारे में मेरे पास बहुत कुछ है कहना। डायरेक्टर है मुदस्सर अजीज। डायरेक्शन उन्होंने किया है कमर्शियल ऑडियंस को टारगेट करते हुए। उन्होंने ज़्यादा दिमाग लगाने के लिए आपको नहीं बनाई ये मूवी के आदमी सोचे क्या बना दिया मुदस्सर भाई, क्या कर दिया आपने। नहीं, ऐसा नहीं। मुदस्सर भाई साहब ने इस बार एक कमर्शियल मूवी बनाई है एंड अच्छा किया। उन्होंने फिल्म को ना हैवी मैसेज वाली मूवी नहीं बनाया कि आप अरे ये होता है तो ये होता है। देखा तुमने, मूवी की सेकेंड लेयर थी तो गहराई नहीं है, बल्कि एक एंटरटेनिंग रिलेशनशिप कॉमेडी के तौर पर सामने पेश की गई है, कॉमेडी का तड़का लगा के। डायरेक्टर साहब ने, मुदस्सर अजीज साहब ने क्लियर किया था कि फिल्म जो है वो किसी चीज़ को ग्लोरीफाई नहीं करती, जो चीज़ गलत है वो गलत है, मगर कॉमेडी ऑफ एरर्स को फॉलो करती है। एंड दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ मेमोरी जिसमें आप जोक्स नहीं क्रैक करते। कॉमेडी कम्स इवेंचुअली जब आप देखते हैं कि जो सीन्स हैं वो सिचुएशन के हिसाब से, व्हेन सिचुएशन से कॉमेडी निकलती है काइंड ऑफ लाइक इट। क्यों लगता है आपको कि हेरा फेरी चली, क्यों लगता है हेरा फेरी टू चली, क्यों लगता है भागम भाग चली, ढोल चली, ये सारी कॉमेडी मूवीज। इवन धमाल, फॉर दैट इंस्टेंस, धमाल में कोई एक्ट्रेस भी नहीं है बट इट वर्क्ड रियली रियली वेल। हाँ ठीक है, डायलॉग्स उसमें आज भी याद रहते हैं, है ना, आज ही सो गुड, आज ही सो, पर वो डायलॉग्स के अलावा जो मूवी के अंदर सिचुएशन है, सिचुएशनल कॉमेडी, वो बड़ी कमाल की है। बड़े से डब्लू के नीचे, यू नो दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये कमाल के हैं इस मूवी में भी। ऑनेस्टली फिल्म देखकर ये भी लगता है कि इंटेंशन सिर्फ एंटरटेनमेंट है, मॉरल लेक्चर देना नहीं है, एंड आई काइंड ऑफ लाइक दैट, बिकॉज क्यों देना है मॉरल लेक्चर। ऐसा तो है नहीं कि मूवीज जो कहेंगी वो लोग करने लग जाएंगे। आई नो लोग कहते हैं कि सिनेमा सोसाइटी का मिरर होती है एंड ऑल, आई अग्री एंड काइंड ऑफ डिसएग्री टू इट, क्योंकि बॉलीवुड ने रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा अपनी लीक से हटके मूवीज बनाई हैं जो सोसाइटी का आईना पूरी तरह से नहीं है, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पर भी हैं, बट विच इज़ फाइन, होना भी चाहिए। कई मरतबा नॉन सेंसिकल चीज़ें आपके दिमाग को ज़्यादा अच्छी लगती हैं, है ना, तो ये वैसा ही है। इसमें कोई मॉरल लेक्चर

लें, आपके लिए मूवी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बट अगर आप एक खुले दिमाग से सिर्फ कॉमेडी के तौर पर देखना चाहते हैं, एक एंटरटेनर चाहिए आपको, प्लीज गो एंड वॉच इट। फिल्म का जो स्ट्रॉन्गेस्ट डिपार्टमेंट है उसके बारे में बात कर लेता हूँ, विच इज ऑफकोर्स कॉमेडी। कन्फ्यूजन बेस्ड कॉमेडी है, इसमें कई सारे झूठ हैं जिन्हें बहुत घुमाया फिराया गया है, ऑकवर्ड सिचुएशंस हैं, टाइमिंग बेस्ड कॉमेडी है जो ऑडियंस को इंगेज करके रखती है। बिकॉज अगर आप मीम्स डालते रहेंगे मूवी में तो मूवी फ्लॉलेस नहीं बनेगी, मूवी विल हैव सम फ्लॉ। ऐसा नहीं है फ्लॉलेस है, मगर एटलीस्ट कॉमेडी में वैसे वाला एरर नहीं है, कॉमेडी ऑफ एरर है। स्पेशली इसमें एक फोन कॉल कन्फ्यूजन है, इसमें झूठे बहाने जो कमाल के हैं, इसके अलावा डबल टाइमिंग सिचुएशंस भी हैं, एंड देन फैमिली वालों की दखल अंदाजी, माई गॉड एब्सोल्यूट राइट। ये सब सीन्स थिएटर में काफी अच्छी खासी कॉमेडी जनरेट करते हैं। सेकेंड हाफ में कॉमेडी तो और भी ज्यादा क्रेजी हो जाएगी, मतलब आप बोलेंगे भाई साहब सही कह रहे थे, तो फर्स्ट हाफ बर्दाश्त कर लेना पॉपकॉर्न वगैरह नाचोस खा के, एंड देन सेकेंड हाफ तक जब आप पहुंचेंगे यू विल इवेंचुअली फॉल इन लव विद द मूवी। आई नो कतर में इंटरवल नहीं होता है, बट अच्छी बात है, मूवी एक स्ट्रेच में देखेंगे तो ज्यादा अच्छी रहेगी और आपके साथ ज्यादा टिकी रहेगी। तो कॉमेडी ने सेकेंड हाफ में जो कॉमेडी आई है उसने इस मूवी को सच में बचा लिया है। आप आ जाते हैं साउंड ट्रैक पे मूवी के, बॉलीवुड में साउंड ट्रैक के बारे में बात ना की जाए तो फिर कैसे। साउंड ट्रैक कमर्शियल है, कैची है, मल्टीपल कंपोजर्स, इसमें एक किसी ने कंपोज नहीं किए सारे गाने, इसमें मोस्टली पार्टी नंबर्स हैं, कमर्शियल वाइब कैरी करते हैं, उनका यही प्लान रहा होगा कि ये जो बस गाने चल जाने चाहिए, ये जो है ना सोशल मीडिया हैंडल्स पे रील बननी चाहिए। तो रूप दी रानी, फिर दिल वाले चोर, अंगड़ाई, ये सारे गाने जो विजुअली बहुत रंगीन है और फिल्म की एनर्जी को मेंटेन रखते हैं। देखो आई एम नॉट अगेंस्ट सीरियस सॉन्ग्स, मगर इफ यू आर पुटिंग सॉन्ग्स दोज आर वेरी सीरियस तो कॉमेडी में नहीं चलते हैं, चल जाएंगे बट देन यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सीन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो मैं कहना चाह रहा हूं, 1920, यू रिमेंबर दैट हॉरर मूवी जिसमें आदा शर्मा है और वो हॉरर मूवी है 1920, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मूवीज, वेल मेड। उसके अंदर गाने हैं बट वो गाने सूदिंग है, सेटिंग के हिसाब से यू फील के मूवी से अलग थलग नहीं चल रहे हैं। 1920 दिखाया गया तो उसके हिसाब से वो टोनैलिटी है, वो कंट्री की वाइब है, एंड द सॉन्ग्स आर टू गुड। सिमिलरली इसमें क्योंकि मूवी खुद बड़ी कलरफुल है और बहुत बहुत खुश मिजाज है, तो मूवी को वैसा ही साउंड ट्रैक भी दिया गया है जिसकी वाइब को कैरी कर सके। सॉन्ग कैरेक्टर लेवल को जो चार्ट बस्टर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि चार्ट बस्टर्स हैं कैरेक्टर से मिलेंगे, लेकिन मूवी के फ्लो में फिट बैठते हैं थैंकफुली। बिकॉज समटाइम्स हीरो कुछ और कर रहा है, गाना उसको पहाड़ पे ले जाता है, बीच में जो है वो समंदर है, पीछे झरना है, अचानक से शहर से उठ के विच लुक्स वेरी वियर्ड, इसमें भी ऐसा कुछ है पर ज़्यादा नहीं है, तो काम चल जाएगा आपका। नाउ द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट मेरे लिए किसी मूवी को आगे बढ़ाने के लिए, और आगे जब मूवी बढ़ती है तो आपका इंटरेस्ट तभी जागता है जब उसमें कुछ होता है। कॉन्टेंट क्या होता है, उसके डायलॉग डिलीवरी एंड मासीनेस, डायलॉग्स रिलेटेबल है थैंकफुली, आप रिलेट कर पाएंगे और मूवी मासी लगती है भाई सबके लिए। वन लाइनर्स जेन्युइनली काफी फनी है, इसमें बहुत सारे वन लाइनर्स आपको याद हो जाएंगे, मैं भी कुछ नहीं बताऊंगा बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल इट। मैरिड लाइफ वाली जो ऑब्जर्वेशन है ऑडियंस को कनेक्ट कर जाएगी, आप बोलेंगे हाँ यार ऐसा तो होता है घर पे, एंड जब आप ऐसे बोलने लग जाते हैं ना कि हाँ ऐसा तो होता है, ये तो ठीक है, तो आप कनेक्ट करेंगे, एंड दो सिचुएशंस आर रियली रियली वेल मेड। जैसे कि हम रेडियो पे भी उस दिन बात कर रहे थे कि शादीशुदा मर्द जो है वो इस बात की शिकायत कर रहे थे कि घर से बाहर जाने के लिए बीवी की परमिशन लगती है, तो ये सिचुएशनल कॉमेडी है राइट। इट माइट नॉट रिलेट टू एवरीबडी, मगर 10 में से 8 इससे रिलेट कर जाएंगे। स्क्रीन प्ले पहले हिस्से में स्ट्रेच्ड है, खींचा है रबड़ बैंड की तरह, बहुत सारे सीन से जो काटे जा सकते थे कोई जरूरत नहीं थी, मगर ठीक है, आई गेट द आइडिया, मूवी लंबी करनी है, लेकिन क्लाइमेक्स तक संतुष्टि है, ठीक है मुझे मंजूर है, इतना भी वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। अब मैंने इतना बोली दिया है तो आप जो है जरा सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर जाएं, FM107 Qatar, FM107 Qatar, इस नाम से हर जगह मौजूद है, एंड प्लीज गेट इन टच विद अस। आप व्हाट्सएप भी बता सकते हैं शो के दौरान भी, 666-22107 पर, 666-22107 पर। अब जरा मूवी के उस एंगल पे आते हैं जो सबसे मुश्किल है कॉमेडी में इंटीग्रेट करना, और वो है इमोशनल एंगल। फिल्म आउट एंड आउट कॉमेडी है, मगर उस कॉमेडी में जो सिरका डाला है जो इमोशंस का,
वो बड़ा कमाल का है. इसमें भरोसा, शादी करने का प्रेशर, शादी के बाद का प्रेशर, अट्रैक्शन, आज के जमाने के रिलेशनशिप्स, ये तमाम

एंगल को मूवी बहुत सटल तरीके से छूती है और प्रीची नहीं होती है. बिकॉज जब मूवी प्रीची हो जाती है ना, तब दिक्कत है कि ज्ञान मत दो यार प्लीज. और मूवी नहीं दे रही है. कुछ इमोशनल सीन सरप्राइजिंगली काफ़ी काफ़ी अमेजिंग है. रिलेशनशिप बताती है मूवी के, रिलेशनशिप सिर्फ रोमांस नहीं है, भरोसे का नाम है, अंडरस्टैंडिंग का नाम है. और डिमांड्स जो होती हैं वो भरोसे की होती हैं, लॉयल्टी की होती हैं. एंड दैट्स हाउ इट वर्क. सो कंप्लीट तो नहीं, 9 out of 10 में देना चाहूँगा इस इमोशनल एंगल सीन्स के लिए. नाउ कम्स द विजुअल वाइव. अल्टीमेटली यार सबसे पहले आपकी आंखें ही देखेंगी जब आप खा रहे होंगे पॉपकॉर्न या नाचोस या फिर कुछ पी रहे होंगे. तो सिनेमेटोग्राफी और विजुअल्स का सही होना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. फिल्म विजुअली काफ़ी कलरफुल और वाइब्रेंट है. कॉस्ट्यूम्स आर अमेजिंग. लोकेशन ठीक है, डिसेंट है. ओवरऑल एक कमर्शियल बॉलीवुड पैकेज है जो चल जाएगा, चल जाएगा. कैमरा वर्क ऐसा नहीं है कि ओए क्या कर दिया भाई वो कैमरा वाला सीन, ओए ओए ओए ओए ओए क्या घुमाया कैमरा. ऐसी कोई खास पैनिंग वैनिंग तो नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं है, लेकिन कॉमेडी जॉनरा है, चलेगा. अगर ये एक्शन होता या मूवी किसी और जॉनरा की होती तो बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म मैं इसके कैमरे वर्क को करता, क्योंकि भाई साहब इसके अलावा ये फैमिली एंटरटेनमेंट है. मगर अगेन डोंट बी प्रीची, डोंट प्रीच एनीबडी. और अगर आप प्रीचर हैं, आपके अंदर ज्ञान देने की बहुत ज़्यादा वो है, काबिलियत है, तो इस काबिलियत को ज़रा पॉकेट में रख के जाइएगा. बिकॉज मूवी आपसे दिमाग नहीं लगवाने वाली. मूवी कह रही है कि भाई दिल से आओ और दिल से देसी होके जाओ और साथ में सारी की सारी दिल की बातें बस सुन के करके जाओ. देर इज़ नथिंग एल्स टू डू विद इट एंड दैट्स हाउ द मूवी इज वर्किंग राइट नाउ. बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक जा रही है एंड आई एम ऑल फॉर इट. अब फिर से रिमाइंड करा दूं, ये मूवी कोई मास्टरपीस नहीं है. भूल जाएंगे प्रॉब्ली आप एक टाइम के बाद, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब मूवी ये OTT प्लेटफॉर्म्स पे आएगी तो कुछ ना कुछ ऐसा कर जाएगी जिससे कि आपको अच्छा लगेगा. आपको लगेगा हाँ ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर आई, चलो एक बार देख लेता हूँ, ये वैसी पिक्चर है और ये चल जाएगी. जहाँ तक मेरा दिमाग कहता है ये मूवी थिएटर से ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म पर चलने वाली है. कहाँ आएगी ये तो मुझे पता नहीं, मगर जब भी आएगी तो बहुत चलेगी. एंड दैट्स हाउ इट शुड बी. ये एक कमर्शियल मूवी है जो स्पेशली थिएटर ऑडियंस के लिए बनाई गई है, जो लोग थिएटर जाके मज़े करते हैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है. तो अगर आपको एक फैमिली एंटरटेनर चाहिए, अपने लोग चाहिए, तो गो एंड वॉच दिस वन. अब रेटिंग करने का टाइम आ चुका है, तो मैं एक एक आस्पेक्ट को उसके अलग अलग रेटिंग दूंगा. स्टोरी को मैं दूंगा 7 out of 10, आई डिडंट लाइक इट मच. कॉमेडी को मैं दूंगा 9 out of 10, एक्टिंग को दूंगा मैं 8 out of 10. आयुष्मान खुराना को मैंने पूरे दे दिए, बाकी सबके काटे नंबर. म्यूजिक ऑफ द मूवी ठीक है, 7 out of 10 दे देते हैं. डायरेक्शन जो है 7.5 है. एंड ओवरऑल एंटरटेनमेंट है 8 out of 10. ये जो मूवी है वीकेंड के लिए बेस्ट है. आयुष्मान खुराना की अपनी खुद की एक कॉमिक टाइमिंग है जो बाकियों से बिल्कुल अलग थलग है और यही अच्छी बात है. सो ही इज अगेन डूइंग अ गुड जॉब एंड सपोर्टिंग कास्ट ने भी उनकी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मदद करी. तो मूवी पति पत्नी और वो दो रिलीज हो चुकी है. एंड जो मूवी के बारे में मुझे बताया गया इससे पहले भी प्रायर ऑफ दिस, लोगों ने बोला नहीं यार अच्छी चली गई है. सो अच्छी गई है मूवी. मेरे पास कुछ ज़्यादा इसके लिए बुरा कहने के लिए था भी नहीं आज. सो आई एम रियली हैप्पी फाइनली कुछ मूवी की वजह से ऐसा हो पाया. But it's good. It's really, really nice. 666-22107 number है. 666-22107. आप मुझे बता सकते हैं कि आपको रिव्यू कैसा लगा. And also रिव्यू सुनने के साथ साथ एक और काम कर सकते हैं आप. जब सुने तो स्टोरी में जरूर टैग कीजिएगा FM 107 Qatar. इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं. ऑल्सो अगली मूवी का रिव्यू या सीरीज जो भी है आप बताना चाहें कि इसका करो तो वो भी हम कर सकते हैं. नॉट अ प्रॉब्लम. अभी बेसिकली हम फीचर मूवीज को ले रहे हैं, फीचर फिल्म्स को, बिकॉज यहाँ पे कम देखने को मिलता है. सो हम खुद ही का प्रोजेक्टर बना सकते हैं, मतलब खुद ही देख सकते हैं प्रोजेक्शन से, या जैसे आप मर्जी चाहें. बिकॉज आई लव इट वन पीपल एक्सपेरिमेंट इन वॉचिंग मूवीज इन अ थिएटर और एट होम. पर प्लीज़ जब भी आप कुछ करें टैग कर दीजिएगा इस मूवी में. 666-22107 नंबर है. 666-22107. डू लेट मी नो कि तुमने भैया इस मूवी को देखा कि नहीं देखा प्लीज़. और इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया. ये था रिव्यू ऑफ द वीक पति पत्नी और वो दो का. 2026 की रिलीज पिक्चर है एंड रन टाइम ठीक ठाक है इसका तो मुझे बताया नहीं, ना मैंने पूछा, बिकॉज
रन टाइम के साथ क्या होता है कि रन टाइम अमूमन पूछा कह रहा हूँ मैं, रन टाइम के साथ क्या होता है कि वो अक्सर ज्यादा होने की वजह से पहला हाफ खराब कर देते हैं, तो इस मूवी के साथ भी कुछ ऐसा ही है. बट नंदलेस दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. मैं आपसे ज्यादा चाहूंगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले रिव्यू ऑफ द वीक में. बट फॉर नाउ दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिएगा. क्या आप बेहद बेहद जरूरी हैं.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की अदान का वक्त हो गया है। अल्लाहु अकबर।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: रहमतुल्लाही वबरकातुहू एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक लेकर मैं आ गया हूँ। जबरदस्त से गाने जहां पर इन गानों को सुनने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। अपनी प्लेलिस्ट में चेंजेस तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि ये मजबूरी हो जाएगी ना, क्योंकि इस हफ्ते नंबर 10 से लेकर नंबर 1 के जो गाने हैं उसमें बहुत बड़ा तो चेंज नहीं है, लेकिन चेंज है थोड़ा मोड़ा। यानी कि जो पुराने गाने थे जो नंबर 1 पे चल रहे थे वो नंबर 2 पर आ गए हैं, नंबर 2 वाले नंबर 1 पे आ गए हैं, तो कुछ ऐसे चेंजेस है। लेकिन एक नया गाना है जो दिलजीत दोसांझ का है, आ गया है नंबर 10 पे। वेल, पिछले हफ्ते कौन सा गाना था, याद है? नहीं याद है, चलो मैं बताता हूँ। शुरू करते हैं इस शो को जिसका नाम है टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक
1: FM 107 टॉप 10।
0: तो दोस्तों, सबसे पहला जो गाना है जो नंबर 10 पे ट्रेंड कर रहा है, ये गाना है दिलजीत दोसांझ का गाया हुआ हांदा। ये कैसा गाना है? वेल, इस गाने को सुनेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं इस पर ज्यादा कुछ बता तो नहीं सकता। ये एक अलग तरीके का गाना है जो दिलजीत दोसांझ ने गाया है और इन्होंने कोलैब में गाया है इस गाने को, जिसके लिरिक्स लिखे हैं राज रंजोद ने। और ये एक मास्टर क्लास गाना है जिसको ओल्ड स्कूल पंजाबी म्यूजिकलिटी में डाला गया है मॉडर्न एस्थेटिक्स के साथ। और फिर वोकल डिलीवरी जब दिलजीत की हो तो यार वो गाना टॉप 10 पर आ जाएगा, क्योंकि दिलजीत आजकल जिसको छूले वो गाना टॉप 10 में आ जाता है। मैं आपको लग रहा था मैं वो वाला डायलॉग मारूंगा ना, जिसको छूले वो सोना हो जाता है। ए बॉय, सो ये एक लाजवाब गाना है, ट्रेडिशनल पंजाबी वोकल टेक्सचर है, खास तौर पे रॉ पर थोड़ा फोकस किया गया है। लाजवाब इस गाने को एंजॉय करें। उसके अलावा इसमें तुम्बी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल किया है, हारमोनियम है, ढोलक और तबला है, गिटार है, इन सब का इस्तेमाल करके इसका कॉम्पोजिशन भी जबरदस्त है। दिलजीत दोसांझ ने गाया और जिसे लिखा है राज रंजोद ने, गाया हुआ ये गाना लाजवाब बिल्कुल है, हादा इस गाने का नाम है। सुने और नंबर 9 के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 9 का गाना है जो पिछले हफ्ते आई गेस टॉप 7 में या टॉप 6 में ट्रेंड कर रहा है, बट नंबर 9 पर आ गया। ये गाना है मातृभूमि मूवी का ट्रैक चांद देख लेना। ऑल्दो मुझे लगा था ये काफी लंबे वक्त तक रुकेगा, बट फैंस और क्रिटिक्स थोड़ा थोड़ा तय करते हैं, फैंस ज्यादा तय करते हैं। उन्होंने तय किया है कि ये नंबर 9 पर होना चाहिए।
2: तुम चांद देख लेना, तुम्हें हम नजर आएंगे।
0: निहाल तोरो और अनकोना मुखर्जी का गाया हुआ ये गाना चांद देख लेना फ्रॉम द मूवी मातृभूमि। वेल, इस गाने को कंपोज किया है नन अदर देन 500 हिट देने वाले हिमेश रेशमिया ने। समीर अंजान का नाम आपने सुना तो कम होगा, लेकिन ये भी यू नो राइटिंग की दुनिया में कुछ तो नाम कमा ही रहे हैं। और अगर सलमान खान से इन्होंने काम शुरू किया तब तो फिर और भी लाजवाब है। इंस्ट्रूमेंट पे कहते हैं कि सुनील कट्टी ने सितार जबरदस्त प्ले किया है, जितेंद्र का वायलिन और लोकेश का फ्लूट इस गाने में जान डालता, और दीपक का गिटार ही इस गाने के कॉम्पोजिशन को मुकम्मल करता है। ईद में रिलीज हुआ ये गाना, मोहब्बत को, डिस्टेंस को एक मेलोडिक ट्रिब्यूट की तरह गाया गया है। सलमान खान ने इस नए यू नो म्यूजिकल टैलेंट को लॉन्च किया है जिसका नाम है निहाल एंड अनकुना मुखर्जी टू मेनस्ट्रीम बॉलीवुड। एंजॉय करें इस गाने को, कॉल्ड चांद देख लेना फ्रॉम द मूवी मातृभूमि। वापस आएंगे तो बात करेंगे नंबर 8 और नंबर 7 के बारे में। दिल से देसी
1: FM 107 टॉप 10 नंबर 10।

0: FM 107 Top 10.
1: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. FM 107 पे एक बार फिर से इस्तकबाल है आप सभी का. ये शो टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक नंबर 9 और नंबर 10 के बारे में बात कर लिया. नंबर 9 पे वो गाना जो चांद के बारे में बात कर रहा था, मातृभूमि का था. नंबर 8 पे भी चांद के बारे में बात हो रही है, लेकिन चांद मेरा दिल.
2: चांद मेरा दिल, चांद मेरा दिल.
1: देख रहे हैं आप किस तरह से लोग राइटिंग करना सीख गए. सचिन जिगर का कंपोज किया हुआ ये गाना बड़ा ही लाजवाब है और कंटेम्प्रेरी लेयर्स में क्लासिकल वाइब देने के साथ साथ सोलफुल अगर वाइब कोई दे सकता था तो वो सिर्फ सचिन जिगर थे. चांद मेरा दिल ये टाइटल ट्रैक है. लक्ष्य और अनन्या है, फहीम अब्दुल्ला ने क्या गाया है, अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है. वेल, फहीम अब्दुल्ला ने कुछ गाने ऐसे गाए हैं जो काफी लंबे वक्त तक यू नो टॉप 10 के लिस्ट में रहे थे. पिछली बार मेरे ख्याल से काफी लंबा वक्त हो गया, लेकिन अब एक बार फिर से फहीम ने नाम तो कमाया है. जबरदस्त गायकी की है, उसके अलावा जो डिलीवरी है वो भी जबरदस्त है. और फिर अमिताभ की राइटिंग, वो जो स्टोरी टेलिंग का तरीका है ना अमिताभ में, गाने में ही वो पूरी पूरी लाइन कह देते हैं, पूरी पूरी स्टोरी, पूरी पूरी कहानी बता देते हैं, वो जबरदस्त. उसके अलावा लक्ष्य और अनन्या का जो केमिस्ट्री है वो भी जबरदस्त है. वेल, इस गाने को एंजॉय करिए, कॉल्ड चांद मेरा दिल. बात कर लेते हैं एक और गाने के बारे में जो एक बार फिर से दिलजीत दोसांझ का है. दिस सॉन्ग इज अगेन नया गाना है रांझा. दिलजीत दोसांझ का गाया ये गाना, जिसे कंपोज किया है डेविड ने और लिरिक्स दिलजीत के ही हैं. इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करना है, क्या स्टेडियम साइज एडीएम सिंथेसाइजर का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक पॉपअप डाल दिया है और मैसिव ग्लोबल इसे ग्लोबली पसंद किया जा रहा है. इसके जो फैंस हैं उन्होंने बहुत ज्यादा व्यूज डाल दिए हैं, क्रिटिक्स भी इसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहा है. अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि क्रिटिक्स ना थोड़ा कभी कभार प्रेशर में आ जाते हैं फैंस जब बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते किसी गाने की. अब फैंस ना कभी कभार ऐसा भी होता है कि उनके वाले सिंगर हैं तो इतना ज्यादा फैन बेस है कि हर तरफ से वो यू नो गाना देखने चले जाते हैं और सोशल मीडिया पे हर जगह यू नो रील बनाने लगते हैं. तो जब ये सब आप करेंगे तो क्रिटिक्स कहीं कहीं ऐसा लगता है प्रेशर में आ जाते हैं, और ये गाना रांझा प्रेशर का नतीजा थोड़ा थोड़ा लगता है मुझे. वेल, ये आप मुझे बताइए कि ये गाना क्या इतना अच्छा है कि नंबर 7 पे आए, क्योंकि ये मुझे टॉप 10 वाला कभी कभार ऐसा लगता है कि नहीं है, 8 या 9 पे होना चाहिए, बट नंबर 7 पे है. वेल, आप सब ने मिलकर तय करा है तो क्यों नहीं नंबर 7 पे इस गाने को एंजॉय करें. वेल, नंबर 7 पे रांझा और नंबर 8 पे है चांद मेरा दिल. वापस आइए तो नंबर 6 और नंबर 5 के बारे में हम बात करेंगे. सुनते रहे FM 107, दिल से देसी.
0: FM 107 Top 10, number 8.

0: FM 107 Top 10.
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों, और ये शो है टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, जहां पर आपने ये चार गाने सुन लिए। नंबर 7, 8, 9, 10 के बारे में हमने बात कर ली। अगर आपने देर में ट्यून इन किया है और आपको टॉप 5 सुनना है तो बस यहीं से आपका शो शुरू है फिर। धुरंधर द रिवेंज मूवी का एक गाना है जो बहुत पॉपुलर हुआ, नंबर 2 नंबर 3 पे काफी ट्रेंड हुआ। मुझे लगता है कई लोगों को ये शिकायत होगी कि ये नंबर 1 पर क्यों नहीं। देखिए, आपकी शिकायत बिल्कुल जायज़ हो सकती है। सारा मामला ये है कि फैंस डिसाइड करते हैं, थोड़ा मैं भी और थोड़ा क्रिटिक्स। ये गाना बड़ा ही लाजवाब है, किसी भी हाल में इसे पीछे तो होना ही नहीं चाहिए था, बट क्योंकि नए गाने आते हैं कहीं ना कहीं पुराने गाने पीछे छूट जाते हैं। 2026 का ये गाना है धुरंधर द रिवेंज मूवी का ट्रैक, जाइए सजना।
2: आओ सारिया वे सर गया रामा वे खेड़े पासे जाइए सजना,
1: जिसे जैस्मीन सैंडलर्स ने गाया है और कंपोज किया है शाश्वत सचदेव ने, और सतिंदर सरताज के रॉ वोकल्स इस गाने में इतना ज्यादा भार डालते हैं कि ये काफी लंबे वक्त तक अभी टॉप 10 में रहेगा। नंबर 1 पे ना रहे वो अलग बात है, लेकिन टॉप 10 की लिस्ट में कहीं ना कहीं जरूर रहेगा। सूफी डेप जो है इस गाने में आपको सुनने को मिलेंगी, और कंपोजर हैं इसके शाश्वत सचदेव, लिरिक्स भी लिखे हैं सतिंदर ने और जस्मीन ने। तो मेनली जो काम है लिरिक्स का, गाने का, वो सतिंदर का और जैस्मीन का है। कंपोजिशन में तो आप शाश्वत को पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि धुरंधर के सारे गानों में शाश्वत ने यार रंग भरा है, रंग सीरियसली। नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं, ये है कॉकटेल 2 मूवी का ट्रैक, जब तलक। अच्छा, मुझे लग रहा था कि ये गाना जो है बहुत जल्दी निकल जाएगा, हालांकि छोटा गाना है, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये बहुत लंबा चलेगा नहीं। बट आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं फजील साहब, जब इस गाने को गाया ही अरिजीत सिंह ने है, अकाशा सिंह ने और मधुबंती बागची हैं इसमें, तो जब तलक कॉकटेल 2 मूवी का ट्रैक कैसे निकल जाता टॉप 10 से है? गलत बात। वेल, ये बिल्कुल पार्टी वाइब देता हुआ गाना

0: उसके अलावा एक अलग सा यू नो फील है इस गाने में. सुनने पर ऐसा लगता है कि एक बार फिर से सुन लें, कहीं पर भी प्ले हो जाए तो सुनने में अच्छा लगता है. मूड बेकार हो फिर भी सुनने में मजा आ रहा है, ये वो वाला सॉन्ग है. क्योंकि ऑब्वियसली इसमें अरिजीत सिंह है और मधुबंती बागची है, लेकिन अकाशा सिंह भी लाजवाब रही है. उसके अलावा कंपोज किया है इस गाने को प्रीतम चक्रवर्ती ने. जबरदस्त अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स हैं. इस गाने को एंजॉय करें और वापस आएंगे तो नंबर चार और नंबर तीन के बारे में हम बात करेंगे. सुनते रहे FM 107, दिल से देसी.
1: FM 107 Top 10 Number 6.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 55 के क्लॉज नंबर 3 के तहत गाड़ी चलाते वक्त 10 साल की उम्र से कम के बच्चों को आगे वाली पैसेंजर सीट पे बैठालने की इजाज़त नहीं है। बच्चों को आगे वाली सीट पे बैठालने से आप ड्राइविंग करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बच्चों को गाड़ी की बैक सीट पे बैठालने से आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत में मदद मिलती है। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: FM 107 टॉप 10।
5: अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे फजील के साथ हैं आप। इस्तकबाल आप सभी का टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक सुन रहे हैं आप। और जो लोग नाराज थे या नाराज हुए होंगे शायद इस गाने पे कि ये नंबर 6 पर क्यों आया, धुरंधर का गाना जाइए सजना, ये अब नाराजगी आपकी खत्म हो जाएगी क्योंकि नंबर 2 पे आपकी मर्जी का गाना जरूर है। एंड दिस सॉन्ग इज जान से गुजरते हैं। नहीं मजा आया ना, असली वाला सुनो। तो ये गाना सुनने के बाद दिल तो खुश हो जाता है क्योंकि ये गाना है खान साहब शाश्वत सचदेव का, जिसके लिरिसिस्ट हैं नुसरत फतह अली खान। और एक बार फिर से आपको क्रेडिट देना होगा कॉम्पोजिशन में शाश्वत सचदेव को। भाई मेहताब अली का जो काम है इंस्ट्रूमेंट पे, सितार पे, हारमोनियम जो टेक्सचर दिया है वो जबरदस्त है। हैवी हिप हॉप के साथ इस गाने को जो गाया है वो अच्छा रहा है, वरना नुसरत साहब के जितने गाने हैं नुसरत साहब के अलावा कोई गाता है तो मेरे को मजा नहीं आता। भाई साहब देखो, ये तो मेरी सच्चाई है, मेरे मुंह से निकल जाती, मैं क्या करूं। सूफी फ्यूजन के साथ अच्छा कॉम्पोजिशन मुझे लगता है शाश्वत कर सकते थे। गाने के साथ जो ईमानदारी कर सकता था वो शाश्वत कर सकता था और खान साहब कर सकते थे, जो कि किया भी है। लाजवाब ये गाना, रणवीर सिंह का कैरेक्टर उस पर से दोबाला हो गया है ये गाना। इस गाने को आप काफी लंबे वक्त तक सुनेंगे, मुझे लगता है 2-3 गाने ऐसे हैं जो टॉप 10 की लिस्ट में बने रहेंगे। वेल, अब हम बात करेंगे नंबर 1 के बारे में, लेकिन रुको भाई, थोड़ा सा तो सब्र करो। कुछ देर बाद हम बात करेंगे नंबर 1 पर वो गाना जिसने जान से गुजरते हो को पिछाड़ दिया। ऐसे कैसे, कौन सा है ये गाना, कुछ ही देर में FM 107 पे। दिल से देसी।
4: FM 107

0: FM 107 Top 10.
1: अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. एफएम 107 पे एक बार फिर से फजील के साथ हैं आप. शो टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक. नंबर दो पर हमने अभी ये गाना सुना, धुरंधर द रिवेंज मूवी का ट्रैक कॉल्ड जान से गुजरते हैं. फजील इतनी बेकार आवाज है, तुम रहने दो. नंबर तीन पर रहा ये गाना रूप दी रानी, पति पत्नी और वो दोनों का ट्रैक. नंबर चार पे आरी आरी फ्रॉम द मूवी धुरंधर अगेन. जब तलक ये गाना नंबर पांच पे था, कॉकटेल टू मूवी का ट्रैक. नंबर छह पे था धुरंधर का जाइए सजना. और नंबर सात पे रांझा. नंबर आठ पे था ये गाना चांद मेरा दिल. नंबर नौ पे चांद देख लेना. और नंबर दस पे दिलजीत दोसांझ का हादा. वेल, वक्त है नंबर एक के बारे में जानने का. नंबर एक का जो गाना है वो है वाओ. इस गाने का नाम ही है वाओ. है जवानी तो इश्क होना है. नहीं, मैं ये कुछ कह नहीं रहा हूँ, ये एक्चुअली आजकल की फिल्मों का नाम है. वो

0: और फिर से वापस आ गया जब फिल्मों के नाम बड़े हुआ करते थे। ये एक दौर था जिनको अगर नहीं पता तो पहले आपने देखा होगा कि जो मूवीज के नाम होते थे बहुत बड़े बड़े होते थे, फिर धीरे धीरे उनको छोटा किया गया। एक बार फिर से वो दौर आ गया जब मूवीज के नाम, फिल्मों के नाम थोड़े बड़े होते हैं। तो बड़े मूवी का ये छोटा सा गाना जिसका नाम है वाओ, लेकिन ये इतना छोटा नहीं है कि टॉप 10 में ना हो, टॉप 10 पे है और नंबर 1 पे है। ये एक हाई एनर्जेटिक पार्टी एंथम गाना, अपकमिंग बॉलीवुड फिल्म है जवानी तो इश्क होना है, उस मूवी का गाना है जिसमें वरुण धवन है, मृणाल ठाकुर है और पूजा हेगड़े हैं। क्या जबरदस्त पावर पैक डांस नंबर किया है इन्होंने इस गाने में। वाइब और टोन के बारे में बात करें तो इट इज अ टिपिकल डेविड धवन स्टाइल सेलिब्रेटरी ट्रैक, वाइब्रेंट, हाई स्पिरिटेड और डिजाइन किया गया है बड़े स्क्रीन के लिए, ऑल्दो आपके लैपटॉप में भी अच्छा लगेगा। एंड इस गाने को कंपोज किया है तनिष बागची ने, रोनी अंजलि और गिल मशराई ने इसे कंपोज किया है। एडिक्टिव बीट्स हैं, आपको बार बार सुनने का दिल करेगा। परफॉर्मेंस पे अगर हम बात करें यानी कि वोकल परफॉर्मेंस, उसमें है नन अदर देन हार्डी सांधू एंड किरण बाजवा। इस गाने को एंजॉय करें, बार बार लूप में सुने, रुक रुक के सुने, घर जाए तो सुने, बाहर रहे तो सुने और FM 107 पे सुने। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी फिर, सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 Top 10 Number 1।

का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी

जमाने के साथ साथ स्पोर्ट्स की दुनिया भी बदल रही है और बदल रहा है स्पोर्ट्स को जानने और सुनने का तरीका भी, और हम तो चलते हैं हमेशा जमाने के साथ साथ। इसीलिए FM 107 लाया है स्पोर्ट्स के लिए एक खास प्रोग्राम स्पोर्टकास्ट। हमारे स्पोर्ट्स जर्नल

0: आर्टिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ सिर्फ एफएम 107 पर।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पॉडकास्ट के इस खसूसी प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आप लोगों को बता दूं कि ये स्पॉडकास्ट का आज आखिरी शो है। जी हां दोस्तों, स्पॉडकास्ट में हमने स्पोर्ट्स के हवाले से जितने भी टॉपिक्स हैं उस टॉपिक्स को हमने एनालाइज़ किया है, उस टॉपिक्स को हमने थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस के नज़र से हमने थोड़ा सा देखा है। आज का जो टॉपिक है, आज इस टॉपिक में हम कोई क्रिटिकल एनालिसिस तो हम नहीं करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ एंड सिर्फ कतर फुटबॉल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये फुटबॉल वर्ल्ड कप का साल है और फुटबॉल वर्ल्ड कप आप लोगों को पता है कि जून से शुरू होने जा रहा है, 11 जून से शुरू हो रहा है वर्ल्ड कप फुटबॉल और 13 जून को कतर विल प्ले देयर फर्स्ट गेम इन द फीफा वर्ल्ड कप। सो दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप में कतर का जो सफ़र रहा है इसके बारे में आज हम बात करेंगे और 2002 से 2026 तक का जो ये सफ़र रहा है, व्हाट कतर डिड, कतर के अचीवमेंट के बारे में, कतर फुटबॉल टीम क्या मतलब आगे जाकर क्या कर सकती है उसके बारे में, वी विल जस्ट हैव अ यू नो कंप्लीट डिस्कशन ऑन दैट, साफ सुथरा एक डिस्कशन। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कि कतर का फुटबॉल सफ़र एशिया के दूसरे मुल्कों से काफ़ी मुख्तलिफ रहा है। एक वक्त था जब कतर सिर्फ गल्फ फुटबॉल तक महदूद

और एशिया कप में खेलना दैट्स इट इसके आगे कुछ नहीं दिखता था लेकिन आज ये मुल्क दुनिया के फुटबॉल नक्शे पर एक अहम मकाम हासिल कर चुका है दोज़ हू आर स्टेइंग इन कतर उन लोगों को पता होगा 2022 वर्ल्ड कप से लेकर 2026 वर्ल्ड कप तक ये जो दरमियानी ये जो चार साल है हमने बहुत सारी चीज़ें नोट की है काफ़ी चीज़ें फुटबॉल हैज़ डेवलप्ड ह्यूजली फीफा वर्ल्ड कप की तरफ अगर कतर का सफ़र आसान नहीं था 2002 के क्वालिफायर्स में टीम ने स्ट्रगल किया जबकि 2026 तक पहुंचते पहुंचते कतर ने अपनी फुटबॉल आइडेंटिटी को मजबूत कर लिया यहाँ ये कहानी सिर्फ मैचेस की नहीं बल्कि एक कौम के ख्वाब इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और डिटर्मिनेशन की कहानी है और ये आप लोगों को मानना पड़ेगा जिन साहब कतर में नए आए हैं उनको शायद मालूम नहीं हो कि कतर फुटबॉल was enriched with lot of local stars wo zamana tha 1970s ka acha hali mein aap logo ne dekha hoga america football final garafa aur alsad ke darmiyan ye match jahan pe hua tha khalifa international stadium is khalifa international stadium ka 50th anniversary year tha to aap thoda sa samajh lijiye ki 50 saal ho chuka hai खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में फुटबॉल होते होते एंड खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में कई चीज़ें भी हुई हैं इससे पहले इंक्लूडिंग एशियन गेम्स 2006 एशियन गेम्स के ओपनिंग सेरेमनी एशियन गेम्स के कई ऐसे इवेंट्स भी है फुटबॉल वर्ल्ड कप यानी 2022 वर्ल्ड कप के कई मैचेस भी इस स्टेडियम में तो ये थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि फुटबॉल इज नॉट वेरी न्यू इन कतर तो चलिए अब बात करते हैं कि 2002 का फीफा वर्ल्ड कप में कतर का कैंपेन कतर के लिए एक चैलेंजिंग दौर था वो जो वर्ल्ड कप था जो साउथ कोरिया और जापान में हुआ था उसके लिए क्वालिफिकेशन में कतर के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था उस वक्त एशियन फुटबॉल में जापान साउथ कोरिया सऊदी अरब और ईरान जैसे टीमें इन टीमों का दबदबा था और आज भी जापान को एक एशियन पावर हाउस समझा जाता है ईरान को पावर हाउस समझा जाता है सऊदी अरब को पावर हाउस समझा जाता है तो कतर के पास टैलेंट ज़रूर था लेकिन इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस यानी तजुर्बा और कंसिस्टेंसी नहीं थी तो 2002 वर्ल्ड कप कोरिया और जापान में होना था और पूरी एशिया में क्वालिफायर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा था इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि कतर ने क्वालिफायर्स का आगाज उम्मीद के साथ किया हर न्यू टीम एनी न्यू टीम जो भी किसी टूर्नामेंट में उतरती है तो एक सोच के साथ एक ड्रीम के साथ तो कतर के साथ भी ऐसा ही कुछ था टीम में कुछ टैलेंटेड लोकल प्लेयर्स मौजूद तो थे जो गल्फ कप में अच्छी परफॉर्मेंसेस दे चुके थे लेकिन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का लेवल बिल्कुल अलग था ये डिफरेंट लेवल उसे समझना ही मुश्किल है लेकिन किसी ने अगर वर्ल्ड कप फुटबॉल मैचेस यहाँ पे अगर देखे हो तो उनको समझ आ जाएगा कि द एनवायरनमेंट द एंथुजियाज्म वो काफ़ी डिफरेंट होता है उसके मुकाबले में कि अगर आप लोकल टूर्नामेंट को ही देखें तो सिमिलरली प्लेयर्स की जानिब मैं बात करूँ कि प्लेयर्स को भी उस तरह का एक्सपीरियंस कभी भी महसूस नहीं हो पाया होगा कि जिस तरह के आप क्वालिफायर्स में खेलने जाते हैं अनदर इंटरनेशनल टीम के अगेंस्ट में वो माहौल इज टोटली डिफरेंट लेकिन 2002 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में कतर वॉज कॉन्फिडेंट और उन्होंने बड़े ही शानदार तरीके से इन्होंने दे स्टार्टेड द कैंपेन लेकिन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का लेवल क्योंकि बिल्कुल अलग था हर मैच में टैक्टिकल डिसिप्लिन और मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती थी कतर ने कुछ मैचेस में इम्प्रेसिव फुटबॉल खेली इसमें कोई दोहराई नहीं है कि दे डिड प्ले वेल विद देयर लिमिटेड पोटेंशियल और टैलेंट के साथ लेकिन इम्पॉर्टेंट और अहम जो मोमेंट्स हैं ना उसमें कंसिस्टेंसी की कमी नज़र आई ये मैं आप लोगों से ये तो कह रहा हूँ कि एक है लोकल लेवल पे आप फुटबॉल खेलना एक है दैट लेवल जो वर्ल्ड कप हम कहते हैं एशियन लेवल यानी एशिया कप में खेलना उसके बाद एशियन लेवल से बड़े हाई लेवल है वर्ल्ड कप जहाँ पे यू नो कॉन्टिनेंट्स जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स हैं या यू नो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट मैंने डिफरेंट लेयर्स ऑफ फुटबॉल डिफरेंट लेवल्स ऑफ फुटबॉल डिफरेंट कल्चर तो इसको झेलना देखना अभी मैं अगर एक स्मॉल एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा जस्ट स्मॉल एग्जांपल सो दैट आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि जब एक बच्चा पढ़ता है स्कूल में अपने ही शहर में जब पढ़ता है तो कॉलेज में जाता है कॉलेज कंप्लीट करने के बाद यूनिवर्सिटी जाता है एंड देन व्हेन ही गोज़ फॉर हायर स्टडीज़ अब हायर स्टडीज़ जैसे कि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश बच्चे जब हायर स्टडीज़ करने के लिए या तो अमेरिका पहुँचेगा या

0: यूके जाता है या ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर, तो दैट कल्चर एक नया कल्चर है, उसको देख के वो यू नो दैट्स कॉल्ड चौंक जाता है, इन्हें आंखें जो है एकदम उनकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं कि यार ये क्या है, कौन सा शहर है. यू नो यू गो टू अ न्यू सिटी, यू अडॉप्ट दैट कल्चर, यू अडॉप्ट दैट सिस्टम, यू अडॉप्ट दैट एटमोसफेयर. तो वो एडजस्ट करने में जैसे टाइम लगता है, वैसे ही फुटबॉल में है. व्हेन यू आर इन द लोकल लेवल एंड देन सडनली यू आर इनटू वर्ल्ड कप लेवल, वो एडजस्ट करने में टाइम लगता है. सो यहीं पे कतर के साथ ऐसा हुआ कि कंसिस्टेंसी की कमी नजर आई, दैट बिकॉज एक्सपोजर, वो ये वर्ड जो है हमेशा याद है कि एक्सपोजर वॉज नॉट देयर. अच्छा, उस दौर में कतर का फुटबॉल स्ट्रक्चर बस डेवलपमेंट फेज में ही था. आज के एस्पायर अकेडमी या वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उस वक्त मौजूद नहीं था. स्टेडियम्स और फैसिलिटीज ठीक थे मगर यूथ डेवलपमेंट सिस्टम उतना एडवांस नहीं था जितना बाद में बना. इसी वजह से कतर टैलेंटेड प्लेयर्स प्रोड्यूस करता था लेकिन उन्हें लॉन्ग टर्म एक इंटरनेशनल एक्सपोजर कम मिलता था. दिस चेंजेस केम मच लेटर. मैं समझता हूँ कि 2006 एशियन गेम्स के बाद से और जब एस्पायर अकेडमी की शुरुआत हुई, देन स्टोरी वॉज डिफरेंट. 2002 क्वालिफायर्स के दौरान कतर को स्ट्रॉन्ग एशियन टीम्स का सामना करना पड़ा. टीम ने कुछ मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी लेकिन क्वालिफिकेशन हासिल करना मुश्किल साबित हुआ. डिफेंसिव मिस्टेक्स और प्रेशर सिचुएशंस में कंसंट्रेशन लूज करना टीम का बड़ा इशू था. फैंस को उम्मीद थी कि कतर कम से कम फाइनल क्वालिफाइंग राउंड्स तक जरूर पहुंचेगा लेकिन कॉम्पिटिशन बहुत टफ था. तो दोस्तों, इस कैंपेन का एक पॉजिटिव पहलू ये था कि कतर फुटबॉल एसोसिएशन ने रियलाइज किया कि अगर मुल्क को वर्ल्ड कप लेवल तक पहुंचाना है तो सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लानिंग काफी नहीं होगी. यहाँ यही सोच में बदला. ग्रास रूट फुटबॉल, यूथ एकेडमीज और इंटरनेशनल कोचिंग स्टैंडर्ड्स पर इन्वेस्टमेंट जरूरी होगी. ये जो सोच उस टाइम लाया गया है, दैट चेंज एंड टुडे कतर इज वन ऑफ द बेस्ट एशियन टीम्स, एशियन चैंपियन है. टू सक्सेसिव एशियन कप विनर्स 2019 एंड 2023. और यहीं से कतर के फुटबॉल रिवॉल्यूशन की बुनियाद रखी गई. आज जो सक्सेस है कतर फुटबॉल टीम को, वहां पर शुरू हुआ था. 2002 के बाद कतर ने फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हेवी इन्वेस्टमेंट शुरू की. यूरोपियन कोचेस को हायर किया गया, यूथ डेवलपमेंट्स यानी यूथ टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज हुए और टैलेंटेड यंगस्टर्स को यूरोप में ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज दी गईं. यही मैं कह रहा हूँ बार बार कि एक स्टूडेंट जब पढ़ता है, जब मास्टर्स कर लेता है तो हायर स्टडीज के लिए आप इंडिया पाकिस्तान में आप बैठे नहीं रहते हैं, आप बाहर जाते हैं. और कतर ने उस वक्त समझ लिया कि अगर फुटबॉल में अपने आप को सुधारना है, अपने आप को मजबूत करना है, एशियन चैंपियन बनना है, वर्ल्ड कप में खेलना है, तो एक्सपोजर इज एसेंशियल. और कतर ने समझ लिया था कि फुटबॉल में सस्टेनेबल सक्सेस सिर्फ पैसे से नहीं, प्लानिंग से मिलती है. एंड दैट वाज शोन बाय द स्टेट ऑफ कतर. 2006 और 2010 के क्वालिफायर्स में भी कतर ने प्रोग्रेस दिखाई लेकिन क्वालिफिकेशन अभी दूर थी. टीम कॉम्पिटिटिव जरूर हुई लेकिन एशिया के लेवल, उस टॉप लेवल तक पहुंचने में वक्त लग रहा था. और इसी दौरान कतर ने एक और हिस्टोरिकल डिसीजन लिया, फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने की बिड. दैट वाज अ मास्टर स्ट्रोक बाय द स्टेट ऑफ कतर. 2010 जब बिडिंग शुरू हुई तो कतर वाज नंबर वन, कतर वाज चोजन अलोंगसाइड रशिया. 2018 World Cup, 2022 World Cup was given to Russia and Qatar respectively. 2010 में जब कतर ने 2022 FIFA World Cup hosting rights जीते तो पूरी दुनिया हैरान रह गई. छोटा सा गल्फ मुल्क दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट का मेजबान बन गया. अच्छा, ये किसी को ये हजम ही नहीं हो पा रहा था कि यार कतर कैसे कर लेगा. कर लेगा, ये जो सोच है ना, कर लेंगे, ये सोच, दिस अ डिफरेंस. कर लेगा, कर लेंगे. कतर ने कहा वी विल डू इट एंड वी विल प्रूव इट, एंड कतर ने किया. और ये सिर्फ स्पोर्ट्स न्यूज नहीं थी बल्कि मिडल ईस्ट के लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट था. फर्स्ट मिडल ईस्ट कंट्री, फर्स्ट अरब कंट्री, फर्स्ट मुस्लिम कंट्री to host a World Cup, and that is Football World Cup. One of the biggest churner of fans, spectators, audience, हर कोई फुटबॉल वर्ल्ड कप के सामने बैठा रहता है देखने के लिए. तो कतर प्लेड दैट मास्टर स्ट्रोक, द स्टेट ऑफ कतर. एंड यू नो, यहाँ पर ये जो है ना सोच कि हम कर सकते हैं, हम करेंगे, ये जो कॉन्फिडेंस वाली बात है, द स्टेट ऑफ कतर लीडरशिप ने करके दिखाया. एंड टुडे इट इज अ पार्ट ऑफ फोल्कलोर, ऑफ कतरी फोल्कलोर की 2022 का वर्ल्ड कप कतर में हुआ था. 2022 का वर्ल्ड कप होस्टिंग ने कतर के फुटबॉल सिस्टम को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया. न्यू स्टेडियम्स, मेट्रो सिस्टम, रोड्स, होटल्स और ट्रेनिंग फैसिलिटीज बनाए गए. आज कतर को कोई भी देखता है तो कहता है इंटरनेशनल कंट्री, इंटरनेशनल. दोहा को देखेगा तो इंटरनेशनल सिटी, टक्कर देने वाली सिटी में से एक सिटी जो है इस रीजन का वो है दोहा. फुटबॉल डेवलपमेंट को नेशनल मिशन का दर्जा दिया गया, यानी प्रायोरिटी नंबर वन. इस इन्वेस्टमेंट का असर नेशनल टीम पर भी नजर आया. कतर ने जब 2019 एएफसी एशियन कप जीतकर पूरी एशिया को सरप्राइज कर दिया तो लोगों ने कहना चालू किया, हाँ कुछ तो बात है, दम तो है. अच्छा, फाइनल में किस टीम को हराया? फाइनल में जापान को हराया. और दुनिया को एक मैसेज दे दिया कि कतर सिर्फ होस्ट नेशन ऑफ द 2022 वर्ल्ड कप नहीं बल्कि कंपेटिटिव फुटबॉल टीम भी है. अकरम आफीफ और अलमोइज अली जैसे स्टार प्लेयर्स, एंड आज यू नो एवरीबडी टॉक्स अबाउट अकरम आफीफ, अलमोइज अली, ये दोनों नौजवान खिलाड़ी थे एस्पायर अकेडमी में. एस्पायर अकेडमी के जितने भी प्रोडक्ट्स थे उस टाइम 2016, एस्पायर अकेडमी के जितने भी बच्चे थे, दे प्लेड इन द अंडर 19 एशिया कप. उसमें दे वन, एंड दैट अंडर 19 एशिया कप एक्चुअली टर्न अराउंड मैं समझता हूँ यहाँ पे. और यही सब लड़के थे अकरम आफीफ, अलमोइज अली, ये जो स्टार थे उस टाइम में, छोटे बच्चे थे, आज दे आर नेशनल स्टार, दे आर इंटरनेशनल स्टार राइट नाउ. दोस्तों यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम जब आएंगे तो वी विल टॉक ग्रेटर इन ग्रेटर डिटेल्स अबाउट कतर्स पॉपुलैरिटी इन फुटबॉल एंड कतर्स मैकेनिज्म हाउ टू बिकम अ एशियन चैंपियन और बी अ पार्टिसिपेंट ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप.
1: आप सुन रहे हैं स्पॉट का विद मोहम्मद अमीन, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी.
0: वेलकम बैक टू स्पॉट का शो. मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन. आज हम बात कर रहे हैं कतर्स जर्नी इन फुटबॉल वर्ल्ड कप 2002 से लेकर 2026 तक. यहां दोस्तों 2026 वर्ल्ड कप में कतर हैज क्वालिफाइड, एंड दिस टाइम नॉट एज अ होस्ट बट की डायरेक्ट क्वालिफिकेशन. सो दिस इज अ मेगा मेगा अपॉर्चुनिटी फॉर कतरी नेशनल फुटबॉल टीम टू शो केस देयर टैलेंट ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म. अच्छा, 2022 के बारे में मैं बात कर रहा था. 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप में कतर ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन की वजह से होस्ट नेशन था, बिकॉज होस्ट नेशन जो है ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर लेते. ये कतर की हिस्ट्री का एक पहला वर्ल्ड कप अपीयरेंस था. दोहा और पूरे मुल्क में एक्साइटमेंट का माहौल था. वी ऑल एक्सपीरियंस्ड इट, हमें पता है कि क्या माहौल था. बल्कि 6 महीने पहले से ही यू नो कॉनेज के एरिया, जो वो फ्लैग के पोल्स हैं, जितने यू नो जितने भी पार्टिसिपेंट कंट्रीज थे उनके फ्लैग्स, और वो क्लॉक याद है ना, वो काउंटडाउन क्लॉक, आज भी लोग वहाँ जाते हैं, आज भी विजिटर्स जो कतर आते हैं वो जाते हैं वहाँ पे देखने के लिए. वो माहौल उस टाइम बड़ा डिफाइन करना मुश्किल लगता है कि कुछ दिन पहले की तो बात थी भाई, हम वहाँ पे जाते थे, हम कॉनिश में घूमते थे, एंड वी वर पार्ट ऑफ दैट प्रिपेरेशन. दोहा मेट्रो 2019 मई में वॉज इनॉग्रेटेड. वी ऑल सॉ, हमने सब देखा. और आज कतर एक इंटरनेशनल ग्लोबल स्टेज पर कतर इज समथिंग, एवरीबडी नोज कतर, एवरीबडी टॉक्स अबाउट कतर. तो फैंस को उम्मीद थी कि होम सपोर्ट के साथ कतर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देगा. एवरीबडी ऑल्सो, हम लोगों ने भी सोचा कि कतर विल डू समथिंग द होम सपोर्ट. ओपनिंग मैच इक्वाडोर के खिलाफ था और प्रेशर बहुत ज़्यादा था, एंड अनफॉर्चुनेटली कतर नर्वस नजर आए और मैच हार गया. उसके बाद सेनेगल और नीदरलैंड्स के खिलाफ भी डिफीट्स हुई और कतर ग्रुप स्टेज से एलिमिनेट हो गया और टूर्नामेंट में कोई पॉइंट हासिल नहीं कर सका. हाँ, एक गोल किया था, कतर स्कोर्ड वन गोल, मोहम्मद मुंतारी. सो ही ऑल्सो बिकेम अ यू नो, आई वुड से आज से 50 साल के बाद मुंतारी का नाम लिया जाएगा कि वाहिद खिलाड़ी जिन्होंने यू नो फर्स्ट गोल किया था. नॉट वाहिद खिलाड़ी बल्कि जिस खिलाड़ी ने फर्स्ट गोल किया था, नाम बताओ आप लोग, मोहम्मद मुंतारी. रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग जरूर थे लेकिन एक्सपीरियंस वॉज प्राइसलेस. इस शो के शुरू में मैंने ये

तो कहा कि जब आप स्कूल पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, जब आप एक्सपोजर के लिए बाहर जाते हैं, वो जो माहौल है उस माहौल को देख के आप या तो नर्वस हो जाते हैं या कॉन्फिडेंस के साथ लड़ते हैं। यहाँ कतर ने कॉन्फिडेंस के साथ ज़रूर लड़ाई की, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है, दैट एक्सपीरियंस वॉज नॉट देयर विद ऑल दीज प्लेयर्स। तो एक्सपीरियंस दे गेन्ड, और कतर के प्लेयर्स ने दुनिया की बेस्ट टीमों के अगेंस्ट में खेलकर बहुत कुछ सीखा था। और फुटबॉल एक्सपर्ट्स का कहना था कि कतर को वर्ल्ड कप लेवल का एक्सपोजर फ्यूचर में बेनिफिट देगा, जो आज हमें देखने को मिला। दे क्वालिफाइड नॉट एज अ होस्ट, दे क्वालिफाइड थ्रू द क्वालिफायर्स। यूएई को हराकर, यहाँ पर जो मैच हुआ था अलसद स्टेडियम में, यूएई को हराकर कतर क्वालिफाइड फॉर द 2026 वर्ल्ड कप। यही एक्सपीरियंस जो 2022 में कतर को मिला, दैट एक्सपीरियंस रियली काउंटेड। 2022 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन और हॉस्पिटलिटी थी। इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन और इंटरनेशनल मीडिया ने कतर की टूर्नामेंट मैनेजमेंट की तारीफ की, तह दिल से तारीफ की कि यू नो अमेजिंग अरेंजमेंट्स, ये हो ही नहीं सकता और कोई वर्ल्ड कप में हुआ हो या होने जा रहा हो। आज हम जो वर्ल्ड कप देखने जा रहे हैं, 2026 वर्ल्ड कप, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, सोचिए कि एक फैन वो किस किस का मैच देखने कहाँ कहाँ पहुँचेगा। अमेरिका फ्लाइट लेगा, ट्रेन में बैठेगा, एंड अमेरिका इज़ नॉट अ स्मॉल कंट्री, मैक्सिको इज़ नॉट अ स्मॉल कंट्री, कनाडा इज अनदर कंट्री। तो ये सब आपको इधर उधर फ्लाइट के खर्चे, होटल बुकिंग्स और ना जाने तमाम लॉजिस्टिक्स, इतना खर्चा है कि आप एक बार सोचेंगे यार छोड़ो यार टीवी पर ही देख लेते हैं। लेकिन जब कतर वर्ल्ड कप हुआ था, एवरीबडी थॉट कि वी विल मेक इट टू कतर, बिकॉज इंडिया से आना बड़ा ईजी, पाकिस्तान से आना ईजी, बांग्लादेश से आना ईजी, यूरोप से आना काफ़ी ईजी, यू नो इज इन द विजिनिटी ना, चार चार घंटों की फ्लाइट्स हैं, पाँच पाँच घंटों की फ्लाइट है। और आप जब कतर पहुँचते हैं, वेन यू वॉच दोज मैचेज, चाहे आप यू नो जुनूब स्टेडियम में थे, चाहे आप यू नो खलीफा में थे, आपको सिर्फ एक मेट्रो ट्रेन ही तो चाहिए था, ना मेट्रो ट्रेन में बैठ के आप इधर उधर कर रहे थे। और क्या फ्री ट्रैवल, टोटली फ्री, इसको कहते हैं मुफ्त। और इसी मुफ्त सर्विस से लोगों का दिल जो है जीता कतर, कि वी आर कैटरिंग टू द फुटबॉल लवर्स, हमें हर चीज पे पैसा नहीं देखना, तो दे वर गिवन दैट काइंड ऑफ सर्विस। ये आप किसी और वर्ल्ड कप में एक्सपीरियंस अब नहीं कर सकते। मैं पर्सनली, मैं यहाँ पे बताऊँ कि रशिया वर्ल्ड कप मैंने कवर किया, रशिया वर्ल्ड कप में भी गया था। आई डोंट थिंक ये जो फ्री बेनिफिट्स कुछ थे, वो शायद मतलब कतर के अलावा किसी ने दिया नहीं होगा। आई एम नॉट सेइंग कि हर कुछ फ्री हो जाए, होटल भी फ्री हो जाए, ये भी फ्री, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। बात ये कर रहा हूँ कि ये लॉजिस्टिक्स, ट्रैवलिंग, बसेस, शटल्स, ये सब चीज़ें कतर प्रोवाइडेड, एंड कतर शोड दैट क्लास, मेंटेन दैट यू नो दैट लेवल। वो लेवल को टच करना इन फ्यूचर किसी भी होस्ट कंट्री के लिए मुश्किल है। अब मैं बात करता हूँ कि 2026 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के बारे में, और ये कतर फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आज हम मानते हैं इसको। पहली बार कतर को अपनी जगह मेरिट पर हासिल करनी थी। टूर्नामेंट भी एक्सपेंडेड फॉर्मेट में था, जहाँ

इंट्रोड्यूस किया एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंस. मैं समझता हूँ, यू नो आई बिलीव कि दिस इज व्हाट द डिफरेंस दैट हैड मेड खुलेन लोकतोगी. एक तो स्पेनिश फुटबॉल फिलोसॉफी है, ऊपर से एक डिसिप्लिन है, एंड उसी डिसिप्लिन के साथ चलते चलते आज हमें कतर को यहाँ तक हमने देख लिया कि यहाँ तक कतर हैज रीच्ड. सेकेंड राउंड क्वालिफायर्स में कतर ने इम्प्रेसिव फुटबॉल खेली और ग्रुप को टॉप किया. टीम ने 16 पॉइंट्स हासिल किए और अटैकिंग अप्रोच से फैंस को मुतासिर किया. प्लेयर्स के दरमियान अंडरस्टैंडिंग और केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आई. फर्स्ट टाइम एवर दिस एक्चुअली कैटापल्टेड कतर टू दैट काइंड ऑफ ग्लोरी. थर्ड राउंड में कॉम्पिटिशन और मजीद टफ हो गया. ईरान, उज़्बेकिस्तान और दूसरी स्ट्रॉन्ग एशियन टीम्स के अगेंस्ट मैचेस डिफिकल्ट थे. कतर कुछ मैचेस में स्ट्रगल भी करता रहा और डायरेक्ट क्वालिफिकेशन टेम्पररीली डेंजर में नजर आई, खतरा. लेकिन कतर की टीम ने प्रेशर सिचुएशंस में कैरेक्टर शो की. दैट कैरेक्टर इज द डिटरमिनिंग फैक्टर ऑफ टुडे कतरी फुटबॉल सक्सेस. अच्छा, 2025 में ये एक एएफसी का जो फोर्थ राउंड क्वालिफायर्स कतर और सऊदी अरब में किया गया था, दैट वाज द लास्ट स्ट्रेच जहां पे कतर को जीतना था, यानी ग्रुप टॉप करना ही करना था. कतर को यूएई और ओमान के साथ ग्रुप में रखा गया था. एक तरह का मिनी टूर्नामेंट स्टाइल क्वालिफायर्स कह सकते हैं आप, जहां से हर मैच फाइनल की तरह इंपॉर्टेंट था. अच्छा, ओमान के खिलाफ मैच ड्रॉ रहा, जिसकी वजह से यूएई के खिलाफ फाइनल गेम बहुत क्रूशियल बन गया. यही हमारे ऑफिस के पास जासिम बिन हमाद स्टेडियम, अलसाद स्टेडियम, उसमें एटमॉस्फेयर अगर आप नज़र आते हैं आप लोगों को, तो पता चलता कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिफाइंग एटमॉस्फेयर रहा है. और उस दिन काफ़ी लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया उस स्टेडियम पर नज़र रखे हुए थे, क्योंकि दैट वुड डिसाइड द यू नो द टीम वुड क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026, या तो यूएई या तो कतर. फैंस को पता था कि यह मैच कतर की फुटबॉल हिस्ट्री चेंज कर सकता है. सभी लोगों ने सोचा था और पूरे टाइम तक आई थिंक कोई सोशल मीडिया पे बैठा हुआ, कोई टीवी के सामने, कोई स्टेडियम में तो है जो उनका है ही है, उसमें तो कोई दोहराए नहीं कि किस तरह का वो प्रेशर कुकर सिचुएशन में सब लोग बैठे हुए थे. यूएई के खिलाफ कतर ने प्रेशर के बावजूद मैच्योर फुटबॉल खेली. फर्स्ट हाफ कॉशस रहा, लेकिन सेकेंड हाफ में बॉलम खुकी और पेड्रो मेगल ने गोल स्कोर करके कतर को 2-1 की हिस्टोरिकल विक्ट्री दिलाई. फाइनल विजल के बाद स्टेडियम सेलिब्रेशन से भर गया और प्लेयर्स इमोशनल नजर आए. नॉट जस्ट प्लेयर्स बल्कि फॉर्मर प्लेयर्स, कोचेस, फैंस, एंड इनफैक्ट कतर में बसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, फिलीपींस, जितने भी इस कंट्री के, इन सारे तमाम कंट्रीज के जो रेसिडेंट्स हैं यहाँ पे थे, वो लोग भी एक तरह से इमोशनल हो गए कि कतर्स विक्ट्री इज़ अ विक्ट्री फॉर देम एज वेल. और इस विक्ट्री के साथ कतर ने पहली बार रेगुलर क्वालिफिकेशन प्रोसेस के जरिए फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया. और यह सिर्फ फुटबॉल अचीवमेंट नहीं दोस्तों, बल्कि ईयर्स ऑफ प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट का नतीजा था. कतर की 2026 क्वालिफिकेशन को बहुत सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस हासिल हुई. 2022 में टीम होस्ट नेशन थी, यानी मेजबान, लेकिन 2026 में उन्होंने दुनिया को दिखाया कि वो मेरिट पर भी क्वालिफाई कर सकते हैं. और ये एशियन फुटबॉल के लिए भी पॉजिटिव मोमेंट था, क्योंकि कल फुटबॉल कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रहा है. अब सऊदी अरब में क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज प्लेइंग, दैट शोज दैट इस रीजन में फुटबॉल एक लेवल का है. 2002 का कतर और 2026 का कतर बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आता है. पहले उस टाइम में टीम ऑलवेज यूज्ड टू ड्रीम किया चलो क्वालिफाई कर लेते हैं, और आज टीम जो है वर्ल्ड फुटबॉल में अपनी रेस्पेक्ट हासिल करना चाहती है. और ये सफर जो है दोस्तों, स्ट्रगल, पेशेंस और एम्बिशन की एक बहुत बहुत बड़ी मिसाल है. ये जब आप इस चीज़ को रिसर्च करेंगे, ये जब पढ़ेंगे, आप लोगों को समझ आएगा. इनफैक्ट जो फ्यूचर जनरेशन के लिए, दिस इज आई वुड से कि कतर इज अ रोल मॉडल फॉर एनी नेशन टू कम अप एंड प्ले इन द फुटबॉल वर्ल्ड कप. और इसकी जो पीछे प्लानिंग, ये जो दिमाग, ये जो सोच, आई थिंक दैट इज गोइंग टू इंस्पायर अ लॉट ऑफ स्मॉल कंट्रीज, जिनका एक ड्रीम होता होगा कि चलो हम भी वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करें.

0: वर्ल्ड कप खेले. सो दिस इज हाउ दे डिड फर्स्ट एज अ होस्ट एंड देन धीरे धीरे दे यूटिलाइज दैट एक्सपीरियंस और उस एक्सपीरियंस को यूज करते करते नाउ आर दे आर पार्ट ऑफ द 48 टीम इन द वर्ल्ड कप. दिस इज साल का जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है. दोस्तों फुटबॉल हिस्ट्री में कुछ कैंपेन्स रिजल्ट की वजह से याद रखे जाते हैं और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से. कतर की वर्ल्ड कप जर्नी दोनों कैटेगरीज में आती है. 2002 ने उन्हें रियलिटी दिखाई जबकि 2026 ने उनका ख्वाब हकीकत बना दिया. आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि कतर का फुटबॉल वर्ल्ड कप सफर सिर्फ फुटबॉल की कहानी नहीं बल्कि विजन, मेहनत और नेशनल एम्बिशन की मिसाल है. 2002 में जो टीम एशिया में अपनी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी वही कतर 2026 तक एक कॉन्फिडेंट और रेस्पेक्टेड फुटबॉल नेशन बन चुका है. इस सफर ने ये साबित किया कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यूथ डेवलपमेंट और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन किसी भी मुल्क को दुनिया के सबसे बड़े स्टेज तक पहुंचा सकती है. अब 2026 वर्ल्ड कप कतर के लिए सिर्फ पार्टिसिपेशन का मौका नहीं बल्कि दुनिया को अपनी असल फुटबॉल स्ट्रेंथ दिखाने का एक नया चैप्टर है. तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये पॉडकास्ट प्रोग्राम यहीं पे खत्म होता है. और आप लोगों को अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें. ये पॉडकास्ट अवेलेबल है ऑन www.urduradio.qa पर. तो तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए और कतर की फुटबॉल टीम को जरूर फॉलो करिए. पॉडकास्ट का ये आखिरी एपिसोड था और इस शो में जुड़े रहने के लिए आप सभी लिसनर्स को तहे दिल से शुक्रिया. इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द एक और नए स्पोर्ट्स शो में. तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.
1: पॉडकास्ट आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर. दिल से देसी.
2: हे बच्चो, आर यू रेडी गेम्स, मस्ती, स्टोरीज और सुपर फन के लिए?
3: FM 107 पर आता है एक ऐसा शो जहां बोर होने का कोई चांस नहीं.
4: ये शो कौन सा है?
2: द सुपर किड शो.
3: Sunday to Thursday, 1:30 PM से 3 PM तक, only on FM 107, दिल से देसी.
4: I love the Super Kid Show. Super.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुराने करीम। आइए फलाह अशरफुल समान के साथ और आरजे महविश खान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें। रोजाना 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

रखती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। यह रस्सी ये हबले मतीन है कुरान करीम। आइए फलाह अशरफ उल जमान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ FM 107 पर।
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، پروگرام پلس آف دی قرآن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ طلحہ اشرف الزمان کی طرف سے قبول کیجئے سلام و تحیات۔

0: स्टूडेंट्स के लिए आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है कि कौन सा रास्ता चुने। नए करियर ऑप्शंस की वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। डॉक्टर, इंजीनियर या एआई एक्सपर्ट, करना क्या है? इस उलझन को सुलझाने के लिए आ रहा है शो करियर कैंपस सीजन टू, जहां मिलेगी वो गाइडेंस जो आपको कंफ्यूजन से निकाल कर बनाएगी कॉन्फिडेंट। एक्सपर्ट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन, ऑन स्पॉट क्वेरीज के जवाब और वो टिप्स जो आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे।
1: वेलकम टू द शो कॉल्ड करियर कंपास नेविगेटिंग द फ्यूचर। इट्स अ सीजन टू, द शो दैट हेल्प्स यू एक्सप्लोर करियर्स, बिल्ड स्किल्स एंड मेक स्मार्टर चॉइसेस एंड प्रोफेशनल डिसीजंस विद कॉन्फिडेंस। आई एम योर होस्ट, योर दोस्त नाजिया. And today, we are bringing you an episode that's specially important for the students and young professionals, because in today's world, your communication skills and your ability to learn using technology can shape your future. We are talking about how English language, learning, educational technology and tools like mobile learning and of course, gamified learning can help you become more confident, more employable, and prepare for modern workplaces. So if you are a student,

0: इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशंस के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है।
1: कोई ऐसी किताब है जो किताबों को समझने में मदद करे, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो मस्ती मजाक नहीं सही लेकिन लाइफ के लेसन्स भी दे पाए।
2: कस के जूता, कस के बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी।
1: वेल, ये कोई सुपरफिशियल एड नहीं है, सच्चाई है, क्योंकि FM 107 लेकर आया है एक खास शो फॉर स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स गाइड, द स्टूडेंट्स गाइड। तो सुनिए हर मंडे दोहा वाले कबीर के साथ, कबीर के साथ, द स्टूडेंट्स गाइड, एंड बी द गाइडिंग लाइट फॉर स्टूडेंट्स हमारे साथ दोपहर 3:30 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं FM 107,
4: FM 107,
5: दिल से देसी।

0: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti.
1: कभी शाम को काम खत्म करने के बाद जब हम चेयर से उठते हैं तब ऐसा लगता है ना कि बॉडी बोल रही हो बस अब हो गया, अब और काम नहीं हो पाएगा. नेक एकदम स्टिफ हो जाती है, लोअर बैक कंप्लेन मोड में चला जाता है, शोल्डर्स बड़े हैवी लगने लगते हैं जैसे कि पूरा काम उन्होंने किया हो. और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं डेस्क जॉब और बॉडी पेन के बारे में. दोनों का काफ़ी गहरा रिश्ता है. जब आप किसी को कहोगे कि बस ऑफिस में बैठ के काम करना होता है तो लोगों को बड़ा ही ईजी लगेगा, अरे बैठ के काम करना है, एसी में, कोई हैवी लिफ्टिंग नहीं, इधर उधर दौड़ा भागी नहीं करना है. बट नहीं, हमारी बॉडी के लिए ये लाइफस्टाइल ही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होती है क्योंकि हम घंटों तक के एक ही पोजिशन में बैठे रहते हैं. नेक स्क्रीन की तरफ झुकी होती है, शोल्डर्स फॉरवर्ड होते हैं, बैक थोड़ी सी राउंडेड होती है और बॉडी मूवमेंट के लिए बनी ही नहीं है, जैसे कि फ्रीज हो चुकी है ऐसा लगता है. इसलिए डेस्क जॉब के साथ नेक पेन, बैक पेन, रिस्ट स्टिफनेस और शोल्डर टाइटनेस बड़ा ही कॉमन हो जाता है. और अक्सर हम इस पेन को नॉर्मल है, जॉब ऐसी होती है, ये नाम दे देते हैं, बट ये पेन नॉर्मल नहीं है. अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी पेन हो रहा है मतलब ये सिग्नल है, ये वो सिग्नल है जो कह रहा है कि मुझे थोड़ा मूवमेंट चाहिए. गुड न्यूज ये है कि डेस्क जॉब को छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हैबिट्स को थोड़ी चेंज करने की जरूरत है. सबसे पहले पोस्चर, स्क्रीन अगर आई लेवल पे हो, फीट फ्लैट हो ऑन द फ्लोर, बैक सपोर्टेड हो तो बॉडी पे प्रेशर कम होता है. दूसरी चीज, मूवमेंट ब्रेक्स लीजिए, हर 30 से 35 मिनट पे थोड़ा उठ के स्ट्रेच कीजिए अपनी बॉडी को, थोड़ा चल ले. बॉडी के लिए ये एकदम मैजिक के समान काम करता है, जैसे कि अगर आपने नेक रोल्स किए, शोल्डर श्रग्स, स्पाइन स्ट्रेच, तो ये सिर्फ एक दो मिनट का ही टाइम लेते हैं पर इसका इफेक्ट पूरे दिन का होता है. और हाँ, वाटर ब्रेक्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, हाइड्रेशन मसल्स को फ्लेक्सिबल रखता है और स्टिफनेस कम करता है. डेस्क जॉब का एक और हिडन इशू है एंड दैट इज मेंटल फटीग. कॉन्स्टेंट स्क्रीन एक्सपोजर माइंड को थका देता है जो बॉडी टेंशन के

0: फॉर्म में स्टोर हो जाती है. इसलिए कभी कभी स्क्रीन से थोड़ा दूर रहना, आंखों को रेस्ट देना और डीप ब्रीथ लेना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इमेजिन कि अगर आप लगातार फोन चलाते रहेंगे या लैपटॉप यूज करते रहेंगे, एक पॉइंट पे वो भी हैंग हो जाएगा. तो इमेजिन हमारी बॉडी कितनी सेंसिटिव होती होगी अगर हम बैक टू बैक काम करते रहेंगे. इसलिए कॉन्स्टेंट ब्रेक्स लेते रहिए. बॉडी को थोड़ा अटेंशन चाहिए होता है, थोड़ी रिस्पेक्ट चाहिए होती है. और जब आप बॉडी को बीच बीच में मूव करने देते हो ना, तो आपकी बॉडी भी आपके साथ कोऑपरेट करती है. तो आज का एक सिंपल सा रिमाइंडर, काम के साथ साथ अपनी बॉडी को भी जॉब पर रखिए. क्योंकि जब बॉडी कंफर्टेबल होती है तो फोकस बेटर होता है, एनर्जी स्टेबल होती है और काम भी थोड़ा ईजी लगता है. इसलिए याद रखिए, डेस्क जॉब फिक्स्ड हो सकती है पर पेन को परमानेंट बनने की जरूरत नहीं है. एंड योर हेल्थ मैटर.
1: FM 107 presents Matters. Your Health Matter with RJ Shruti.
2: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ आइए जानते हैं वजारत दाखला से वीकली अपडेट।
2: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सरवर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारत दाखला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आप और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सरवर, विद आरजे सरवर।
1: जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक ने ऐलान किया है कि इन्वेस्टिगेशन सेक्शन को मदीना खलीफा की मेन बिल्डिंग से लुसैल एरिया मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से वाजे किया गया है कि ये सेक्शन अब लुसैल पुलिस स्टेशन बिल्डिंग में अपनी सर्विसेज फराहम करेगा। आम पब्लिक के लिए सेक्शन की वर्किंग टाइमिंग्स संडे से थर्सडे तक सुबह के वक्त में होगी, जो कि 6:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक मुकर्रर की गई है। अवाम को ये भी हिदायत दी गई है कि बिल्डिंग में दाखिल होने के लिए मेन गेट का इस्तेमाल किया जाए। असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर फॉर टेक्निकल एंड स्पेशलिस्ट अफेयर्स और चेयरमैन सुप्रीम कमेटी फॉर द टैक्टिकल एक्सरसाइज स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल सुईदी की सरपरस्ती में GCC सिक्योरिटी एजेंसीज की मुश्तरका टैक्टिकल एक्सरसाइज अरेबियन गल्फ सिक्योरिटी 4 के लिए सुप्रीम कमेटी ने अपना 4th इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक्किद किया। इजलास के दौरान एजेंडा के तमाम नुकात का जायजा लिया गया और GCC ममालिक के दरमियान मुश्तरका सिक्योरिटी इंटीग्रेशन और तआवुन को फरोग देने के लिए मुनासिब सिफारिशात मंजूर की गईं। वजीर दाखला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अलसानी की जानिब से मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर अफेयर्स शेख अब्दुल अजीज बिन फैसल बिन मोहम्मद अलसानी ने रियासत कतर के वफद की सरबराही की, जो GCC ममालिक के वज़राए दाखला के गैर मामूली इजलास में शिरकत के लिए रियाद में GCC जनरल सेक्रेटरीट के मरकज पर मुनक्किद हुआ। इजलास के दौरान खलीजी सतह पर मुश्तरका सिक्योरिटी तआवुन को मजबूत बनाने और सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका कोशिशों को मुस्तहकम करने के तरीकों पर गौर-ओ-खौज किया गया, ताकि इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फरोग दिया जा सके। इसके अलावा इजलास के दौरान रियासत कतर ने इस बात पर जोर दिया कि GCC ममालिक के दरमियान मुसलसल सिक्योरिटी तआवुन और इंटीग्रेशन जरूरी है, ताकि नए पैदा होने वाले हालात और मुश्तरका चैलेंजेस का मुअस्सर तौर पर मुकाबला किया जा सके। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल आपको, आपके घर वालों को और दूसरों की जिंदगियों को खतरे में डाल सकता है। अपने मोबाइल को हमेशा साइड पर रखें, ताकि अपने साथ साथ दूसरों की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जा सके। आपकी यह आदत और एहतियात किसी की जान बचा सकती है। महफूज ड्राइविंग के लिए जरूरी है कि पूरी तवज्जो सिर्फ रोड पर हो और हर किस्म के डिस्ट्रैक्शन से बचा जाए। अपनी और दूसरों की सेफ्टी के लिए ड्राइविंग के वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें और किसी की जिंदगी को रिस्क में ना डालें। ड्राइव करते वक्त पूरी तवज्जो रोड पर रखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बड़ा हादसा बन सकती है। और याद रखें, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी की हिफाजत करना भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि ये छोटी छोटी एहतियात आपको और आपके आसपास के लोगों को महफूज रखती है। जिम्मेदार फर्द होने के फर्ज को अदा करते हुए बहुत ही एहतियात और ख्याल से ड्राइविंग कीजिए। पुलिस एकेडमी के प्रेसिडेंट मेजर जनरल अब्दुर्रहमान माजिद अल सुलैती की मौजूदगी में पुलिस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट की नुमाइंदगी करते हुए पुलिस एकेडमी ने सीनियर ऑफिसर्स कोर्स के ग्रेजुएट्स की तकरीब तकमील मनाई, जिसमें मुतादिद ऑफिसर्स ने भी शिरकत की। ये तकरीब द टॉर्च दोहा में मुनक्किद हुई और इस कोर्स में 22 अफसरान शामिल थे, जो कर्नल के ओहदे पर फाइज थे, और ये कोर्स 3 हफ्तों पर मुश्तमिल था। इस अरसे के दौरान शुरका ने मुख्तलिफ नजरियाती और अमली प्रोग्राम्स और लेक्चर्स में हिस्सा लिया, जिनका मकसद क़यादत, इदारी सिक्योरिटी और इदारी सलाहियतों को बेहतर बनाना था, जबकि मॉडर्न सिक्योरिटी काम की जरूरियात के मुताबिक पेशवाराना महारत को मजबूत करना

ही इसका हिस्सा था। सीनियर ऑफिसर्स कोर्स को एक लाजमी स्ट्रेटेजी कोर्स के तौर पर देखा जाता है, जो शुरका के करियर में एक अहम एकेडमिक और प्रोफेशनल मरहला समझा जाता है। पुलिस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट के किरदार को तस्लीम करते हुए और कोर्स सुपरवाइजर्स की कोशिशों और उन पर मुनक्किद रवानी के दौरान दी गई हिमायत और निगरानी को सराहते हुए ग्रेजुएट्स ने इंस्टीट्यूट को एक यादगार शील्ड पेश की, जिसकी नुमाइंदगी डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट कर्नल डॉक्टर नाइफ मोहम्मद मन्नाई कर रहे थे। इसके बाद तकरीब के इख्तिताम पर ग्रेजुएट्स में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। पुलिस अकेडमी के सिक्योरिटी रिसर्च एंड स्टडी सेंटर की नुमाइंदगी कर रही वजारत दाखिला ने 35वें दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर में अपनी खास पवेलियन के साथ शिरकत की है। ये इवेंट दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर या DECC में मुनक्किद हुआ। पवेलियन खसूसी सिक्योरिटी और कानूनी इशाद के मजमुए की नुमाइश करती है। जनरल और लीगल एंड सिक्योरिटी स्टडीज और अकेडमी के अहम अवार्ड्स और कामयाबियों को नुमाया भी करती है। इस नुमाइश में बच्चों के लिए मुख्तलिफ सेमिनार्स, पैनल डिस्कशंस और इंटरएक्टिव प्रोग्राम्स भी पेश किए गए हैं, जो जदीद तालीमी तरीकों के जरिए सिक्योरिटी से मुतालिक आगाही और कम्युनिटी की अकदार को फरोग देने के लिए बनाए गए हैं। ये शिरकत इल्म को फैलाने, कौमी सकाफती तहरीक की हिमायत और कानूनी और पुलिसिंग के मामलात में कम्युनिटी की शमूलियत को बढ़ाने के लिए वजारत के अज़्म की निशानदेही करती है। दोस्तों, रोड मार्किंग्स यानी सड़क पे जो निशानात होते हैं वो सड़क की जुबान होते हैं। इन पर अमल करना ट्रैफिक की हिफाजत को बढ़ाता है और लोगों को महफूज रखने के लिए बहुत अहम है। ट्रैफिक साइंस और मार्किंग्स पर अमल कीजिए। याद रखिए कि एक दूसरे का ख्याल रखते हुए हम सब मिलकर इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर सकते हैं। और हाँ, ट्रैफिक के कानून की तामील करने से हम अपनी और रोड पर अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी को महफूज कर सकते हैं। रियासत कतर और शामी अरब जमहूरिया की वजारत दाखिला के दरमियान सिक्योरिटी तावन को बढ़ाने और महारत के तबादले के फ्रेमवर्क के अंदर कतर की वजारत दाखिला के मुतअद्दिद सिक्योरिटी और खुसूसी महकमों ने शाम की वजारत दाखिला से एक वफद का इस्तकबाल किया। इस दौरे का मकसद वफद को सिक्योरिटी और पब्लिक सर्विसेज ऑपरेशंस में कतर के जदीद तजुर्बे से वाकिफ कराना था। वफद ने क्रिमिनल एविडेंस एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, एयरपोर्ट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और इकोनॉमिक एंड साइबर क्राइम प्रिवेंशन डिपार्टमेंट का दौरा किया। दौरे के दौरान वफद को ऑपरेशनल वर्कफ्लो, फराहम की जाने वाली सर्विसेज और जदीद तरीन सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज, एप्लीकेशंस और पुलिसिंग की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए तैनात किए गए सिस्टम्स के बारे में ब्रीफिंग दी गई। ये दौरा मुश्तरका सिक्योरिटी तावन को फरोग देने और खुसूसी टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी डोमेन्स में महारत और बेहतरीन तरीकों के तबादले को फरोग देने के लिए दोनों ममालिक के अज़्म की निशानदेही करता है। दोस्तों, मसाजिद और आसपास के घरों के करीब गलत पार्किंग न सिर्फ ट्रैफिक को रोकने का सबब बनती है, बल्कि ये इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स और पुलिस कार्स के लिए भी बहुत बड़ी रुकावट है। जब इन व्हीकल्स को जल्दी से गुजरना होता है तो किसी भी हादसे का खतरा लाहक बढ़ जाता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पार्किंग की आदतों में बेहतरी लाएं और दूसरों के लिए रास्ता खाली रखें। अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी गाड़ी सही जगह पर पार्क करें तो हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने इलाके के हर शख्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस तरह हम अपनी कम्युनिटी को सेफ, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल बना सकते हैं। हमारी छोटी सी सोच और मेहनत से न सिर्फ ट्रैफिक का मसला हल होगा बल्कि हमें अपनी रिलीजियस और सोशल ड्यूटीज को बेहतर तरीके से अदा करने में मदद मिलेगी। वजारत दाखिला का कहना है कि हम सब मिलकर इस मसले को हल करने में अपना हिस्सा डालें और एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बने जहां सबके लिए रास्ता खुला हो और सेफ्टी पहली तरजीह हो। सामईन, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वीकली अपडेट का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचा। अगली मुलाकात तक के लिए प्रोग्राम डिजाइनर शहबाज अंसारी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी.
2: Values are values. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं हूं नाजिया आपके साथ एंड वेलकम टू द सेगमेंट कॉल्ड आवर वैल्यूज. दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि हाउ टू कंट्रोल योर फाइनेंशियल स्ट्रेस. ये भी बड़ा जरूरी है. देखिए, फाइनेंस कैसे मैनेज करें, सेविंग्स क्यों जरूरी है और स्पेंडिंग और सेविंग्स का गुड बैलेंस, ये हम सबके लिए, हम सबको जानना बड़ा जरूरी है. देखिए, आज के दौर में फाइनेंशियल स्ट्रेस हर दूसरे इंसान का एक बड़ा मसला बन चुका है. महंगाई है, इन्फ्लेशन है, बिल्स है, रेंट है, बच्चों की पढ़ाई है और कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर भी हम जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है ही, तो उसकी प्लानिंग भी है. ये सब चीजें दिमाग पर अननेसेसरी का बोझ डालती हैं. जब पैसों का प्रेशर बढ़ता है तो सिर्फ पॉकेट ही नहीं बल्कि मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी अफेक्ट होती है. इसीलिए बड़ा जरूरी होता है कि हम अपने फाइनेंसेस को समझ कर मैनेज करें और स्ट्रेस को कंट्रोल करें. देखिए, फाइनेंशियल स्ट्रेस क्या है और ये क्यों होता है. फाइनेंशियल स्ट्रेस तब होता है जब इनकम और एक्सपेंसेस में बैलेंस ना रहे, या फिर जब आदमी बिना प्लानिंग के पैसा खर्च करता है और बाद में रिग्रेट होता है. कब होता है, कभी इमरजेंसी आ गई या इनकम कम हो गई तो स्ट्रेस बढ़ जाता है. देखिए, फाइनेंशियल स्ट्रेस का असर सिर्फ पैसों तक ही नहीं है, इससे आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आप इरिटेटेड होते हैं, आपका गुस्सा बढ़ता है, रिश्तों में जो है वो दरार आती है, अननेसेसरी का टेंशन, आपकी भूख मिट जाती है, आपकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ पूरी तरह से तबाह होती है.

ऑप्ट करने की। देखिए, सबसे बड़ा और अहम सवाल है कि फाइनेंस कैसे मैनेज करें। फाइनेंस मैनेज करने का पहला कदम है कि अपनी इनकम और अपने एक्सपेंसेस का आप क्लियर रिकॉर्ड रखें। आपको पता होना चाहिए कि आप हर महीने कितने पैसे कमा रहे हैं और कहां कहां खर्च कर रहे हैं। जब एक्सपेंसेस लिखे होते हैं ना, आई रिपीट, लिखे होते हैं, तो पता चलता है कि कौन सी चीज जरूरी रही और कौन सी हमने बस यूं ही दिखावे के लिए की। दूसरा बड़ा कदम, बजट बनाना। इसमें हंसने की जरूरत नहीं है, बजट बनाना चाहिए। देखिए, बजट का मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी को एंजॉय ना करें, मैं बजट बना लूं, मैं स्टिक करूं, फिर मैं अपनी ख्वाहिश पूरी ना करूं, ब्ला ब्ला। बजट बनाना ये है कि हर चीज की एक लिमिट सेट हो जाए। रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट बिल, एजुकेशन, सबके लिए एक फिक्स्ड अमाउंट हो। जब बजट फ्लो होता है तो पैसों पर कंट्रोल आता है और इससे आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। वहीं तीसरा बड़ा कदम जो है वो है इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बचना। हम अक्सर इमोशंस में बहकर कुछ चीजें खरीद लेते हैं। इमोशनली अगर हम थोड़ा स्ट्रेस में हैं तो कुछ अननेसेसरी को जाके हमने खरीद लिया। सेल देखी, बिल्कुल बिल्कुल घबरा गए एकदम से। डिस्काउंट्स हैं तो बस एकदम बेचैन हो गए खरीदने के लिए। कई बार हम दूसरे से खुद को कंपेयर करने के चक्कर में भी फालतू के खर्चे करते हैं। तो भैया, बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि कोई चीज लेने से पहले जरा खुद से सवाल कर लो, क्या ये वाकई जरूरी है? आई एम श्योर आप में से 99% लोग ऐसे होंगे जो इसका जवाब देंगे, नहीं ये जरूरी तो नहीं है। हाँ, 1% होगा कोई जो कह दे कि भाई जरूरी है, वो बड़ा मुश्किल ही होता है। देखिए, सेविंग भी लाइफ में बहुत जरूरी है। सेविंग फ्यूचर की सेफ्टी नेट है। जिंदगी बड़ी अनप्रडिक्टेबल है और अब तो बहुत ही ज्यादा अनप्रडिक्टेबल हो ही चुकी है। कभी भी मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, जॉब इश्यूज आ सकते हैं, कोई और बड़ी नीड फैमिली की वो सामने आ सकती है। अगर सेविंग्स ना हो तो ऐसे वक्त में स्ट्रेस और डबल हो जाता है और डिसीशंस शायद हम ले ही नहीं पाते, हमारा ब्रेन जो है वो पैरालाइज्ड हो जाता है। तो सेविंग सिर्फ इमरजेंसी के लिए नहीं, या अपने कॉन्फिडेंस और सुकून के लिए भी कीजिए। जब आपको पता होता है कि कुछ पैसे आपके पास बैकअप में है तो आप सुकून महसूस करते हैं और शायद कॉन्फिडेंट भी। आप अपनी जिंदगी के गोल्स, घर है, एजुकेशन है, रिटायरमेंट है, इसके

0: पहले सेव करें फिर खर्चे करें। जैसे सैलरी आई चाहे थोड़ी सी ही सही, सेविंग के लिए अलग कर दें। ये छोटा सा अमाउंट जो देखने में बड़ा छोटा लगेगा, लेकिन यकीन मानिए अगर आप कंसिस्टेंट रहे, मतलब हर बार ऐसा हर महीने करते रहे, तो आखिर में ये एक अमाउंट बड़े अमाउंट में तब्दील हो जाता है और शायद ये बड़ा अमाउंट आपका सुकून भी बन जाता है। वैसे तो पैसों से सुकून नहीं मिलेगा कभी भी, लेकिन हाँ कुछ छोटा मोटा कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है कि चलो कुछ ना कुछ मेरे पास है। वहीं पर स्पेंडिंग और सेविंग में गुड बैलेंस क्रिएट करना। बैलेंस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सेव करें और कुछ भी स्पेंड ना करें, या सिर्फ स्पेंड ही कर रहे हैं और फ्यूचर को इग्नोर कर रहे हैं। देखिए दोनों का हेल्दी मिक्स बड़ा जरूरी है। इसके लिए कुछ रूल्स फॉलो किए जा सकते हैं, जैसे जरूरी खर्च एक तरफ लिखना, सेविंग्स हर महीने लिख देना, वहीं पे कुछ एंजॉयमेंट के लिए अपने लिए आपने कुछ खर्चे करने हैं तो वो भी आप एक तरफ लिख लें। अगर आप अपनी इनकम का एक हिस्सा एंजॉयमेंट के लिए भी रखना चाहते हैं तो फ्रस्ट्रेशन कम होगा, क्योंकि आपने बजटिंग की है ना और फिर आप उसे फॉलो कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि एक रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग होगी और जो गिल्ट आती है ना हम लोग के अंदर वो नहीं होगी और ये आपकी स्पेंडिंग भी कंट्रोल्ड होगी, तो इससे आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम ही हो जाएगा। वहीं पर फाइनेंशियल स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए रेगुलर फाइनेंशियल चेक जरूर करें। लोन्स और क्रेडिट कार्ड का जो इस्तेमाल है बड़ा सोच समझ के किया करें। लाइफस्टाइल कंपैरिजन से नहीं क्वालिटी से कॉन्फिडेंस से बनता है। किसी के साथ अपने आप को कंपेयर ना करो, वहीं अपने जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उन्हें रियलिस्टिक रखिए जी। फिर जरूरत अगर आपको फिर भी पड़ रही है, मतलब इतना कुछ मेरे बोलने के बाद भी आपको लगता है कि कुछ और मुझे एडवाइस लेना है कहीं से, तो हाँ यहाँ पे बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं जो बहुत ही अच्छे कमाल की एडवाइस दे सकते हैं कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, कब आपको जो है सेव करना है या बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स क्या हो सकते हैं, तो उनकी भी एडवाइस जरूर ले लीजिए। देखिए फाइनेंशियल स्ट्रेस जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन इस पर काबू पाया जा सकता है जब हम पैसों को समझदारी से हैंडल करते हैं, सेविंग्स को प्रायोरिटी देते हैं और स्पेंडिंग्स में गुड बैलेंस रखते हैं, तो स्ट्रेस नेचुरली कम हो जाता है। पैसा हमारी जिंदगी का मास्टर नहीं है, लेकिन हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट टूल जरूर है। जब कंट्रोल पैसों के हाथ में होता है तो टेंशन ज्यादा होती है, और जब कंट्रोल हमारे हाथों में होता है तो जिंदगी ज्यादा पुरसकून और स्टेबल हो जाती है। तो बस अपनी जिंदगी को ज्यादा पुरसकून स्टेबल बनाइए। फिलहाल मुझे तो इजाजत दीजिए और इंशाल्लाह आपकी मेरी मुलाकात होगी एक और अमेजिंग से टॉपिक पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

इंडियन फुटबॉल की वन ऑफ द लेजेंडरी फिगर पीके बनर्जी यानी प्रदीप कुमार बनर्जी और लोग उन्हें बहुत प्यार से पीके बुलाते थे। यहाँ दोस्तों पीके बनर्जी सिर्फ एक बेहतरीन फुटबॉलर नहीं बल्कि इंडियन फुटबॉल की पहचान थे। 1950 और 1960 के दौर में इंडियन फुटबॉल का चमकता हुआ सितारा थे। अलॉन्ग विद चुनी गोस्वामी बलोराम पीके बनर्जी डिफाइन इंडियन फुटबॉल ड्यूरिंग द टेरा। उनकी स्पीड बॉल कंट्रोल और गोल स्कोरिंग एबिलिटी ने उन्हें एशिया के बेहतरीन फॉरवर्ड्स में शामिल कर दिया। उन्होंने इंडिया के लिए कई यादगार मैचेस खेले और इंटरनेशनल स्टेज पर मुल्क का नाम रोशन किया। स्पेशली 1956 ओलंपिक गेम्स जहां ऑस्ट्रेलिया को हराकर इंडिया फोर्थ पोजीशन हासिल की थी, उस टीम में भी पीके बनर्जी वाज वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर अलॉन्ग विद चुनी गोस्वामी बलोराम जैसे मैंने बताया। 1962 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली इंडियन टीम का हिस्सा होना उनके करियर का एक अहम संग मील था। बाद में पीके बनर्जी ने इंडियन फुटबॉल टीम की कप्तानी भी की और अपनी लीडरशिप से टीम को नया हौसला और डायरेक्शन दी। रिटायरमेंट के बाद यानी एज अ प्लेयर व्हेन ही रिटायर्ड, उसके बाद भी उनका फुटबॉल के साथ रिश्ता जो था टूटा नहीं। वो कोच और एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी इंडियन फुटबॉल से जुड़े रहे और नौजवान खिलाड़ियों की ट्रेनिंग में बुनियादी किरदार अदा किया। दोस्तों पीके बनर्जी का जुनून, मेहनत और कमिटमेंट इंडियन फुटबॉल के लिए हमेशा मिसाल रहेगा। वो एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक दौर की पहचान थे जिनकी लेगेसी आज भी जिंदा है। उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाइलाइट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: आप सुन रहे हैं FM 107।
1: दिल से देसी
2: FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
3: फ्रॉड अवेयरनेस।
4: आजकल इतने सारे OTP प्लेटफॉर्म्स भी आ चुके हैं जिसमें आप सब सब्सक्राइब करके रखते हैं, तो यहीं से एक और स्कैम आता है, सब्सक्रिप्शन स्कैम। आपको ईमेल या मैसेज आता है, योर सब्सक्रिप्शन एक्सपायर्स टुडे, प्लीज पे नाउ, और लिंक वहीं पे होती है। बस आपको लगता है वो ये सब्सक्रिप्शन तो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, चलो कर देते हैं। फेक ईमेल्स आपके फेमस पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म्स या एंटीवायरस के नाम पे आती है, लिंक पे क्लिक करते हैं, सारी डिटेल्स भरते हैं और पेमेंट फेक हो जाती है। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन रिन्यू करना है तो वो सिर्फ ऑफिशियल ऐप से ही रिन्यू होता है, ईमेल के लिंक से नहीं। तो भाई आप खुद ही अपने ऐप में जाके चेक कर सकते हैं, ऐसे किसी ईमेल पे भरोसा ना करें, क्योंकि ईमेल इतने रियल दिखते हैं जितने रियल कंपनी वाले नहीं करते, तो कोई भी धोखा खा सकता है।
3: सतर्क रहे, सावधान रहे, फ्रॉड अवेयरनेस
2: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: एक्सक्यूज मी, अच्छा यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है?
3: हाँ उसके लिए तो
2: वैसे कतर की हिस्टोरिकल जगह जानने के लिए कहाँ जाना सही रहेगा?
3: वैसे वो तो देखो,
2: और इवेंट के लिए ये मुल्क नया है, क्या करें क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है।
3: एक मिनट रुको ना, मिलेगी पूरी जानकारी, मिलेगी FM 107 पे।
4: प्रोग्राम कतर 101 RJ फजील के साथ जानिए लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, हिस्ट्री और कल्चर के बारे में हर इतवार सुबह 10 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
5: एक सफर अल्फाज का जो दुनिया को बदल गया, किताबें जो सिर्फ लिखी नहीं गईं बल्कि सोचने का रंग भर गईं, जिन्होंने तारीखों को जन्म दिया और इंसानियत को नए रास्ते दिखाए। हम आपको ले जाएंगे किताबों की उसी जहान में जो तारीख और तहजीब दोनों को रोशन करती हैं।
6: सुनिए द बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड हर फ्राइडे की दोपहर 12 बजे से RJ सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी, अल्फाज जो तारीख लिखते हैं।
7: Science can be fun. Nah, science will be fun. क्योंकि experiments होंगे तभी तो theories facts बनेंगी, है ना? तो बस दुनिया बदलते देखिए हमारे साथ, क्योंकि हम करेंगे fun science experiment दोहा वाले कबीर के साथ, एक easy and safe environment में। सुनिए और देखिए हमारे साथ ये खास शो जूनियर साइंटिस्ट हर संडे दोपहर 3 से 4 बजे सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
8: दोस्तों, रिक्रिएशनल और प्ले एरियाज में बच्चों के हिफाजती इकदामात को तरजीह देना उन्हें हादसात से बचाता है और खुशगवार और सेफ आउटिंग्स को यकीनी बनाता है। बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बराए मेहरबानी मुसलसल निगरानी को बरकरार रखें और बच्चों को अपने फैमिली मेंबर्स के इर्द गिर्द ही रहने की इजाज़त दें। गाड़ी को हमेशा सेफ पार्किंग में ही पार्क करें और बच्चों का गाड़ी से बाहर निकलते वक्त खास ख्याल कीजिए। उनका हाथ पकड़ के रखिए और दूसरी गाड़ी जब रिवर्स हो रही हो उस वक्त बच्चों को उसके पीछे जाने से रोकें।

आखिरकार हमने उसे और उसके घर को जमीन में धसा दिया, फिर कोई उसके हामियों का ग्रोह न था जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद को आता, और न वो खुद अपनी मदद आप कर सका। अब वही लोग जो कल उसकी मंजिलत की तमन्ना कर रहे थे कहने लगे, अफसोस, हम भूल गए थे कि अल्लाह अपने बंदों में से जिसका रिज्क चाहता है कुशादा करता है और जिसे चाहता है नपातुला देता है। अगर अल्लाह ने हम पर एहसान न किया होता तो हमें भी जमीन में धसा देता। अफसोस, हमको याद न रहा कि काफिर फलाह नहीं पाया करते। वो आखिरत का घर तो हम उन लोगों के लिए मखसूस कर देंगे जो जमीन में अपनी बड़ाई नहीं चाहते और न फसाद करना चाहते हैं, और अंजाम की भलाई मुत्तकीन ही के लिए है। जो कोई भलाई लेकर आएगा उसके लिए उससे बेहतर भलाई है, और जो बुराई लेकर आए तो बुराइयां करने वालों को वैसा ही बदला मिलेगा जैसे अमल वो करते थे। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीन जानो कि जिसने ये कुरान तुम पर फर्ज किया है वो तुम्हें एक बेहतरीन अंजाम को पहुंचाने वाला है। इन लोगों से कह दो कि मेरा रब खूब जानता है कि हिदायत लेकर कौन आया है और खुली गुमराही में कौन मुब्तला है। तुम इस बात के हरगिज उम्मीदवार न थे कि तुम पर किताब नाजिल की जाएगी, ये तो महज तुम्हारे रब की मेहरबानी से तुम पर नाजिल हुई है। बस तुम काफिरों के मददगार न बनो, और ऐसा कभी ना होने पाए कि अल्लाह की आयात जब तुम पर नाजिल हो तो कुफार तुम्हें उनसे बाज रखे। अपने रब की तरफ दावत दो और हरगिज मुशरिकों में शामिल ना हो, और अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को न पुकारो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। हर चीज हलाक होने वाली है सिवाय उसकी जात के, फरमानरवाई उसी की है और उसी की तरफ तुम सब पलटाए जाने वाले हो।